मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 सितंबर सन 2026 प्रातः के 5:56 हुए हैं। आरंभ होती है आज की हमारी प्रातःकालीन सभा। इस सभा में आपके साथ है आपकी दोस्त तुलिका शर्मा। आप सभी को हमारा नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6 बजते हैं, समाचार अब दिल्ली से होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों से अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने और पढ़ाने के नए तरीकों का इस्तेमाल करने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने और उनके चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने शिक्षकों से विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच और जिज्ञासा की भावना विकसित करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने सभी समर्पित शिक्षकों के योगदान के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि वो ऐसी पीढ़ियों का निर्माण करते रहे जो देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें महान शिक्षक बताया। शिक्षक दिवस पर हर वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये शिक्षक 27 राज्य, 7 केंद्रशासित प्रदेश और 6 केंद्रीय संस्थानों से चुने गए हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और प्राध्यापकों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। कॉलेज की स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। पिछले 100 वर्ष में इस संस्थान ने कई विद्वान, पेशेवर और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को तैयार किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज चेन्नई के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो इंडिया वॉल्स में शामिल होंगे। ये हृदय से जुड़ी बीमारियों के इलाज को बेहतर बनाने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन है। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
2: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ग्रस्त त्रिशूली बाजार इलाके से 3 और भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें 5 साल का एक बच्चा भी शामिल है। सुरक्षित निकाले गए भारतीयों की संख्या 169 हो गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 275 भारतीय अब भी लापता हैं। वहीं चीन से 1907 भारतीय सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि भारत ने नेपाल में बाढ़ के बाद अब तक लगभग 95 टन राहत सामग्री भेजी है। भारत आगे भी नेपाल की जरूरत के अनुसार मदद जारी रखेगा।
3: We have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal.
4: हमने नेपाल सरकार और वहाँ की जनता के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है। एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में भारत ने तुरंत सहायता पहुँचाई और हम नेपाल के पुनर्निर्माण और राहत के प्रयासों में लगातार सहयोग करते रहेंगे।
3: And recovery efforts in the country.
1: महिला क्रिकेट में T20 एशिया कप के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई में रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत ने थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उधर विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होगा। इसमें 19 देशों के 105 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय पुरुष डबल्स की जोड़ी आज चाइना मास्टर्स के सेमीफाइनल में मलेशिया की जोड़ी के साथ खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले सुनते हैं ये देशगान।

0: इस भक्ति गीत के साथ आज की वंदना संपन्न होती है। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। आज हम आपको सुनवा रहे हैं शिक्षक दिवस पर यह विशेष चिंतन। चिंतक हैं डॉक्टर दिवाकर विद्यालंकार।
1: सब भारतवासी इस बात से परिचित हैं कि 5 सितंबर प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर राधाकृष्णन का यह जन्मदिन है। उनके जन्मदिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की परंपरा इसलिए प्रारंभ हुई क्योंकि डॉक्टर राधाकृष्णन एक विश्व प्रसिद्ध विद्वान शिक्षक थे। एक ढंग से उनको कहा जाता है कि वो आधुनिक भारत के विद्वान ऋषि थे। प्राचीन ऋषियों ने भारतीय वाङ्मय, भारतीय संस्कृति, भारतीय नैतिक मूल्यों के ऊपर जो अनेक ग्रंथ लिखे हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन आधुनिक ढंग से उनकी व्याख्या करने वाले विद्वान थे। इसीलिए न केवल देश में अपितु विदेशों में भी भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन और भारतीय वाङ्मय के वो प्रामाणिक विद्वान माने जाते थे और शिक्षक के रूप में देश विदेश में कार्य करते रहे। उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का यही उद्देश्य है कि आज के भारत का शिक्षक भी डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे एक ओर तो भारतीय मूल्यों से परिचित हो, भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराएं, भारतीय पृष्ठभूमि से परिचित हो और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की समस्त शाखाओं से उसका परिचय हो। इसलिए हम कहते हैं कि एक शिक्षक न केवल अपने विषय का अपितु अन्य विषयों का भी इतना जानकार हो कि वह अपने विद्यार्थी के संपूर्ण विकास को कर सके। शिक्षक आज गौरव का अनुभव करेंगे और समाज भी उनको सम्मान देगा, अनेक रूप से सम्मानित करेगा। किंतु मेरा विचार इसमें यह है कि शिक्षक का दायित्व इतना गुरुतर होता है, इतना गुरुतम होता है कि वह विद्यार्थी का संपूर्ण निर्माण करे। मैं एक बात प्रायः कहा करता हूँ कि केवल किताबी शिक्षा देना और परीक्षा में उत्तीर्ण करा देना ही शिक्षक का दायित्व कर्तव्य नहीं होता, अपितु शिक्षक का अपना आचरण इतना आकर्षक और प्रभावशाली हो कि उस आचरण को देखकर ही उसके शिष्य का निर्माण होता हो। हमारे शास्त्रों में शिक्षक को पूजने की परंपरा है और इसीलिए कहा गया है आचार्य देवो भव। सब लोगों को चाहिए कि वो आचार्य की, शिक्षक की देवता तुल्य पूजा करें। और मैं एक प्रामाणिक बात और कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ वैदिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथों का नाम आता है और एक बड़ा प्रसिद्ध ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। उस शतपथ ब्राह्मण में आचार्य और शिष्य के संबंध में एक ऐसी सूक्ति है जो आदर्श सूक्ति है और वो सूक्ति ये है, आचार्यवान पुरुषो वेद, योग्य सर्वगुण संपन्न आचारवान विद्वान शिक्षक ही मनुष्य को यानी शिष्य को ज्ञानवान बना सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि गुरु को, आचार्य को, शिक्षक को कितना योग्य होना चाहिए वह अपने विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास कर सके। तो शिक्षक का दायित्व बड़ा महत्वपूर्ण है और शिक्षक के बिना समाज का निर्माण ही नहीं हो सकता है। इसलिए समाज का ये कर्तव्य है कि वो अपने निर्माण के लिए शिक्षकों को यथोचित और पूर्ण सम्मानित करें।

कार्यक्रम चिंतन में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर दिवाकर विद्यालंकार से शिक्षक दिवस पर के विशेष आलेख। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

विधि के विधान के अनुसार श्री राम तथा जानकी का विवाह शिव के धनुष के अधीन था, जो उसके टूटते ही संपन्न हो गया। किंतु लोकाचार का अपना ही महत्व होता है। प्रत्येक कुल की अपनी मर्यादा तथा परंपरा होती है, जिसका परिपालन ऐसे शुभ अवसरों पर ही होता है। अतः वेदों में वर्णित तथा राज पुरोहितों द्वारा अनुशंसित आचार के लिए राजा जनक ने महाराज दशरथ के पास शुभ संदेश लेकर अपने दूत भेजे। संदेशवाहक पत्र लेकर श्री राम की पवित्र नगरी अयोध्या पहुंचे। पाती बांचते हुए महाराज दशरथ का हृदय पुलकित हुआ और नैनों में आनंद के आंसू छलक आए। जनकपुरी से आए दूतों का समाचार सुन मित्र मंडली के साथ खेलते हुए भरत तथा शत्रुघ्न दौड़े आए। अपने प्राणों से भी प्रिय भाइयों श्री राम तथा लक्ष्मण का कुशल क्षेम जानने के लिए। जब से ऋषि विश्वामित्र के साथ राजा दशरथ के दो पुत्र ऋषि मुनियों की यज्ञ रक्षा के लिए गए थे, तब से आज पहली बार उन दो किशोरों के कुशल क्षेम का समाचार मिला था। दूतों ने धनुष यज्ञ में श्री राम के पराक्रम की कथा सुनाई, जिसे सुनकर सभी गदगद हो गए।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। आज की जानकारी का विषय है कीटनाशक रसायनों के प्रयोग में सावधानियां। जानकारी दे रहे हैं सोहन सिंह।
1: किसान भाइयों, हम फसल उत्पादित करते हैं। फसलों में कीट और व्याधि लगना स्वाभाविक है, कोई भी मौसम हो। केवल अंतर यह रहता है, किसी मौसम में कीट फसलों को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं और किसी मौसम में कम। जब फसलों में कीट और बीमारियों का प्रकोप अधिक बढ़ जाता है और फसलों में नुकसान आर्थिक स्तर से अधिक होने लगता है, तो कीटनाशक या फफूंदनाशक दवाओं का उपयोग करते हैं। इन दवाओं का प्रयोग कुछ सावधानी पूर्वक करना चाहिए। फसलों में कीट या बीमारी की नुकसान पहुंचाने की स्थिति कैसी है, किस तरह फसलों को हानि हो रही है, कीट की प्रवृत्ति कैसी है, उसी के आधार पर कीटनाशक या फफूंदनाशक दवाओं का चयन करना चाहिए। कीटनाशकों का घोल हमेशा खुली जगह पर बनाएं। घोल किसी बड़े बर्तन में बनाना चाहिए। घोल की आवश्यकता के अनुसार पानी एक साथ मिला लें, जिससे घोल की सांद्रता एक समान रहे। घोल बनाते समय हाथ में दस्ताने और मुंह पर मास्क पहन लेना चाहिए। साथ ही कीटनाशक दवा प्रयोग करने वाले व्यक्ति के शरीर पर किसी भी प्रकार की खरोंच या घाव न हो, अगर हो तो पट्टी बांध लेनी चाहिए, क्योंकि कीटनाशक दवाएं अधिकतर जहरीली होती हैं और हानिकारक हो सकती हैं। कीटनाशक दवा हमेशा हवा को देखते हुए प्रयोग करनी चाहिए। हवा के विपरीत दिशा में कभी भी दवाओं का प्रयोग न करें। अगर हवा तीव्र गति से चल रही हो तो कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दवा का प्रयोग मौसम को देखते हुए भी करना चाहिए। यदि बादल छा रहे हों, बरसात होने की संभावना हो, उस स्थिति में कीटनाशक दवाओं का प्रयोग न करें। घोल को लकड़ी की सहायता से हमेशा हिलाते रहना चाहिए, जिससे घोल की सांद्रता एक समान रहे। दवा का छिड़काव करने वाले व्यक्ति को कार्य करते समय किसी भी प्रकार का धूम्रपान या खाद्य पदार्थ उपयोग में न लाएं। दवाओं के घोल में स्टिकर अवश्य मिला लें, जिससे दवा फसल के विभिन्न भागों पर अधिक समय तक चिपकी रह सकती है। दवा का छिड़काव करने के लिए फ्लैट फैन नोजल का प्रयोग करना चाहिए, जिससे फसलों में एक साथ छिड़काव होगा और ऐसा छिड़काव करना चाहिए कि पौधा पूरी तरह भीग जाए। यदि दानेदार दवाओं का भुरकाव कर रहे हैं, वहाँ पर दवा पौधों की जड़ों की कुछ दूरी पर ही प्रयोग करनी चाहिए, नहीं तो जड़ों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। साथ ही दवा प्रयोग करने से पहले भूमि में नमी होना अत्यंत आवश्यक है और दानेदार या पाउडर वाली दवाओं का प्रयोग सुबह के समय ही करें। दवाओं का भुरकाव हमेशा डस्टर से करना चाहिए। हाथ से दवा का भुरकाव करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है और न ही फसलों पर समान रूप से भुरकाव हो पाता है। जहाँ पर कीटनाशक छिड़काव के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, वहाँ पर स्प्रेयर को पूरा न भरें, हमेशा 3/4 भरना चाहिए, जिससे कार्य करने में सुगमता रहे। अगर किसी भी कारण से नोजल में रुकावट आ जाती है तो फूंक मारकर कभी भी साफ न करें। दवा का छिड़काव करने के बाद कृषि यंत्र, डस्टर या स्प्रेयर को तालाब में न धोएं, क्योंकि तालाबों के पानी को पशु पीते हैं और वह पशुओं के लिए हानिकारक हो सकता है। कृषि यंत्रों का प्रयोग करने के बाद साफ करके ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जो बच्चों और पशुओं की पहुंच से दूर हो। कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करने के एक निश्चित समय तक फसलों के उत्पादों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ दवाओं के अंश उत्पादों के माध्यम से पशुओं, मनुष्यों में चले जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अगर बाड़ी की

0: सब्जी प्रयोग कर रहे हैं तो धोकर साफ करके ही प्रयोग करनी चाहिए।
1: कार्यक्रम कृषि चर्चा में अभी आप सुन रहे थे जानकारी, कीटनाशक रसायनों के प्रयोग में सावधानियां, जानकारी दे रहे थे सोहन सिंह। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है सूचना परक कार्यक्रम दर्पण।

प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मुख्य हैं थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से। इसके अलावा निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, साथ ही 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं। इन सभी चीजों का इस्तेमाल ना करें, हमारी धरती को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाएं।

0: प्रदूषित पानी पीने से हम हो सकते हैं बीमार,
1: फैल सकती है महामारी, खतरे में पड़ सकती है जिंदगी,
0: छीन सकती है खुशियाँ हमारी। इसलिए पानी के स्रोत को रखें हम साफ,
1: फैलाएं नहीं गंदगी उसके आसपास,
0: पानी को रखें हम हमेशा ढककर
1: और उसको पिएं छानकर उबालकर,
0: पीने के पानी में हम हाथ नहीं डालें,
1: लंबी डंडी वाले बर्तन से पानी निकालें।
2: पानी रे पानी,
3: पानी पानी रे पानी,
0: आओ मिलकर करें प्रयास,
1: शुद्ध पानी हो सबके पास।

0: अरे क्या बात है, आज तो तुम बड़ो ही नोनो गीत गा रही हो। और जो तो वही गीत है जाकी हम फरमाइश की चिट्ठी लिखकर भेजा था थे, और हमारी पसंद को लोक गीत हमारी जीजी हमें लोक माधुरी में सुनवाऊ होती।
1: हाँ खूब ही सही चीनो तुमने, जो वही लोक गीत है। और आज हम जी को जैसे गा रहे कि आज हमारा मन बहुत ही उल्लास में है।
0: काय ऐसो का होगा जीजी,
1: अपना जो पसंदीदा कार्यक्रम लोक माधुरी को हम सभी सुन सकते हैं हर सोमवार शाम 7:21 से 8 बजे के बीच।
0: जीजी जाके लाने अपने को चिट्ठी कैसे भेजनी होगी?
1: अरे चिट्ठी विट्ठी छोड़ो, अब हम हो गए डिजिटल, सो अब हम लिख के भेजेंगे अपनी फरमाइश व्हाट्सएप पे।
0: तो जीजी जाको व्हाट्सएप नंबर कहाँ है?
1: डायरी तनक खोलो और जल्दी से लिख लो 9425702768। तो याद भाव कि नहीं, तनक बताओ तो जल्दी से
0: 9425702768।
1: तो आप अपनी पसंद को लोकगीत के बोल और कलाकार को नाम हमें जा नंबर पे व्हाट्सएप करो, को आपकी पसंद को लोकगीत लोक माधुरी कार्यक्रम में जरूर ही सुनवाएं।
0: तो सुनना न भूलें हर सोमवार शाम को 7:21 से 8 बजे के बीच लोक माधुरी।
2: रक्तदान जीवन का उपहार है, आइए रक्तदान करें, जीवन दान करें। रक्तदान से किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती। 18 से 65 वर्ष तक उम्र और 45 किलो अथवा इससे अधिक वजन का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति हर 3 माह में रक्तदान कर सकता है। रक्तदान एक पीड़ा रहित प्रक्रिया है, महिलाएं भी रक्तदान कर सकती हैं। रक्तदान किसी को जीवन और स्वयं को आत्मसंतोष प्रदान करता है। रक्तदान करने के लिए शासकीय अथवा रेड क्रॉस सोसाइटी के ब्लड बैंक में संपर्क करें।

0: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम 26 जनवरी से 2400 घंटे उपलब्ध है डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी रागम आनंद की अटूट रसधार
1: अभी आप सुन रहे थे सूचनाओं पर आधारित ये कार्यक्रम दर्पण।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने और पढ़ाने के नए तरीकों का उपयोग करने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने और चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने शिक्षकों से विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच और जिज्ञासा विकसित करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने सभी समर्पित शिक्षकों से योगदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे ऐसी पीढ़ियों का निर्माण करते रहे हैं जो देश की नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि देते हुए महान शिक्षक बताया। शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगे। ये शिक्षक 27 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश और 6 केंद्रीय संस्थानों से चुने गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। पिछले 100 वर्ष में इस संस्थान ने कई विद्वान, पेशेवर और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को तैयार किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज चेन्नई में इंडिया वॉल्व सम्मेलन में शामिल होंगे। यह हृदय से जुड़ी बीमारियों का उपचार बेहतर बनाने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन है। उपराष्ट्रपति गिंडी में इंडिया वॉल्व पंजिका का विमोचन भी करेंगे। उपराष्ट्रपति वेल्लूर कोट्टम में दिनामलर समाचार पत्र के प्रकाशन के 75 वर्ष पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ग्रस्त त्रिशूली बाजार इलाके से 3 और भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें 5 साल का बच्चा भी शामिल है। सुरक्षित निकाले गए भारतीयों की संख्या 169 हो गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 275 भारतीय अब भी लापता हैं। चीन से 1907 भारतीय सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि भारत ने नेपाल में बाढ़ के बाद अब तक लगभग 95 टन राहत सामग्री भेजी है।
1: We have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal.
2: हमने नेपाल सरकार और वहां की जनता के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है। एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में भारत ने तुरंत सहायता पहुँचाई और हम नेपाल के पुनर्निर्माण और राहत के प्रयासों में लगातार सहयोग करते रहेंगे।
1: एंड रिकवरी एफर्ट्स इन द कंट्री।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत, रूस और यूक्रेन दोनों के साथ लगातार संपर्क में है। भारत ऐसे सुझावों पर विचार कर रहा है जिनसे युद्ध कम करने या समाप्त करने में सहायता मिल सके। वॉर्सो में पोलैंड के विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की के साथ बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि युद्ध का कोई विजेता नहीं होता। युद्ध से केवल जान माल का नुकसान होता है और दुनिया पर आर्थिक बोझ पड़ता है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत और कूटनीति पर जोर दिया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफ्रीका का वास्तविक आकार बेहतर ढंग से दिखाने वाले नए विश्व मानचित्र के पक्ष में मतदान किया है। 164 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया जबकि अमरीका ने इसके विरुद्ध मतदान किया। यह देश 6 देश मतदान से अलग रहे। मर्केटर मानचित्र में अफ्रीका का आकार वास्तविकता से बहुत छोटा दिखाई देता है जबकि अफ्रीका ग्रीनलैंड से लगभग 14 गुना बड़ा है। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई में रात 8 बजे शुरू होगा। भारत ने थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है। वहीं पाकिस्तान ने अब तक केवल एक मैच खेला है और उसमें थाईलैंड को हराया है। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए एक और अंक की आवश्यकता है। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होगा। इसमें 19 देशों के 105 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। प्रतियोगिता 9 सितंबर तक चलेगी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी क्योंग से खेलेगी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। इसे हमारे भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। 7:20 पर हमारे केंद्र से सुनिए डॉक्टर अवधेश चंसौलिया की वार्ता, नजीर अकबराबादी का रचना संसार। 7:30 फिल्म संगीत सुनवाया जाएगा। 8:00 समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। ये दोनों ही समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित करते हैं। 8:30 सुनिए शिक्षक दिवस पर विशेष पॉडकास्ट, ज्ञान मूल्य और नवाचार। कुलगुरु जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर डॉक्टर राजकुमार आचार्य से बात करेंगी इस विषय पर डॉक्टर विभूति सिंह। 9:00 सूचनाओं और समाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम होगा गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे दानिश असलम खान का सरोद वादन। 10 बजे जिले की चिट्ठी होगी, जिसे भोपाल से अनुप्रसारित किया जाएगा। प्रत्येक शनिवार आप सुनते हैं सेहत की बात तरानों के साथ, सुबह 10:05 पर। आज इस कार्यक्रम का विषय है प्राकृतिक चिकित्सा क्या है। इस विषय पर डॉक्टर प्रमोद सिसोदिया से तुलिका शर्मा की बातचीत आपको सुनवाई जाएगी। 10:50 पर फिल्म संगीत सुनेंगे आप। 11 बजे से सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे। हमारी इस सभा की समाप्ति तक इस दौरान 11:25 पर आप सुनेंगे विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की गरिमामयी उपस्थिति में शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण का सीधा प्रसारण हम आपको सुनवाएंगे। सायंकालीन सभा हमारी आरंभ होती है शाम 5 से, जिसे हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं। 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम आप सुनेंगे, जो आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति होगा और आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। हमारे केंद्र से 7:20 पर आप सुनेंगे कुछ बुंदेली लोकगीत। 7:30 मध्य प्रदेश केंद्र से सुना जा सकता है प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। रात 8 से हम आपको सुनवाएंगे महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई से भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल। मैच का आंखों देखा हाल मैच की समाप्ति तक सुनवाया जाएगा। ये थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम।

0: रेनी सीजन को हम जरूर एंजॉय करें,
1: गर्मा गर्म पकौड़े खाएं,
0: लॉन्ग ड्राइव पर जाएं,
1: भीगते झूमते नाचें गाएं,
0: लेकिन बारिश के पानी को यूं ही बर्बाद न होने दें,
1: पानी की एक एक बूंद बचाएं।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति की शिक्षकों से नई तकनीक अपनाने की अपील। भोपाल में 33 शिक्षकों का होगा सम्मान। प्रदेश में धूमधाम से मनाया गया श्री कृष्ण जन्मोत्सव। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी कई समारोह में हुए शामिल। और 19 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी। कई जिलों में स्कूल बंद। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे और कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में शामिल है। यहाँ वाणिज्य, अर्थशास्त्र और प्रबंधन की पढ़ाई होती है। कॉलेज की स्थापना 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। पिछले 100 वर्षों में संस्थान ने कई विद्वानों, पेशेवरों और देश के विकास में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को तैयार किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री कॉलेज की 100 साल की उपलब्धियों और भविष्य की दिशा पर भी बात रखेंगे। शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों से लगातार अपना ज्ञान बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने और पढ़ाने के नए तरीके इस्तेमाल करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि शिक्षक बच्चों की प्रतिभा निखारने के साथ उनके चरित्र निर्माण में भी अहम भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रपति ने शिक्षकों से विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच, जिज्ञासा की भावना विकसित करने पर जोर दिया। राष्ट्रपति ने पूर्व राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि अर्पित की। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों और उच्च शिक्षा संस्थानों तथा पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और प्राध्यापकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं शिक्षक दिवस के मौके पर आज भोपाल में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल मुख्य अतिथि और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले प्रदेश के 33 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। चयनित शिक्षकों को शॉल, श्रीफल, प्रशस्ति पत्र और 25,000 रूपये की सम्मान राशि दी जाएगी। इसके अलावा 2025 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार पाने वाले प्रदेश के 2 शिक्षक शीला पटली और भैरू लाल औसारा का विशेष सम्मान होगा। रात 12 बजते ही प्रदेश के मंदिरों में नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की के जयकारे गूंज उठे। उज्जैन, भोपाल, इंदौर, रतलाम, खंडवा, भिंड, टीकमगढ़ समेत कई शहरों में श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रात को भोपाल के पटेल नगर स्थित इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शहरों में गीता भवन और गांवों में वृंदावन ग्राम शुरू कर रही है, वहीं गौपालन और दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।
1: सरकार का मतलब केवल सड़क, बिजली, पानी का प्रबंधन कर दे, इससे पर्याप्त नहीं होगा। केवल आर्थिक व्यवस्था की चिंता करे, इससे भी पर्याप्त नहीं होगा। हमारी सनातन संस्कृति की धारा की अद्भुत विशेषता है, जिसके बलबूते पर समूची मानवता धन्य होती है। वसुदेव कुटुंबकम के भाव की प्रकट होने की उत्कृष्ट संस्कृति हमारी है। इसलिए सरकार का मतलब घर घर में राम कृष्ण खेले कूदे आनंद के साथ, हरेक घर में आनंद आए। इसलिए प्रेम से बोलते हैं, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की।
0: वहीं भोपाल सेंट्रल जेल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में जन्मोत्सव मनाया गया, जहां उन्होंने पात्र बंदियों की सजा में 1 महीने के विशेष छूट देने की घोषणा की। इंदौर में मटकी फोड़ और रतलाम में दही हांडी का आयोजन हुआ, जबकि उज्जैन

0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में निवेश बढ़ने का मतलब रोजगार के नए मौके बढ़ना है। वे कल सीहोर में करीब 900 करोड़ रुपए की लागत से तैयार सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस की नई ट्रांसफार्मर फैक्ट्री के शुभारंभ कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि यह देश की सबसे बड़ी ट्रांसफार्मर निर्माण इकाइयों में से एक है और इससे करीब 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों के लिए बेहतर माहौल और नीतियों के कारण बड़ी कंपनियां प्रदेश में निवेश कर रही हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान महिला कल्पना मिश्रा की मौत के मामले में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिए हैं। कल श्री शुक्ल अनशन पर बैठे कल्पना के पिता से मिले और निष्पक्ष जांच न्याय का भरोसा दिलाया। कल्पना मिश्रा को 26 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। मामले में प्रथम दृष्टया लापरवाही के दोषी पाए गए 2 डॉक्टरों और कुछ नर्सों को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 18 सितंबर कर दी गई है। शिक्षक अब 18 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जबकि आवेदन में सुधार के लिए 20 सितंबर तक समय रहेगा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में प्रदेश के इंदौर और जबलपुर को स्वच्छ वायु सराहना पुरस्कार के लिए चुना गया है। दोनों शहरों को धूल नियंत्रण, वैज्ञानिक तरीके से सड़क सफाई, हरित पत्तियों के विस्तार और निर्माण कचरे के बेहतर प्रबंधन के लिए ये सम्मान मिलेगा। जबलपुर में कल से पीएम ई बस सेवा का ट्रायल शुरू हो गया है। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह और महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने खुद बस में सफर कर इसकी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पहले दिन 10 इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल किया गया, जबकि आज से 2 रूटों पर 20 बसें चलाई जाएंगी। ये बसें ISPT से भेड़ाघाट और मदर टेरेसा नगर से रांची खाना रोड पर चलेंगी। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मानसूनी सिस्टम अब उत्तरी हिस्से में एक्टिव है, जिसके चलते अगले दो दिन ग्वालियर, चंबल, सागर, उज्जैन संभाग में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने आज 19 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसमें श्योपुर और शिवपुरी में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। भारी बारिश और बाढ़ के खतरे को देखते हुए आज श्योपुर, शिवपुरी, गुना, मुरैना, भिंड, ग्वालियर समेत रायसेन में स्कूल बंद रखने का फैसला किया गया है। वहीं नर्सरी से 8वीं तक के तो कहीं नर्सरी से 12वीं तक के विद्यार्थियों की छुट्टी की गई है, जबकि कई जिलों में आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। एशियन गेम्स 2026 से पहले भारतीय निशानेबाजी टीम का अंतिम तैयारी शिविर भोपाल में लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी में आज से 14 सितंबर तक चलने वाले इस कैंप में 18 निशानेबाज हिस्सा लेंगे, जिनमें 9 पुरुष और 9 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। कैंप में मनु भाकर, ईशा सिंह, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और राही सरनोबत जैसे बड़े नाम भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में गोगा नवमी का पर्व आज श्रद्धा और परंपरा के साथ मनाया जा रहा है। खंडवा शहर में करीब 128 वर्षों से चली आ रही छड़ी निकालने की परंपरा के तहत गांधीनगर सहित 15 स्थानों से छड़ियां निकाली जाएंगी। चल समारोह में वीर गोगादेव महाराज की छड़ी के साथ श्रद्धालु शामिल होंगे। आगर मालवा के सुसनेर नगर परिषद के उपनिर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने के लिए अपर कलेक्टर द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए गए हैं। डिंडौरी में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व विभिन्न शासकीय छात्रावासों, विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंडला में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी में जिले भर में विविध आयोजन किए गए। गुना शहर सहित पूरे जिले में योगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव पूरे हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। जिला जेल आलीराजपुर में भी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व उत्साहपूर्वक मनाया गया, जिसमें कैदियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विदिशा जिला मुख्यालय शहर की जनभावनाओं और आस्था से जुड़े प्रसिद्ध नंद उत्सव और मटकी फोड़ उत्सव का आयोजन इस साल भी धूमधाम के साथ किया जाएगा। 31 वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में इस बार सामाजिक समरसता की अनूठी मिसाल देखने को मिलेगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं डॉक्टर अवधेश चंसौलिया से उनकी वार्ता, नज़ीर अकबराबादी का रचना संसार।
1: नज़ीर अकबराबादी जनजीवन से जुड़े सहज और सरल कवि हैं। उनके काव्य में भारतीयता कूट कूट कर भरी हुई है। नज़ीर की जन्मतिथि का किसी को पता नहीं है। प्रोफेसर सहबाज ने नज़ीर की नवासी से मिलकर उनके संबंध में बहुत कुछ जाना। उनके अनुसार नज़ीर का जन्म दिल्ली में सन 1735 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली से 22-23 साल की उम्र में वे अपनी नानी के साथ अकबराबाद अर्थात आगरा चले आए और ताजगंज में नूरी दरवाजे पर एक मकान लेकर रहने लगे। नज़ीर संतोषी प्रकृति के मस्त जीव थे। आर्थिक स्थिति अच्छी ना होते हुए भी रुपया उन्हें आकृष्ट नहीं कर सका। लखनऊ और भरतपुर के नवाबों द्वारा बुलाए जाने पर भी वे वहाँ नहीं गए। संतोषी स्वभाव के तो वे थे, लेकिन जीवन का भरपूर आनंद उन्होंने लिया। पक्षियों की जितनी जानकारी उन्होंने अपनी रचनाओं में दी, उतनी अन्य किसी कवि ने अभी तक नहीं दी। सिद्धहस्त कवि होते हुए भी उन्हें जरा भी अभिमान नहीं था। तुलसी की तरह ही वे भी अति विनम्र हैं। तुलसी कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी। नज़ीर भी अपने को बहुत छोटा साबित करते हैं और अपने बारे में बताते हैं कि कहते हैं जिसको नज़ीर टुक उसका बयां, था वो मुअल्लम गरीब बुजदिल ओ तरसना जा। फजल ने अल्लाह के उसको दिया उम्र भर, इज्जतो हुरमत के साथ पारचा ओ आबोना। फाहम न था इल्म से अरबी के कुछ भी उसे, फारसी में हाँ मगर जाने था कुछ ई व आ। फर्दो गज़ल के सिवा शौक न था कुछ उसे, अपने इसी शौक में रहता था खुश हर जमा। विनम्रता भारतवासियों का प्रमुख गुण है। मेलों कुश्ती और त्योहारों में उनकी गहरी रुचि थी। तैराकी में भी उनको महारत हासिल थी। कोई ऐसा शौक नहीं था जो उन्होंने न किया हो। 95 वर्ष की अवस्था तक वे जीवित रहे और इस अवधि में उन्होंने 2,00,000 से अधिक शेर रचे, लेकिन आज केवल 6,000 ही शेर प्राप्त हैं। ये शेर उनके प्रिय शिष्यों हरवक्ष राय, गुरुवक्ष राय, मूलचंद राय, बंसीधर आदि ने सुरक्षित रखे। नज़ीर अकबराबादी साधारण बातों को बिल्कुल साधारण तरीके से लेते थे। कोई पूर्व निश्चित सिद्धांत या पूर्वाग्रह उनके लिए बाधक नहीं बनता था। 18वीं-19वीं शताब्दी की साहित्यिक चेतना सामंत वर्ग तक ही सीमित थी, इसलिए उस समय के उर्दू तथा ब्रजभाषा के काव्य में प्रेम के क्रमशः सूफीवादी और भक्ति मार्गी रूप का दिग्दर्शन ही परम लक्ष्य था। लेकिन नज़ीर ने भक्ति के साथ ही जनोन्मुख काव्य भी लिखा। वह भारतीय दर्शन से ओतप्रोत है, उसमें राष्ट्रीयता का भाव है। भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान की चरम सीमा साधारण व्यावहारिक बुद्धि का लोप है। परमहंस वही होता है जिसकी व्यावहारिक बुद्धि केवल नवजात शिशु जितनी रह जाए। वे परमहंस नहीं थे, किंतु वे अपनी चेतना को विकसित करके मग्न चेतना रूप ही से सही जनसाधारण के स्तर तक ले आए थे। उनमें इसी विकसित चेतना के बाल सुलभ कौतूहल के साथ ही प्रौढ़ता की विशाल दृष्टि भी थी। वे पर्यवेक्षण की उस स्थिति तक पहुंच गए थे जहां सिद्धांतों के माध्यम से समस्या का समाधान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि स्वयं समस्या ही समस्या का समाधान बन जाती है। तात्पर्य यह है कि समस्या ही सत्य है, समाधान तो कल्पना मात्र है। नज़ीर ने आदमी नामा रचना में मानव संबंधी प्रश्न को प्रश्न ही रहने दिया है, उनका समाधान प्रस्तुत नहीं किया। यह आदमी पे जान को बारे है आदमी, और आदमी पे तेग को मारे है आदमी,

0: पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वह भी आदमी। नज़ीर के जीवन में कृत्रिमता नहीं थी, ना उन्हें ऊंचे सिद्धांतों का मुँह था, उन्हें तो केवल मनोभावों के प्रकाशन से मतलब था। बुढ़ापे की सच्ची तस्वीर दिखाते हुए वे कहते हैं, सब चीज को होता है बुरा, हाय बुढ़ापा, आशिक को तो अल्लाह न दिखलाए बुढ़ापा। भारतीय दर्शन के अनुसार संसार क्षणभंगुर है, नश्वर है, इसी बात को वे काव्य के माध्यम से बहुत ही सरल सुबोध शैली में अनेक उदाहरण देकर जन सामान्य के लिए बोधगम्य बना देते हैं। वे कहते हैं, तू बधिया लादे बैल भरे, जो पूरब पश्चिम जावेगा, या सूद बढ़ाकर लावेगा, या टोटा घाटा पावेगा, कज्जाक अजल का रस्ते में जब भाला मार गिरावेगा, धन दौलत नाती पोता क्या, एक कुनवा काम ना आवेगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। वे ईश्वर वंदना करते हैं, इलाही तू फैयाज है और करीम, इलाही तू गफ्फार है और रहीम, मुकद्दस मुअल्ला मुनज्जा अजीम, न तेरा शरीक और न मेरा सहीम, तेरी जाते बाला है सबसे कदीम। कन्हैया जी का खेल कून कविता में कृष्ण की कालिदह लीला का विशद चित्रण बहुत ही मनोहारी बन पड़ा है। उस दह में सुंदर श्याम वरण उस काली को जब नाथ चुके, ले नाथ को उसकी हाथ अपने, फिर हरफन ऊपर नृत्य किए, करवश में अपने काली को मुस्कियाने मुरली अधर धरे, जब बाहर आए मनमोहन, सब खुश हो जय जय बोल उठे, यह लीला है उस नंद ललन मनमोहन जसमती छैया की, रख ध्यान सुनो दंडौत करो जय बोलो किशन कन्हैया की। वैराग्य और ईश वंदना के साथ ही वे मेलों ठेलों, तैराकी, चिड़ियों, जानवरों की लड़ाई, लैला मजनू की कथा, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, बरसात की बहारें, तिल के लड्डू, होली, भंग, मुफलिसी, रोटियां आदि रोज़मर्रा की सामान्य बातों पर भी कविता करने लगते हैं। जन सामान्य की जीवनचर्या को उन्होंने गौर से देखा, उनकी रचनाओं में 18वीं और 19वीं सदी का जीवन सत्य बखूबी उजागर हुआ। रीछ का बच्चा इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। एक तरफ को थी सैकड़ों लड़कों की पुकारें, एक तरफ को थी पीरों जवानों की कतारें, कुछ हाथियों की कीक और ऊँटों की डकारें, गुल शोर मजे भीड़ ठट अम्बोह बहारें, जब हमने किया ला के खड़ा रीछ का बच्चा। होली उनका प्रिय त्यौहार था, क्योंकि उस पर उन्होंने 10 नज़में लिखीं। होली का दृश्य दृष्टव्य है, तुम रंग इधर लाओ और हम भी उधर आवें, कर ऐस की तैयारी धुन होली की भर लावें, और रंग के छींटों की आपस में जो ठहरावें, जब खेल चुके होली फिर सीनों से लग जावें, होली में यही धूमें लगती हैं बहुत भलियां। साधारण जीवन में उन्होंने खूब रस लिया और जीवन का पूरा आनंद लिया। छोटी से छोटी बातों में उन्होंने खूब दिलचस्पी ली। उनकी कविता मानवीयता से ओतप्रोत है। उन्होंने सिद्धांतों को व्यवहारिक बनाकर काव्य में प्रस्तुत किया। अनुभूति और निरीक्षण के बल पर तत्कालीन समाज की यथार्थ झांकी हमारे समक्ष प्रस्तुत कर नज़ीर ने भारतीयता के दर्शन कराए। भक्तिभाव में उन्होंने धार्मिक प्रतिबंधों की परवाह न करते हुए हजरत मोहम्मद और हजरत अली से लेकर सूफी संत शेख और सलीम चिश्ती और फिर नानक तथा कृष्ण महादेव के चरणों में भी श्रद्धा के फूल चढ़ा दिए। नज़ीर ने अलंकारों को महत्व न देकर अपनी बात सीधी सरल शैली में की। उन्होंने हंसनामा और बंजारानामा में रूपकों का खूब प्रयोग किया। क्योंकि उन्होंने तत्कालीन जन संस्कृति का दिग्दर्शन कराया, इसलिए उन्होंने जन भाषा का प्रयोग किया। यही कारण है कि उनकी रचनाएं आसानी से समझ में आ जाती हैं और वे सच्चे अर्थों में भारतीय जन कवि लगने लगते हैं।
1: नज़ीर अकबर आबादी का रचना संसार। अभी आपने डॉक्टर अवधेश चंसौलिया से उनकी ये वार्ता सुनी। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी दोस्त तुलिका।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: फसा।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: So, your place or mine?
5: उसके पहले ये बताओ, तुम्हारे पास कॉन्डोम है?
4: कॉन्डोम? लेकिन हम तो
5: क्या हुआ? ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से HIV एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
4: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ, सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
3: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
6: आइए अब आपको सुनवाते हैं कुमार सानू और साधना सरगम के स्वर में मजरू सुल्तानपुरी की ये गीत रचना। नौशाद ने इसे संगीतबद्ध किया है और फिल्म का नाम है गुड्डू।

आइए अब आपको सुनवाते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक का गाया, फैज अनवर का लिखा और हिमेश रेशमिया का संगीतबद्ध किया फिल्म हेलो ब्रदर का ये गीत।

0: पांच महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
1: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
0: क्या, कैसे?
1: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI, डिप्लोमा

0: और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
1: वाह, अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
0: mmsky.mp.gov.in पर। MMSky, सीखो भी कमाओ भी।
2: और आइए अब कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं सुधाकर शर्मा का लिखा, हिमेश रेशमिया का संगीतबद्ध किया, सोनू निगम और अलका याग्निक का गाया ये गीत। फिल्म का नाम है दुल्हन हम ले जाएंगे।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने को हैं। समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़ थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया। 48 शिक्षकों को आज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। सरकार ने ISO टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल की अनुमति तथा कड़े सुरक्षा नियमों का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत संघर्ष समाप्त करने में यूक्रेन और रूस के साथ निरंतर संपर्क में है। संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका का सटीक आकार दर्शाने वाले नए विश्व मानचित्र को अपनाने के पक्ष में मतदान किया। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण अहमदाबाद से शुरू और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने और चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
1: हर वर्ष 5 सितंबर को पूरे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश के पूर्व राष्ट्रपति, प्रसिद्ध शिक्षाविद, लेखक और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह अवसर राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों और शिक्षाविदों की महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करता है। शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन को बदलते हैं, पीढ़ियों को दिशा देते हैं और समाज की नींव को मजबूत करते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह नई दिल्ली 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। चयनित 48 शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संगठनों से हैं। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल शाम राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं से बातचीत की। श्री जोशी ने कहा कि शिक्षकों को बच्चों को 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और उन्हें हर क्षेत्र में सक्षम बनाने की दिशा में काम किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। पिछले 100 वर्ष में इस संस्थान ने कई विद्वान, पेशेवर और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को तैयार किया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज चेन्नई इंडिया वॉल्व सम्मेलन में शामिल होंगे। यह हृदय से जुड़ी बीमारियों का उपचार बेहतर बनाने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन है। उपराष्ट्रपति गिंडी में इंडिया वॉल्व पंजिका का विमोचन भी करेंगे। सरकार ने ISO टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल तक की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट्रोलियम संशोधन नियम 2026 का मसौदा जारी किया है। इसमें आवेदन प्राप्त होने पर 7 कार्य दिवस में मंजूरी देने का प्रस्ताव है। इसके अनुसार पेट्रोलियम से भरे या पेट्रोलियम के लिए इस्तेमाल होने वाले ISO टैंक कंटेनरों को बिना अनुमति आयात नहीं किया जा सकेगा। आवेदन पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करना होगा और इसके साथ जरूरी तकनीकी और सुरक्षा दस्तावेज जमा कराने होंगे। मंत्रालय ने मसौदे पर 30 दिन के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद नियमों में बदलाव किया जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping

0: marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल शुरू हो गया। सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर सुरक्षा और तैयारियां की जा रही हैं। आज मोटर कारकेड का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास सवेरे 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक सड़कों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। यातायात पुलिस ने रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत संघर्ष समाप्त करने के लिए रूस और यूक्रेन के लगातार संपर्क में है। वॉर्सो में पोलैंड के विदेश मंत्री रादोस्लाव सिरोस्की के साथ बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि युद्ध का कोई विजेता नहीं होता।
2: India believes that endless war.
3: भारत का मानना है कि अंतहीन युद्ध समाप्त होना चाहिए और युद्ध का कोई विजेता नहीं होता। हर अतिरिक्त दिन का अर्थ है अधिक मौतें, अधिक तबाही, दोनों देशों के लिए अधिक नुकसान और बाकी दुनिया के लिए अधिक लागत। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस चिंता को सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया था। इसलिए हमारे प्रयास बातचीत और कूटनीति को बढ़ावा देने पर केंद्रित होने चाहिए।
1: विदेश मंत्री ने कहा कि भारत संघर्ष समाप्त करने में हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर रूस और यूक्रेन का दौरा करेंगे। दोनों का उद्देश्य रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए शांति समझौते की कोशिश करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफ्रीका का वास्तविक आकार बेहतर ढंग से दिखाने वाले नए विश्व मानचित्र के पक्ष में मतदान किया है। 164 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि अमेरिका ने इसके विरुद्ध मतदान किया। 6 देश मतदान से अलग रहे। मर्केटर मानचित्र में अफ्रीका का आकार वास्तविकता से बहुत छोटा दिखाई देता है, जबकि अफ्रीका ग्रीनलैंड से लगभग 14 गुना बड़ा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन तक पूर्वोत्तर राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की आशंका है। लखनऊ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भी कई जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं।
5: राज्य में अयोध्या, वाराणसी, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, चित्रकूट और बाराबंकी सहित 26 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। बाढ़ राहत आयुक्त के मुताबिक लगभग 3.5 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित होने के बावजूद राहत और बचाव तंत्र की सक्रियता से लगभग 72,000 बाढ़ राहत किट और 3.5 लाख से अधिक प्रभावितों को लंच पैकेट वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 17,000 से ज्यादा लोगों को शरणालयों सहित सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है।
6: आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 8,50,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। पशुपालन विभाग के अनुसार करीब 70,000 पशु भी प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की सुविधा के लिए 700 नावों का परिचालन किया जा रहा है। वहीं बाढ़ राहत शिविर और सामुदायिक रसोई घर भी संचालित किए जा रहे हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में गंगा और सोन नदियों के जलस्तर में कुछ कमी आने की संभावना है। हालांकि पटना में पुनपुन नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण गया पटना रेलखंड पर रेल परिचालन प्रभावित हुआ है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व कल पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ

0: मनाया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ा दही हांडी उत्सव आज महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: मुंबई और आसपास के जिलों में दही हांडी भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा एक पारंपरिक उत्सव है। इसमें गोविंदा मानव पिरामिड बनाकर मिट्टी के हांडी फोड़ते हैं। इस उत्सव के दौरान कुछ गोविंदा कभी कभी चोटिल हो जाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए BMC ने अस्पतालों को पूरी तरह तैयार रहने और घायल गोविंदाओं को मुफ्त उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने 1,60,000 गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज की घोषणा की है। अस्पताल में भर्ती होने, स्थायी पूर्ण या आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में 1,00,000 से 10,00,000 रुपए तक का बीमा लाभ दिया जाएगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होगा। इसमें 19 देशों के 105 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल शाम प्रतियोगिता का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत आने वाले वर्षों में खेलों का प्रमुख केंद्र बनेगा।
2: 19 देशों से 108 से ज्यादा पैरा एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं उस वक्त कि अहमदाबाद, गुजरात और भारत आने वाले दिनों में खेल जगत के, चाहे वो ओलंपिक्स से जुड़े हुए खेल हो, सभी प्रकार के खेल का ये बहुत बड़ा सेंटर बनने वाला है।
0: एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई में रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत ने थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद मुकेश। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन US उपग्रह के सफल प्रक्षेपण की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने लिखा है, इसरो ने अंतरिक्ष में स्थापित किया तीसरा नेत्र। जनसत्ता की सुर्खी है, देश के पहले उपग्रह का प्रक्षेपण, इसरो की एक और कामयाबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो और उद्योग जगत की साझेदारी को अंतरिक्ष क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। कहा, हमारे देश के लिए गर्व का पल। दैनिक जागरण के अनुसार, प्रधानमंत्री जिस प्रोजेक्ट का करेंगे लोकार्पण, उसकी 6 महीने तक होगी निगरानी। कुछ घटनाओं से सीख लेकर NHAI ने कार्यक्रमों की SOP में जोड़े नए दिशा निर्देश। दैनिक भास्कर ने शिक्षक दिवस पर विशेष सुर्खी से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विशेष लेख साझा करते हुए लिखा है, विजेता होते हैं शिक्षक, लेकिन शिष्य से पराजित होने की शिक्षा उन्हें महान बनाती है। पंजाब केसरी ने शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के लेख पर विकसित भारत के सफर में शिक्षकों की भूमिका देते हुए लिखा है, यह दिन सिर्फ सराहना करने के दिन से कहीं ज्यादा मायने रखता है। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। मथुरा में रात 12 बजते ही हर तरफ उल्लास और हाथी घोड़ा पालकी। जय कन्हैया लाल की का उत्साह देखने को मिला। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, ब्रज में बाजे बधाई, नंद घर आई कन्हाई। नवभारत टाइम्स ने चमत्कार शीर्षक से दिया है, नेपाल में सुरंग से 9 दिन बाद 2 को जिंदा बचाया, जन्माष्टमी पर सुरक्षित निकाले गए। फोरमैन संजय शाह ने कहा, हरे कृष्ण महामंत्र जपता रहा। अमर उजाला की सुर्खी है, सुरंग में गूंजा जिंदगी का मंत्र। राजस्थान पत्रिका ने बदलेगी गैजेट की दुनिया देते हुए लिखा है, बेकार जाने वाली गर्मी से भी बनेगी काम की बिजली।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया। 48 शिक्षकों को आज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। सरकार ने ISO टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल की अनुमति तथा कड़े नियमों का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री S. जयशंकर ने कहा, भारत संघर्ष समाप्त करने में यूक्रेन और रूस के साथ निरंतर संपर्क में है। संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका का सटीक आकार दर्शाने वाले नए विश्व मानचित्र को अपनाने के पक्ष में मतदान किया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी।

0: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आइए सुनते हैं शिक्षक दिवस पर यह विशेष पॉडकास्ट, ज्ञान मूल्य और नवाचार। इस विषय पर कुलगुरु जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर डॉक्टर राजकुमार आचार्य से बात कर रही हैं डॉक्टर विभूति सिंह।
1: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट के आज के अंक में। भारत में शिक्षक या टीचर को केवल पढ़ाने वाला व्यक्ति नहीं माना गया, बल्कि हमारी परंपरा में उन्हें गुरु का सम्मान दिया गया है। गुरु का काम ज्ञान देने के साथ व्यक्ति को सही दिशा देना, उसके चरित्र का निर्माण करना और जीवन के मूल्यों से परिचित कराना भी माना गया है। 5 सितंबर को

0: जाने वाला शिक्षक दिवस हमें ये सोचने का अवसर देता है कि आज के बदलते समय में शिक्षक की भूमिका क्या है और गुरु की हमारी पारंपरिक अवधारणा आज कितनी प्रासंगिक है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर उपस्थित हैं जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के कुलगुरु डॉक्टर राजकुमार आचार्य जी, जो हमारे नियमित श्रोता हैं वो तो जानते ही हैं, जो नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि इससे पहले भी आचार्य जी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हमारे कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आचार्य, आपका फिर से स्वागत है।
1: धन्यवाद बहन जी।
0: और ये कितना सुखद संयोग है कि आपके तो नाम में ही आचार्य है।
1: हाँ, ये निश्चित एक संयोग है।
0: तो शिक्षक दिवस पर आपसे उपयुक्त गेस्ट तो और कोई हो ही नहीं सकता।
1: नहीं, ज्ञान तो वह धारा है जो बहुत विशाल है। हाँ, हम उस सबके अंगभूत घटक हैं। निश्चित शिक्षा जगत के शीर्ष पद पर रहने के कारण कुछ सामाजिक स्तर की परिस्थितियाँ, कुछ शिक्षा जगत की स्थितियाँ, इन सब का तालमेल निश्चित हमें शिक्षा के नए स्वरूप को देखने की दृष्टि देते हैं।
0: आचार्य जी, अब प्रश्नों पर आते हैं
1: जी,
0: कि आपके अनुसार शिक्षक और गुरु में मूल अंतर क्या है?
1: शिक्षक और गुरु में मूल अंतर भारत की सनातन परंपरा को हमें देखना पड़ेगा। संस्कृति में हमारे पारिवारिक रीति रिवाजों को, सामाजिक रीति रिवाजों को लेके चलते थे, तब गुरुकुल हुआ करते थे। और गुरुकुल में जो ऋषि परंपरा की जीवन रचना में रहने वाला व्यक्ति था, जो कि व्यक्ति विशेष को दीक्षांत करता है या दीक्षा देता है, उसे वास्तव में गुरु कहा गया। कालांतर में हमारी शिक्षा व्यवस्था बदली और ब्रिटिश काल में आए, तब हमारे विद्यालयों की रचना प्रारंभ हुई, विश्वविद्यालयों की रचना प्रारंभ हुई, यहाँ से शिक्षा के नए पाठ्यक्रम आना शुरू हुए और यहाँ से गुरु का नाम परिवर्तन होके और शिक्षक के रूप में जाना जाने लगा। या हम यूँ कह सकते हैं, शिक्षक वह है जो विद्यार्थी में ज्ञान को बढ़ाने का कार्य करता है, गुरु वह है जो हमारी संस्कृति, सनातनता और परंपरा को जीवित रखने के लिए और व्यक्ति को, परिवार को संस्कारित करने का कार्य करता है। पूर्व काल में जब हम जाते हैं तो गुरु के बारे में बहुत सी बातें आती हैं, मंत्र हैं। एक सामान्य श्लोक हम बहुत सुनते हैं, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मे श्री गुरुवे नमः। तो गुरु की परिभाषा में, या हम कालांतर में शिक्षक भी कहें, उसकी परिभाषा में हम जिन देवताओं को मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनको सामने देखकर गुरु कहते हैं कि इनको प्रणाम करो, यानी संस्कार पक्ष हमारा देखने का काम गुरु करते हैं। इसी बात को संत कबीर कहते हैं, गु अंधियारी जानिए, रू कहिए प्रकाश, मिटी अज्ञाने ज्ञान दे, गुरु नाम है तास। गु अर्थात अंधकार, अज्ञान, रू यानी प्रकाश, ज्ञान। जो ज्ञान के प्रकाश में अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा दे, उसे हम वास्तव में गुरु कहते हैं। एक श्लोक और हम सब कभी कभी सुनते हैं, अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जस्य शलाक्या चक्षुर्मीलितम् एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ जिसने ज्ञान का ऐसा अंजन मेरे नेत्रों में लगाया कि अज्ञान का अंधकार मिट गया। शिक्षक दिवस हम सब मनाते हैं, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं
0: जी।
1: राष्ट्र के प्रथम नागरिक के रूप में जब उनकी प्रतिष्ठापना हो गई, लोग उनके पास जब गए कि हम आपको शिक्षक दिवस में देखना चाहते हैं और शिक्षक के रूप में पहचानना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन यदि मनाना है तो मुझे शिक्षक के रूप में ना मनाकर शिक्षक दिवस के रूप में इसको मनाइए। फिर शिक्षक दिवस की परंपरा हमारे देश में 5 सितंबर को प्रारंभ हो गई। अन्यथा पूर्व से तो हम गुरु परंपरा में हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा दिवस पर मनाते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन कौन थे? तो वो श्रेष्ठ व्यक्तित्व थे। जब उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय बुलाया गया दर्शन पर व्याख्यान के लिए, वो वहाँ जब पहुँचे तो भारतीय परिवेश में थे, अर्थात लंबा उनका कोट था, धोती थी और साफा पहने थे। अब ऑक्सफोर्ड की परंपरा में तत्कालीन समय में पेंट शर्ट और टाई की परंपरा थी। बोर्ड ने कहा कि नहीं, आप यहाँ की परंपरा में आइए, देश के गणवेश पे आइए। तो उन्होंने कहा, आपने किस व्याख्यान देने के लिए बुलाया है? उन्होंने बताया कि भारतीय दर्शन। तो राधाकृष्णन जी मुस्करा और उन्होंने कहा, भारतीय दर्शन केवल आंतरिक अभिव्यक्ति का प्रकार नहीं है, भारतीय दर्शन तो बाह्य और आंतरिक दोनों तत्वों से प्रकाशित होने वाला तत्व है। बाह्य स्वरूप में ये जो गणवेश आप देख रहे हो, ये हमारे भारतीय दर्शन की श्रेष्ठ और व्यवहारिक वस्त्र शैली है। और यदि

0: आप चाहते हैं कि भारतीय दर्शन को आपके विद्यार्थी सुने तो मैं इसी ड्रेस पर जा सकता हूं कक्षा में, अन्यथा मैं सबको नमस्कार करता हूं। टीम बैठी, आधे घंटे बाद तय हुआ कि वो जैसे आए हैं उनको वैसा बुलाया जाए
1: जी।
0: तो विद्वता जहां रहती है शिक्षक में, उसको प्रत्येक मंच पर और प्रत्येक परिस्थिति में श्रेष्ठता प्राप्त होती है।
1: ये बड़ा रोचक आपने ये इंसिडेंट भी बताया, और इतना आत्मविश्वासी तो होना ही चाहिए किसी को भी
0: जी।
1: आपने अभी बात करी गुरु के विषय में
0: जी,
1: तो अब आप ये बताइए कि आज की जो शिक्षा व्यवस्था है उस गुरु शिष्य परंपरा से क्या सीख सकती है।
0: शिक्षा में तीन तत्व तो महत्वपूर्ण होते हैं मैं सोचता हूँ, एक शिक्षक, एक परिवार और एक शिक्षार्थी। शिक्षार्थी को सीखने के लिए जहाँ परिवार का परिवेश भी सांस्कृतिक मिलना चाहिए, वहीं शिक्षक का अपना ज्ञान और उसका व्यवहार भी शिक्षार्थी को मिलना चाहिए। पाठ्यक्रम में निष्णात होगा शिक्षक, विषय का बहुत अच्छा ज्ञाता होगा, उससे किसी विद्यार्थी को मिलने वाला ज्ञान वो उसमें नकली फूलों जैसा काम रहेगा, असली फूलों जैसी सुगंध नहीं होगी। लेकिन यदि गुरु के प्रति उसके मन में एक श्रद्धा है, गुरु के प्रति उसके मन में एक विश्वास है, तो निश्चित वह सब कुछ वो पा सकता है। हम भगवान कृष्ण को भगवान न माने, हम ये माने कि वो एक सामान्य भारतीय नागरिक थे। श्रेष्ठता होने के बावजूद सांदीपनी गुरु के आश्रम में उन्होंने जिस सामान्य विद्यार्थी की भांति काम किया, ये हम सबके लिए आदर्श है। आज जितने भी अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचे व्यक्तित्व हैं, उनके जीवन के यदि विश्लेषण पर जाएंगे तो जिनने अपने माता पिता के साथ गुरु आज्ञा का पालन किया है, वो श्रेष्ठता को पा गए। तो शिक्षक का आचरण वैसा होना चाहिए। यदि हम छात्रों को आने वाली चुनौतियों को निपटने हेतु तैयार नहीं करेंगे, तो फिर हमको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं परिवेश खड़ा हो जाएगा जो दुखदायी होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। इसलिए शिक्षकों के द्वारा छात्रों के दिमाग में सूचना और सिलेबस न भर के उस युवा शक्ति को क्लास में हमेशा कुछ नया देने के बारे में विचार करना चाहिए, और जब वो ऐसा हर दिन करेगा तो एक ऐसी युवा पीढ़ी देश के सामने आएगी जिसको हम विवेकानंद जैसा श्रेष्ठ विद्यार्थी के रूप में देखते हैं।
1: डॉक्टर आचार्य, एक व्यवहारिक सच्चाई है कि आज शिक्षा का संबंध मूलतः एक अच्छी नौकरी और करियर से जोड़ के देखा जाता है।
0: बिल्कुल।
1: हालांकि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार दिलाना नहीं है, व्यक्ति को एक अच्छा इंसान बनाना, जिम्मेदार नागरिक बनाने में भी शिक्षा महत्वपूर्ण है। इस संतुलन को कैसे बनाए रखा जा सकता है?
0: संतुलन को बनाने के लिए हमको अपनी भारतीय शिक्षा पद्धति के बारे में, उसकी सनातनता और उसकी सांस्कृतिक रचना में पुनर्प्रवेश करने की आवश्यकता है, ऐसा मैं सोचता हूँ। NEP 2020 में आज भारतीय ज्ञान परंपरा को जोड़ा गया है। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें नई नीति के अंतर्गत और भारतीय ज्ञान परंपरा को हर विषय में जोड़ने की बात कर रही है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा क्या कहती है? भारतीय ज्ञान परंपरा कहती है हम अपने जीवन को परिवार निष्ठ, समाज निष्ठ और राष्ट्र निष्ठ बनाएं, विश्व के कल्याण की हम कामना करें। चरित्र की श्रेष्ठता को सामने लाने की आवश्यकता है। जब चरित्र की श्रेष्ठता सामने आएगी तो निश्चित अर्थ प्रदान संरचना तिरोहित होना शुरू हो जाएगी। अच्छी नौकरी, अच्छा परिवेश, सब प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता, मुझे लगता है अगले 10 साल में 15 साल में कुछ ऐसी वैज्ञानिक उपलब्धियां आएंगी जो मानव मस्तिष्क के उस ज्ञान को या उस परिस्थिति को आकलन में ले सकेंगी कि सुख की उसकी वास्तविक संकल्पना और वर्तमान की परिस्थितियों में कितना अंतर है। तब उसको ऐसा लगने लगेगा कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने में नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा सुख और आनंद लेने के लिए तैयार होना चाहिए। चिंतन में सबके प्रति पॉजिटिविटी लाना, तो फिर बदलाव आएगा। लेकिन हम यदि ये कहें कि केवल शिक्षा के माध्यम से विचार बदलेगा तो नहीं, इसमें समाज और शासन की रचना को भी अपने परिवेश में बदलाव लाने की आवश्यकता है। हम अपने बच्चों को केवल डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के बारे में न सोचें, एक अच्छा नागरिक बनाने के बारे में भी सोचें, तो ये बदलाव मुझे लगता है आने वाले समय में दिखाई देगा।
1: आप कह रहे हैं कि अभी भी ये संभावना है कि एक मेंटोर और गाइड बन के समाज निर्माण को शिक्षक प्रभावित कर पाएंगे?
0: बिल्कुल कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। लेकिन मैंने जैसा प्रारंभ में कहा कि शिक्षक का आचरण ही उसकी शिक्षा है। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी के सामने आदर्श शिक्षक के रूप में उपस्थित होना चाहिए। जब शिक्षक ठीक समय पर विद्यालय में पहुंचेगा, ठीक समय पर कक्षा में आना प्रारंभ कर देगा और उसकी वाणी का ओज भारतीय सनातनता और संस्कृति के प्रवाह से ओतप्रोत रहेगी, तो मुझे लगता है फिर विद्यार्थी स्वाभाविक उससे सीख सकेगा। डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद को हम देखते हैं, उनका शैक्षणिक परसेंटेज कोई बहुत अच्छा नहीं था, उन्होंने खुद लिखा है, लेकिन गुरु के प्रति उनकी जो आस्था थी, उस आस्था ने उनको देश के प्रति और समाज के प्रति सोचने के लिए मजबूर किया और देश आज उनको मिसाइल मैन के रूप में, राष्ट्रपति जी के रूप में जानता है। ऐसे अनेकों व्यक्तित्व हमारे देश में हैं जिनने अपने गुरु से प्रेरणा लेकर आगे बढ़कर अपने जीवन को और श्रेष्ठता के साथ पाया है।
1: शिक्षक केवल विद्यार्थी के सामने ही आदर्श बना रहे या पहले आवश्यकता है कि उसे मूलतः एक आदर्श व्यक्ति बनना चाहिए?
0: कोई भी मनुष्य, चाहे वो युवा हो चाहे वृद्ध हो, यदि विभेद में जिएंगे, दोहरा जीवन नहीं होना चाहिए शिक्षक। यदि वो व्यक्तिगत जीवन में अलग दिखेगा और कक्षा में और विद्यालय परिसर में, महाविद्यालय परिसर में अलग दिखेगा, तय बात है उसके वाणी और व्यक्तित्व से परिवेश पर, छात्रों पर कोई असर नहीं होगा। शिक्षक का जीवन आदर्शमय ही होना चाहिए, जैसे मंदिर के पुजारी का, व्यापारी का परिवेश कुछ भी हो सकता है, समाज के श्रेष्ठ पदों परिवेश में बैठे लोगों का अलग हो सकता है, लेकिन मंदिर के पुजारी का अलग होता है। ऐसे शिक्षा के मंदिर में, सरस्वती के, वीणा वादिनी के मंदिर में जाने वाले शिक्षक की भावभंगिमा, आचरण व्यवहार समाज और विद्यार्थियों के अनुकूल होनी चाहिए। छात्र के अंदर क्या चल रहा है उसका स्पंदन उसको कक्षा में होना चाहिए, तब फिर एक परिवर्तन दिखाई देगा। ऐसा इस देश में गुरुकुल परंपरा के समय सारी बातें जीवित थीं, तो वो बदलाव आएगा आने वाले समय में। भारतीय ज्ञान परंपरा जिस पाठ्यक्रम रचना में जुड़ रही है, हम वैश्विक रचना में पश्चिम की ओर न देख के अब पूर्व की परंपरा में धीरे धीरे आना शुरू हो रहे हैं। मुझे लगता है 5 से 10 साल में हम इस शिक्षक दिवस को इतने आनंद और मंगल के साथ मनाना प्रारंभ करेंगे जो कि विविध प्रकार की जो वर्तमान सामाजिक कठिनाइयाँ हैं या दोष हैं उनको समाप्त करने की ओर हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।
1: और हमें ऐसे शिक्षक मिलेंगे जो इतने त्याग के लिए तैयार हों वर्तमान परिदृश्य में भी?
0: हाँ, मिलेंगे। शिक्षक के साथ कठिनाई ये है, वो भी अंतोगत्ता मनुष्य है। जब समाज में अर्थवादी चिंतन रहता है, केवल घर अच्छा हो, गाड़ी अच्छी हो, बंगला अच्छा हो, इस पर चिंतन चलता है, तो शिक्षक भी अपेक्षा करता है। जब त्यागमय जीवन की संरचना भारतीय जो संस्कृति का मूल है आना शुरू हो जाएगी, तो शिक्षक भी अपने आप में बदलाव लाएंगे और साथ में उनको मिलने वाले साधनों से वो संतुष्टि प्राप्त करना शुरू करेंगे, तो उनके आचरण व्यवहार से एक अच्छा परिवेश निर्माण होगा। क्योंकि शिक्षा वह तत्व है जो राष्ट्र को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है और जल्दी परिवर्तनकारी होता है। तो भारतीय समाज के बदलाव की यदि हम संकल्पना राष्ट्रीय स्तर पर करना चाहते हैं, तो शिक्षा के बारे में और सरकार को और समाज को, दोनों को समान रूप से सोचने की आवश्यकता है।
1: आपने कहा मेंटल स्पेस, कक्षा के अंत में कौन छात्र है, उसमें क्या अंदर चल रहा है, मेंटल स्पेस दे सकते हैं आज, ये पॉसिबल लगता है आपको?
0: बिल्कुल लगता है। केवल पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा लेके चलेंगे तो हम क्लास में जाएंगे, यूनिट फर्स्ट का 3rd चैप्टर पढ़ा के लौट आएंगे, लेकिन जब हम छात्र के साथ पारिवारिक भाव में एकात्म होंगे और वो कक्षा में बैठा है, उसका चेहरा बाल सुलभ अभिव्यक्ति चेहरे पर सब दिखता है, दुखी है, प्रसन्न है, क्या चिंता है, क्या है, बिल्कुल दिखता है। देखने की दृष्टि चाहिए।
1: 50 बच्चे क्लास में है, बच्चे का चेहरा दिखता है?
0: बिल्कुल दिखता है, लेकिन दिखेगा किसे? जिसे विषय का ज्ञान हो और समाज रचना से जुड़े रहने का संज्ञान हो। घर के बच्चों की पीड़ा और आनंद देखने का जिनको अनुभव है, वो कक्षा में बैठे बच्चों के अनुभव को क्यों नहीं देख सकते? लेकिन जो आज सिंगल परिवार व्यवस्था हो गई है दुर्भाग्य से, इस समय पति पत्नी दोनों जॉब कर रहे हैं, अब वो अपने खुद के बच्चों को नहीं देख रहे हैं, तो हम कैसे कल्पना करें कि वो क्लास में बैठे बच्चों को देख पाएंगे? मैं पढ़ाता था, जब क्लास में जाता था तो न केवल आगे बैठा विद्यार्थी, पीछे वाला बैठा विद्यार्थी भी मुस्कुराता था। और आप विश्वास नहीं करेंगे, सप्ताह में एक दिन में 20 से 30 मिनट का मेरा पीरियड केवल उनकी पारिवारिक और व्यक्तिगत चिंताओं और सामाजिक समस्याओं पर रहता था। उनके नैतिक आचरण में बदलाव कैसे आए, इसको मैं उनको कहता था। उसका परिणाम यह है कि आज वो जो विद्यार्थी जिनको मैंने 25 साल पहले पढ़ाया है, अब वो मैच्योर्ड हो गए हैं, वो जब भी मिलते हैं सबसे पहले चरण छूते हैं। कभी मैंने उनको ये नहीं कहा कि तुम, मैं गुरु हूँ, तुम शिष्यों मेरे चरण छुओ। उनके आचरण में वो बात आ गई, क्योंकि उनको संस्कार वैसे मिले हैं। लेकिन इस सब के लिए साधनामय जीवन की आवश्यकता है। शिक्षक पेशे में आज जो भी जा

0: रहे हैं, उन सबको इस पर विचार करना चाहिए। हो ये रहा है जो मैं सोचता हूं, जब कहीं और जॉब नहीं मिलता तब आदमी स्कूल में शिक्षक बनने के बारे में सोचता है, ये बदलाव होना चाहिए। योग्य और श्रेष्ठ लोगों को ही शिक्षा में आना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट स्कूल के कॉलेज का माध्यम हो और चाहे गवर्नमेंट का हो।
1: डॉक्टर आचार्य, अगला प्रश्न मेरा परिदृश्य से जुड़ा हुआ ही है
0: जी।
1: AI का दौर है, टेक्निकल युग में हम जी रहे हैं,
0: निश्चित
1: नॉलेज इतनी आसानी से उपलब्ध है, तब शिक्षक की वो कौन सी भूमिका है वर्तमान में जिसे तकनीक पूरा नहीं कर सकती?
0: शिक्षक की भूमिका शिक्षार्थी के लिए, विद्यार्थी के लिए आज के समय में उसकी संवेदनाओं को जीवित रखना और उसमें मनुष्यता के लक्षण बढ़ें, इन प्रयोगों को करने की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि तकनीकी संसाधन आज जितने भी हैं ये सब जो हैं ये नीरस होते हैं, ये तात्कालिक सुख तो देते हैं लेकिन दूरगामी परिणाम इनके बहुत पॉजिटिव नहीं होते। शिक्षक के द्वारा अपने विद्यार्थी से ऐसे आत्मिक लगाव होना कि यदि वो 4 दिन कक्षा में नहीं आ रहा है तो 5वें दिन शिक्षक या तो उससे टेलीफोन पर बात करे या उसके घर जा सके, तो उसकी बीमार था तो उसके स्वास्थ्य की बातचीत करना, उसके परिवार में कोई मंगल अमंगल का वातावरण निर्माण हुआ है, कोई अच्छा काम हुआ है तो उसकी बधाइयाँ उसको स्वाभाविक रूप से देना। अपेक्षा ये नहीं करना कि वो मुझे बुलाया क्यों नहीं तुमने, नेगेटिविटी नहीं फैलाना, पॉजिटिविटी होनी चाहिए। अपने गुरु के प्रति, शिक्षक के प्रति सम्मान पैदा होगा और फिर वो उससे जुड़ेगा, उसको डांटने पर उसको बुरा भी नहीं लगेगा। जैसे माता पिता डांटते तो बच्चों को बहुत बुरा नहीं लगता, शिक्षक डांटता है तो कई बार बुरा लग जाता है। अब तो ये परिस्थितियाँ हैं कि पेरेंट्स आ जाते हैं शिक्षक को दंडित करने कराने के लिए, ये बहुत अच्छा परिवेश नहीं है मेरे व्यक्तिगत विचार में। स्कूली शिक्षा में यदि किसी बच्चे को कोई टीचर मार देता है, थप्पड़ मार देता है या डांट देता है बुरे तरीके से, कानून भी बन गए हैं न मारने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं संस्कारित करने के लिए भाषा की कड़ाई तो आवश्यक है। तो अच्छे संस्कारों के लिए उनको गढ़ना पड़ता है, जैसा एक कुम्हार जब बर्तन बनाता है तो थपकी देता है गीली मिट्टी को, तभी वो आकार ठीक लेता है और ठोस बनता है, ऐसा ही तो विद्यार्थी है, तो फिर वो सफल होगा।
1: देखिए, अभी आपने बात करी जहाँ स्कूल में सख्ती को बंद किया जा रहा है या ऐसा प्रयास किया जा रहा है
0: जी।
1: उसी संदर्भ में जैसे कि कुछ अपवाद या कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं जिन्हें उदाहरण तो नहीं कहा जा सकता लेकिन उनको अनदेखा भी नहीं किया जा सकता
0: जी,
1: वो अपवाद है लेकिन फिर भी रियलिटी है कि कहीं किसी बच्चे को इतनी बुरी तरीके से मारा गया कि उसकी जान चली गई।
0: हाँ है,
1: वहाँ पर भी तो कोई चेक होनी चाहिए ना सर?
0: नहीं, निश्चित होना चाहिए, कानून तो इसलिए बने हैं। CCTV कैमरे क्यों आए हैं? हमारे आचरण व्यवहार में ईमानदारी और निष्ठा खत्म हो गई, वाणी के असत्य में हम आ गए हैं। गांव के जीवन में और भारत के भी 100 साल पुराने परिदृश्य में अपन देखें, कथनी करनी का अंतर नहीं रहता था। ऐसे ही शिक्षक आज का बदल गया है, खुद के व्यक्तिगत व्यवहार को और आचरण को और क्रोध और अविवेकशीलता को बच्चों पर उतारता है, तो ऐसे लोगों को सुधारने के लिए कानून है। लेकिन कहीं ना कहीं एक जीनी मर्यादा भी होनी चाहिए जिससे उनके आचरण को ठीक ढंग से सुधारा जा सके। प्रशिक्षण होते रहना चाहिए, प्रशिक्षण यदि होंगे तो शिक्षकों को संदेश मिलता रहेगा और उनके आचरण व्यवहार में ठीक सुचिता आ जाएगी और विद्यार्थियों के अनुकूल अपने आप को बना सकेंगे। और मैं सोचता हूँ कि जन्मदिन मनाने का या जयंती मनाने का औचित्य भी यही है कि हम अपने आप का आकलन करें, हम कहाँ हैं, पिछले गत सत्र में हमने क्या किया था, ये चिंतन के लिए जयंतियां हैं, ऐसा मैं सोचता हूँ।
1: और जो शिक्षक हमें सुन रहे हैं उनसे भी हम उम्मीद करते हैं कि वो समझेंगे कि आपके स्टूडेंट्स डस्टबिन नहीं है, आप अपना फ्रस्ट्रेशन
0: निश्चित डस्टबिन नहीं है। प्राइमरी कक्षा के बच्चे तो भगवान का रूप है, हमारे शास्त्र कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं। हम माध्यमिक और उच्च शिक्षा में जब आते हैं तो वो भी किशोरवय अवस्था के लोग हैं, हमने यदि उनको चिंताएं दी, उनको यदि चुनौतियों से निपटने के लिए कला कौशल डेवलप नहीं किया। बच्चों को अब BA BCOM BSc की डिग्री से रोजगारी की उपलब्धता नहीं है, लेकिन कला कौशल विकास के लिए हम उनको कुछ सर्टिफिकेशन स्टार्ट करते हैं तो वो जल्दी जॉब में आ जाते हैं। युवा के कौशल विकास की आज आवश्यकता है, कौशल विकास होगा तो स्वाभाविक वो रोजगारी की उपलब्धता कर देगी। प्रधानमंत्री के आह्वान पर स्टार्टअप स्टार्ट हो गए हैं, कितने लोग नौकरी करने नहीं नौकरी देने के योग्य बन गए हैं।
1: डॉक्टर आचार्य, अभी एक पक्षीय ही हम बात कर रहे हैं, शिक्षक को ये करना चाहिए, ये जिम्मेदारी है,
0: निश्चित।
1: आपके अनुसार उस शिक्षक के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती क्या है और उसका समाधान कैसे हो सकता है, इस पर भी आप विचार दीजिए।
0: शिक्षक के सामने सबसे बड़ी चुनौती है समाज के दूसरे वर्गों के साथ अपने आप को कैसे समकक्ष रख सके, पारिवारिक रूप में, सामाजिक रूप में, उसके पास आए।

0: स्रोत कितने हैं, वो दूसरों के जैसे आवास की रचना ठीक कर सकता है क्या, अपने बच्चों को ठीक ढंग से पढ़ाने और उनकी आवश्यकता पूर्ति के लिए उसके पास धन आपूर्ति है क्या, समाज में दूसरे लोगों को जो सम्मान है आज जनप्रतिनिधियों से लेके कलाकारों से लेके अन्य को वैसा सम्मान शिक्षक को भी मिले उसकी अपेक्षा है, लेकिन उसके सामने ये चुनौतियाँ हैं। आज मैं ऐसा सोचता हूँ जब वो ज्ञान की श्रेष्ठता में अपने आप को स्थापित कर लेगा तो निश्चित उसकी ये न्यूनताएँ समाप्त होंगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि ईश्वर की बड़ी कृपा है जिसकी मुझे परमात्मा ने शिक्षा क्षेत्र में चुना। वो चाहता तो एक ठेकेदार बना देता, अरबों करोड़ों की संपत्तियों का मालिक बना देता, लेकिन उस रोजगार से मिलने वाली संतुष्टि क्या शिक्षक के द्वारा पढ़ाए जाने वाले विद्यार्थियों के मुकाबले कोई तुलना है क्या? तो नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि शिक्षक बनने के पहले व्यक्ति के मन में अपने जीवन की त्याग वृत्ति होनी चाहिए, दूसरे लोगों से अपनी तुलना न करके मैं अल्पाधिक साधनों से अपनी आवश्यकता पूर्ति करते हुए समाज के उस वर्ग को जो शिक्षा से वंचित है या शिक्षा के लिए लालायित है उसके लिए अपना जीवन समर्पित करूंगा, ऐसा श्रेष्ठ भाव जब रहेगा तो निश्चित एक अच्छा शिक्षक उसके अंदर निर्माण होगा और वो अपने आप को भी संतुष्ट कर सकेगा और उस संतुष्टि का लाभ विद्यार्थी और समाज को भी मिलेगा।
1: ये समाधान का एक
0: प्रकार है, बिल्कुल प्रकार है।
1: डॉक्टर आचार्य, अब हम चाहेंगे कि आप कोई व्यक्तिगत मेमोरी, अभी आपने छात्रों की तो बात की, अपने किसी शिक्षक के विषय में कुछ ऐसी जो मेमोरेबल बात हो, ऐसी कोई स्मृति साझा करिए हमारे साथ।
0: बहुत बचपन में जाता हूँ, जब मैं तीसरी कक्षा में था तो सामान्यतया रक्षाबंधन पर घरों में बेसन के बतियां बोलते हैं जिनको हम बुंदेलखंड में
1: लड्डू
0: और बतियां बना करते थे। तो उस जमाने में कोई बैग नहीं ले जाते थे, कपड़े का बस्ता हुआ करता था स्कूल ले जाने के लिए। तीसरी में जब मैं पढ़ता था तो घर से, उस समय कोई टिफिन कल्चर भी नहीं था, कागज के न्यूज़पेपर के हिस्से में और बतियां और खुरमा रख के स्कूल में ले जाते थे। पंक्तिबद्ध हम लोग बैठते थे जमीन में, तो हमको एक अग्रवाल शिक्षक पढ़ाते थे। पढ़ाते पढ़ाते हम लोगों को भूख लगाती थी तो धीरे से एक बत्ती निकाल के बैठे बैठे वहीं खाना शुरू कर देते थे और पीछे बैठा दोस्त और मुझसे आगे बैठा दोस्त भी जानता था कि ये कक्षा में लेके आता है, वो भी कभी कभी लाते थे, हम एक दूसरे को देते थे। एक दिन हमारे शिक्षक ने देख लिया तो उन्होंने आके कान पकड़ के नहीं उठाया, चेथी पर थपाड़ा नहीं मारा, नजदीक आके कहा मुझे भी तो खाने को, तुम लोग क्या खा रहे हो। ज्यादा तो नहीं थी बाती, देखा तीन बाती निकली है तो एक बाती उसमें से ले ली। खाते हुए वो गए और अपनी कुर्सी पर बैठ गए और उन्होंने वहां धीरे से कहा, बेटा इसको क्लास में बैठ के खाने की आदत नहीं डालना चाहिए, जब पीरियड छूट जाए तब खाना चाहिए, मगर बनी बहुत अच्छी है तुम्हारी, तुम्हारी माँ को कहना बहुत स्वादिष्ट है। हमको इतना ज्ञान नहीं था कि हमने गलती की है कक्षा में खाते हुए, लेकिन गुरु का जो स्नेह था उसने भविष्य में उसको ले जाने से मुझे प्रेरित कर दिया न ले जाऊं मैं। और दूसरा, घर आके माँ को जब ये बात बताई तो माँ ने भी मुझे कहा कि बेटा कक्षा में बैठ के नहीं खाना चाहिए, पढ़ने के लिए होती कक्षा। दूसरा, हम उच्च शिक्षा का एक उदाहरण देना चाहेंगे,
1: प्लीज।
0: मैं PhD कर रहा था सागर विश्वविद्यालय से, डॉक्टर HG सैनी हमारे मूल गाइड थे, डॉक्टर UC विश्वकर्मा हमारे गाइड थे स्थानीय। HG सैनी के पास मैं कम से कम 10 बार गया हूँगा जब हमारी थीसिस फाइनलाइज हो रही थी। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं करेली का रहने वाला हूँ, नरसिंहपुर जिले में आता है, वहाँ से 120 किलोमीटर दूर सागर था, बस से जाता था। तिराहे पर उतर के उनके जब घर पहुँचता था सबसे पहले वो कहते थे, घर से चल के आए कहाँ क्या खाया है, श्रीमती जी का मैडम का नाम लेके, और वो उनको कहती थी इसको राजकुमार को कुछ खाने को दो, तो जो तात्कालिक हुआ करता था वो मुझे प्लेट में आता था, मैं संकोच करता था, तो वो कहते थे मुझे नहीं जांचना कागज, जाओ तुम। मैं समझ जाता था कि सर नाराज हो जाएंगे,
1: मतलब पहले खाओ।
0: मैं खाता था, एक कप चाय आती थी वो पीता था, फिर वो बैठते थे वो देखने के लिए। ऐसा एक बार नहीं हुआ, 10 बार। आज के कितने टीचर हैं जो अपने PhD विद्यार्थी को ऐसे बुला के घर में और स्नेहपूर्वक खिला रहे हैं और बता रहे हैं। आज मैं उनका नाम ले रहा हूँ, मैंने 92 में थीसिस कंप्लीट कर ली थी और शिक्षक दिवस के इस अवसर पर हृदय से निकलता है, वो ब्रह्मलीन हो गए। लेकिन इसके बावजूद जहाँ भी वो आत्मा है वहाँ वो सुखी रहे, ऐसी मैं अपनी मंगल भावना ईश्वर से क्यों करता हूँ। उनका आचरण और व्यवहार गुरु के अनुकूल था। थीसिस सबमिट हो गई और इंटरव्यू के लिए गया तो उनकी ऑफिस में टेबल के पीछे डॉक्टर हरि सिंह गौर का चित्र लगा था। वो कहते मेरे पीछे देख रहे हो,

0: किसका चित्र लगा है? मैंने कहा कि डॉक्टर हरि सिंह गौर जी का लगा है, जिन्होंने इस विद्यालय के लिए अपना सर्वस्व दान दिया था। बोले इनकी लाज रखना इंटरव्यू देते समय और जीवन में इनके आचरण को धारित करना। आज मेरे जीवन में वो आचरण में है और मुझे लगता है कि यदि ऐसे गुरु और ऐसे शिक्षक नहीं मिले होते तो मेरे जीवन की कुछ श्रेष्ठताएँ निश्चित कमज़ोर रहती या न्यून रह जाती। तो ऐसी बहुत सी स्मृतियाँ स्कूली जीवन की, कॉलेज जीवन की रहती हैं, जो शिक्षक के प्रति जब हमारी चेतना रहती है तो वो हमको कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। गुरुओं के आशीर्वाद के कारण ही आज शिक्षा जगत के सोपान पर मैं और अपने आप को स्थापित पाता हूँ।
1: डॉक्टर आचार्य, आपने ने गुरुओं का जो संस्मरण हमें बताया, अपने आप में इसमें गुरु भक्ति का एक अलग ही सुर है और इसीलिए आमतौर पर जो हम करते हैं हमारे पॉडकास्ट का अंत हम किसी संगीतमय प्रस्तुति के साथ करते हैं
0: जी।
1: लेकिन अपने शिक्षकों के सम्मान में हम आज के लिए इस परंपरा को रोक रहे हैं क्योंकि हम चाहेंगे कि हमारे श्रोता हैं इस व्याख्यान के साथ ही अपने अपने गुरुओं को याद करें और जो गुरु हैं वो अपनी जिम्मेदारी को समझें और अपने स्टूडेंट्स को और अच्छे से पढ़ाएं।
0: जी निश्चित।
1: डॉक्टर आचार्य जी, शिक्षक दिवस के इस अवसर पर आपने शिक्षक, गुरु और शिक्षा के बदलते स्वरूप से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर हमसे विचार साझा किए। आकाशवाणी ग्वालियर में आप दोबारा आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम संपन्न करते हैं आज का पॉडकास्ट। आपको और हमारे श्रोताओं को भी शिक्षक दिवस की बहुत शुभकामनाएं।
0: आकाशवाणी ग्वालियर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं शिक्षक दिवस पर अपनी कुछ विचार अभिव्यक्त कर सकूँ। आप सबका स्नेह और आप सबकी आत्मीयता मुझे यहाँ आने के लिए प्रेरित करती है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे शिक्षक दिवस पर यह विशेष पॉडकास्ट ज्ञान मूल्य और नवाचार। डॉक्टर राजकुमार आचार्य से बात कर रही थी डॉक्टर विभूति सिंह। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। थोड़ी ही देर में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से होगा।
3: उच्च शिक्षण संस्थानों में शामिल है। शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों से लगातार अपना ज्ञान बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने और पढ़ाने के नए तरीके इस्तेमाल करने की अपील की है। राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच और जिज्ञासा की भावना विकसित करने पर जोर दिया। नई दिल्ली में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में 48 स्कूली शिक्षकों और उच्च शिक्षा संस्थानों तथा पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों प्राध्यापकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाएगा। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह भोपाल में आयोजित किया जाएगा। यहां शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले प्रदेश के 33 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल मुख्य अतिथि और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री भोपाल में इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शहरों में गीता भवन और गांवों में वृंदावन ग्राम शुरू कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भोपाल सेंट्रल जेल में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर बंदियों की सजा में 1 महीने की विशेष छूट देने की घोषणा की। और प्रदेश में मानसूनी सिस्टम अब उत्तरी हिस्से में एक्टिव है, जिसके चलते अगले 2 दिन ग्वालियर, चंबल, सागर, उज्जैन संभाग में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने आज 19 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। श्योपुर और शिवपुरी में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
4: इस घंटे की खास खबरों के बाद वापस अपने कार्यक्रम स्वरूप।
2: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है सूचनाओं और समाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को तूलिका का नमस्कार। और साधुवाद उन सभी श्रोताओं को जो साथ साथ में शिक्षक भी हैं। तो आज सभी शिक्षकों को हमारा दिल से नमन रहेगा। श्रोता साथियों, आज के अखबार शिक्षक दिवस और शिक्षकों की बातों से भरे हुए हैं। आज चूँकि कार्यक्रम हमें आपके साथ करना था, तो हम सोच रहे थे कुछ ऐसी बातें शिक्षकों के बारे में आपको बताएं जो अखबारों में भी हैं और हमारे मन में भी हैं आपसे साझा करने के लिए। तो जो सबसे खूबसूरत बात आज के अखबार में हम

में दिखाई दी, वो है हमारी राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की कही हुई। उन्होंने कहा कि वो शिक्षक विजेता होते हैं जो बच्चों को अपने ज्ञान का अधिकतम प्रदान करते हैं, लेकिन वो शिक्षक महान होते हैं जो शिष्य से पराजित होने की इच्छा रखते हैं। ये वाक्यांश मुझे इतना अच्छा लगा, इतना प्रभावित किया इस वाक्यांश ने मुझे। दरअसल हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी के शिक्षक तो होते ही हैं। कुछ न कुछ गुण, कुछ न कुछ ज्ञान हमारे अंदर होता है और हमसे बहुत सारे लोग कुछ न कुछ सीखते हैं। विशेष तौर पर यदि शिक्षक की हम बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे शिक्षक हो जाते हैं जो अपना 100% ज्ञान शिक्षकों तक स्थानांतरित नहीं करते, कुछ न कुछ इसलिए बचाकर अपने पास रख लेते हैं जिससे उनकी गुरुता, उनकी महत्ता, उनका ज्ञान ऊंचा बना रहे और इस तरह संपूर्ण ज्ञान जो है वो दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। यदि सब कुछ ट्रांसफ़र करके किसी शिष्य को अपने से ऊंचा बना देने की इच्छा रखता है कोई शिष्य, कोई शिक्षक, तो निश्चित तौर पर वो शिक्षक सैल्यूट करने के काबिल है, महान मान लेने के काबिल है। मैं ये पूरा लेख पढ़ रही थी जो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से प्रकाशित हुआ है। उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने अपने छात्र जीवन की भी की हैं। उनका ये मानना है कि अभिभावक के पास बच्चा 2.5 या 3 साल तक जो रहता है उसके बाद बहुत भरोसे के साथ अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षकों के पास भेजते हैं और वो ये मानकर चलते हैं कि शिक्षक पूरे अपनेपन की भावना से बच्चों की सुरक्षा पर भी ध्यान देगा और प्रगति पर भी ध्यान देगा। तो जितने भी शिक्षक हैं उन्हें अभिभावकों की इस पवित्र आस्था की रक्षा करना अपना धर्म मानना चाहिए। विद्यार्थी उनके पास तक पहुंचता है कच्चे घड़े के समान, उसे एक बेहतर नागरिक बनाना शिक्षक का कर्तव्य है और ये कर्तव्य कितना महान हो सकता है आप सोच कर देखिए। बच्चे के मन पर जिस तरह की छाप शिक्षक छोड़ेगा बचपन में, वो व्यक्ति, वो बालक आगे चलकर वैसा ही नागरिक बनेगा। कितनी बड़ी जिम्मेदारी शिक्षकों पर है, क्या हम इतनी बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाले शिक्षकों के ऊपर उतना भरोसा करते हैं? क्या हम उनको उतना सम्मान देते हैं? ज़रा खुद में झांक कर देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उनकी मेहनत का, उनके किए गए कार्यों का, उनकी ईमानदारी का पूरा पूरा आदर उन्हें नहीं देते? अक्सर हम ऐसा ही कर लेते हैं। दरअसल लगातार शिक्षकों की जो जमात है वो एक ऐसे पीढ़ियों का निर्माण कर रही है जो हमारे देश के विकास में सहायक होती हैं। शिक्षक दिवस पर अभी कुछ ही देर पहले हमारा एक प्रसारण था, हमारा जो पॉडकास्ट विशेष आज के दिन का होता है उसमें भी जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलगुरु से बातचीत हो रही थी। उन्होंने भी अपने जीवन के सार को इस कार्यक्रम में बताया। श्रोता साथियों, सच में किसी शिक्षक के पास तमाम सारे विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए जो अनुभव वो अर्जित करता है और उस अर्जित अनुभव के साथ दूसरे शिष्य को पढ़ाता है या उसके चरित्र का निर्माण करता है, सोचिए कितनी बड़ी भूमिका वो निर्वहन कर रहा है इस समाज के लिए। आज उन सभी शिक्षकों को सलाम है जो पूरी ईमानदारी और पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ इस देश के भविष्य का निर्माण करने में लगे हुए हैं।

शिक्षकों से संबंधित आज एक और बात अखबार में है जिसे हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। टीईटी यानी टेट का जो एग्ज़ाम होता है, शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है ये, और इस पात्रता परीक्षा की अंतिम तिथि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 4 सितंबर से बढ़ाकर 18 सितंबर कर दी गई है, और इसमें संशोधन जो है वो 20 सितंबर तक हो सकेगा। परीक्षा ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन करने का विकल्प भी रहेगा। करीब 1.5 लाख शिक्षक इसके दायरे में हैं। यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो ज़रूर आवेदन कीजिए। शिक्षक बनना चाहना, यहाँ मैंने एक शब्द बोला, जी हाँ, मजबूरी में शिक्षक बनना यदि आपको पड़ता है तो आप उसे अपनी चाहत बनाइए, अपनी इच्छा से शिक्षक बनिए, क्योंकि जो काम आप पूरी इच्छा से करेंगे उसको ताउम्र बहुत खूबसूरती से निभाएंगे। दरअसल शिक्षक इसलिए भी महान है क्योंकि वो लगातार खुद भी सीखता रहता है और अपने आप को परिष्कृत करता रहता है। ये जो परिष्कार की आदत उसने खुद में डेवलप की है, वो आदत प्रत्येक बच्चे में रोपित कर देना चाहता है। चलिए सल्यूट करते हैं सभी शिक्षकों को, और आज पूरे दिन हम याद करेंगे, मैं तो याद करूंगी, मैं आपसे भी उम्मीद करती हूं कि आप भी याद कीजिएगा आपके जीवन में आए शिक्षकों को और उनके द्वारा अपने व्यक्तित्व में किए गए परिवर्तनों को। हम और भी आगे बातें करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये गीत आपको सुनवाते हैं।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: एक बार फिर स्वागत है आप सबका आपके अपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में। श्रोता साथियों, हम बात कर रहे थे इस गीत से पहले कि जो शिक्षक हैं वो कितनी मेहनत करते हैं, अपने आप को कितना अपग्रेड रखते हैं, अपडेटेड रखते हैं बच्चों को कक्षा में पढ़ाने के लिए। क्योंकि एक शिक्षक जब शिक्षक के तौर पर भर्ती होता है तो उसकी उम्र होती है लगभग 20-22-25 साल, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उसी उम्र में रुका रहता है, उसकी भी उम्र बढ़ती है धीरे धीरे धीरे धीरे। लगभग 60 साल की उम्र तक वो पढ़ाता है बच्चों को, और इस दौरान जाने कितनी पीढ़ियां उसके सानिध्य में रहती हैं, उसके मार्गदर्शन में पढ़ाई करती हैं और निकलकर अपने अपने क्षेत्रों में अच्छे मुकाम पर भी लगती हैं। क्या ऐसे में शिक्षक ने 20-22-25 साल तक की उम्र में जितना ज्ञान अर्जित किया है 60 साल तक सिर्फ उतना ही रहता है? नहीं, शिक्षक भी रोज़ बरोज़ अपने विद्यार्थियों के साथ कुछ न कुछ सीखता रहता है। न सिर्फ साथ में सीखता है बल्कि उन विद्यार्थियों के को पढ़ाने के लिए खुद को अपग्रेड भी करता रहता है। अब वो अपग्रेड

यदि ना करे तो शायद वो एक अच्छा शिक्षक नहीं होगा, अपने विद्यार्थियों को संतुष्ट नहीं कर पाएगा। और जब विद्यार्थी संतुष्ट नहीं होंगे तो यकीनन विद्यार्थियों के ज्ञान में और चरित्र में कोई बदलाव नहीं आएगा। दरअसल शिक्षकों की खासियत पढ़ाने की टेक्निक नहीं होती, हर बच्चे को अलग अलग समझना होता है उसे, और अलग अलग बच्चे का एक अलग प्रकार का मेंटोर उसे बनना होता है। यदि हम शिक्षकों के जीवन में उतर कर देखना चाहें, एक शिक्षक बनकर देखना चाहें, तो जो क्लासरूम स्टडी होती है ना, वो बेल बजी, अपना बचपन याद कीजिएगा, बेल बजी, एक नया शिक्षक कक्षा में आया, क्या आते से उसने पढ़ाना शुरू कर दिया? नहीं। जितनी भी लंबी आपकी क्लास की टाइमिंग होती है, वो पीरियड होता है, उसमें पहले जो शिक्षक है वो बच्चों को परखता है। जब शुरुआती क्लासेस होती हैं तो बच्चों की क्षमताएं भी परखता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब वो बच्चे को जान जाता है तो बच्चों की मनःस्थिति परखता है। क्या बच्चे का पढ़ने का मन है? कहीं कोई चीज़ उन्हें परेशान तो नहीं कर रही? और कितना ही बड़ा टैलेंट होता है शिक्षक का कि सब बच्चों को पढ़ने की मनःस्थिति में लेकर आना, अपने सब्जेक्ट की मनःस्थिति में लेकर आना, और फिर जो उस घंटे में उसे पढ़ाना है वो पढ़ा कर समझा कर उतनी देर में, 35 मिनट में या 40 मिनट में या हद से हद एक घंटे में पढ़ा कर बाहर निकल जाना, बच्चों को संतुष्ट छोड़कर। ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और इसमें कितनी कला और कौशल लगता होगा, क्योंकि हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग है, हर बच्चे की कमज़ोरियाँ अलग है, हर बच्चे की ताकत अलग है। ये रणनीति बनाना किस तरह की जादूगरी करता होगा शिक्षक कक्षा में। यदि हम ये सब चीज़ें अपने जहन में रखें तो हर शिक्षक आदर का पात्र हो जाएगा। इसी तरह जो प्री प्राइमरी क्लासेस के टीचर्स होते हैं, जो बहुत छोटे बच्चों के टीचर्स होते हैं, वो तो क्या ही कुशलता उनके अंदर होती है। रोता धोता बच्चा हम अपने घर से विद्यालय तक छोड़ कर आते हैं और जब हम उसे वापस लेने जाते हैं तो बच्चा संतुष्ट होता है, कुछ न कुछ सीख कर किसी न किसी खुशी को साथ में लेकर चला आता है। कभी उसके हाथ में होती है पेंसिल, कभी उसके कॉपी में बना होता है एक स्टार, कभी उसके हथेली के पृष्ठ भाग पर कुछ गिफ्ट के तौर पर स्टिकर चिपकाया हुआ होता है, और कभी वो अपने गाल पर एक हल्की सी थपकी जो प्यार से दी गई होती है उसके भाव में विभोर होकर घर आता है। ये सारा कुछ हमें एक ही व्यक्ति प्रदान करता है और वो है शिक्षक। तो शिक्षक का आभार हमें आज ही के दिन नहीं, रोज़ बरोज़ व्यक्त करना चाहिए। दरअसल आज जिस समस्याओं से टीचर्स गुज़र रहे हैं वो एक अलग तरह की समस्या है, बदलते वक्त की समस्या है। हर टीचर एक ब्रांड बनना चाहता है, हालांकि बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को ब्रांड के तौर पर स्थापित किया है, और आज ब्रांड वैल्यू इतनी ज़्यादा चलन में है कि ब्रांड बनने के लिए की जाने वाली मेहनत भी टीचर्स को करनी पड़ती है। न सिर्फ क्लासरूम स्टडी बल्कि अपनी समझाने की शैली, बच्चों की मेंटोरशिप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें शिक्षक सीखते हैं, करते हैं, और जब बच्चे उनके आगे बढ़ते हैं तो उन्हें भी निश्चित तौर पर फख्र होता है। आज तो ये स्थिति है कि टीचर्स अपने पढ़ाए हुए बच्चों की सफलता को भी बड़े बड़े पोस्टर्स लगा के शहर में और प्रदर्शित करते हैं, जिससे कि बाकी बच्चे भी मोटिवेट हो। नए नए तरीके आ गए हैं बाज़ार में, और इस बाज़ार के साथ ही कदम से कदम मिलाकर शिक्षक भी आगे बढ़ता है। हालांकि बहुत सारी चीज़ों को बाज़ार प्रभावित करता है, नेगेटिवली प्रभावित करता है, लेकिन ज़्यादातर बाज़ार पॉजिटिवली प्रभावित करता है और शिक्षकों को और ज़्यादा शार्प होने के लिए प्रेरित करता है। चलिए शिक्षकों को एक बार फिर सैल्यूट करते हैं और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में। श्रोता साथियों, शिक्षक दिवस पर हम आज विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी को हमने विशेष बनाया हुआ है, जो इसका नाम है गुड मॉर्निंग ग्वालियर। अखबारों में हम आज आपके लिए कुछ मटेरियल जब छांट रहे थे, उसी दौरान एक कॉलम है जिसकी मैं नियमित पाठक हूँ, एक मैनेजमेंट गुरु हैं, उनका कॉलम अखबार में रोज़ निकलता है, रोज़ पढ़ती हूँ मैं। उन्होंने अपने शिक्षकों को आज इस कॉलम में याद किया, किस तरह से उनको कुछ शिक्षक अभी भी याद हैं। आप सोचिए ना, आपके जीवन के कुछ शिक्षक आपको याद हैं और किस तरह याद हैं? आपके याद रखने का तरीका भी शिक्षकों को

इस गीत के साथ ही गुड मॉर्निंग ग्वालियर कार्यक्रम समाप्त करने की अपनी दोस्त तुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे सूचनाओं और समाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज हम आपको सुनवा रहे हैं दानिश असलम खान का सरोद वादन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं भोगीराम रतौनिया। आइए सुनते हैं दानिश असलम खान का सरोद पर बजाया राग भैरव।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे दानिश असलम खान का सरोद पर बजाया राग भैरव। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे भोगीराम रतौनिया। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 10 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: बजे हैं, कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी भोपाल से अब आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं खंडवा जिले की चिट्ठी। आलेख हीरालाल लोंगरे, वाचन स्वर दीपा सिंह। खंडवा जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। ये त्यौहार जिले में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण और बाल गोपाल का विशेष श्रृंगार पूजन अर्चना की गई। ओंकारेश्वर के प्राचीन विष्णु मंदिर में द्वारकाधीश प्रतिमा का विशेष श्रृंगार हुआ। हरसूद में शोभा यात्रा निकाली गई और कई जगह मटकी फोड़ कार्यक्रम भी हुए। जिले में सोयाबीन की फसल पर फफूंद जनित रोग, चक्र भ्रंग पत्ती खाने वाली इलियों और येलो मोजैक का असर देखा जा रहा है। कृषि विभाग ने किसानों को फसल की नियमित निगरानी की सलाह दी है। येलो मोजैक से प्रभावित खेतों को खेत से निकालकर नष्ट करने और सफेद मक्खी की रोकथाम के लिए पीले स्टिकी ट्रैप लगाने को कहा गया है। जिले में इस साल अब तक 607 मिलीमीटर औसत बारिश हुई है, जो पिछले साल की तुलना में कम है। हालांकि ऊपरी इलाकों में हो रही बारिश से नर्मदा में पानी की आवक लगातार बनी हुई है। इससे इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांधों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। अगस्त के आखिर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी खंडवा पहुंचे थे। उन्होंने ओंकारेश्वर के एकात्मधाम में पंचायतन मंदिर का शिलान्यास किया। इस दौरान 45 पवित्र शिलाओं का पूजन कर मंदिर निर्माण की शुरुआत की गई। मंदिर में भगवान शिव मुख्य देवता होंगे, जबकि विष्णु, सूर्य, गणेश और भगवती शक्ति के मंदिर भी होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एकात्मधाम भारतीय ज्ञान और संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा।

0: खंडवा के माखनलाल चतुर्वेदी कन्या महाविद्यालय में कोरकू और निमाड़ की लोक परंपराओं पर दो दिवसीय परिसंवाद हुआ। इसमें पारंपरिक अनुष्ठानों के संरक्षण और नई पीढ़ी तक उन्हें पहुंचाने पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन यानी 17 सितंबर से खंडवा जिले में सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान सेवा, जन कल्याण और विकसित भारत से जुड़े 13 तरह के कार्यक्रम होंगे। रक्तदान, पौधरोपण, स्वच्छता और स्वास्थ्य जैसी गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। खंडवा जिला न्यायालय में 12 सितंबर को होने वाली नेशनल लोक अदालत की तैयारियों की समीक्षा की गई। न्यायिक अधिकारियों को आपसी सहमति से ज्यादा मामलों का निपटारा करने के निर्देश दिए गए। चेक बाउंस, बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना और वैवाहिक विवाद जैसे मामलों पर चर्चा हुई। बंधारा विधानसभा के देशगांव में औद्योगिक विकास क्षेत्र बनाने को शासन से मंजूरी मिल गई है। यहाँ प्याज प्रसंस्करण समेत कृषि आधारित उद्योग लगाए जा सकेंगे। भूमि चिन्हांकन और मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम को जमीन देने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी। वहीं जिले में 16 सितंबर से 8 अक्टूबर तक कुष्ठ रोगी खोज अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर संभावित मरीजों की जांच करेंगी। चिन्हित मरीजों को नियमित इलाज से छोड़ा जाएगा। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर यानी एक घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाकर जान बचाने वाले व्यक्ति को सरकार 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देगी। ऐसे लोगों को प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। योजना के तहत देश के 10 श्रेष्ठ राहगीरों को 1-1 लाख रुपए का राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया जाएगा। खंडवा के खालवा क्षेत्र में कृषि विभाग की टीम ने मक्का, सोयाबीन की फसलों का निरीक्षण किया। मक्का में फॉल आर्मी बम, हेलिकोवर्पा और सेमी लूपर जैसे कीटों का प्रकोप मिला है। टीम ने किसानों को कीट नियंत्रण और दवाओं के सही इस्तेमाल की जानकारी दी। श्रमिकों को उनकी योग्यता के अनुसार काम दिलाने के लिए डिजिटल लेबर चौक ऑफ एमपी ऐप शुरू किया गया है। पेंटर, बढ़ई, वेल्डर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और ड्राइवर जैसे श्रमिक इस ऐप पर काम तलाश सकते हैं। खंडवा जिले में 2 से 30 सितंबर तक अलग अलग गांवों में निशुल्क मोतियाबिंद जांच शिविर लगाए जा रहे हैं। आज किलौद और बूरी सराय में शिविर आयोजित होंगे। मरीजों की आंखों की जांच के साथ जरूरत के अनुसार इलाज और चयनित मरीजों के निःशुल्क ऑपरेशन की व्यवस्था की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित उल्लास एक अभिनव प्रयोग कार्यक्रम के विजेताओं को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिए गए। निबंध, चित्रकला और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। संत रविदास महाराज की 650वीं जयंती के मौके पर खंडवा जिले में समरसता संकल्प अभियान और समरसता यात्रा जारी है। यह अभियान 20 अगस्त से 10 सितंबर तक चलेगा। अलग अलग जगहों पर यात्राएं और जन भागीदारी के कार्यक्रम हो रहे हैं। इनके जरिए संत रविदास की समानता, सामाजिक एकता और भाईचारे के संदेश को लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। और अंत में बात संत सिंगाजी महाराज जी की। उनका 467वां समाधि दिवस संत सिंगाजी धाम में श्रद्धा के साथ मनाया गया। समाधि स्थल पर महाआरती, भजन कीर्तन, प्रसादी का आयोजन हुआ। संत सिंगाजी की निर्गुणी वाणी और भजनों की परंपरा आज भी निमाड़ में लोकप्रिय है। खंडवा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: आप सुन रहे थे खंडवा जिले की चिट्ठी। आलेख हीरा लाल लोंगरे का था, वाचन स्वर दीपा सिंह का। इसका प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से किया गया। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।
2: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं जानकारी, प्राकृतिक चिकित्सा क्या है। डॉक्टर प्रमोद सिसोदिया से इस विषय पर बात कर रही हैं तुलिका शर्मा।

0: कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को नमस्कार। सेहत की बात तरानों के साथ। इस कार्यक्रम में हम विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों की बात करते हैं, विभिन्न रोगों की बात करते हैं, उनके इलाज की बात करते हैं। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे नेचुरोपैथी की, प्राकृतिक चिकित्सा क्या है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर प्रमोद सिसोदिया को। आप नेचुरोपैथ हैं, प्राकृतिक तरीके से चिकित्सा करते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार, धन्यवाद।
0: डॉक्टर साहब, हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा क्या है, किसे आप प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं?
1: प्राकृतिक चिकित्सा अपने भारत की, अपने देश की देन है और ये प्राकृतिक के संसाधन है अपने पास जो परमात्मा ने दिए हैं। आकाश, वायु, सूर्य, मिट्टी, जल, ये पांचों तत्वों के द्वारा हर बीमारी का इलाज अपन करते हैं प्राकृतिक के द्वारा, जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार की दवाई का प्रयोग नहीं किया जाता। कोई भी बीमारी ले लें, चाहे बीपी हो, शुगर हो, कॉन्स्टिपेशन हो, पेट की किसी भी प्रकार की बीमारी हो, फैटी लीवर हो, सर्वाइकल हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, बैक पेन हो, इन बीमारियों को अपन बिना दवा के ठीक करते हैं।
0: डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जो पंच तत्व हैं यही हमारे इलाज में दवा का काम करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि अपन पंच तत्व की आपने बात की, तो उसमें कोई भी पंच तत्व इनमें से एक उठा के बात करते हैं, जैसे कि सूर्य। हम आजकल कैल्शियम की गोलियां खा रहे हैं, विटामिन डी की गोलियां खा रहे हैं, तो हमें वो विटामिन डी कैल्शियम सूर्य से की धूप से हमें मिल जाता है, पर हम थोड़ा सा इन चीज़ों से भौतिक सुख सुविधाओं में लिप्त होने के कारण अपन इन सुविधाओं को नहीं ले पा रहे हैं। अगर हम एवरीडे धूप स्नान लें आधा घंटे का, एक घंटे का, तो हमें विटामिन डी की कमी नहीं पड़ेगी कभी, कैल्शियम की कमी नहीं होगी।
0: लेकिन धूप स्नान का कुछ नियम होता है कि आपको किस समय की धूप लेनी है, कितनी लेनी है, या फिर बहुत सारे लोग तो पूरे पूरे दिन बाहर रहते हैं, क्या उन्हें भी ज़रूरत पड़ती है धूप स्नान की, या उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है?
1: देखिए, सुबह की धूप बहुत अच्छी मानी जाती है इसमें। सुबह जितनी हम सहन कर सकते हैं, जैसे कि 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, जितना हम सहन कर सकते हैं। बाकी का क्या होता है, हमारे पास टाइम नहीं है, हम बिजी लाइफ है, तो मॉर्निंग में हम ले लेते हैं धूप। पर हम जब भी धूप लेंगे, सूर्य हमें देगा ही, लेगा कुछ नहीं, विटामिन डी हमें हमेशा मिलेगी। ऐसा नहीं कह सकते कि हमें सुबह की धूप में मिल रहा है।
0: लोगों को धूप से एलर्जी भी बहुत होती है। लोग सोचते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेज से हमारा रंग सांवला पड़ जाएगा या किसी तरह की स्किन डिजीज हो जाएगी, सनस्क्रीन लगाकर बाहर निकलते हैं, तो क्या इस तरह के प्रिकॉशन जो है जो लोग लेते हैं वो सही करते हैं?
1: नहीं, मेरे हिसाब से गलत करते हैं वो। उन्हें इस तरीके से नहीं रहना चाहिए। उन्हें धूप का टाइम है तो धूप लेना चाहिए, जब मौका मिल रहा है तब धूप लेना चाहिए। इन चक्कर में हम बीमार और उल्टे पड़े रहेंगे। इसी तरीके से चार तत्व और हैं, उनका भी अपन इसी तरीके से प्रयोग करते हैं। दर्द कहीं का भी हो, हमें रिलीफ मिलता है उससे धूप लेने से। अब आजकल मोस्टली डॉक्टर धूप स्नान के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कैल्शियम पेनकिलर जो है प्योर नेचुरल, इसके अलावा कहीं है ही नहीं।
0: नेचुरोपैथी में हमने सुना है कि मिट्टी से आप लोग बहुत तरीके के इलाज करते हैं
1: जी,
0: तो ये मिट्टी से किस किस बीमारी का इलाज होता है और कैसे होता है, दोनों चीजें हम जानना चाहेंगे।
1: मोस्टली सब बीमारियों में मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। हमारे आजकल 3-4 साल के बच्चों को चश्मा लग रहा है, है ना? क्या अगर हम पीछे की तरफ थोड़ा सा वापिस जाएं, तो हमारे पहले तो किसी को चश्मा लगता ही नहीं था, आंखें किसी की खराब होती नहीं थी 100-100 साल तक, क्योंकि पहले जो लोग थे मिट्टी से स्पर्श करते थे, मिट्टी के टच में रहते थे, खेतों में काम करते थे, मिट्टी का घर हुआ करता था, उसे लीपा पोती जो होती थी उस तरीके मिट्टी की हुआ करती थी। उस टाइम पे बच्चों को डायरेक्टली प्रकृति से मिट्टी मिलती थी, जो हमारी आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। अगर हम बच्चों को दूसरी मंजिल पर रख रहे हैं, तीसरी मंजिल पर रख रहे हैं, या अंदर रख रहे हैं, टाइल्स मार्बल पर बना हुआ है पूरा घर, तो हम बच्चों को कभी भी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या करते हैं बच्चों से कि चप्पल पहन लो, शूज पहनो, उसके बाद बाहर निकलो। उनको जब से पैदा हुए हैं उन्होंने मिट्टी का स्पर्श नहीं कर पाए बेचारे। हम उन बच्चों के लिए आँखों पे मिट्टी लगाते हैं।
0: अच्छा।
1: एक कपड़े में, पतले कपड़े में लेके हम आँखों पे मिट्टी लगाते हैं, तो उन्हें आराम मिलता है। पेरेंट्स से बोला जाता है कि आप मिट्टी पे थोड़ा सा बच्चों को घुमाइए, नंगे पैर ले जाइए, बिठाइए, उनको खिलाइए। हम आँखों को वहीं पे स्टॉप कर देते हैं जहाँ तक हमारा नंबर चेंजिंग हुआ है, वहीं पे रुक जाता है, ताकि अब आँखें ज़्यादा ख़राब ना हों। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि हमारे कभी घुटने में दर्द हो रहा है तो हम गर्म मिट्टी का लेप लगा लेते हैं उसमें, कभी मेथी दाना उबाल के उस मिट्टी में डाल देते हैं रात को, फिर उसे थोड़ा सा गर्म करके लगा लेते हैं। मिट्टी का जब हमारे घुटने पे लेप होता है या कहीं पे भी लेप होगा वहाँ पे हमें रिलीफ मिलेगा।
0: हम इस पर और बातें करेंगे किस तरह से चिकित्सा चलती है नेचुरोपैथी में, लेकिन हम चूंकि कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ में अपने श्रोताओं से बात कर रहे हैं तो अब तराने की बात हो जाए, आप गीत संगीत सुनते हैं?
1: हाँ बिल्कुल, जरूर सुनते हैं।
0: कोई गीत ऐसा हो जो आपकी पसंद का हो हमारे श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे?
1: एक पुराना गाना याद आ रहा है, कभी कभी सुनने का मन करता है, तो दुनिया बनाने वाले
0: क्या
1: तेरे मन में समाई, कैसी ये दुनिया बनाई।
0: फिल्म तीसरी कसम का ये गीत है।
1: जी मैम,
0: फिल्म भी बहुत अच्छी थी और ये गीत भी बहुत खूबसूरत है, इसमें जीवन का बहुत बढ़िया संदेश छुपा हुआ है। तो चलिए आपकी पसंद पर अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं फिल्म तीसरी कसम का ये गीत।

0: सेहत की बात तरानू के साथ कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं नेचुरोपैथ डॉक्टर प्रमोद सिसोदिया और हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक चिकित्सा क्या है इसके बारे में। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि मिट्टी से आप विभिन्न प्रकार के उपचार देते हैं, स्नान कराते हैं मिट्टी से, ये जो प्रक्रिया है इसमें कितना समय लगता है? कोई व्यक्ति यदि मिट्टी से चिकित्सा कराना चाहता है, कहीं उसे दर्द है कमर में, घुटने में या कहीं और, तो कितना समय ठीक होने में लग जाता है?
1: इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी में कभी स्किन डिसीज हुई तो इसका पहले कारण पे हमें जानना पड़ता है कि किस कारण से स्किन डिसीज हुई है। स्किन डिसीज हमारे पेट से रिलेटिव ज़्यादातर होती है। हमारा लीवर हमारा गर्मी पैदा कर रहा है, एसिड पैदा कर रहा है, तो वो कहीं से निकल नहीं पा रही है गंदगी, तो हमारी वो स्किन फोड़ के निकलती है, है ना, जैसे स्किन डिसीज बोलते हैं। तो मिट्टी का फिर हमें पूरा लेप लगाना पड़ता है उसकी बॉडी पर, जिसमें अपन कुछ नेचुरल चीज़ें डाल सकते हैं, नीम है, कड़वा नीम उसे पीस के डाल सकते हैं, है ना, और इसके लिए अपन दही डाल सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, है ना, और अपनी नेचर की तरफ से जो कपूर भी यूज कर सकते हैं उसमें, है ना, ये अपन इंक्लूड करके एक लेप बनाते हैं। फिर हम पूरी बॉडी पे लेप करते हैं उसको। अब उसका आधा घंटा एक घंटा जैसी धूप है उस धूप में हम धूप स्नान करेंगे मिट्टी के साथ, और फिर हम इसे नहाएंगे जब पानी से, तो हमारी बॉडी को बिल्कुल 1% भी ज़रूरत नहीं है साबुन शैम्पू की।
0: जो मिट्टी आप इस्तेमाल करते हैं उपचार में, क्या वो सामान्य मिट्टी होती है या उसको भी आप किसी तरह से प्रिपेयर करते हैं?
1: तो मिट्टी के लिए हमें ऐसी जगह देखना चाहिए जहाँ पर किसी प्रकार का खरपतवार ना हो, प्लास्टिक ना हो, वहाँ गंदगी ना हो। खेतों में से मिट्टी नहीं लेना चाहिए क्योंकि खेतों में आजकल केमिकल्स डाले जा रहे हैं। हमें एक ग्राउंड से कोई मिट्टी लेना चाहिए,

0: साफ स्वच्छ जगह से, वो कम से कम 3-4 फुट गहरी मिट्टी होनी चाहिए।
1: मतलब ऊपर की सतह की मिट्टी नहीं?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं हो, 3-4 फुट गहरी मिट्टी होना चाहिए। और उस मिट्टी को फिर हमें धूप स्नान देना पड़ेगा, कोई भी किसी प्रकार के कीटाणु होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। फिर हम उसे धूप स्नान के बाद उसे हम छानते हैं, पीस के छानना होता है, कंकड़ बंकड़ खत्म हो जाते हैं उसके। ये मिट्टी हमारी बहुत लाभदायक होती है और सभी रोगों में काम करेगी। घाव पे भी लगा देंगे इस मिट्टी को, किसी भी घाव पे, तो इन्फेक्शन नहीं होगा।
1: कभी कभी ऐसा होता है कि कोई उपचार के लिए आया, उसे कहीं कट लगा है या इस तरह की चीज है और मिट्टी से लग गया, तो लोग सोचते हैं टिटेनस ना हो जाए। तो मतलब इस तरह की मिट्टी पूरी तरह से सुरक्षित
0: साफ स्वच्छ रहती है। ये अगर घाव पे भी लग जाएगी तो ये घाव को भरेगी, ना कि कोई इन्फेक्शन करेगी, क्योंकि इन्फेक्शन करने वाली गंदी मिट्टी होती है, ये बहुत साफ स्वच्छ मिट्टी है।
1: डॉक्टर साहब, जब भी नेचुरोपैथी की बात होती है, केरल का नाम उभर कर आता है, वहाँ के पंचकर्म चिकित्सा का बहुत ज़्यादा नाम लिया जाता है, देश विदेश में प्रचलित है ये, लोग बाहर से आते हैं, क्या है ये पंचकर्म?
0: ये पंचकर्म और प्राकृत चिकित्सा है सब एक ही
1: जी,
0: है ना। पंचकर्म में अब उन एनिमा वगैरह ये प्राकृतिक चिकित्सा में भी आ गया है और इसमें भी है, पंचकर्मा भी है। इसमें सिरोधारा, पोटनी मसाज, इसको थोड़ा सा डेवलप कर दिया गया है नेचुरोपैथी को, जिससे लोगों को ज़्यादा लाभ मिले और जल्दी से ठीक हों। तो पंचकर्मा एक अलग चीज़ है और उसमें तेल डिफरेंट डिफरेंट तरीके के यूज किए जाते हैं और वो भी दर्द के लिए बहुत अच्छा है। डिप्रेशन, टेंशन, इन सब चीज़ों का इलाज उसके पंचकर्मा के द्वारा होता है।
1: मतलब कई सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करके
0: आयुर्वेद भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, तब पंचकर्मा का काम होता है।
1: आहारचर्या का कितना महत्व होता है नेचुरोपैथी में?
0: आजकल हम देख रहे हैं खान पान हर व्यक्ति का बिगड़ा हुआ है, क्योंकि अगर आपको अच्छा खाना है तो खुद ही उसको उगाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा,
1: जिसको हम कहते हैं कि प्राकृतिक तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से उगाया
0: तो
1: हुआ,
0: तो वो आपको खुद सेल्फ मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको मिलेगा। आप बाहर जाओगे तो आपको रिफाइंड ऑयल मिलेगा, वो सबसे बड़ा जहर है। रिफाइन ऑयल खाने वालों को हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। तो अगर हमें नेचुरल ऑयल चाहिए तो सरसों का तेल है, तिल का तेल है ना, मूंगफली का तेल है, नारियल तेल है। रिफाइन ऑयल के अगर संपर्क में आएंगे तो हम बीमारी पड़ेंगे।
1: तो सामान्य लोग बोलते हैं कि जो बाजार में उपलब्ध है हम वही खाते हैं।
0: हाँ, उनकी मजबूरी है, उन्हें नहीं पता कि रिफाइन ऑयल का कितना नुकसान हो रहा है, और जो दुकान पर मिल रहा है शायद वो सोच रहे हैं अच्छा है, पर ये जानकारी ना होने की वजह से बहुत सारे लोग बीमार पड़े।
1: इसके अलावा आहारचर्या में क्या शामिल होता है?
0: आहारचर्या में मैम ये है कि हम नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें। देखिए, मैं एक साधारण सी चिकित्सा के बारे में बात कर रहा हूँ, जो चिकित्सा में हम हर गरीब व्यक्ति भी कर सकता है, हर गरीब व्यक्ति को लाभ मिल सकता है। तो इसके लिए हमें ज़रूरी नहीं है हम 200 रुपये किलो सेब खा के वो पौष्टिक तत्व प्राप्त करें, क्योंकि वो कोल्ड स्टोर से आ रहा है आज की डेट में। तो वो खुद भी मेहनत कर रहे हैं, उसे रख रहे हैं, तो उसे महंगा करके बेचेंगे। और अगर हम उसकी जगह पर ये जैसे कि टमाटर है, खीरा है, ये हम ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे, सस्ते फल ज़्यादा खाएंगे। सस्ते फल में मतलब उसने किसान ने मेहनत नहीं की है, ना किसी व्यक्ति ने लिया है उसको कोल्ड स्टोर के लिए, तो वो डायरेक्ट प्रकृति से हमें मिल गया है। और डायरेक्ट से प्रकृति से जो मिलेगा हमें, तो हमें ज़्यादा लाभ मिलेगा, और वो इनडायरेक्ट प्रकृति से आएगा तो हमें वो लाभ नहीं देगा।
1: मतलब सामान्य जो आपने फल बताए जो लोकल उगाए जाते हैं, वो टूट करके और हम तक आने में मुश्किल से 1 या 2 दिन का समय लगता है, और जो कोल्ड स्टोरेज में रखे जाते हैं वो 6 महीने पुराने हैं कि साल भर पुराने हैं, ये हमें पता नहीं होता, तो वो हमें फायदे की जगह नुकसान कर सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: इसके अलावा जो अनाज, दालें, सब्जियां ये हम खाते हैं, क्या इसकी भी कोई विशेष व्यवस्था होती है आपके डाइट चार्ट में?
0: अगर हम और पीछे जाएं, 60-70 साल पहले जाएं, तो गेहूं हमारे यहाँ ना के बराबर होता था। अपने यहाँ गेहूं की जगह पर मक्का, बाजरा, जौ, ज्वार, ये हुआ करते थे,
1: जिसे आज हम मोटा अनाज बोलते हैं।
0: मोटा अनाज कहते हैं। जो मोटा अनाज जो है वो काफ़ी फाइबर है उसमें, है ना। हम अगर पलंग पे लेटे हैं, हम हमारा कोई वर्कआउट नहीं है, तो अभी हमारा वो डाइजेस्ट हो जाएगा। और अगर हम गेहूं लेते हैं, गेहूं मीन्स उस पे प्रोटीन भी है ना, तो प्रोटीन को पचाने में हमारे शरीर को समय लगेगा, और उसके लिए वर्कआउट करना पड़ेगा। और अगर हम पुराना वाला अनाज खाते हैं जो मोटा अनाज, तो उसके लिए हमें इतना वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारा पेट साफ भी करेगा, फाइबर भी हमारी बॉडी के अंदर जाएगा और हमारा डाइजेशन अच्छा होगा।
1: मतलब यदि किसी की मेहनत वाली दिनचर्या नहीं है, आराम का काम है सारा,

0: गीत के बाद एक बार फिर स्वागत है कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ में। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रमोद सिसोदिया, आप नेचुरोपैथ हैं और हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक चिकित्सा क्या है, कैसे होती है ये, इस विषय में। डॉक्टर साहब, हम प्राकृतिक चिकित्सा में आहार के रोल पर बात कर रहे थे, कितना रोल होता है? यदि 100% आपको लाभ चाहिए तो उसमें कितने प्रतिशत रोल जो है वो आहार का होता है?
1: आहार का मैम 50% से ज़्यादा ही होता है अगर देखा जाए तो।
0: मतलब आधा आराम हो जाएगा यदि हम आहार बदल लें।
1: बिल्कुल मैम।
0: यदि कोई बीमारी है तब तो आप उसे विशेष प्रकार का आहार बताएंगे, लेकिन एक सामान्य मनुष्य जो है वो आगे का अपना जीवन स्वस्थ तरीके से बिताना चाहता है तो किस तरह का आहार उन्हें लेना चाहिए, एक मॉडरेट सा डाइट चार्ट हमारे श्रोताओं को बता दीजिए।
1: देखिए, पहले तो हमें ध्यान रखना चाहिए, एक आकाश तत्व होता है, थोड़ा सा खाने के ऊपर अपन बात कर रहे हैं तो आकाश तत्व की भी अपन बात करेंगे। आकाश तत्व हमें ये समझाता है कि खाली जगह, स्पेस। तो आकाश तत्व का मतलब है कि हमें फास्टिंग करनी चाहिए, हमारे शरीर में एक खाली स्थान देना चाहिए। फास्टिंग के बिना हम कोई भी डाइट फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि फास्टिंग ही हमें हमारे गंदगी को निकालती है। अगर हम कोई डाइट प्लान बनाते हैं तो इस प्रकार का बनाते हैं कि जिसमें थोड़ा सा फास्टिंग इंक्लूड हो,
0: कुछ समय भूखे रहा जाए,
1: जी व्रत रखा जाए। तो व्रत हम रखेंगे तो कहते हैं व्रत व्रती को शुद्ध करता है, व्रती के साथ साथ हमारे शरीर को भी शुद्ध करता है। वो हमारे आजकल घरों में ये है कि चाय तो पी ले, एक बिस्कुट तो खा ले, है ना, कुछ नहीं खाया है, तो वो फास्टिंग घर वाले होने नहीं देते हैं। और फास्टिंग की हमारे शरीर को बहुत ज़रूरत है, तो अगर हम फास्टिंग नहीं कर पा रहे हैं और तो फिर हमें प्राकृतिक चीज़ें खानी चाहिए, ऐसी चीज़ें जिसमें हम बिना आग जलाए
0: कच्चे फल और
1: कच्चे खाएं। तो कच्चे खाने का मतलब है कि हम व्रत कर रहे हैं। जिस दिन हमने अगर आग जलाई है उस दिन का हमारा व्रत टूट जाता है, क्योंकि उसको पका के खा रहे हैं। और व्रत का मतलब है हम जो प्रकृति ने दिया है, जैसा दिया है हम वैसा खाएं, जो भी सब्जियां हैं, सलाद है, फ्रूट्स हैं, हम वैसा खाएंगे, स्प्राउट करके खा सकते हैं, अंकुरित करके जो भी इस तरीके से खाएंगे, वो व्रत का हमें बहुत लाभ मिलेगा। वो हर बीमारी में वो काम करेगा, किसी का बीपी हाई हो या शुगर हो या बुखार आ रहा हो, कोई भी बीमारी हो, सर्दी जुकाम हो, इस प्रकार के व्रत करेंगे, बिना गैस पे पका हुआ खाएंगे तो हमें लाभ ही लाभ मिलेगा हर बीमारी में।
0: इसके साथ हम नमक या शक्कर खा सकते हैं या नहीं?
1: सफ़ेद शक्कर है वो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। सफ़ेद शक्कर में केमिकल्स मिला के गुड़ के बाद बनाई जाती है, और अगर हमें शक्कर खानी है तो गुड़ खाइए, और गुड़ भी सफ़ेद और पीले कलर का नहीं, डार्क
0: भूरे रंग का,
1: डार्क डार्क ब्राउन आता है ना, डार्क कलर में, तो डार्क कलर में काला गुड़ खाएंगे हम तो वो हमें बिना केमिकल वाला मिलेगा और वो सस्ता भी मिलता है हमें।
0: अगर हम रिफाइनिंग की प्रोसेस उसके साथ नहीं हुई होती है,
1: उसने खर्चा नहीं किया है, उस पर खर्चा नहीं किया है तो वो आपसे ले भी नहीं पा रहा है। उसके अलावा मिश्री भी खा सकते हैं, धागे वाली मिश्री है वो भी नेचुरल है ना, और एक बूरा आता है गुड़ का ही बना हुआ आता है वो भी ले सकते हैं अपन, है ना, और इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, पिंड खजूर है, अंजीर, मुनक्का, खुरमानी
0: जो मीठे होते हैं
1: वो अपन ले सकते हैं। सफ़ेद शक्कर ना यूज करें, उसमें किसी भी प्रकार का पौष्टिक तत्व नहीं होता है,
0: सिर्फ स्वाद होता है,
1: ग्लूकोज होता है, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत साइड इफेक्ट देता है।
0: और नमक,
1: नमक की अगर बात करें तो अगर हम देशी नमक, सादा नमक जो आजकल चल रहा है वो बिल्कुल ना खाएं।
0: आयोडीन वाला नमक जो पैकेट में आता है,
1: उसमें आयोडीन होता ही नहीं है, वो आयोडीन होता ही नहीं है। आयोडीन वाला नमक खाना है तो सेंधा नमक है, उसमें आयोडीन होता है, है ना, वो नमक खाएं। और वही नमक हमारे लिए है, ये नमक तो ठीक नहीं है। और नमक हमारी बॉडी के लिए कितना चाहिए पहले ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम नमक खा लें, कितना खा लें, क्यों खाएं। नमक की ज़रूरत है हमारे शरीर के लिए 5 ग्राम नमक की, तो 5 ग्राम नमक, 5 से 10 ग्राम नमक ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपन, तो वो हमारी प्राकृतिक चीज़ों में है।
0: दिन भर में एक चम्मच नमक लगभग

0: भी है,
1: तो वो हमारी प्राकृतिक चीजों में मिल जाता है, जो हम सब्जियां खाते हैं, कच्ची चीजें खाते हैं, उसमें सब में नमक है।
0: अच्छा।
1: तो वो मिल जाता है हमें, फिर भी हम ऊपर से लेते हैं, वो हमारे लिए ठीक नहीं है। कभी भी हमें नमक सब्जी में ऊपर से नहीं डालना है। पका हुआ नमक हम खा सकते हैं, गैस पे पक गया है उसमें डाल दिया, वो हमें ठीक फायदा करेगा। ऊपर से डाला हुआ नमक हमारे लिए जहर के बराबर होता है।
0: अच्छा।
1: उन व्यक्तियों को बीपी बीपी बढ़ने की समस्या रहती है और बॉडी में हीटिंग बढ़ना शुरू हो जाती है।
0: डॉक्टर साहब, हम बातें तो कर रहे हैं, हमारे श्रोताओं के लिए अब एक नया गाना आपको सुनवाना पड़ेगा। कौन सा गीत हमारे श्रोताओं को सुनवाना चाह रहे हैं आप?
1: पुराना गाने के हम शौकीन हैं तो
0: तो एक और पुराना गाना हमारे श्रोताओं के लिए आ रहा है,
1: चांद सी महबूबा हो मेरी।
0: कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ, मनोज कुमार हैं शायद इसमें, हिमालय की गोद में फिल्म का ये गीत है। चलिए हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं

0: एक बार फिर स्वागत है हमारे श्रोताओं का। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रमोद सिसोदिया से। हम आहारचर्या की बात कर रहे थे, किस तरह का भोजन हमें लेना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत सारी सावधानियां रखते हुए भी आज के ज़माने में लाइफस्टाइल डिजीज़ेस बहुत हो रही हैं। हमें डायबिटीज़ हो रहा है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, हार्ट की बीमारियां हो रही हैं, हार्मोनल डिजीज़ेस हो रही हैं, एस्थमा हो रहा है पर्यावरण में प्रदूषण की वजह से। क्या इन सभी बीमारियों का कोई इलाज नेचुरोपैथी में है?
1: ये प्राकृतिक चिकित्सा से आपने जिन बीमारियों के बारे में बात की है, उन बीमारियों को हमने

0: 101% ख़त्म कर चुके हैं। पर अब करते कैसे हैं वो थोड़ा सा हमें हर पेशेंट का डायग्नोस करना पड़ता है। जैसे कि आपने अस्थमा बोला, अस्थमा बहुत बाद में होता है, पहले सर्वाइकल हो गया, पेशेंट को गर्दन में पीछे दर्द हो रहा है, अगर साइनस हो गया, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। अस्थमा के कई सिम्टम्स होते हैं, 10 साल बाद हमें पता लगा कि हमें अस्थमा है। उस चीज़ को पहले डायग्नोस नहीं कर पाए कि अस्थमा है, सिम्टम्स क्या आ रहे हैं। अस्थमा वाला व्यक्ति शक्कर को बंद कर दे, चाय पी रहा है 2-2, 3-3 बार, दूध पी रहा है, दूध भी हमें अस्थमा वाले के लिए ठीक नहीं होता है। ये दोनों चीज़ें इतनी खतरनाक हैं अस्थमा वाले के लिए। और अगर हम दवाइयाँ खा रहे हैं रेगुलर और साथ में हम बीमारी का कारण नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तब तक हम ठीक नहीं हो सकते। अगर हम उसका प्रॉपरली इलाज करें, कफ को डिटॉक्स करने की कोशिश करें, सुखाने की ना कोशिश करें, तो अस्थमा ठीक हो सकता है। जब तक हम किसी बीमारी के कारण पे नहीं जाएंगे, तब तक किसी बीमारी को अपन ठीक नहीं कर सकते। हम लोग नाड़ी देख के पता करते हैं कि इसका क्या कारण है। आजकल टेस्टों में नहीं आता है, 50-60% डैमेज होने के बाद टेस्टों में आता है कि ये समस्या हो गई। नाड़ी के द्वारा तो लोगों को 20-30% पे पता चल जाता है कि अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है। उसका इलाज भी पहले हो जाता था, कोई कारण नहीं जब तक पता चलेगा, जब तक किसी बीमारी का इलाज हो नहीं सकता है। तो इसी प्रकार शुगर है, बीपी है, आप जो बीमारियां बता रहे हैं उसके हम कारण पे पहुंचते हैं और उसके कारण का इलाज करते हैं तो बीमारी ख़त्म होती है।
1: क्योंकि ये सारी बीमारियाँ लाइफस्टाइल डिजीजेस कही जाती हैं, हम अपनी लाइफस्टाइल बदल लेते हैं या कहिए परिस्थितिवश हम उस लाइफस्टाइल में चले जाते हैं और ये बीमारियाँ घर कर जाती हैं। हम सबको अमूमन पता होता है कि लाइफस्टाइल यदि हम बदलेंगे तो बदलाव हमारे स्वास्थ्य में देखने को आएगा, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि लोग आपसे इलाज लेके गए, थोड़ा उन्हें आराम हुआ, वापस उसी लाइफस्टाइल में गए और फिर से उस बीमारी को उन्होंने ग्रहण कर लिया। ऐसी स्थिति में आपकी पैथी क्या कहती है?
0: बिल्कुल मैम, देखिए क्या होता है, ऐसा आप बोल रहे हैं वो जो बहुत बीमार होते हैं व्यक्ति, उनको मैं सिर्फ कुछ एक्सरसाइज बताते हैं हम कि ये एक्सरसाइज करना है और डाइट प्लान उनको बताते हैं कि भाई ये खाना है आपको। वो बीमार व्यक्ति ठीक हो जाता है तो बहुत खुश होता है, वो मेरे हिसाब से ही चलता है फिर।
1: अच्छा, वो अपनी लाइफस्टाइल बदल लेता
0: क्योंकि उसको सच्चाई सामने आ जाती है कि मैं मेडिसिन के द्वारा किस तरीके से जी रहा था, वो आज बिना मेडिसिन के मैं किस तरीके से जी रहा हूँ।
1: डॉक्टर साहब, एक और गीत हमारे श्रोताओं को सुनवा दीजिए, उसके बाद हम आखिरी में कुछ और बातचीत आपसे करना चाहेंगे।
0: जी मैम, एक गीत मेरा बहुत पसंदीदा गीत रहा है, धरती पे रूप माँ बाप का, ये विधाता की पहचान है,
1: हम साथ साथ हैं। ये बहुत पारिवारिक फिल्म थी और ये गीत भी बहुत खूबसूरत है। चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: सेहत की बात तरानों के साथ कार्यक्रम में हमारे श्रोताओं का एक बार फिर स्वागत है। डॉक्टर प्रमोद सिसोदिया हमारे साथ हैं, आप नेचुरोपैथ हैं। प्राकृतिक चिकित्सा क्या है इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में हम बात कर रहे थे, डिप्रेशन, माइग्रेन, अनिद्रा, ये सारी बीमारियाँ भी इसी से रिलेट करती हैं, क्या इस तरह की बीमारियों का भी इलाज है?
1: इनका इलाज है मैम, देखिए अगर वो डिप्रेशन में जा रहा है, नींद नहीं आ रही है, उसके लिए कुछ टेंशन उससे जुड़ी होती हैं, बिना टेंशन के ऐसा होता नहीं है। इसके लिए अपन अगर चिकित्सा करें तो हमें सबसे पहले उसकी स्पाइन की सिकाई करनी पड़ती है, ठंडी गरम, ठंडी गरम, ठंडी गरम, तीन बार, ठंडी से शुरू की, ठंडी पे ख़त्म की। उसके ब्रेन पे एक प्रॉपरली ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है तो उससे बहुत आराम मिलता है उसको। और रात को उसको शुद्ध सरसों का तेल गर्म करके उसकी नाक में डाल देते हैं और उसे नींद आना शुरू होती है। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम है, छोटे छोटे इलाज हैं जो घर बैठे व्यक्ति कर सकता है, डिप्रेशन, अनिद्रा ठीक हो जाती है इस प्रकार। प्राकृतिक चिकित्सा हमारे एक शरीर की नहीं है, शरीर, आत्मा, मन तीनों की है, जिसमें अगर हम प्राकृतिक के द्वारा कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जिसमें योग भी कराते हैं, शरीर की प्राकृतिक चिकित्सा कराई तो शरीर से सारी गंदगी निकल गई। योग कराया, योग का मतलब है हम परमात्मा से जुड़े, ध्यान, धारणा, समाधि बहुत लंबा काम है, तो इन चीज़ों में हम प्रवेश किया, तो योग में प्रवेश कर लिए हम, तो हमारी आत्मा शुद्ध हुई, शरीर शुद्ध हुआ, मन पवित्र हुआ। तो प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा हम इन चीज़ों का भी इलाज कर सकते हैं और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, हम तीनों शुद्ध हो जाती हैं और चेहरे पे अलग ही निखार दिखना शुरू हो जाता है, जो अंदर है वो चेहरे पे

0: हम लोग बीमार व्यक्ति का चेहरा देख के बता देते हैं कि ये बीमार है, स्वस्थ व्यक्ति का भी चेहरा देख के बता देते हैं ये स्वस्थ है, वो सब चेहरे पे दिखता है।
1: बिल्कुल,
0: जो खाएगा वो चेहरे पे दिखेगा।
1: हाँ, जैसा होगा मन वैसा होगा तन। बाल झड़ने की समस्या लोगों को बहुत है, तो इसका भी इलाज नेचुरोपैथी में है?
0: बिल्कुल बिल्कुल है। देखिए, एक तो हम जो पहले साष्टांग प्रणाम करते थे, सिर को नीचे झुका के भगवान को प्रणाम करते थे, अपने बुजुर्गों को प्रणाम करते थे, तो हमारे पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन हमारे चेहरे पे सिर पे आ जाता था, जिससे हमारे चेहरे पे भी एक ग्लो बना रहता था और बाल भी हमारे सही रहते थे। थोड़ा समस्या ये हो गई है कि गलत केमिकल्स हम बालों पे लगाते हैं, साबुन शैम्पू। अगर हमारे बाल झड़ रहे हैं, बालों में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे पहले हम साबुन और शैम्पू बंद कर दें। तो साबुन शैम्पू की जगह कई एक ऐसी चीज़ें हैं वो हम हफ्ते में एक बार लगा लें, हम बिना साबुन के बाल धोएंगे, अच्छा लगेगा, कोई डैंड्रफ नहीं होगा और बाल साफ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। जैसे कि हम नहाने से पहले एलोवेरा लगा लें, नींबू मिला के लगा सकते हैं, नींबू भी लगा सकते हैं, एक आंवला पाउडर है उसको रात को भिजा दें, सुबह उससे स्प्रे कर लें एक बार, उसमें अपन कलौंजी भी डाल सकते हैं, भृंगराज भी डाल सकते हैं, ये तीनों का एक पाउडर बना के एक बोतल में भर लें, वो स्प्रे कर लें हम नहाते से 15 मिनट पहले, आपके बाल एकदम साफ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। साबुन शैम्पू की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी।
1: अपने जीवन में जितनी आसानियां ले आए हैं हम उतने ज्यादा बीमार होते गए हैं, क्योंकि साबुन और शैम्पू में समय नहीं लगना है।
0: हाँ।
1: ना ही मेहनत लगनी है।
0: जी जी।
1: तो यदि हम मेहनत की तरफ वापस लौटेंगे तभी प्रकृति की तरफ वापस लौट पाएंगे। मतलब स्वस्थ रहना है तो प्रकृति के आसपास रहना होगा, नेचुरोपैथी यही कहती है। डॉक्टर प्रमोद सिसोदिया जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: थैंक यू। Oh, oh, oh.

अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे थे प्राकृतिक चिकित्सा क्या है, इस विषय पर डॉक्टर प्रमोद सिसोदिया से तुलिका शर्मा की बातचीत। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

0: ये थे मोहम्मद रफ़ी, फिल्म थी चा चा चा। नीरज के गीत को संगीतबद्ध किया था इकबाल कुरैशी ने।
1: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे,
2: इतनी वफादारी आजकल कौन सोचता है, ये सब जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
3: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से HIV एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है, इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे HIV एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
2: हाँ भाई समझा।
3: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
4: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: कार्यक्रम का अगला गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं, आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, फिल्म का नाम मेरे महबूब, गीत शकील बदायूनी का, संगीत नौशाद का है।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। थोड़ी ही देर में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे।
1: २०२६ में प्रदेश के इंदौर और जबलपुर को स्वच्छ वायु सराहना पुरस्कार के लिए चुना गया है। वहीं भोपाल के वार्ड नंबर 60 को भी नवाचारों के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। तीनों को यह सम्मान 7 सितंबर को नई दिल्ली में स्वच्छ वायु दिवस के कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव देंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आगामी 23 से 24 अक्टूबर को इंदौर में होने वाली एमपी सेमीकंडक्टर समिट 2026 के कैंपेन पोस्टर का विमोचन किया। बैडमिंटन में आज शेंजन में चाइना मास्टर्स के सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला मलेशियाई जोड़ी अजरीन अयूब और टैनवी क्योंग से होगा। और महिला टी20 विश्व कप के ग्रुप ए के आखिरी मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में ये मैच रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुका है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय 11 बजे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं फोन इन कार्यक्रम बात आपकी, गीत हमारे।

0: नमस्कार, इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं सुनीता सिंह। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। जी हां श्रोताओं, गुरु को कुम्हार की उपमा दी गई है और शिष्य को घड़े की। जैसे कुम्हार कच्चे घड़े को सुंदर आकार देने के लिए बाहर से थपथपाकर चोट करता है, लेकिन अंदर से अपने हाथ का सहारा भी रखता है ताकि घड़ा टूटे नहीं, उसी तरह गुरु भी शिष्य की बुराइयों और कमियों को दूर करने के लिए उसे कड़े अनुशासन में रखता है, नई नई और अच्छी बातें सिखाता है। इस तरह गुरु शिष्य के चरित्र और व्यक्तित्व को निखारने और संवारने का काम करता है। श्रोताओं, गुरु हमें अक्षर ज्ञान तो देता ही है, इसके साथ ही वो हमारी आंखों में छिपे सपने को भी पढ़ लेता है। कक्षा की चार दीवारी के भीतर किताबें खुलती हैं, लेकिन गुरु हमारे भीतर जीवन की किताब भी खोल जाता है। वो हमें सिर्फ पाठ नहीं पढ़ाता, गिरकर संभलना, हारकर फिर उठना, सही के साथ खड़े रहना और सपनों पर विश्वास करना भी सिखाता है। कभी उसकी डांट में छिपा होता है हमारा भविष्य, कभी उसकी एक छोटी सी तारीफ हमें बहुत दूर तक चलने का साहस दे देती है। वर्षों बीत जाते हैं, स्कूल छूट जाता है, किताबें पुरानी हो जाती हैं, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन किसी शिक्षक की कही हुई एक बात उम्र भर हमारे भीतर रोशनी की तरह बनी रहती है। 5 सितंबर की तारीख को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए इसी संदर्भ से जुड़ते हुए याद करें उन शिक्षकों को जिन्होंने हमें किताबों से आगे जीवन का पाठ पढ़ाया। याद करें उस एक आवाज को, उस एक सीख को, उस एक विश्वास को जिसने हमारे आज को बनाया। बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में आज की बातचीत उन्हीं गुरुओं के नाम जिन्होंने हमें सिर्फ पढ़ाया नहीं, हमें जीवन समझना सिखाया। बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाम बताएं।
1: तुलसीराम व्यास, मालेगांव।

0: बिना दिन नहीं, गुरु बिना ज्ञान नहीं। तो मेरे गुरु है एक महाराष्ट्र में, वो आकाशवाणी डेली सुनते हैं भोपाल का।
1: अच्छा, क्या नाम है उनका?
0: मानधने, सरने में मानधने।
1: अच्छा अच्छा।
0: और वो आकाशवाणी सुनते हैं, मेरे गुरु को चरण स्पर्श, उन्होंने मुझे पढ़ाया था।
1: तो उनकी
0: मुझे पढ़ाया, वो मेरे गुरु है, आज भी है, वो है 95 में चल रहे हैं।
1: ओहो, आप तो बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके गुरु का आशीर्वाद इस उम्र में भी।
0: हाँ, और वो मेरे गुरु को मैं चरण स्पर्श करता हूँ आज यहाँ से।
1: कौन सी उनकी बात आपको जीवन में हमेशा याद रहती है?
0: हाँ, याद क्या, वो आकाशवाणी भोपाल सुनते हैं तो मेरे गुरु ने मुझे बहुत शिक्षा दी है।
1: तो कोई एक बात आप बताएं जो आपको लगता है कि जीवन में बहुत काम आई आपके?
0: जीवन में शिक्षा ही काम आती है, बाकी पैसा काम नहीं आता
1: जी।
0: शिक्षा ये ऐसी चीज है कि इसको कोई चोर चुरा नहीं सकता। शिक्षा को कोई चोर नहीं सुराता, कोई डाकू नहीं ले जाता।
1: तो उन्होंने शिक्षा का ऐसा धन आपको दिया?
0: हाँ, ये धन मुझे दिया है, मुझे बाकी जो धन नहीं, लेकिन शिक्षा का धन बहुत दिया है। आज मैं भी शिक्षा बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाता हूँ।
1: अच्छा, आप अध्यापक हैं?
0: हाँ बिल्कुल।
1: वाह, क्या बात है, एक शिक्षक ने दूसरे शिक्षक को तैयार किया।
0: हाँ, लेकिन मैं तो मेरे गुरु को चरण स्पर्श कर रहा हूँ।
1: कोई एक बात मैं चाह रही थी कि आप जरूर बताएं, जो आपको बार बार याद आती है, पढ़ाई तो उन्होंने करवाई ही, ज्ञान दिया आपको, शिक्षा दी, लेकिन कोई जीवन से जुड़ी कोई बात, जीवन का कोई ऐसा पाठ जो आपको हमेशा याद आता हो, उन्होंने बताई हो?
0: जीवन के पाठ तो मैडम, गुरु के तो हर पल पर याद आते हैं, गुरु के पाठ तो। गुरु के जो पाठ होते हैं वो बालक कभी भूलेगा नहीं और न भूलना चाहिए उसको।
1: बिल्कुल, और मैं समझती हूँ कि अगर आप शिक्षक बने अपने जीवन में, उनसे आपने ज्ञान प्राप्त किया और आप शिक्षक बने, तो जाहिर सी बात है कि एक अनुशासन है ना, उन्होंने सिखाया होगा कि अनुशासन के साथ कैसे रहा जाता है, कैसे पढ़ाई के प्रति गंभीर हुआ जाता है, कैसे अपने कर्तव्यों को हमें पूरी शिद्दत के साथ पूरा करना चाहिए, ये सारी बातें उन्होंने सिखाई होंगी आपको, तभी तो आपका जीवन इस तरह से खिला।
0: बिल्कुल, और उनका एक ही कहना था
1: जी,
0: क्लास में अगर आल पेन भी गिर जाए तो उसकी आवाज आना
1: चाहिए जी, यानी अनुशासन के साथ रहें, शांति बनाकर बच्चे बैठें, ये वो कहा करते थे।
0: शांति बनाते, बहुत शांति।
1: और मुझे लगता है कि अपनी कक्षा में आप भी ये बात कहते होंगे कि इतनी शांति बनाकर रखें कि एक आलपिन भी गिरे तो आवाज आनी चाहिए, कहते होंगे आप जरूर। है ना?
0: आप शुभ नाम?
1: सुनीता सिंह।
0: आप, मेरी बात हो चुकी है?
1: हाँ जी जी जी जी,
0: बिल्कुल। मैं तारीख बता दूं आपको?
1: जी,
0: तारीख बताता हूँ मैं, कब बात थी सुनीता सिंह, एक तारीख मेरे पास सब लिखा हुआ है। हाँ, ये देखो, तारीख आपकी है 17/8/26।
1: क्या बात है। अब देखिए, ये जो व्यवस्थित रहने का गुण है, मुझे लगता है ये भी आपको आपके गुरु से ही मिला होगा, है ना, कि तारीखें याद रखना, चीजों को व्यवस्थित रखना।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो बहुत अच्छा लगा तुलसीराम जी आपसे बात करके, आपने बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में, अपने गुरु को, अपने शिक्षक को याद किया, बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाम बताएं।
1: जी लक्ष्मण सिंह बात कर रहे हैं, ग्राम बोतराई तहसील पथरिया जिला चमोली।
0: लक्ष्मण जी क्या कहेंगे आज के विषय पर, किसे याद कर रहे हैं, कौन से गुरु हैं जिनको आप याद कर रहे हैं और उनकी कौन सी बात आपके साथ रह गई जीवन भर?
1: हमारे गुरु जी थे मैम, वो पढ़ाई में फर्स्ट कहते हैं, वो जिसके भी उनकी पढ़ाई हुई रहती है, मतलब सब नौकरी कर रहे हैं आजकल में, और बहुत अच्छा उनका स्वभाव था।
0: उनकी कोई सीख जो आपके साथ रह गई हो?
1: और क्या है मैम कि जब भी मतलब वो हम लोगों को समझाते थे कि भाई आप लोग गलत काम मत करना, किसी की निंदा मत करना, हमें बहुत सी बातें सिखा देती थी। वो आज बातें हमें याद आती है मैम।
0: जी जी, तो मतलब एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश की उन्होंने।
1: और आजकल वो मैम रिटायर है, लेकिन हम लोग मैम मिलने को जाते हैं उनसे।
0: मिलने जाते हैं आप, बड़ी अच्छी बात है कि आप बड़े होने के बाद भी उनके संपर्क में हैं। कैसी बातें होती हैं जब अब आप जाते हैं बड़े होने के बाद?
1: बस पुरानी बातें याद होती है मैम, और कहन लगते हैं कि बेटा हो देखो, बस कहन लगती है आप लोग उसके भैया पढ़ो पढ़ो, लेकिन हम तो नहीं पढ़ा पाए मैम उसके, लेकिन भाई हाँ बच्चों के लिए अपन प्रयास कर रहे हैं।
0: लक्ष्मण सिंह जी, आप अपने गुरु को आज याद कर रहे हैं और उनसे लगातार संपर्क में भी हैं, ये बात बहुत अच्छी है। और उन्होंने जो कहा कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, शिक्षा एक अनमोल धन है, अपने बच्चों को ज़रूर दीजिए। बहुत आभार आपने फ़ोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: अरे मैडम नमस्कार, सुमिता जी नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बता दीजिए।
1: जी जी जी, अम्बेडकर चौक टेगोर वार्ड खोरई से आपका दोस्त राम सखी परमानंद।
0: राम सखी परमानंद जी, कितने दिन के बाद फोन किया है आपने?
1: अरे मैडम 15-20 दिन हो गए।
0: अच्छा, तो आज बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में, अपने किस गुरु को आप याद कर रहे हैं?
1: जी पहला गुरु तो अच्छा माता रहती है, दूसरा गुरु अपने गुरु स्कूल वाले रहते हैं
0: जी,
1: और आपकी तीसरा गुरु तो आपको काम करना सिखाते, हुनर सिखाते, वो तीसरा गुरु
0: बिल्कुल,
1: है
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तीसरा गुरु हमारे थे, वो अभी एक साल हो गए 8-9 महीने पहले, हम काम करते बिल्डिंग वर्क का।
0: अच्छा।
1: उनके संगे पूरा काम सीखा हमने, उन्हें हमारे जीवन में रोशनी ला दी।
0: क्या बात है,
1: आपकी जीवन यापन में बहुत सहायता, और आज उनकी बदौलत ही हम काम करते हैं।
0: आपने बहुत अच्छी बात की है कि पहली गुरु आपकी आपकी माता हैं, और आपने कहा कि जो स्कूल में जिन्होंने शिक्षा का ज्ञान दिया वो आपके दूसरे गुरु, और तीसरे गुरु वो जिन्होंने आपको हुनर सिखाया और आपका जीवन समृद्ध है। कितनी अच्छी बात है, ये आभार हमेशा होना चाहिए आपके मन में। कहा जाता है ना कि आप किसी को कोई वस्तु दे दें, कुछ पैसे दे दें, वो उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति को एक हुनर दे दें तो फिर वो जीवन भर उसके काम आता है। तो आपके गुरु ने आपको हुनर दिया और उनको आप याद कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा हमें।
1: उन्होंने हम लोगों का जीवन संभाल दिया पूरा, घर परिवार तो संभलता है जब जीवन जो गुरु अच्छी शिक्षा दे के अपन काम सिखा देते हैं, पूरा जीवन संभल जाता है बच्चों से लेके सबका।
0: जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने फोन किया आज, बहुत आभार। हम भी आपके गुरु को शत शत नमन करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपने फोन किया।

0: हेलो
1: जी, नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी दीदी, मैं ग्राम पोस्ट गौना कुसमाड़ थाना सोजना तहसील महरौनी जिला ललितपुर झांसी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से आपका अपना रेडियो में से दीपक कुमार नामदेव बात कर रहे हैं। दीदी,
0: दीपक कुमार नामदेव जी कैसे हैं?
1: जी दीदी बढ़िया है, बारिश का आनंद ले रहे हैं और साथ में अपनी मशीन सिलाई का काम भी कर रहे हैं। दीदी
0: अच्छा, हम चाहते हैं कि आज अपने किसी एक शिक्षक को आप याद करें, अपने गुरु को याद करें जिनकी बात आपके जीवन में रह गई एक रोशनी की तरह। ऐसे गुरु को याद कीजिए जिन्होंने किताबों से आगे आकर आपको जीवन का पाठ पढ़ाया हो।
1: जी, सबसे बड़ा गुरु तो किताबों से पहले हमारी माँ होती है, प्रथम पाठशाला माँ की होती है, इसके बाद पिता होता है, इसके बाद स्कूल जाने के लिए कॉलेज जाने के लिए शिक्षक का ही महत्व गुरु माना गया है। लेकिन पहला संस्कार सबसे पहले हमारी माँ ही सिखाती है हम लोगों को, हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो प्रथम गुरु मैं माँ को ही मानता हूँ।
0: तो आज जी तो आज आप अपनी माता जी को याद कर रहे हैं, उनकी सिखाई कोई ऐसी बात जो आपको हमेशा याद रहती है हमसे साझा कीजिए।
1: जी, माता और पिता की सिखाई यही है बात के, जो उनकी सोच यही रहती है कि हमारा बच्चा चल के आगे सब कुछ बन सके, आगे गलत कार्य ना करे। तो माता पिता का हमारे लिए यही है कि आगे बढ़कर उन्नति करें, और उन्होंने हमारे लिए जो पढ़ाई भी अभी जारी है, BA MA चल रही है, तो आगे भी वो भी है और साथ में सिलाई का काम भी है। उन्होंने हम लोगों को बड़ा कर दिया, शादी कर दी, बच्चे भी हो गए।
0: तो कोई बात एक ऐसी बताएं आप, कोई ऐसा जीवन मूल्य जो उन्होंने दिया हो आपको, जो आपको लगता है कि अनमोल है, आपके जीवन को एक नई दिशा देता है वो।
1: ये हमारे लिए उन्होंने सब कुछ दिया है, जीवन दान दिया है, इसलिए सब कुछ दिया है माता पिता ने।
0: तो चलिए दीपक जी, आपने अपनी माता जी को याद किया आज, हमें बहुत अच्छा लगा। और सच है कि माँ पहली गुरु होती हैं, वो हमको संस्कार देती हैं, सीख देती हैं, एक तरह से गढ़ती हैं अपने बच्चे को माता। तो हम आपकी माता जी को नमन करते हैं और आपको कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने अगले श्रोता का। नमस्कार, नाम बताएं।
1: जी मैम नमस्कार।
0: कौन बोल रहे हैं?
1: जय हीरामन बाबा रेडियो श्रोता संघ तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर एमपी से विनोद नारायण कुशवा बोल रहा हूँ मैम।
0: विनोद जी क्या कहेंगे आज के विषय पर?
1: आज के विषय पर हम कहना चाहेंगे मैम, जैसे कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि उठो जागो लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको, तो हमें अपने जीवन में यही बात अपनानी चाहिए। जो भी कार्य करो उसको पूर्ण करना चाहिए। और जैसे कि आज शिक्षा के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जैसे हम बचपन में स्कूल में पढ़ते थे
0: जी,
1: तो टीचर लोगों को भी खूब परेशान कर दिया करते थे, फिर वो हमको डांटा करते थे, एक दो स्टिक भी मार दिया करते थे, तो वो बचपन की याद बहुत आती है हमें।
0: जी जी जी, तो आपने बहुत अच्छी,
1: वो टीचरों को तंग करना, पेड़ पे चढ़ जाना, फिर वो उनका स्टिक देना, फिर नीचे उतराना, फिर भाग जाना, फिर उनको पकड़ना, बस ऐसा ही चलता रहा।
0: जी जी जी, तो जो आपके शिक्षक स्कूल में थे उनसे आपकी मुलाकात अब होती है?
1: जी जी मैम होती है अभी, तो क्या वो हमारे पास में ही रहते हैं। पहले हम गाँव पे पढ़ते थे, मेरा गाँव हमारे ईसागढ़ से 2-3 किलोमीटर दूर है कोरवास
0: जी,
1: तो हम अब ईसागढ़ रहते हैं, तो गांव पे पढ़ते थे ना, तो वो टीचर अब हमको यहीं मिल जाते हैं।
0: तो उनकी सिखाई कोई बात आपको याद आती है? आपकी बातों से हमें मालूम हुआ कि स्वामी विवेकानंद को आप गुरु की तरह देखते हैं और उनके जो विचार हैं उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो आपने स्कूल की बात की है, जिन शिक्षकों की बात की है, उनके द्वारा बताई गई भी कोई बात आपको याद है?
1: जी मैम, वो हमसे एक ही बात बोलते थे, बेटा देखो अपने जीवन में अच्छे काम करना, ईमानदारी से रहना, किसी को परेशान नहीं करना, और हो सके जितना अपने ईमानदारी से चलना किसी में आपका भला हो सकता है।
0: क्या बात है, ईमानदारी का पाठ पढ़ाया आपके गुरु ने आपको, और देखिए कितना बड़ा काम किया कि अगर देश का हर व्यक्ति ईमानदार हो, तो उस देश की प्रगति को भला कौन रोक सकता है। हर इंसान अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से करता है, तो ये एक तरह की राष्ट्र सेवा है, देश की सेवा है ना, तभी हमारा देश आगे बढ़ता है। बहुत अच्छा लगा विनोद जी आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपने फोन किया।

0: अपने समर्पण से विद्यार्थियों के जीवन को समृद्ध किया है और स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है। इस वर्ष 48 शिक्षकों का चयन किया गया है, इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक हैं। ये शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका चयन राज्य, जिला, राष्ट्रीय स्तर की 3 स्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। श्रोताओं, विज्ञान भवन का यह ऐतिहासिक सभागार उत्सुकता से माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की प्रतीक्षा कर रहा है और मैं देख रहा हूँ कि शिक्षा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी इस वक्त सभागार में पधार चुके हैं। उनके साथ शिक्षा राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी जी भी हैं। माननीय राष्ट्रपति के आगमन की सुगबुगाहट यहाँ पर अब बढ़ गई है, लोगों में उत्साह बढ़ गया है, कौतूहल बढ़ गया है और इस वक्त सबकी निगाहें हैं उस द्वार की तरफ जहाँ से माननीय राष्ट्रपति कुछ ही क्षणों में प्रवेश करेंगी और ये 2026 के राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार प्रसाद करेंगी।
1: एंड ऑन द डेस वी कैन सी दैट द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन श्री प्रहलाद जोशी, द मिनिस्टर फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इंडिपेंडेंट चार्ज एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन श्री जयंत चौधरी, डॉक्टर सुकांत मजुमदार, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन एंड द ऑनरेबल President of India Srimati Draupadi Murmu has arrived at the plenary hall of the Vigyan Bhavan and she has been loudly cheered by all the awardees and the delegates who are present at the plenary hall.
0: ये अत्यंत गर्मी में दृश्य है। भारत के राष्ट्रपति इस वक्त

0: राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के साथ ही इस समारोह का विधिवत शुभारंभ हो चुका है। माननीय राष्ट्रपति अपना स्थान ग्रहण करते हुए,
1: महोदय आपकी अनुमति हो तो समारोह का शुभारंभ किया जाए।
0: और अब माननीय राष्ट्रपति से विधिवत अनुमति लेकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है।
2: गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
0: देश के अलग अलग हिस्सों से आए शिक्षक राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित हैं और पूरे सभागार में सम्मान और

0: और मोबाइल आईसीटी उपकरणों से स्मार्ट क्लासरूम तैयार किया। न्योता भोजन और घर घर पुस्तक वाचन जैसे प्रयासों से सुघर पढ़ैया प्लेटफॉर्म ग्रेड प्राप्त किया। ग्रामीण शिक्षा को नवाचार से सशक्त बनाने के लिए सुश्री सुनीता यादव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: हिमाचल प्रदेश के भालेट स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य सुश्री मंजरी वी महाजन ने शिक्षण को बढ़ावा देते हुए कचरा प्रबंधन, कंपोस्टिंग, जल संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में प्रभावी पहल की। शिक्षा में नवाचार और नेतृत्व के उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सुश्री मंजरी वी महाजन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के माया बंदर स्थित पीएम श्री जीएमएसएसएस में श्री जे प्रकाश राव ने बिल्डिंग एज लर्निंग एड अप्रोच के जरिए स्कूल को ही इंटरैक्टिव रिसोर्सेज में बदला। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, डिजिटल रिसोर्सेज, 21st सेंचुरी स्किल्स को मजबूत किया, जिसके लिए श्री जे प्रकाश राव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: सुश्री कुंदा जयवंत बच्छाव ने नगर निगम विद्यालय को ARVR रोबोटिक्स असिस्टिव टेक्नोलॉजी एवं QR आधारित संसाधनों से युक्त आधुनिक शिक्षण केंद्र में परिवर्तित किया। उनके एजुकेशनल पेरेंटिंग अभियान से 150 से अधिक वंचित बालिकाओं को आर्थिक सहयोग मिला। समावेशी नवाचार, बालिका सशक्तिकरण, उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सुश्री कुंदा जयवंत बच्छाव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: बिहार के विदायदिश स्थित उर्दू प्राइमरी स्कूल में सुश्री खुशबू कुमारी ने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, कम लागत वाली शिक्षण सामग्री और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा को सरल, सहज और प्रभावी बनाया। सुश्री खुशबू कुमारी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित PHEL के शासकीय महात्मा गांधी सांदीपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में डॉक्टर अर्चना शुक्ला ने 15 वर्षों में विज्ञान को प्रयोग, पर्यावरण और खोज से जोड़ा। उन्होंने 1000 से अधिक गौरैया घर, 102 प्रजातियों के पेड़ों का डिजिटल मानचित्रण और प्लांट इमोशन जैसे नवाचार किए, जिसके लिए डॉक्टर अर्चना शुक्ला को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज विजयनगर में डॉक्टर रेणु त्रिपाठी ने 60 गांव के ड्रॉप आउट और स्कूल से बाहर बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ते हुए उन्होंने स्टेम, अटल टिंकरिंग लैब और कम लागत वाली शिक्षण सामग्री के माध्यम से समस्या समाधान को बढ़ावा दिया, जिसके लिए डॉक्टर रेणु त्रिपाठी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। सुश्री भवानी बोमपेल्ली ने नवाचारी शिक्षण के माध्यम से प्री प्राइमरी शिक्षा का विस्तार कर खेल आधारित एवं डिजिटल अधिगम वातावरण विकसित किया तथा कंक्रीट पिक्टोरियल एब्स्ट्रैक्ट पद्धति और कम लागत वाली शिक्षण सामग्री से गणित एवं भाषा सीखने को सरल बनाया। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सुश्री भवानी बोमपेल्ली को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: सुश्री सुमन गोयल ने दिल्ली के पोर्ट कला स्थित राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल टूल्स और स्वयं निर्मित कम लागत वाली टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के माध्यम से सीखने को रोचक और अनुभवात्मक बनाया। बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ा, विद्यालय में स्थिरता और शैक्षणिक प्रगति बढ़ी, जिसके लिए सुश्री सुमन गोयल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। ओडिशा के अली पिंगल स्थित राजकीय उच्च विद्यालय में श्री पदराज उमाकांत नायक के मार्गदर्शन में 50 से अधिक प्रोटोटाइप विकसित हुए, जिनमें कम लागत वाली ऑटोमेटिक प्लेट वॉशिंग मशीन भी शामिल है, जिसके लिए एक विद्यार्थी को भारत सरकार का पेटेंट मिला। वैज्ञानिक सोच, नवाचार और सामुदायिक भागीदारी से ग्रामीण शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए श्री पदराज उमाकांत नायक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: श्री एस गणेशन भौतिकी शिक्षक ने साइंस थिएटर, अनुभवात्मक स्टेम एवं AI सक्षम शिक्षण के माध्यम

0: से विज्ञान शिक्षा में उल्लेखनीय नवाचार किया। उनके साइंस थिएटर इंटीग्रेशन मॉडल ने नाटक, कहानी एवं प्रदर्शन के माध्यम से जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को सरल और रोचक बनाया, जिसके लिए श्री एस गणेशन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। गोवा के एक्सएम स्थित गुजराती समाज स्पेशल स्कूल में श्री महादेव हनुमंत शिंदे ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षण को नई दिशा दी। उन्होंने 14 गतिविधि आधारित स्रोत पुस्तिकाएं तथा टैबलेट आधारित डिजिटल संसाधन विकसित किए। उनके प्रशिक्षित खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अम्भारत का गौरव बढ़ाया है। श्री महादेव हनुमंत शिंदे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: मणिपुर के कुंगबा माखा स्थित लाइको अपर प्राइमरी स्कूल में श्री वांगलिम्बम गोविंद सिंह ने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कहानी और फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के माध्यम से बच्चों की सीखने की क्षमता और भागीदारी को मजबूत किया, जिसके लिए श्री वांगलिम्बम गोविंद सिंह को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: महाराष्ट्र के सतारा स्थित सैनिक स्कूल में श्री शिव प्रसाद अरविंद तिंगारे ने हैंड्स ऑन साइंस एजुकेशन, लो कॉस्ट लर्निंग टूल और इंटरैक्टिव डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा दिया है। उनके विद्यार्थियों ने CSIR इनोवेशन अवार्ड और DSC साकुरा साइंस जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवसर हासिल किए। श्री शिव प्रसाद अरविंद तिंगारे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश के ईदगाह हिल स्थित सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सुश्री संगीता यादव ने गणितोत्सव, क्वेस्ट फॉर मैथमेटिक्स, मैथ ई माइंड एंड मैथमेटिक्स जैसी पहलों के जरिए गणित को बनाया रचनात्मक और विद्यार्थियों में समस्या समाधान की क्षमता विकसित की, जिसके लिए सुश्री संगीता यादव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। ओडिशा के मयूरभंज जिले के करंजिया स्थित EMRS में मोहम्मद जफर आलम ने आदिवासी बच्चों की शिक्षा में आधुनिक तकनीक, खेल और अनुभवात्मक शिक्षण के साथ आदिवासी संस्कृति और विरासत को भी शिक्षा का हिस्सा बनाए रखा, जिसके लिए मोहम्मद जफर आलम को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
2: और अब हमारी विनती है माननीय राष्ट्रपति महोदय आपसे कि कृपया ये पुरस्कार अपने कर कमलों द्वारा प्रदान करें।
3: श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विल कन्फर द नेशनल टीचर्स अवार्ड्स 2026 ऑन 24 ऑफ द टीचर्स whom a telefilm was played at Vigyan Bhavan, and we can see that the Honorable Rashtrapati Ji, the Union Minister for Education, Sri Prahlad Joshi, and the Union Ministers of State for Education, Sri Jayant Chaudhary, and Dr. Sukanto Majumdar, and other dignitaries are on the dais, and now the first teacher to receive the award is Sri दिव्यंदु सेन फ्रॉम राजस्थान महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल पचपहार।
4: और अब वो क्षण आ गया है जिसका सभी को इंतजार था। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 का पुरस्कार वितरण शुरू हो चुका है।
2: दिनेश कुमार पंजाब
4: विजेताओं के नाम पुकारे जा रहे हैं।
3: नाउ श्री दिनेश कुमार फ्रॉम पंजाब विल रिसीव द नेशनल टीचर्स अवार्ड 2026 फ्रॉम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
2: सुषमा तमांग सिक्किम।
4: मंच पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है। एक एक करके सब शिक्षक
3: सुषमा तमांग
2: मुनमुन भट्टाचार्य जी झारखंड।
3: मुनमुन भट्टाचार्य टीचर फ्रॉम झारखंड, रियली प्राउड मोमेंट फॉर दीज नेशन बिल्डर्स ऑफ इंडिया टू रिसीव द नेशनल टीचर अवार्ड 2026।
2: वेस्ट बंगाल।
4: और अब पश्चिम बंगाल के शांतनु जी को ये शिक्षक पुरस्कार दिया जा रहा है। 48 शिक्षकों को आज सम्मानित किया जा रहा है।
2: रवि जायसवाल चंडीगढ़।
4: और अब चंडीगढ़ के रवि जायसवाल माननीय राष्ट्रपति से सम्मान ग्रहण करते हुए।
2: लनुन मोई मिजोरम।
3: फ्रॉम मिजोरम मिस लनुन मावी, एंड व्हाट अ प्राउड मोमेंट इट इज इंडीड फॉर दीज टीचर्स टू रिसीव द नेशनल टीचर।

0: Sunita Yadav, Chhattisgarh.
1: Rashtrapati ji. And Sunita Yadav ji from Chhattisgarh will be receiving the National Teachers Award 2026 from the Honorable Rashtrapati ji.
0: Manjari V. Mahajan, Himachal Pradesh.
2: And now Himachal Pradesh ki Manjari ji Mahajan, Madhuri Rashtrapati ke samaksh, apna puraskar lene ke liye, bade utsah aur garv ke saath aage badhti hui. Madhuri Rashtrapati.
0: J. Prakash Rao, Andaman and Nicobar Islands.
2: और अब अंडमान निकोबार आइलैंड से आए शिक्षक जो कि दिव्यांग है वो माननीय राष्ट्रपति की आए हल्के हल्के इस छड़ी के धारे मरते हुए माननीय राष्ट्रपति उन्हें ये पुरस्कार प्रदान कर रही हैं।
1: And he is receiving the award. What a proud moment it is indeed for J. Prakash Rao, the teacher from Andaman and Nicobar Islands. And this is indeed a very proud moment for all the teachers who are here at the
0: Kunda Jaivan Bachao, Maharashtra.
1: And Ms. Kunda Jaivan Bachao of Maharashtra is now receiving the National Teachers Award 2026 from the Honorable President of India.
0: Khushbu Kumari, Bihar.
2: And now Bihar ki Khushbu Kumari, Maniye Rashtrapati se apna ye samman grahan karte hue.
0: Archana Shukla, Madhya Pradesh.
1: And from Madhya Pradesh, Ms. Archana Shukla, and she received this award from the Honorable Rashtrapati ji for her work especially on innovation.
0: Renu Tripathi, Uttar Pradesh.
1: Ms. Renu Tripathi from Uttar Pradesh is Ghaziabad, and she is working for especially school dropouts, STEM and automation among
0: her students. Bhavani Bompelli, Telangana.
1: From Telangana, Ms. Bhavani Bompelli, and she focuses on innovation for pre-primary students. What a proud moment it is indeed.
0: Suman Goel, Delhi.
1: To receive the award from the Honorable Rashtrapati ji, and now Ms. Suman Goel from Delhi, and she specializes on ICT and digital tools in education.
0: Umakant Nayak, Orissa.
2: Rashtrapati ke haathon samman prapt karte hue शिक्षकों के चेहरे पर एक प्रसन्नता स्पष्ट दिखाई दे रही है ये केवल एक पदक या प्रमाण नहीं ये उनके पूरे जीवन की मेहनत राष्ट्रीय स्तर पर पहचान
1: फ्रॉम पुदुचेरी मिस्टर गणेशन एस इज रिसीविंग द नेशनल टीचर्स अवार्ड 2026 फ्रॉम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
0: महादेव हनुमंत शिंदे गोवा
2: गोवा से महादेव हनुमंत शिंदे माननीय राष्ट्रपति से अपना सम्मान ग्रहण करते हुए
0: Wanglembam Govind Singh, Manipur.
1: And from the land of jewels, Manipur is Wanglembam Govind Singh.
0: Shri Prasad Arvind Singare, Sainik School.
1: From Sainik School, Shri Prasad Arvind Singare receives the National Teachers Award from the Honorable
0: Sangeeta
1: President.
0: Yadav, Central Board of Secondary Education.
2: CBSE ki Sangeeta Yadav, Maniye Rashtrapati ke aage. उपस्थित होकर अपना सम्मान ग्रहण कर रही
0: हैं मोहम्मद जफर आलम एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल
2: और अब श्री जफर आलम अपना पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं ये राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार माननीय
0: कोटि-कोटि धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदय
1: And now the Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu, is being escorted to the Yes, along with the Minister for Education, Shri Prahlad Joshi, and the Ministers of State for Education, Shri Jayan Chaudhary and Dr. Shukanta Majumdar, and the Secretary, Department of School Education and Literacy, the Secretary, Department of Higher Education, and the Secretary, Department of Skill Development and Entrepreneurship.
2: 24 शिक्षकों को माननीय राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया गया और अब माननीय राष्ट्रपति गणमान्य व्यक्तियों के साथ अपना स्थान ग्रहण करते हुए महाराष्ट्र के कैच थारो रोड स्थित
1: सानिधि
2: निवासी माध्यमिक विद्यालय
1: ऑन दी अवार्ड
2: नरसिंह राव गित्ते को 29 वर्षों से गन्ना श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का काम किया है बाल रक्षक और शिक्षण अपल्यादारी जैसे अभियानों से उन्होंने बच्चों तक शिक्षा पहुंचाई उन्होंने बच्चों को उच्च शिक्षा और बेहतर भविष्य की ओर बढ़ाया जिसके लिए डॉक्टर कविता नरसिंह राव गित्ते को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है गुजरात के रंगपुर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में श्री नितिन कुमार महेंद्र कुमार पाठक ने सीमित संसाधनों वाले आदिवासी विद्यालय को डिजिटल एवं अनुभवात्मक

0: परीक्षा के केंद्र में बदल दिया। उन्होंने 7D VR AR लैब और आर न्यूज जैसी सुविधाएं विकसित की। उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस एवं इसरो प्रशिक्षण में सफलता प्राप्त की। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: लद्दाख के कारगिल स्थित शासकीय मॉडल मिडिल स्कूल में मोहम्मद मुस्तफा कमाल ने सीमित संसाधनों के बीच बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान को अनुभव और स्थानीय जीवन से जोड़कर रोचक बनाया। 1000 से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित कर संदर्भ आधारित शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए मोहम्मद मुस्तफा कमाल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। केरलम के श्री सुनील कुमार केपी ने नवाचारी एवं आईसीटी सक्षम भाषा शिक्षण के माध्यम से मलयालम भाषा में पठन, संचार एवं रचनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा दिया। विद्यार्थी मार्गदर्शन एवं समग्र विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए श्री सुनील कुमार केपी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: सुश्री याको तामे ने अरुणाचल प्रदेश के नाहरलागुन स्थित गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल जी सेक्टर में विशेषकर बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ा और एक जर्जर विद्यालय को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, साइंस और मैथमेटिक्स लेबोरेटरीज से सुसज्जित संस्थान में बदला। उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने स्टेट बोर्ड में शीर्ष स्थान हासिल किए, जिसके लिए सुश्री याको तामे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: आंध्र प्रदेश के श्री राजेश कोलुरी ने AI सक्षम SLN डिजिटल शिक्षा एवं ग्रामीण विद्यार्थियों के मार्गदर्शन में उल्लेखनीय योगदान दिया। राज क्लासरूम के माध्यम से डिजिटल शिक्षण को व्यापक बनाया तथा शिक्षकों की डिजिटल क्षमता वृद्धि में योगदान दिया। श्री राजेश कोलुरी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: श्री गबर सिंह बिष्ट ने उत्तराखंड के मेहरा स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मुस्या खांद में 35 वर्षों तक ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा दूरदर्शन उत्तराखंड के शैक्षिक मॉड्यूल से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दूरदराज के विद्यार्थियों तक पहुंचाई। उनके नवाचार, ICT आधारित शिक्षण एवं समर्पित योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: असम के रंगिया स्थित PM श्री केंद्रीय विद्यालय NFR में डॉक्टर मनीषा खेत्रपाल ने समावेशी शिक्षा, बुनियादी साक्षरता और विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए निरंतर काम किया है। मास्टर ट्रेनर के रूप में उन्होंने असम के हजारों शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया, जिसके लिए डॉक्टर मनीषा खेत्रपाल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले के वार्ड नंबर 30 स्थित श्री रामकृष्ण शारदा विद्यापीठ प्राइमरी स्कूल में श्री पलाश चौधरी ने सुबह की भूख के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए सो का लोर पुष्टि पहल शुरू की, जिससे बच्चों की उपस्थिति और विद्यालय में नामांकन 3 गुना हुआ। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक सशक्तिकरण से जोड़ा, जिसके लिए श्री पलाश चौधरी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। बिहार के कुचाईकोटे स्थित मिडिल स्कूल कुचाईकोटे कन्या में सुश्री पुष्पा प्रसाद ने कम लागत वाली सामग्री, डिजिटल टूल्स और ग्रुप वर्क के जरिए विद्यार्थियों को सीखने के नए अवसर। उन्होंने ड्रॉप आउट बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ा और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की भागीदारी बढ़ाई। उन्होंने प्लांटेशन, वाटर सेग्रीगेशन और प्लास्टिक फ्री स्कूल जैसे प्रयासों को भी बढ़ावा दिया। सुश्री पुष्पा प्रसाद को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। 18 वर्षों से शिक्षा के प्रति समर्पित सुश्री पूर्णिमा मोहनलाल पटेल ने दादरा एवं नगर हवेली के दलवाड़ा स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल में विज्ञान परियोजनाओं तथा शिक्षक प्रशिक्षण में योगदान देकर उन्होंने समावेशी शिक्षा, सामुदायिक सहभागिता और विद्यार्थियों के समग्र विकास को सशक्त किया। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सुश्री पूर्णिमा मोहनलाल पटेल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के जगदीशपुर स्थित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में श्री इफ्तिखार खान ने निशुल्क रविवार कला कक्षाओं के माध्यम से रचनात्मक एवं अनुभवात्मक अधिगम को बढ़ावा दिया।

0: उन्होंने कला के माध्यम से सड़क सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक जागरूकता को भी बढ़ावा दिया। कला शिक्षा, प्रतिभा संवर्धन एवं सामाजिक जागरूकता में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए श्री इफ्तिखार खान को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। कर्नाटक के होनेबेल स्थित गवर्नमेंट हायर प्राइमरी स्कूल समतगरु में सुश्री रत्ना कुमारी एस ने टॉय बेस्ड पेडागॉजी, अबाकस मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स के जरिए सीखने को आनंददायक और समावेशी बनाया। उनके मार्गदर्शन में ग्रामीण विद्यार्थियों ने प्रतिभा करंजी जैसे स्टेट कल्चरल प्लेटफॉर्म्स और इंस्पायर जैसे नेशनल साइंस प्लेटफॉर्म्स पर सफलता हासिल की, जिसके लिए सुश्री रत्ना कुमारी एस को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: जम्मू कश्मीर में डलहौरी के HSS डलहौरी में मोहम्मद अयाज रैना ने कंप्यूटर लैब से लेकर स्मार्ट बोर्ड और इंटरैक्टिव ई कंटेंट को शिक्षण का हिस्सा बनाया। शिक्षक विहीन विद्यालयों के विद्यार्थियों को ऑनलाइन बॉटनी शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित की। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए मोहम्मद अयाज रैना को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: रोहतक हरियाणा के राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांघी में श्री अनिल कौशिक ने गणित को रोचक और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 40 से अधिक शिक्षण मॉडलों से सुसज्जित मैथ्स लैब, इंटरैक्टिव हरबंस पजल और वर्चुअल मैथ्स लैब विकसित की, जिसके लिए श्री अनिल कौशिक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। त्रिपुरा के साबरूम स्थित पीएम श्री साबरूम गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में श्री रंजन देवनाथ ने स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपीरियंशियल प्रोजेक्ट्स और इको क्लब एक्टिविटीज के जरिए लर्निंग बाय डूइंग को बढ़ावा दिया। उनके मार्गदर्शन में ग्रामीण आदिवासी छात्राओं ने स्टेट बोर्ड में शीर्ष स्थान और चीफ मिनिस्टर्स एक्सलेंस अवार्ड हासिल किए, जिसके लिए श्री रंजन देवनाथ को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: उत्तर प्रदेश के कोयलहा स्थित कंपोजिट स्कूल रसूलाबाद में सुश्री शालिनी कुशवाहा ने कला आधारित गतिविधियों, डिजिटल संसाधनों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल्स के जरिए पढ़ाई को सहज और आनंदमय बनाया, जिससे विद्यालय को निपुण विद्यालय की पहचान मिली, जिसके लिए सुश्री शालिनी कुशवाहा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। तमिलनाडु के पुलियमपट्टी स्थित पंचायत यूनियन प्राइमरी स्कूल में श्री थंगाराज एम ने बच्चों के लिए शिक्षा को समावेशी, आनंददायक और उनके जीवन से जुड़ा बनाया है। उन्होंने ग्रामीण स्कूलों में टॉयलेट, स्मार्ट क्लासरूम, इंटरैक्टिव बोर्ड, टॉय लाइब्रेरीज और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में योगदान दिया, जिसके लिए श्री थंगाराज एम को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। राजस्थान के जयपुर चाकसू स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालय तुमली का बास में डॉक्टर वर्तिका गुलाटी ने मूंगफली से बीज गणित और पतंगों से ज्यामिति समझाने के साथ प्रश्नों से विज्ञान पहल के जरिए रटने की जगह विद्यार्थियों में जिज्ञासा और खोज की भावना विकसित की। डॉक्टर वर्तिका गुलाटी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: श्री आर रोनल्ड मेरो ने नागालैंड के सिक्चू स्थित GHSS सिक्चू सुपसा में समुदाय संपर्क व्यक्तिगत मार्गदर्शन के जरिए बच्चों को विद्यालय से जोड़े रखा और ड्रॉप आउट कम, ICT आधारित शिक्षण के साथ शैक्षिक भ्रमण, वाद विवाद और सांस्कृतिक गतिविधियों से उन्होंने सीखने को जीवन से जोड़ा। शिक्षा के प्रति उनके समर्पण के लिए श्री आर रोनल्ड मेरो को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के कंजवार स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय में श्री शैलेंद्र प्रताप सिंह ने जन भागीदारी एवं समावेशी शिक्षा के माध्यम से विद्यालय को सामुदायिक विकास का केंद्र बनाया। उनके प्रयासों से नामांकन 69 से बढ़कर 202, उपस्थिति 44% से बढ़कर 96% हुई और ड्रॉपआउट समाप्त हुए। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: श्री वैभव वसंतराव कुलकर्णी ने महाराष्ट्र के लातूर स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में खिलौनों, कला और वास्तविक जीवन की समस्याओं के माध्यम से जटिल

0: वित्तीय अवधारणाओं को सरल और रोचक बनाया। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण गणितीय सामग्री देश भर के विद्यार्थियों तक पहुंचाई, जिसके लिए श्री वैभव वसंतराव कुलकर्णी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: असम के जनजातीय क्षेत्र में श्री राजेश बरदोलोई ने प्रथम पीढ़ी के मिशिंग जनजातीय विद्यार्थियों के लिए गतिविधि आधारित ICT सक्षम एवं बहुभाषी शिक्षण को प्रभावी बनाया। उन्होंने सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों एवं दीक्षा ई कंटेंट के विकास में योगदान दिया। जनजातीय शिक्षा, बहुभाषी शिक्षण, डिजिटल सशक्तिकरण एवं सामाजिक नेतृत्व में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। सुश्री राधा राजेश ने माध्यमिक विज्ञान शिक्षा में नवाचारों एवं AI सक्षम शिक्षण को प्रभावी बनाया। उन्होंने फील्ड आधारित अधिगम, प्रयोगात्मक गतिविधियों और जैव नैतिक चर्चाओं के माध्यम से जीव विज्ञान को अनुभवात्मक एवं जीवन केंद्रित बनाया। उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया तथा इसरो URSC नेशनल साइंस डे में 4 बार विजेता रहे। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
2: और अब हम माननीय राष्ट्रपति महोदया आपसे विनम्र विनती करते हैं कि
3: प्लेनरी हॉल में पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों के उत्कृष्ट कार्यों पर आधारित लघु वृत्त चित्र दिखाया गया। इन फिल्मों के माध्यम से हम जान पाए कि देश के विभिन्न हिस्सों में शिक्षक किस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में नए प्रयोग कर रहे हैं, कहीं तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं स्थानीय संसाधनों के माध्यम से इस प्रक्रिया को विकसित कर रहे हैं सीखने की, कहीं खेल गतिविधियों को।
4: एंड नाउ द ऑनरेबल राष्ट्रपति विल कन्फर द नेशनल टीचर्स अवार्ड्स टू द फर्स्ट अवार्डी इन दिस सेशन इज कविता नरसिंह राव गिट्टे फ्रॉम महाराष्ट्र। And what a proud moment it is indeed for this
2: Nitin teacher. Kumar Mahendra Kumar Pathak, Gujarat.
4: From Gujarat, Nitin Kumar Mahendra Kumar Pathak, and he is known for his innovations, 7DVR Labs, ICT and Children's Science Congress, and
2: Mohammad
4: also his
2: Mustafa
4: student
2: Kamal
4: participated
2: Haddock.
4: In ISRO competition.
3: दूसरे चरण में अब माननीय राष्ट्रपति बाकी 24 शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान कर रही हैं।
4: मोहम्मद मुस्तफा कमाल ऑफ लद्दाख, who is a social science teacher and he has trained 1,000 teachers. He is also a master trainer. And now, from Kerala, Sunil Kumar KP, who has used Malayalam ICT and digital tools. And the next winner is from Arunachal Pradesh, Yakun Tame, who has worked for bettering the infrastructure of the school. From Andhra Pradesh, Rajesh Koluri, who has used Raj classrooms and digital ICT tools
2: Gabar
4: for
2: Singh
4: education.
2: Bisht, Uttarakhand.
4: From Uttarakhand, Gabar Singh Bisht, who uses education and also is known for his Doordarshan education
2: Manisha
4: modules.
2: Manisha Khetrapal, Kendriya Vidyalaya Sangathan.
4: From Kendriya Vidyalaya Sangathan, Manisha Khetrapal, who is also a master trainer of teachers.
2: Palash Chaudhary, West Bengal.
4: From West Bengal, Palash Chaudhary, and he has worked on education and strengthening society, especially for his
2: Pushpa
4: food
2: Prasad,
4: for education.
2: Bihar.
3: And now, Bihar se Pushpa Prasad apna puraskar prapt kar rahe hain mananiya rashtrapati ke samaksh pure utsah aur
2: Patel Poonima Mohanlal, Daman and Diu, Dadar and Nagar Haveli.
4: Daman Diu, Dadar and Nagar Haveli, Poonima Patel receives the award from the Honorable President
2: Dr.
4: of India.
2: Dr. Iftikhar Khan, Uttar Pradesh.
3: Uttar Pradesh se Dr. Iftikhar Khan apna puraskar prapt kar rahe hain Mananiya Rashtrapati Shripati Draupadi
2: Murmu. Ratna Kumari S, Karnataka.
4: From Karnataka, Ratna Kumari S, and she has used toy-based pedagogy for education
2: Mohammed
4: among
2: Ayaz
4: children.
2: Mohammad Ayaz Rehna, Jammu and Kashmir.
3: Aur ab जम्मू और कश्मीर से मोहम्मद एयाज रैना अपना पुरस्कार प्राप्त करने माननीय राष्ट्रपति के समक्ष।
2: अनिल कौशिक हरियाणा।
4: अनिल कौशिक ऑफ हरियाणा, ही हैज 40 मॉडल्स इन हिज मैथमेटिक्स लैब एंड इज नाउ रिसीविंग द अवार्ड फ्रॉम द ऑनरेबल राष्ट्रपति जी।
2: रंजन देवनाथ त्रिपुरा।
3: और अब त्रिपुरा से श्री रंजन देवनाथ अपना पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। तालियों के बीच सभी उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं।
2: शालिनी कुशवाहा, उत्तर प्रदेश।
3: उत्तर प्रदेश से शालिनी

0: को ये पुरस्कार दिया गया है उनके शिक्षा के क्षेत्र में अदब और अद्भुत कार्य के लिए।
1: थंगराज एम, तमिलनाडु।
2: From Tamil Nadu, Thangaraj M is receiving the award from the Honorable Rashtrapati ji, and he has worked extensively on enjoyable and relatable education.
1: Vartika Gulati, Rajasthan.
0: Rajasthan se Vartika Gulati, Mananiya Rashtrapati se unhone namaskar kiya, jhukkar Mananiya Rashtrapati ne abhivadan swikar kiya aur ab Mananiya Rashtrapati se wo puraskar grahan kar rahi hai. शिक्षा के क्षेत्र
1: में
2: फ्रॉम नागालैंड आर रोनाल्ड मेरू विल बी रिसीविंग द अवार्ड फ्रॉम द ऑनरेबल राष्ट्रपति जी एंड ही हैज वर्क्ड एक्सटेंसिवली ऑन इंटरएक्टिव एजुकेशन हियर इज रिसीविंग
1: शैलेंद्र प्रताप सिंह मध्य प्रदेश
2: प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम मध्य प्रदेश शैलेंद्र प्रताप सिंह will receive the award and he has worked to say that there is no dropout from his school
1: that was Basant Rao Kulkarni Navodaya Vidyalaya Samiti
2: enrollment has been there in his school from Maharashtra Vaibhav Basant Rao Kulkarni who has worked extensively on lively education receives his award from the honorable Rashtrapati
1: Rajesh Badaloi Assam
0: Assam se Rajesh Badaloi apna puraskar grahan kar rahe hain इन सभी शिक्षकों ने अपने अपने क्षेत्र में
1: राधा राजेश इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन
0: कर्नाटका से इस वक्त उसका प्राप्त कर रही है राधा राकेश
1: कोटि कोटि धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया
2: ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन श्री प्रहलाद जोशी द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन श्री जयंत चौधरी एंड द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन डॉक्टर सुकांत मजुमदार एंड द मिनिस्टर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी श्री टी के अनिल कुमार द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन श्रीमती दीप्ति गौड़ मुखर्जी एंड द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डॉक्टर देवश्री मुखर्जी हैव नाउ टेकन देयर सीट्स ऑन द डेस एंड
0: माननीय राष्ट्रपति
2: ऑनरेबल प्रेसिडेंट विल ऑल्सो कन्फर अवार्ड्स टू टीचर्स एंड to the institutes who have worked in higher education and now telephone
3: architecture shiksha ko sustainable design aur real world learning se joda hai grameen kshetron se judkar ve vidyarthiyon ko awas school avsanrachna ki vastavik chunautiyon ko samajhne ke liye prerit karti hai vastukala shikshan ke liye professor avlokita agrawal ko rashtriya shikshak puraskar 2026 se sammanit kiya jata hai तेलंगाना के हैदराबाद स्थित आईआईटी हैदराबाद में प्रोफेसर कीर्ति चंद्र साहू ने शोध शिक्षण और अकादमिक नेतृत्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है विज्ञान और शोध को भविष्य की मौसम संबंधी चुनौतियों से जोड़ने और विद्यार्थियों को शोध के लिए प्रेरित करने के लिए प्रोफेसर कीर्ति चंद्र साहू को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है
4: राजस्थान के पिलानी स्थित बिट्स पिलानी के डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डॉक्टर विनय चमोला ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में नए पाठ्यक्रम और हैंड्स ऑन आईओटी टिंकरिंग लैब्स के जरिए मेट सुपरविजन और एआईओटी ब्लॉक्स जैसे वेंचर्स के जरिए विद्यार्थियों को अपने विचारों को समाधान में बदलने के लिए प्रेरित किया तकनीकी उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर विनय चमोला को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित आईआईटी भुवनेश्वर में डॉक्टर श्रीकांत गुल्लापुड़ी मेटलर्जी और मटेरियल साइंसेस के शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रियल लाइफ एप्लीकेशंस और एक्सपीरियंशियल लर्निंग के जरिए वे विद्यार्थियों की तकनीकी समझ को मजबूत करते हैं शिक्षा कौशल और सामाजिक जरूरतों से जुड़ी रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर श्रीकांत गुल्लापुड़ी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है गुजरात के गांधीनगर स्थित आईआईटी गांधीनगर में विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच और नए समाधानों की क्षमता विकसित करने वाले शिक्षक हैं डॉक्टर मिथुन राधाकृष्णन वे इंजीनियरिंग साइंसेस और फाइनेंस जैसे अलग अलग क्षेत्रों की अवधारणाओं को जोड़कर विद्यार्थियों को नए और अनजाने सवालों पर सोचने के लिए प्रेरित करते हैं मौलिक सोच और समस्या समाधान का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए डॉक्टर मिथुन राधाकृष्णन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित IISER भोपाल में

0: प्रोफेसर सौरभ दत्ता ने प्लांट बायोलॉजी के शिक्षण शोध और आउटरीच के जरिए विद्यार्थियों को नई सोच और शोध की दिशा दी है। वो एम्पैथेटिक मेंटोरशिप और इंक्लूसिव लर्निंग इकोसिस्टम के जरिए विद्यार्थियों को सशक्त करते हैं। शिक्षण शोध और समाज के प्रति अपने योगदान के लिए प्रोफेसर सौरभ दत्ता को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मुंबई के आईआईटी बॉम्बे के डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेज में प्रोफेसर विक्रम विशाल ने भू विज्ञान और जलवायु से जुड़े जटिल विषयों को शोध प्रयोग और वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के जरिए समझने का नया तरीका विकसित किया। भारत की पहली कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज फील्ड लेबोरेटरी स्थापित की। भू विज्ञान और जलवायु समाधान में शिक्षा शोध और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए प्रोफेसर विक्रम विशाल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। गुजरात के गांधीनगर स्थित नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जयराज सिंह सरवैया ने शिक्षा शोध और उद्योग के बीच एक मजबूत सेतु तैयार किया है। उन्होंने फॉरेंसिक फार्मेसी, फूड फॉरेंसिक्स और मेडिकल डिवाइसेस जैसे तीन विशिष्ट क्षेत्रों में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शिक्षा शोध और इनोवेशन को रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट से जोड़ने के लिए प्रोफेसर जयराज सिंह सरवैया को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के आईआईटी कानपुर के डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में प्रोफेसर शंकर प्रसाद रथ ने रसायन विज्ञान में शोध शिक्षण और विद्यार्थियों के मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके स्वयं NPTEL पाठ्यक्रम ने उच्च शिक्षा में उनकी विशेषज्ञता को व्यापक बनाया। विद्यार्थियों की प्रतिभा और करियर को संवारने के लिए प्रोफेसर शंकर प्रसाद रथ को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में डॉक्टर मनीषा निगम ने बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई को प्रयोग, समस्या समाधान और वास्तविक जीवन के उदाहरणों से अधिक प्रभावी बनाया। शिक्षा शोध और सामाजिक सरोकारों को साथ लेकर चलने के लिए डॉक्टर मनीषा निगम को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। महाराष्ट्र के वर्धा स्थित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज DMIHER में डॉक्टर अमर मोहन राव तकसांडे ने बाल चिकित्सा शिक्षा शोध और मरीजों की देखभाल में उत्कृष्ट योगदान दिया है। उन्होंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन और पीडियाट्रिक एकोकार्डियोग्राफी के माध्यम से चिकित्सा प्रशिक्षण को मजबूत किया। डॉक्टर अमर तकसांडे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। आंध्र प्रदेश के मंगलगिरी स्थित एम्स मंगलगिरी में डॉक्टर अरुण बाबू ने पीडियाट्रिक्स के शिक्षण शोध और चिकित्सा शिक्षा में नवाचार को आगे बढ़ाया है। 400 से अधिक साइंटिफिक पब्लिकेशंस और अनेक रिसर्च प्रोजेक्ट्स के साथ चिकित्सा शिक्षा और नवाचार को सशक्त बनाने के लिए डॉक्टर अरुण बाबू को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मणिपुर के इम्फाल स्थित मणिपुर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ डांस एंड म्यूजिक में डॉक्टर पुखराम बम लीलावती देवी ने 15 वर्षों से अधिक समय में नृत्य संगीत और शोध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मणिपुर स्टेट कला अकादमी के यंग टैलेंट अवार्ड और

0: असम के गुवाहाटी स्थित गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में प्रोफेसर अंकुरन दत्ता ने दो दशकों से अधिक समय में शिक्षा, मीडिया और सामुदायिक संवाद को इसी सोच के साथ आगे बढ़ाया। नॉर्थ ईस्ट भारत के पहले कम्युनिटी और वेब रेडियो स्टेशन की स्थापना कर सामुदायिक संचार, स्थानीय ज्ञान और सांस्कृतिक जुड़ाव को सशक्त बनाने के लिए प्रोफेसर अंकुरन दत्ता को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित कर्नाटका संस्कृत यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर शिवानी वी ने संस्कृत के पारंपरिक अध्ययन को आधुनिक तकनीक और शोध से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया। संस्कृत को आधुनिक, सुलभ और नई पीढ़ी के लिए प्रासंगिक बनाने के लिए प्रोफेसर शिवानी वी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर राजीव चौधरी ने फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में शिक्षण, शोध और विद्यार्थी कल्याण को नई दिशा दी है। डिजिटल पेडागॉजी और अवेयर इंक्लूजन अफेक्शन AIA मॉडल के जरिए उन्होंने विद्यार्थियों में केवल याद करने की बजाय क्रिटिकल थिंकिंग और रिसर्च स्किल्स को विकसित किया। शिक्षा, शोध और विद्यार्थी कल्याण को सशक्त बनाने के लिए प्रोफेसर राजीव चौधरी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित MEI पॉलिटेक्निक में डॉक्टर विश्वनाथ एजेस पिछले 32 वर्षों से सिविल इंजीनियरिंग शिक्षा में इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिकल लर्निंग को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने मल्टीडिसिप्लिनरी नॉलेज, डिजिटल लर्निंग और स्टूडेंट सेंट्रिक टीचिंग को बढ़ावा दिया। तकनीक आधारित और रोजगार से जुड़ी शिक्षा को मजबूत करने के लिए डॉक्टर विश्वनाथ एजेस को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। तमिलनाडु के कोयंबटूर स्थित PSG पॉलिटेक्निक कॉलेज में डॉक्टर शशि कलायस डिप्लोमा इंजीनियरिंग एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए इंडस्ट्री कोलैबोरेशन और आउटकम बेस्ड लर्निंग को आगे बढ़ा रही है। 110 से अधिक इंडस्ट्री अलाइंड एक्सपेरिमेंट्स और 11 इंडस्ट्री MOUs के जरिए उन्होंने विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल लर्निंग के अवसर दिए। विद्यार्थियों के कौशल और अवसरों को बढ़ाने के लिए डॉक्टर शशि कलायस को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। तमिलनाडु के इरोड स्थित शक्ति पॉलिटेक्निक कॉलेज में डॉक्टर कन्नन रथिनम ने पॉलिटेक्निक शिक्षा में सीखने का एक व्यावहारिक मॉडल विकसित किया। उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप सैद्धांतिक अवधारणाओं को पीयर लर्निंग के माध्यम से समझने योग्य बनाया। पॉलिटेक्निक शिक्षा में नवाचार, शोध और अनुभवात्मक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर कन्नन रत्नम को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। महाराष्ट्र के सोलापुर स्थित गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में डॉक्टर संदीपन प्रल्हाद नारोटे ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और टेलीकम्युनिकेशंस की शिक्षा को टेक्नोलॉजी इनेबल्ड और एक्सपीरियंशियल लर्निंग से मजबूत किया है। उनकी टीचिंग लर्निंग अप्रोच से 5000 से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिला है। शिक्षण, शोध और संस्थागत विकास में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉक्टर संदीपन प्रल्हाद नारोटे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। केरल के ITI अरीकोड में श्री हरीश ए ने इलेक्ट्रिकल स्किल्स ट्रेनिंग को नवाचार और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ा है। उनकी सबसे खास पहल कैंडेला LED बल्ब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसे उन्होंने ITI विद्यार्थियों के साथ स्थापित कर स्किल लर्निंग को वास्तविक उत्पादन और एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़ा और उद्यमिता के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए श्री हरीश ए को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के मंडी स्थित गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में फिटर ट्रेड के इंस्ट्रक्टर श्री जगमोहन ने कौशल प्रशिक्षण को गुणवत्ता, उद्योग की जरूरतों और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ा है। COVID-19 के दौरान मास्टर ट्रेनर के रूप में उन्होंने ट्रेनीज को ऑक्सीजन प्लांट्स के संचालन का प्रशिक्षण देकर कौशल को एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवा से भी जोड़ा। श्री जगमोहन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। महाराष्ट्र के धाराशिव स्थित गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में श्री किरण प्रकाश झरकर ने कौशल प्रशिक्षण को पुस्तकों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और व्यावहारिक संसाधनों के एक जुड़े हुए लर्निंग इकोसिस्टम में बदला है। उनकी पेटेंट प्राप्त स्किल बुक कनेक्टिंग ट्रेनीज टू स्किल्स और स्किल बुक मोबाइल एप्लीकेशन ने प्रैक्टिकल लर्निंग और एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड रिसोर्सेज से जोड़ा, जिसके लिए श्री किरण प्रकाश झरकर को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से

0: सम्मानित किया जाता है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित गवर्नमेंट आईटीआई टॉलीगंज में वेल्डर ट्रेड के इंस्ट्रक्टर श्री संदीप बनर्जी ने कौशल प्रशिक्षण को आधुनिक तकनीक और व्यावहारिक सीखने से जोड़ा है। 300 से अधिक ट्रेनीज को कॉम्पिटेंसी बेस्ड और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देने के साथ उन्होंने नए वेल्डर इंस्ट्रक्टर्स के लिए मास्टर ट्रेनर के रूप में भी योगदान दिया है। युवाओं को सशक्त बनाने के लिए श्री संदीप बनर्जी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। गुजरात के बिली मोरा स्थित इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ऑटोमोबाइल ग्रुप के सुपरवाइजर इंस्ट्रक्टर श्री राजेश कुमार एम पटेल ने वाहन तकनीक के प्रशिक्षण को नवाचार और रोजगार से जोड़ा है। ट्राइसिकल ईवी विद स्टीयरिंग जनरेशन ने क्षेत्रीय स्किल कंपटीशन में तीसरा स्थान हासिल किया। ऑटोमोबाइल स्किल्स और रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने के लिए श्री राजेश कुमार एम पटेल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। राजस्थान के चौमू में स्थित गवर्नमेंट आईटीआई में रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के सीनियर इंस्ट्रक्टर श्री हीरालाल शर्मा ने उनके विकसित किए गए स्प्लिट एसी और डीप फ्रीजर फॉल्ट सिमुलेटर्स के जरिए विद्यार्थी तकनीकी खराबियों की पहचान और ट्रबल शूटिंग का व्यावहारिक अभ्यास करते हैं, जिसके लिए श्री हीरालाल शर्मा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: महाराष्ट्र के नासिक स्थित गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट त्रिंबकेश्वर आदिवासी में फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी की क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर श्रीमती अर्चना राकेश जाधव ने आदिवासी और ग्रामीण युवाओं को फैशन और अपैरल स्किल्स के माध्यम से रोजगार और उद्यमिता से जोड़ा है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए श्रीमती अर्चना राकेश जाधव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित गवर्नमेंट डिविजनल आईटीआई में COPA HIVI की ट्रेनिंग ऑफिसर श्रीमती रीना गुप्ता ने प्रैक्टिकल लर्निंग के माध्यम से वे विद्यार्थियों को कंप्यूटर ऑपरेशन और बेसिक प्रोग्रामिंग जैसे कौशलों में प्रशिक्षित करती हैं। दिव्यांग युवाओं को डिजिटल कौशल और आत्मनिर्भरता से सशक्त बनाने के लिए श्रीमती रीना गुप्ता को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित गवर्नमेंट आईटीआई टॉलीगंज में श्री सौमेन पंडित ने नई तकनीकों के कौशल प्रशिक्षण को प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री ओरिएंटेड लर्निंग से जोड़ा है। उन्होंने 160 से अधिक लर्नर्स को ड्रोन टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षित किया। नई तकनीकों और भविष्य के रोजगार के अवसरों से युवाओं को जोड़ने के लिए श्री सौमेन पंडित को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। असम के नॉर्थ ईस्ट स्किल्स सेंटर असम स्किल डेवलपमेंट मिशन में श्रीमती तुलिका कलिता ने अपने 20 वर्षों के अनुभव से युवाओं को वैश्विक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए तैयार किया है। उन्होंने 1400 से अधिक लर्नर्स को वर्कप्लेस रेडिनेस कम्युनिकेशन एटिकेट और प्रोफेशनल सर्विस स्किल्स से प्रशिक्षित किया, जिसके लिए श्रीमती तुलिका कलिता को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। पंजाब के लुधियाना स्थित नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मशीनिस्ट ट्रेड के ट्रेनिंग ऑफिसर श्री संजय कुमार ने प्रिसिशन मशीनिंग और एडवांस्ड टेक्निकल स्किल्स के माध्यम से युवाओं को उच्च स्तरीय करियर के लिए तैयार किया है। उनके विद्यार्थी DRDO, इसरो, बार और इंडियन रेलवेज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों तक पहुंचे हैं। श्री संजय कुमार को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वुमेन में ट्रेनिंग ऑफिसर श्रीमती ज्योति बाला राठौर ने उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय परीक्षाओं और स्किल कॉम्पिटिशन्स में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। कौशल और रोजगार के अवसरों के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने के लिए श्रीमती ज्योति बाला राठौर को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: उड़ीसा के भुवनेश्वर स्थित सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर में इंजीनियर ट्रेनिंग श्री प्रणब कुमार चौधरी ने कौशल विकास को बड़े स्तर पर प्रशिक्षण, गुणवत्ता और इंडस्ट्री रेडी लर्निंग से जोड़ा है। उन्होंने स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप व्यापक स्तर तक पहुंचाया। कौशल, गुणवत्ता और रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण को व्यापक स्तर पर सशक्त बनाने के लिए श्री प्रणब कुमार चौधरी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से

0: और शिक्षक शिक्षा माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू शिक्षक दिवस 2026 के अवसर पर उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के शिक्षकों या संकाय सदस्यों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। माननीय राष्ट्रपति अब अपने स्थान से खड़े होकर पुरस्कार देने के लिए आगे आते हुए आपको बता दें, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आमंत्रित किए गए थे, जिनमें जन भागीदारी के तहत इसमें
1: प्रोफेसर अवलोकिता अग्रवाल आईआईटी रुड़की की
0: प्रोफेसर अग्रवाल अपना पुरस्कार ग्रहण करने माननीय राष्ट्रपति के सामने आ रही हैं। इन्होंने वास्तुकला और निर्मित पर्यावरण के क्षेत्र में
2: फ्रॉम आईआईटी हैदराबाद प्रोफेसर कीर्ति चंद्र साहू एंड ही वर्क्स ऑन केमिकल इंजीनियरिंग एंड हैज ट्रेन्ड मेनी स्टूडेंट्स।
1: डॉक्टर विनय चमोला
0: और प्रोफेसर विनय चमोला, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम किया है, बीएससी प्लानी से।
1: डॉक्टर श्रीकांत गोलापुड़ी आईआईटी भुवनेश्वर
2: फ्रॉम आईआईटी भुवनेश्वर डॉक्टर श्रीकांत गोलापुड़ी हु वर्क्स इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग।
1: डॉक्टर मिथुन राधाकृष्ण आईआईटी गांधीनगर
0: डॉक्टर मिथुन राधाकृष्ण जो कि केमिकल इंजीनियर है, इस क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया जा रहा है आईआईटी।
1: प्रोफेसर सौरभ दत्ता आईआईएसईआर भोपाल
2: From IISER Bhopal, Professor Saurav Datta receives the award from Honorable Rashtrapati ji.
1: Professor Vikram Vishal, IIT Bombay.
0: पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में कार्य के लिए प्रोफेसर विक्रम विशाल को पुरस्कार दिया जा रहा है, बॉम्बे महाराष्ट्र से हैं।
1: डॉक्टर जयराज सिंह सरवैया NFSU गांधीनगर
2: For his work in forensic sciences, Dr. Jairaj Sarvaiya of the National Forensic Science Laboratory, University Gujarat.
1: Professor Shankar Prasad Rath, IIT Kanpur.
0: रसायनिक विज्ञान क्षेत्र के लिए प्रोफेसर शंकर प्रसाद रथ को पुरस्कार दिया जा रहा है, जो IIT कानपुर उत्तर प्रदेश से है।
1: डॉक्टर मनीषा निगम हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड
2: हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी उत्तराखंड रिसीव्स अवार्ड फ्रॉम द फील्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री फ्रॉम द
1: डॉक्टर अमर मोहन राव
0: अगला पुरस्कार डॉक्टर अमर मोहन राव को दिया जा रहा है, मेडिसिन के क्षेत्र में बाल रोग के लिए उन्होंने कार्य किया है, वर्धा महाराष्ट्र से।
1: डॉक्टर अरुण बाबू एम्स मंगलागिरी आंध्र प्रदेश
2: फ्रॉम आंध्र प्रदेश इज मंगलागिरी एम्स डॉक्टर अरुण बाबू ही हैज वर्क्ड especially Dr. on pediatric treatment and innovation Devi, and has
1: Manipur University
2: published 400 scientific publications. Dr. P. Lilavati Devi receives her award from the Honorable President for her work on
1: Professor
2: Manipuri Gans.
1: Professor Ashutosh Mohan, BHU Varanasi.
0: Professor Ashutosh Mohan ko, jo ki Prabandh Adhyan Sansthan Banaras se hai, unko puraskar diya ja raha hai.
1: Professor Ankuran Datta, Guwahati University, Guwahati.
2: Dr. Anukaran Datta of the Guwahati's Public Relations
1: Professor
2: and Communication
1: Shivani
2: received
1: Karnataka
2: the award from
1: Sanskrit
2: the Honorable
1: University,
2: President
1: Bangalore.
0: Sushri Shivani V. Karnataka University, Bangalore se hain. Inko Sanskrit Vishwavidyalaya se
1: Professor Rajiv Chaudhary, Pandit Ravi Shankar Shukla University, Raipur.
2: Professor Rajiv Chaudhary receives the award for his work on physical education and is from the Pandit Ravi Shankar Shukla University, Raipur,
1: Polytechnic, Bangalore.
0: Civil Engineering ke kshetra mein Dr. Vishwanath HS ko puraskrit kiya ja raha hai, Bangalore, Karnataka se hai.
1: Dr. Sasikala S, PST Polytechnic College, Coimbatore.
2: From Tamil Nadu's Coimbatore, Dr. Sashikala S. receives the award for her work in electronics
1: Kanan
2: and electrical Rathinam, engineering.
0: भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर करण शक्ति रथिनम को पुरस्कृत किया जा रहा है, इरोड तमिलनाडु।
1: डॉक्टर संदीपन प्रहलाद नरोटे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सोलापुर
2: From Maharashtra Solapur district, the Government Polytechnic, Dr. Sandeep Narote of the Electronics and Engineering Department received the award from the Honorable President of
1: Dr.
2: India.
1: Dr. Harish A., Government
2: IIT, Skilling and Entrepreneurship,
1: Kozhikode, Kerala.
2: Harish A. of ITI Kerala receives the award from the Honorable President of India.
1: Jack Mohan, Government Industrial Training Institute, Mandi, Himachal Pradesh.
2: He specializes in fitter trade and also is a master trainer, Sri Jagmohan from IIT, Himachal Pradesh.
1: By Uddhav Rao Patil, Government Industrial Training Institute, Dharashiv, Maharashtra.

0: Sandeep Banerjee, Government ITI, Taliganj.
1: Receives the award
0: Patel,
1: from the Honorable
0: Rajesh
1: President.
0: Bhai, Magan Bhai, Government ITI, Bilimora.
2: उद्यमशीलता के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं माननीय राष्ट्रपति
0: हीरा लाल शर्मा गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चोमू
1: एंड ही हैज वर्क्ड इन द फील्ड ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड हिज स्पेशल
0: अर्चना राकेश यादव गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आदिवासी त्र्यंबकेश्वर नासिक
1: And she works on fashion design.
0: Reena Gupta, Government Industrial Training Institute, Ujjain.
1: Dr. Gupta's work is on Divyang's digital skilling.
0: Soumen Pandit, Taliganj Government ITI.
1: Soumen Pandit specializes in industry-oriented learning and drone technology.
0: Tulika Kalita, Northeast Skill Center, Guwahati, Assam.
1: She has trained 1,400 workplace readiness workers.
0: Sanjay Kumar,
2: कौशल विकास और उद्यमशीलता क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं माननीय राष्ट्रपति द्वारा.
0: ज्योति बाला राठौर, NSTIW, इंदौर.
1: She works on skilling and empowerment of her students from
0: Sri Lanka. Pranab Kumar Chaudhary, Central Tool Room and Training Center, Bhubaneswar.
1: Pranab Kumar Chaudhary also specializes on skilling and entrepreneurship. And what a proud moment it is indeed to receive the award from the Honorable President of India. And the Honorable President of India has been escorted to her guest and she is accompanied by the Minister for Education, Sri Prahlad Joshi, and the Ministers of State for Education, Sri Jayant Chaudhary and Sri Sukanta Majumdar, and the Secretaries in the Department of Education, Literacy, School Education and Literacy, and Skill Development and Entrepreneurship, and the Secretary Department of Higher Education.
2: और अब समय आ गया है जब माननीय राष्ट्रपति ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी शिक्षकों को संबोधित करेंगी. राष्ट्रपति का संबोधन शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लाखों शिक्षकों के लिए प्रेरणादायी संदेश होगा. श्रोताओं, सभी शिक्षकों ने तालियों के साथ माननीय राष्ट्रपति
1: एंड अ स्टैंडिंग ओवेशन फॉर द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू. नाउ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट विल एड्रेस द गैदरिंग.
3: इस समारोह में उपस्थित केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी, राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी जी एवं डॉक्टर सुकांत मजूमदार जी, मंचासीन सभी सचिवगण, सभी शिक्षकगण, देवियों और सज्जनों, सभी को नमस्कार. राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित आज के सभी पुरस्कार विजेताओं को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ. देश के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हमारे देशवासी उनके प्रति एवं समस्त शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं. जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है वो समाज सही अर्थ में प्रगतिशील होता है. शिक्षक के बीच आकर मेरे अंदर विद्यमान विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही जीवंत हो जाता है. मुझे अपने शिक्षकों का सादर स्मरण होता है. उनके स्नेह और मार्गदर्शन के बल पर ही मैं अपने जीवन यात्रा में आगे आकर आपके सामने खड़ी हूँ. साथ ही मुझे अपने विद्यार्थी भी याद आते हैं जिन्हें मैंने ओडिशा के रायरंगपुर में स्थित श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में पढ़ाया था. मैंने अपने विद्यार्थियों से भी बहुत कुछ सीखा है. उन विद्यार्थियों के प्यार को मैं अपने जीवन के बहुत बड़ी उपलब्धियां मानती हूं। मैं भी कभी शिक्षक समुदाय की सदस्य रही हूं, इससे मुझे विशेष सार्थकता का अनुभव होता है। देवियों और स्वजनों, सावित्रीबाई फुले आधुनिक युग में विद्यालय में पढ़ाने वाले भारत की पहली शिक्षिका के रूप में जाने जाती है। बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्रांतिकारी पहल की थी और 19वीं सदी में बालिका विद्यार्थियों की स्थापना की थी, विद्यालय की स्थापना की थी। आज के दिन क्रांति ज्योति स्वरूपा महान शिक्षिका सावित्री बाई फुले की स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ। 20वीं सदी के आरंभ में पश्चिम बंगाल के बोलपुर जिले में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की तथा ओडिशा के पुरी जिले में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास ने वन विद्यालय यानी ओपन एयर स्कूल की स्थापना की थी। उन विद्यालयों की स्थापना के पीछे ये उद्दात विचार था कि प्रकृति की गोद में विद्यार्थियों का सहज विकास होता है। देश को बहुआयामी योगदान देने वाले यथा सर्वजनात्मक शिक्षा के प्रति विशेष रूप से समर्पित उन विभूतियों को मैं सादर नमन करती हूँ। इस सभागार में लद्दाख से लेकर अंडमान निकोबार आइलैंड तक तथा अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक पूरे देश में शिक्षण के श्रेष्ठ प्रतिमान स्थापित करने वाले शिक्षक उपस्थित है। ये प्रसन्नता की बात है कि पुरस्कार विजेता में गांव के स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या अधिक है। मुझे आशा है कि इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं की अध्यापन एवं प्रशिक्षण पद्धतियां और उपलब्धियां उन शिक्षकों को भी शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए प्रेरित करेगी। पुरस्कार विजेताओं के योगदान और उपलब्धियां पर केंद्रित फिल्मों को देखकर मेरा ये विश्वास और भी दृढ़ हुआ है कि निष्ठावान शिक्षक अग्रिम पंक्ति के राष्ट्र निर्माता होते हैं। आज पुरस्कृत सभी शिक्षकों के समान रूप से प्रभावशाली और अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, लेकिन समय के सीमा के कारण मैं केवल एक उदाहरण का उल्लेख करना चाहूंगी। हम सब ने देखा कि राजस्थान के झालावाड़ जिले के एक गांव के स्कूलों में अपने शिक्षक के मार्गदर्शन में बच्चे अत्यंत आधुनिक माध्यमों के सहायता से जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि सोच के बल पर छोटे से छोटे स्थान पर प्रबुद्ध शिक्षक और जिज्ञासु विद्यार्थी उच्च स्तरीय पाठन पठन का आधुनिक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता होती है कि ये सभागार में उपस्थित शिक्षकों ने ऐसे प्रेरक प्रयासों से शिक्षण कार्यों को नए आयाम दिए हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्कूलों, उच्च शिक्षण संस्थानों एवं पॉलिटेक्निक्स में अध्यापन करने वाले श्रेष्ठ शिक्षकों तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा चुने गए सुयोग्य प्रशिक्षकों के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है। देश के विकास में एकेडमिक एक्सेलेंस, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत अधिक महत्व है। भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने के साथ साथ स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित करना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता में से शामिल है। यहाँ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कृत आचार्यगण उपस्थित है। उनके लिए तथा पूरे देश के आचार्यों के लिए उच्च शिक्षा में भारत का गौरवशाली इतिहास लक्ष्य भी प्रस्तुत करना है और कसौटी भी। हुएंगसान ने लिखा है कि नालंदा विक्रमशिला में पढ़ाने वाले आचार्यों का यश दूर दूर के देशों तक फैल चुका था। उनका चरित्र पूर्णतः निर्मल और अनिंदनीय था।

0: आचार्यगण जानते थे कि समुद्र और पर्वतों के को पार करके अनेक कष्ट सहन करके विदेशों के छात्र अनेक उनके पास आते थे और ज्ञान पिपासा लेकर वो अपने आप को संतुष्ट लाभ करते थे। भारत के विश्वविख्यात आचार्यों की परंपरा को नोबेल पुरस्कार विजेता आचार्य सी वी रमन जैसे शिक्षकों ने आधुनिक युग में आगे बढ़ाया है। वे अपने विद्यार्थियों के साथ खूब घुल मिलकर मॉडर्न फिजिक्स के विभिन्न विषयों पर चर्चा करते थे। जो विद्यार्थी उनसे कोई अच्छा प्रश्न करते थे तो वे पुस्तकों से हटकर अपने विलक्षण अध्यापन से ऐसे जिज्ञासा जागृत करते थे कि उनके विद्यार्थी उन प्रश्नों के माध्यम से विश्व के महान वैज्ञानिकों के मूल ग्रंथों में अवगहन करने जानते थे। देवी और स्वजन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि बच्चों की देखभाल करना पौधों को जोर से सींचने जैसे बराबर है। स्कूल एजुकेशन शिक्षा व्यवस्था का आधार है। ज्ञान और कौशल तो कभी भी प्राप्त किया जा सकता है, परंतु बचपन में ही सदाचार की शिक्षा देना अधिक प्रभावी सिद्ध होता है। आरंभिक कक्षा में बच्चों के बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक विकास पर निष्ठापूर्वक ध्यान देकर हमारे शिक्षक अच्छे विद्यार्थियों और कर्तव्यनिष्ठा नागरिकों की भावी पीढ़ियां तैयार करते हैं। विद्यार्थियों ही शिक्षकों की पहचान होते हैं। विद्यार्थी अपने शिक्षकों द्वारा पढ़ाया गया पाठ्यक्रमों भले ही भूल जाए, लेकिन उनके व्यवहार को ये सदैव याद रखते हैं। अनेक विद्यार्थी आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिसरों से आते हैं। कुछ अनेक परिवार में पहली पीढ़ी के विद्यार्थी होते हैं। कुछ विद्यार्थी गांव के किसी सामान्य स्कूल से शहर के बड़े स्कूल में आते हैं और थोड़ा असहज हो जाते हैं। कुछ विद्यार्थी स्वभाव से ही संकुचित होते हैं। कुछ विद्यार्थी में बहुत प्रतिभा होती है, लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है तथा कुछ विद्यार्थियों को चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे सभी विद्यार्थी जो किसी कारण से कोई भी कमी महसूस करते हैं, उनमें आत्मविश्वास जगाना और उन्हें आगे बढ़ाना शिक्षकों का विशेष दायित्व होना चाहिए। संस्कृत भाषा के शब्द उद्धार का अर्थ होता है खींच कर बाहर निकालना या नीचे से ऊपर ले जाना। विद्यार्थियों का उद्धार करने का पुनीत अवसर केवल शिक्षकों को ही उपलब्ध होता है। हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्श को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हमारे देश में प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट 12 वर्ष पहले लगभग 4.5% था। अब ये ड्रॉप आउट रेट नहीं के बराबर है। ये उपलब्धि शिक्षकों के प्रयासों से संभव हो सकी है। इस राष्ट्रीय सफलता के लिए मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित ना हो। मैं चाहूंगी कि हमारे शिक्षक अपने स्नेह और समर्पण से सभी विद्यार्थियों में ज्ञान, प्रेरणा, नैतिकता और संवेदनशीलता का संचार करें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।
1: अपने संबोधन में शिक्षा और शिक्षा की भूमिका के महत्व को रेखांकित किया माननीय राष्ट्रपति।
2: राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो कार्यक्रम का समापन किया जाए।
1: और अब
3: सभी से निवेदन है राष्ट्रगीत तथा राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

0: the Honorable President of India doing namaskar to all the awardees and other dignitaries who are present at the plenary hall of the Vigyan Bhavan. And the Honorable President of India is now departing from the plenary hall of Vigyan Bhavan, and the Minister for Education, the Ministers of State for Education, and the Departmental Secretaries of the Department of School Education and Literacy, the Department of Higher Education, and the Department of Skill and Entrepreneurship now escorting the Honorable Rashtrapati ji towards from the plenary hall of the Vigyan Bhavan. And as the Honorable Rashtrapati ji in her address said, that the society which respects teachers is indeed a progressive one, and she congratulated all the winners of the awards. She said that teachers from Ladakh to the Andaman and Nicobar Islands and from Arunachal Pradesh to Gujarat are all playing a pivotal role in furthering education and nurturing our students. She hailed the efforts of the Department of School Education, Higher Education and Skills and Entrepreneurship. She expressed the confidence that India will emerge as a knowledge economy and also the skill capital of the world. She mentioned about the reputation of the teachers of India's ancient Nalanda University, which spread far and wide and attracted students from all over the world. And she said that in the last 12 years, the primary school dropout rate has come down to almost nil.
1: आज के इस समारोह में हमें एक महत्वपूर्ण संदेश मिलता है, राष्ट्र निर्माण केवल बड़ी परियोजनाओं से नहीं होता, राष्ट्र निर्माण कक्षा में होता है। श्रोताओं, अब समारोह अपने समापन की ओर बढ़ रहा है। आज का ये आयोजन हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि शिक्षक केवल भविष्य देश के नागरिक नहीं बनाते, वे भविष्य भारत का निर्माण भी करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किए गए सभी शिक्षक हमारे लिए प्रेरणा है। उनके विद्यालयों को बधाई, उनके विद्यार्थियों को बधाई, उनके परिवारों को बधाई, और भारत के प्रत्येक शिक्षक को हमारा सादर नमन। इसी भावना के साथ विज्ञान भवन नई दिल्ली से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 का ये विशेष प्रसारण संपन्न होता है। इस प्रसारण को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग दिया अशोक कुमार मिश्रा और बाबूलाल मीणा ने, हमारे ओबी इंचार्ज थे वीके तोमर और प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार। मैं शोएब सियार खान अपने साथी कमेंटेटर कौशिक राय के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलता हूं। नमस्कार।
2: अभी आप नई दिल्ली के विज्ञान भवन से भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित किए राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार समारोह का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे शोएब सियार खान हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में।
3: You were listening to a live broadcast of the presentation ceremony of the National Award to Teachers organized by the Ministry of Education, Government of India, in the gracious presence of Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, at Vigyan Bhavan, New Delhi. Our commentators were Shoaib Siyar Khan in Hindi and Kaushik Roy in English.
4: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जय
5: एवं बाल विकास मंत्रालय को सौंपी गई है। इस मंत्रालय में स्वास्थ्य शिविरों, टीकाकरण और पोषण संबंधी दिशा निर्देशों के प्रचार में तकनीकी एवं चिकित्सकीय सहयोग भी प्रदान करता है, और साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो गांव और ब्लॉक स्तरों पर जागरूकता फैलाने का काम करते हैं, वो माताओं से संपर्क साधने और पोषण वितरण करने का काम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आशा कार्यकर्ता द्वारा ही किया जाता है। जैसे आंगनवाड़ी केंद्रों में गर्भवती माताओं एवं धात्री माताओं को उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार भोजन और राशन वितरित किया जाता है, जिसमें होता है भुना हुआ गेहूं, सोयाबीन का आटा, दलिया, सत्तू, मूंगफली का पैकेट, सुपोषण पैकेट, साथ ही 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में ही पका हुआ भोजन, खिचड़ी, दलिया, दाल चावल या पूरी सब्जी वितरित की जाती है। तो ये तो हुई हमारी आज की पोषण सप्ताह की जानकारी, और इसी के साथ अब आनंद उठाएं संगीत का, जिसे गुनगुनाया है लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर ने।

श्रोताओं, महिला प्रगति समाज के सर्वांगीण विकास का मुख्य आधार है। जब महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के पुरुषों के समान ही अवसर प्राप्त होते हैं, तब न केवल एक परिवार बल्कि पूरा राष्ट्र सशक्त बनता है। आज महिलाएं राजनीति, विज्ञान, खेल और व्यापार जैसे हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। उनकी आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता ने उनके प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को बदला है। आज की महिला हर क्षेत्र में, जैसे तकनीक, शिक्षा, विज्ञान, व्यापार और राजनीति में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। आज की महिला अब केवल घरेलू जिम्मेदारी तक सीमित नहीं है। श्रोताओं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक ऐसी महिला की जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत से नारी समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षिका अवार्ड 2026 की विजेता सोमा मंडल के बारे में। दिल्ली के एक स्कूल की विज्ञान की शिक्षिका सोमा मंडल, जिन्होंने जलवायु केंद्र पाठ्यक्रम को तैयार किया, जिसमें विद्यार्थी को जलवायु से जुड़ी सभी समस्याओं और उनसे जुड़ी प्रत्येक गतिविधियों में भाग लेने का मौका दिया जाता है, जिसमें 126 देशों से लगभग 12,000 लोगों ने नामांकन फॉर्म भरा था, जिसमें सोमा मंडल सहित मात्र 9 लोगों को क्षेत्रीय विजेता घोषित किया गया। अगर बात करें सोमा मंडल की उपलब्धि की, तो इन्होंने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय दौर जीतने के बाद 2 जून 2026 को वैश्विक खिताब जीतने के लिए जनता के 40% वोट हासिल किए थे। इनका मुख्य कार्य जलवायु और पर्यावरण शिक्षा है। 10 वर्षों से अधिक शिक्षण अनुभव भी इनके पास है। और साथ ही बात करते हैं इनके योगदान की, तो सोमा मंडल ने जलवायु पर केंद्रित एक विशेष पाठ्यक्रम विकसित किया, जो छात्रों को पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए व्यवहारिक समाधान तैयार करने के लिए सक्षम है। सोमा मंडल की खास बात यह है कि उनका उद्देश्य केवल बच्चों को पढ़ाना नहीं, बल्कि उन्हें क्लाइमेट एक्शन लेने वाले आत्मनिर्भर और जिम्मेदार चेंज मेकर बनाना है। तो बहनों, अभी हमने जाना कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षिका अवार्ड से सम्मानित सोमा मंडल को।

0: श्रोताओं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में हम आज लेकर आए हैं शिक्षिका श्रीमती माया श्रीवास्तव को एक भेंट वार्ता के माध्यम से। तो आइए उन्हीं से जानकारी प्राप्त करते हैं शिक्षा दिवस क्या है और क्यों है जरूरी, जिसके लिए सुनते हैं यह भेंट वार्ता।
1: माया जी नमस्कार।
2: नमस्कार
1: माया जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: माया जी। जैसे कि आज हम सब जानते हैं कि आज शिक्षक दिवस है
2: जी।
1: और शिक्षक दिवस उन तमाम हमारे पथ दर्शकों को सम्मानित करने का दिन है जो हमारे जीवन को दिशा और आकार देते हैं। यह शिक्षक दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और एक महान शिक्षाविद सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो माया जी, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि किसी शिक्षक के जीवन में एक विद्यार्थी का या विद्यार्थी के जीवन में शिक्षक का क्या महत्व होता है?
2: शिक्षक और विद्यार्थी एक दूसरे के पूरक हैं। बिना विद्यार्थी के शिक्षक अधूरा है, इसी तरह विद्या अध्ययन के लिए शिक्षक की भी आवश्यकता होती है ना। यदि विद्यार्थी को शिक्षित करना है तो उसको एक शिक्षक चाहिए ही। इसी तरह शिक्षक को भी जब किसी विद्यार्थी को पढ़ाना होता है तो उनके लिए विद्यार्थी का होना बहुत आवश्यक है। इस तरह से एक दूसरे के पूरक शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों हैं।
1: बिल्कुल माया जी, गुरु और शिष्य के रिश्ते में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? जैसे कि हम अक्सर सुनते आते हैं कि हम जब गुरु की बातों को भरोसा नहीं करते, कुछ बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन के लिए वो जरूरी है, सर्वोपरि।
2: क्या है कि गुरु यदि सच्चाई और ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाता है और उनसे मित्रवत व्यवहार करता है तो बच्चे स्वाभाविक है कि शिक्षक की बात मानते हैं, शिक्षक को अपना गुरु मानते हैं। शिक्षक को हमेशा शिष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए, उनकी हर छोटी छोटी बातों को सुनना चाहिए और बड़ी ईमानदारी से उनकी बातों का उत्तर देना चाहिए। कभी अगर शिक्षक कोई बात उनको कहना है तो इतने प्रेम से कहें कि बच्चे उनकी बात को सुने और सुन करके उनकी बात का हमेशा अनुसरण करें और उनको ये लगे कि शिक्षक ही हमारे सर्वोपरि है। इसलिए गुरु और शिष्य में सामंजस्य बनना बहुत जरूरी है। आज का परिवेश थोड़ा बदलता जा रहा है लेकिन फिर भी बहुत प्रयत्न करना चाहिए शिक्षक।
1: माया जी, कि अच्छा शिक्षक कैसा होता है, उसमें क्या खूबियाँ हैं?
2: अच्छे शिक्षक में तो बहुत सारी खूबियाँ होना चाहिए। यदि अच्छा शिक्षक है तो बच्चों को सही रास्ते पे ला सकता है। जैसे कोई भी बात अगर शिक्षक को कहना है उनको स्पष्ट संवाद करना चाहिए। कोई बात कहना तो क्लियर बात कहें, बच्चों को जो बात समझ में आए बहुत अच्छी तरीके से है। कोई एक बार अगर शिक्षक ने कह दिया तो बच्चे उसको सुने और उसका अनुसरण करें। दूसरा, जो सब्जेक्ट या विषय जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उस पे उनको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तो अपनी अगर बच्चा कोई भी प्रश्न करता है तो वो तुरंत उसका सटीक उत्तर दें, बच्चों को समझ में आए, है ना। और बच्चों की बात सुनने के लिए शिक्षक के ऊपर धैर्य भी हो और सहानुभूति भी हो। कई बार बच्चे घर में किसी बात पे नहीं समझ पाते हैं या संतुष्ट नहीं रहते किसी चीज से, लेकिन अगर शिक्षक से बात करें तो शिक्षक को उनकी बातों को बहुत धैर्य और सहानुभूति से उत्तर देना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। और शिक्षक का प्रेरणादायक स्वभाव भी होना चाहिए। किसी बात को कहें तो बच्चों को प्रेरणा मिले, उनका अनुसरण करें। शिक्षक की अगर अच्छे तरीके से नहीं जाएंगे या अच्छे तरीके से नहीं रहेंगे तो बच्चों को क्या सिखाएंगे, है ना। और इस तरह से क्या है, आपस में सभी वर्ग के बच्चे रहते हैं तो बच्चों में ये भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसे यूनिफॉर्म रहता है स्कूल में, बहुत अच्छा रहता है, सभी बच्चे समान रहते हैं और आपस में प्रेम पूर्वक रहें, कभी ऊंच नीच का भी भेदभाव नहीं रहना चाहिए।

0: नहीं है, हिंसा की भावना,
1: हिंसा की भावना हाँ ना रहे।
0: माया जी आपने बहुत अच्छी बात कही, यानी कि शिक्षक हमारे भविष्य का निर्माता है,
1: निर्माता भविष्य का तो निर्माण करता ही है।
0: माया जी आखिर में हम जानना चाहेंगे किस तरह कोई शिक्षक किसी भी विद्यार्थी का जीवन उज्जवल बना सकता है या जीवन के उतार चढ़ाव को सहने और उसका हल निकालने में सक्षम होता है, ये एक शिक्षक के हाथ में होता है, तो थोड़ा सा इसको प्रकाश डालिए।
1: शिक्षक समाज और राष्ट्र के निर्माता होते हैं,
0: बिल्कुल
1: है ना, समाज का भी निर्माण करते हैं, राष्ट्र का भी निर्माण करते हैं, क्योंकि समाज में बच्चे रह के जब आगे बढ़ते हैं तो वो राष्ट्र का निर्माण करते हैं। वो तो केवल ज्ञान और का ही संचार नहीं करते हैं बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास करते हैं, है ना, बच्चे जो है उनके व्यक्तित्व का विकास होता है, उनके चिंतन का विकास होता है, आगे चल के वही बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, कमिश्नर, कलेक्टर, SP सभी बनते हैं। तो जब उनका शुरू से ही व्यक्तित्व का अच्छा उत्थान होगा तो आगे चल के बहुत अच्छे से बढ़ेंगे, आगे चल के वो चलेंगे, उनका आचरण अच्छा रहेगा, है ना। और बच्चों के साथ ही अच्छा आचरण करने से क्या होता, बच्चे अपने शिक्षक को अपना गुरु मानते हैं और उन्हीं के अनुरूप चलते हैं। तभी कोई बात आती है या तभी कोई शिक्षक मिल जाता है, तो बच्चे अगर अच्छी पोस्ट में रहते हैं, अगर अपने शिक्षक को पहचानते हैं तो शिक्षक बहुत प्रसन्न होता है, तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज यहाँ पहुँच रहे हैं।
0: बिल्कुल
1: इस तरह से
0: एक विद्यार्थी की सफलता होती है तो कहीं ना कहीं शिक्षक भी खुद को सफल महसूस करता है। जी बिल्कुल। तो माया जी आपने बहुत अच्छा कहा, हमको इस बात पे रामायण की एक चौपाई याद आ रही है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माता, यानी कि गुरु की तुलना माता पिता के बराबर ही या कि उनसे ऊपर भी की गई है।
1: बिल्कुल हाँ, तो जैसे तो एक और है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, है ना, ये भी एक है
0: परिहारी परिवार की।
1: बिल्कुल हाँ, तो ये क्या मतलब, ईश्वर ने भी गुरु को सर्वोपरि माना है ना।
0: तो माया जी क्योंकि आप भी शिक्षा में, शिक्षा जगत में विद्यार्थियों के बीच में एक बहुत लंबा अवसर दी है, तो और आप तो बहुत अच्छी तरह से जानती हैं और समझती हैं विद्यार्थियों के जीवन को। माया जी ने हमारे कार्यक्रम के लिए आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद,
0: नमस्कार।
2: श्रोताओं, तो अभी हमने सुनी यह भेंट वार्ता और जाना कि किस तरह शिक्षक विद्यार्थी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और हमें क्यों अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। दे रही थी शिक्षिका श्रीमती माया श्रीवास्तव। श्रोताओं, बरसात अपनी चरम पर है, हर तरफ पानी ही पानी, हवा में नमी और मौसम में उतार चढ़ाव। जी हाँ, ऐसे में हमें अपनी त्वचा की थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ती है। जैसे इस दलदल या यूं कहें कि चारों तरफ जमा पानी में मच्छर पनपते हैं, तो ऐसे में हमें अपनी त्वचा या हाथ पैर में कपूर मिश्रित नारियल तेल लगाना चाहिए। बालों में अतिरिक्त नमी से रूसी होती है, जिसके लिए सप्ताह में कम से कम 2 या 3 बार अच्छे शैम्पू से बालों को साफ करना चाहिए। घर से बाहर निकलते वक्त छाता या रेनकोट लेकर निकलें, ताकि बारिश में भीगे ना, और अगर भीग भी गए तो घर आकर कपड़ा बदलें, वरना आपको खुजली की समस्या हो सकती है। साथ ही बरसात के मौसम में हमारा हाजमा थोड़ा कमजोर होता है, तो ज्यादा मसाले वाला खाना ना खाएं और हो सके तो हेल्दी डाइट लें, जिससे आपका स्वास्थ्य बरसात के मौसम में भी अच्छा रहेगा। तो श्रोताओं, अभी कल ही हम सब ने अपने तारणहार भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पूरे धूमधाम से मनाया है। पूरा भारतवर्ष झूमा है, नाचा है और गुनगुनाया है, तो क्यों ना हम भी इस कृष्ण भजन के माध्यम से आज झूमें, गुनगुनाएं और सुने यह गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मन्ना डे ने।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
9: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब प्रस्तुत है तारा शुक्ला द्वारा गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है। लीजिए प्रस्तुत है पहला गीत कजरी।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे तारा शुक्ला द्वारा गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत, जहां हम आपको सुनवाएंगे अखिलेश द्विवेदी द्वारा गाए गीत और भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे अखिलेश द्विवेदी द्वारा गाए गीत और भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति था। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है अनुपम आमोद की आवाज में, फिल्म आक्रोश से।

प्रीतम का संगीत इरशाद कामिल के लिखे बोल, अनुपम आमोद की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म आक्रोश से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है मोहित चौहान की आवाज़ में, फिल्म का नाम है शॉर्टकट रोमियो।

0: हिमेश रेशमिया का संगीत शब्बीर अहमद के लिखे बोल, मोहित चौहान की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म शॉर्टकट रोमियो से। और इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन महान शिक्षाविद और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं दी और डॉ. राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने, उनके चरित्र का निर्माण करने और उन्हें बेहतर भविष्य के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

0: में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से चुने गए 48 स्कूल शिक्षकों को ये पुरस्कार दिया गया। इनमें मध्य प्रदेश के 2 शिक्षक, भोपाल की डॉक्टर अर्चना शुक्ला और सीधी जिले के शैलेन्द्र प्रताप सिंह भी सम्मिलित है। राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बिना विकसित भारत का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। वहीं भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 33 शिक्षकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। इसी दिशा में शिक्षक पात्रता परीक्षा TET को ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।
1: TET के बारे में निर्णय किया है कि जिनको ये एग्जाम देना वो ऑफलाइन एग्जाम दिलाना चाह रहे हैं। उसी के साथ साथ शिक्षा विभाग के आधार पर भी बहुत सारे प्रकार के बदलाव लाते हुए शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए यशस्वी राज्यपाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार वो सब करने जा रही है, जिसके कारण से सरकारी स्कूल किसी भी हालत में प्राइवेट स्कूल से 19 से नहीं होंगे, 21 से होंगे।
0: केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज इंदौर में विस्तारित मेट्रो सेवा का शुभारंभ करेंगे। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में शाम 4 बजे आयोजित समारोह में इंदौर मेट्रो का गांधीनगर से मालवीय नगर चौराहा तक विस्तार किया जा रहा है। ये सेवा कल 6 सितम्बर से आम यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेगी। उधर जबलपुर में शहर के सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में PME बस सेवा का पहला सफल ट्रायल कल लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह की उपस्थिति में किया गया। शहर को PME बस सेवा के तहत 100 बसें आवंटित की गई हैं, जिनमें से 40 वाहन डिपो पहुंच चुके हैं। प्रदेश में बारिश के कारण कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। इसे देखते हुए आज पन्ना सहित कुछ जिलों में स्कूल बंद रखने का फैसला किया गया है। बारिश के चलते नर्मदापुरम जिले में नर्मदा और तवा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। विदिशा जिले में बेतवा सहित अन्य सहायक नदियों में पानी की आवक बढ़ी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल स्थित राज्य आपदा प्रबंधन कक्ष पहुंचकर प्रदेश के विभिन्न जिलों में अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सहायता और व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मौसम विभाग के अनुसार आज शिवपुरी और शिवपुरी सहित 17 अन्य जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा और शहडोल संभागों के जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत पिपरिया कृषि उपज मंडी में जनसंवाद शिविर का आयोजन किया गया और आगरमालवा जिले की सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के अवसर पर कल नन्हे मुन्ने बच्चों ने राधा एवं कृष्ण की मनमोहक वेशभूषा धारण कर प्रस्तुतियां दी। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 2:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
3: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विकसित भारत का सपना शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से ही साकार होगा। उन्होंने 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने की अपील की। उन्होंने बच्चों का स्क्रीन समय कम करने, खेलकूद और बाहरी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे।

0: बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव अभियान जारी। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को 95 टन राहत सामग्री भेजी और अधिक राहत सामग्री के साथ बेली ब्रिज भेजे जाएंगे। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज शाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशियाई जोड़ी से होगा और T20 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज रात भारत और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए ही विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है वो सही मायनों में प्रगतिशील समाज होता है।
1: हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित ना हो।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक अग्रिम पंक्ति के राष्ट्र निर्माता हैं।
1: द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हमारे देशवासी उनके प्रति एवं समस्त शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है और समाज सही अर्थ में प्रगतिशील होता है। शिक्षक के बीच आकर मेरे अंदर विद्यमान विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही जीवंत हो जाता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से चुने गए 48 स्कूल शिक्षकों को ये पुरस्कार दिए गए। उन्होंने उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। इनमें केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों के 12, राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 5 तथा पॉलिटेक्निक के 4 शिक्षक और संकाय सदस्य शामिल हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में देशभर के शिक्षकों को उनकी निस्वार्थ सेवा और भारत के भविष्य को आकार देने में उनके योगदान के लिए नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में मुलाकात की झलकियां साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर विद्यार्थी के भीतर का बचपन जीवंत रहे। इसके लिए शिक्षकों को अपने भीतर के बच्चे को भी जीवित रखना होगा। श्री मोदी ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय की आदत पर चिंता जताई।
2: एक विषय है स्क्रीन टाइम, अब ये एक प्रकार का एडिक्शन है। मेरे मन में एक विचार आता है, या तो वो बच्चा खेल कूद के अंदर बहुत रुचि लेने लग जाएगा। खेल कूद मतलब वो वीडियो गेम नहीं, मैंने एक्चुअली मैदान में वो खेलना, तो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ सकता। और ऐसे में क्रिएटिविटी के तरफ हम बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, और हमने ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रमों को आदत बनानी चाहिए।
0: प्रधानमंत्री ने नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे पर भी चिंता व्यक्त की।
2: ड्रग्स का मामला बड़े शहरों में या यूनिवर्सिटी में रहा सा नहीं, पता ही नहीं किसी को क्या है, कोई आकर के दे देता है। क्या उस संबंध में लगातार आज के जो आप टीचर्स हैं, क्या अवेयरनेस उसके कारण क्या भय है? प्रकार से मैं पूरे शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए, और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते।
0: प्रधानमंत्री ने स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता का भी उल्लेख किया।
2: मैं काशी का सांसद हूँ, तो मैंने वहाँ एक अभियान लिया ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का, और मुझे खुशी है कि इन दिनों महिलाएं सामने से आकर के अपने विषय में चेकअप करा, पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। दूसरा एक अच्छा अनुभव आया, अभी तो एक दिन में मैक्सिमम लोगों का चेकिंग करने का ग्रीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने रजिस्टर किया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए बच्चों को कक्षा से बाहर ले जाने और उन्हें वास्तविक जीवन के कौशल तथा विभिन्न कार्यों से जोड़ने के महत्व पर जोर दिया। गृह मंत्री अमित शाह, शिक्षा मंत्री प्रहलाद

0: जोशी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिक्षक दिवस के अवसर पर देशवासियों और शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि शिक्षक पीढ़ियों से विद्यार्थियों को ज्ञान की राह दिखा रहे हैं और देश की निरंतर प्रगति में योगदान दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक वीडियो संदेश में कहा कि शिक्षक ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास के साथ छात्रों के भविष्य को सशक्त बनाते हैं।
1: इन शिक्षकों ने अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग तरीकों से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। किसी ने शिक्षण में नया प्रयोग किया है, किसी ने तकनीक का प्रभावी उपयोग किया है, किसी ने वंचित और कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के लिए काम किया, तो किसी ने विज्ञान, खेल, कला और कौशल के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रतिभा को आगे बढ़ाने का काम किया है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे समारोह को संबोधित भी करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। यहाँ वाणिज्य, अर्थशास्त्र और प्रबंधन की पढ़ाई होती है। कॉलेज की स्थापना 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का मंच कल शुरू हो गया। शिखर सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां और सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। आज मोटर कारक्रीट का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक मार्गों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। 22 से 28 सितंबर तक चलने वाले इस सत्र में वे भारत का पक्ष रखेंगे। ये उच्च स्तरीय सत्र ऐसे समय हो रहा है जब दुनिया कई भू राजनीतिक संघर्षों और बढ़ते आर्थिक दबावों का सामना कर रही है। हॉर्मुस जलडमरू मध्य में व्यवधान के कारण खाद्य और ईंधन की बढ़ती कीमतें भी चिंता का विषय बनी हुई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित त्रिशूली बाजार क्षेत्र से 5 वर्षीय बच्चे सहित 3 और भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। इससे शरणार्थियों की कुल संख्या 169 हो गई है। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं, वहीं 1907 भारतीय चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास इन शरणार्थियों को हवाई मार्ग से वापस लाने में सहायता कर रहा है। श्री जायसवाल ने कहा कि तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में कोई भी भारतीय यात्री फंसा हुआ नहीं है। प्रवक्ता ने बताया कि 26 अगस्त को विनाशकारी बाढ़ के बाद से भारत ने नेपाल को लगभग 95 टन राहत सामग्री भेजी है। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार सहायता जारी रखेगा। आने वाले दिनों में भारत नेपाल सरकार के अनुरोध पर अधिक फोरेंसिक किट, बेली ब्रिज और अतिरिक्त सामग्री भेजने की योजना बना रहा है। बेली ब्रिज पूर्व निर्मित और मॉड्यूलर स्टील पुल होता है, जिसे कम समय में और बिना भारी मशीनों के आसानी से जोड़ा या स्थापित किया जा सकता है। इस बीच नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1344 हो गई है। खोज और बचाव अभियान जारी है। लगभग 5000 लोग अभी भी लापता हैं। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने तेलंगाना में एक महिला मंत्री को हटाए जाने को अन्यायपूर्ण बताया है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में डॉक्टर त्रिवेदी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की चुप्पी पर सवाल उठाया। झारखंड में प्रश्न पत्र लीक का उल्लेख करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि ये सिर्फ प्रश्न पत्र लीक नहीं बल्कि प्रश्न पत्रों की लूट थी।
4: जो कुछ झारखंड में तथ्य प्रकाश में आया है उसने यह साफ किया है कि यह पेपर लीक नहीं बल्कि पेपर लूट है, और इस लूट की छूट कौन दे रहा है यह कम से कम राहुल गांधी जी को बताना चाहिए। परंतु ऐसा

0: प्रतीत होता है कि जितने भी राजनीतिक दल दिल्ली में परीक्षा के विषय को लेकर दहाड़ और चिंघाड़ रहे थे, झारखंड के मुद्दे के ऊपर तीन बंदर हो गए।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने

0: बिहार में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। लगातार नदियों के उफान पर रहने से नए क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा है। एक रिपोर्ट।
1: बिहार में गंगा 12 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। पटना समेत 14 जिलों में हालात गंभीर बने हुए हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार पटना में गंगा नदी खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर ऊपर बह रही है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि इसके गांधी घाट गेज स्थल पर नया उच्च जल स्तर सृजित होने की आशंका है। इसके चलते नदी के प्रवाह क्षेत्र विशेषकर दियारा क्षेत्रों में दबाव बढ़ सकता है। विभाग ने संबंधित जिलों को आपदा के मद्देनजर सभी जरूरी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज राष्ट्रीय राजधानी के अलग अलग हिस्सों में हल्की से तेज बारिश हुई। और अब बात खेलों की। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी आज शेंजन में मेंस डबल्स सेमीफाइनल में मलेशियाई जोड़ी नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी कियोंग से खेलेगी। भारतीय जोड़ी ने कल क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारूप रास्मुसेन को हराया था। एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच दुबई में रात 8 बजे से खेला जाएगा। महाराष्ट्र में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ा दही हांडी उत्सव आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: मुंबई और आसपास के जिलों में भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा पारंपरिक उत्सव दही हांडी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस आयोजन में युवा प्रतिभागी मानव पिरामिड बनाकर ऊंचाई पर लटके दही, दूध या मक्खन से भरी मटकी फोड़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 1,60,000 गोविंदाओं के बीमा कवरेज की व्यवस्था भी की है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विकसित भारत का सपना शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से ही साकार होगा। उन्होंने 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव अभियान जारी। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को 95 टन राहत सामग्री भेजी और अधिक राहत सामग्री के साथ बेली ब्रिज भेजे जाएंगे। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज शाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशियाई जोड़ी से होगा। और टी20 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज रात भारत और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी रेडियो दोस्त रक्षा तंवर। कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद के गीत और शामिल करते हैं आपके द्वारा भेजे गए पत्रों को। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आप ही के पसंद के इस गीत के साथ, जो गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने फिल्म लैला मजनू से। और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है फवाई बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव की ओर से। ज़िला बुरहानपुर मोहत से सदाबहार रेडियो श्रोता संघ के सदस्य मुशर्रफ खां तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज तड़वी, बिटिया रोसमीन, तैमूर तड़वी, भैया तड़वी, रीना मुशर्रफ तड़वी, रोजूबाई तड़वी, सनी बाबू, परू तड़वी और उनके पूरे परिवार की ओर से। तो प्रस्तुत है आपके लिए अगला गीत लैला मजनू फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

मदन मोहन का संगीत साहिर लुधियानवी के लिखे बोल, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म लैला मजनू से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म अब्दुल्ला से, और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है ज़रूर वरुण महाराष्ट्र से, बाबा साहेब वाड़ूदे, मीनाक्षी चरपे, राजनी कानीरे और कार्तिक साथी युवराज की ओर से, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा की ओर से भी। तो लीजिए प्रस्तुत है आपकी पसंद का ये गीत फिल्म अब्दुल्ला से।

आरडी बर्मन का संगीत आनंद बख्शी के लिखे बोल, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म अब्दुल्ला से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से, और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है दिल्ली शहर मूरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार की ओर से। गोला बाजार बक्सर से लिखा है मंजू गुप्ता, पूनम गुप्ता, कविता गुप्ता, संजना और सानवी ने। इसके अलावा थाना रोड बक्सर से ज्योत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष, आयुषी और सानवी ने। इसके अलावा एक और पता हमें मिला है, वो है असालतपुरा मुरादाबाद से मोहम्मद फरीद अंसारी, बिलाल अंसारी और ज़ुबेर अंसारी की ओर से। तो आप सभी श्रोताओं की पसंद का ये गीत आपको सुनवाते हैं आपकी रेडियो सेट्स पर।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, वर्मा मलिक के लिखे बोल, लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से। कार्यक्रम है आपकी फरमाइश का और अगला गीत आपकी फरमाइश पर लता मंगेशकर की ही आवाज़ में सुनवा रहे हैं आपको फिल्म गुमनाम से। इस गीत की फरमाइश हमें मिली है

आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर राही, सरिता गवाड़कर, प्रिंस एकांश गवाड़कर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाड़कर, प्रणीता गवाड़कर, अर्जुन गवाड़कर टुक टुक, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवाड़कर, सुमित गवाड़कर और कुमारी धोनी गवाड़कर परी की ओर से। एक और पत्र मिला है हमें हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से, लिखने वाले मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, हिना कौसर और साजिता रानी की ओर से। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है अगला गीत फिल्म गुमनाम से।

शंकर जयकिशन का संगीत हसरत जयपुरी के लिखे बोल, लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म गुमनाम से। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाएंगे, जिसकी फरमाइश हमें मिली है राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश की ओर से, छत्रपति संभाजी नगर से। अमर प्रेम फिल्म के गीत के लिए, जिसे गाया है किशोर कुमार ने। और एक और पत्र हमें मिला है ग्राम खकल, तहसील कौच, ज़िला जालौन, उत्तर प्रदेश से, दीपक सिंह गुर्जर, सत्यम सिंह गुर्जर, अंशराज सिंह गुर्जर और उनके पूरे परिवार की ओर से। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म अमर प्रेम से।

0: आर डी बर्मन का संगीत आनंद बख्शी के लिखे बोल, किशोर कुमार की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म अमर प्रेम से। और इसी गीत के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हमारा पता नोट करें ताकि इसी तरह आप अपने पत्रों को हमें भेजते रहें। कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी श्यामला हिल्स भोपाल, मध्य प्रदेश। पिन कोड है 462002। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन महान शिक्षाविद और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बिना विकसित भारत का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 33 शिक्षकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। इसी दिशा में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET को ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर में विस्तारित मेट्रो सेवा का शुभारंभ करेंगे। ये सेवा कल 6 सितंबर से गांधीनगर से मालवीय नगर चौराहा तक आम यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल स्थित राज्य आपदा प्रबंधन कक्ष पहुंचकर प्रदेश के विभिन्न जिलों में अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सहायता और व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। और मौसम विभाग ने आज श्योपुर और शिवपुरी सहित 17 अन्य जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब हम आपको आज की सांध्यकालीन सभा के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण दे दें। शाम 5:02 पर सुनिए युवा साथियों का विशेष कार्यक्रम युवाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति होगा। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान प्रसारित होगा आज शाम 6:30 पर। रात 7:30 पर सुनिए कार्यक्रम किसान वाणी। महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के मध्य दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल सुनवाया जाएगा आज रात 8 से। इसे हम खेल की समाप्ति तक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी भोपाल है। अब हमारी ये सभा मीडियम वेव पर समाप्त होती है। शाम 5 बजे से मीडियम वेव पर सभा पुनः आरंभ होगी। इस दौरान डीटीएच के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा।

ये आकाशवाणी भोपाल है। लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है तारा शुक्ला द्वारा गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है। कार्यक्रम आरंभ करते हैं कजरी गीत के साथ।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे तारा शुक्ला द्वारा गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत, जहां हम आपको सुनवाएंगे अखिलेश द्विवेदी द्वारा गाए भजन और गीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे अखिलेश द्विवेदी द्वारा गाए गीत और भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज़ में, फिल्म मेरे यार की शादी है से।

जीत प्रीतम का संगीत, जावेद अख्तर के लिखे बोल, आशा भोसले की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म मेरी यार की शादी है से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है सोनू निगम की आवाज़ में, फिल्म मुझे कुछ कहना है से।

अनु मलिका संगीत, समीर के लिखे बोल। सोनू निगम की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म मुझे कुछ कहना है से। कार्यक्रम में आगे सुनते हैं गीत सुनील चौहान और आनंद राज आनंद की आवाज़ में फिल्म कांटे से।

देव कोहली के लिखे बोल, आनंदराज आनंद का संगीत और उन्हीं की आवाज़, साथ ही सुनिधि चौहान गीत सुना आपने फिल्म कांटे से। कार्यक्रम है चित्रपट संगीत का और अगला गीत आपको सुनवाते हैं सोनू निगम की आवाज़ में, साथ है श्रेया घोषाल फिल्म खाकी से।

राम संपत का संगीत समीर के लिखे बोल श्रेया घोषाल और सोनू निगम की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म खाकी से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है सुनिधि चौहान और कृष्णा की आवाज में फिल्म 10 से।

0: विशाल शेखर का संगीत, पंछी जालौनवी के लिखे बोल, सुनिधि चौहान और कृष्णा की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म दस से। और इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा, स्वच्छ

स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।

0: ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: देशभर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन महान शिक्षाविद और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बिना विकसित भारत का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 33 शिक्षकों को सम्मानित किया। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज इंदौर में विस्तारित मेट्रो सेवा का शुभारंभ करेंगे। ये सेवा कल 6 सितंबर से गांधीनगर से मालवीय नगर चौराहा तक आम यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल में प्रदेश के विभिन्न जिलों में अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति का जायजा लेकर प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सहायता और व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल 6 सितंबर को रायसेन जिले के मंडीदीप और ओबेदुल्लागंज में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान गुना, शिवपुरा, शिवपुरी सहित 23 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है और महिला T20 एशिया कप के ग्रुप ए का आखिरी मुकाबला आज दुबई में रात 8 बजे से भारत और पाकिस्तान के बीच होगा। भारत थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुका है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान लोक।

नमस्कार श्रोताओं, विज्ञान लोक के इस नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दीपक राज तिवारी। आज का विषय है, क्या है भूविज्ञान। श्रोताओं, दिमाग में एक प्रश्न जरूर उठता है कि भूविज्ञान क्या है। वास्तव में देखा जाए तो इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड जी और लोगस, ग्रीक वर्ड है, जी का अर्थ होता है पृथ्वी, लोगस का अर्थ होता है विज्ञान, अर्थात पृथ्वी से संबंधित जो भी हम जानकारियाँ देते हैं या रखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, ये सभी भूविज्ञान की श्रेणी में आता है। इस तरह से हम देखते हैं, ये तो हमने समझा श्रोताओं भूविज्ञान क्या है। यहाँ हमको ये भी देखना है कि कई बार लोगों में, जनमानस में एक भ्रांति होती है, जियोलॉजी और ज्योग्राफी ये दोनों एक हैं या अलग अलग हैं। दोनों अलग अलग हैं। जियोलॉजी के अंदर हम पृथ्वी की सतह के ऊपर और नीचे गर्भ में जो भी संरचनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। वहीं जो ज्योग्राफी है उसमें, नाम हिंदी में इसको कहते हैं भूगोल, पृथ्वी की सतह के ऊपर जो खेत हैं, खलियान हैं, जंगल हैं, संरचनाएं हैं, जो कि पर्टिकुलर काम आती है जियोमॉर्फोलॉजी, जिसका टर्म होता है भू आकृति विज्ञान। भूगर्भ अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। हम यहाँ पर कुछ इसकी महत्वपूर्ण ब्रांचेस को देखेंगे, कौन कौन सी शाखाएं हैं के बारे में संक्षिप्त में इसको देखेंगे। यहाँ सबसे पहले जो एक

आम चलन में आता है वह है फिजिकल जियोलॉजी। जैसा कि नाम से हमको पता चल रहा है कि इसके अंतर्गत हम पृथ्वी की सतह के ऊपर पर्वत हैं, हिल है, रिवर है, तालाब हैं, महासागर हैं, इन सब का अध्ययन करते हैं। यहाँ एक चीज़ और हमको देखना होगा कि जो भूपटल जो होती है, पृथ्वी की जो सतह होती है, उस पर उत्पन्न जो परिवर्तन होते हैं उनको हम गतिकी भूविज्ञान के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ साथ जो ऊपर स्थित संरचनाएं होती हैं, जैसा मैंने आपको बताया, चाहे वो माउंटेन हो, हिल हो, या जो टोपोग्राफी जो होती है, स्थल आकृति होती है, उसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं उसका एक नया नाम है जियोमॉर्फोलॉजी। ये जियोमॉर्फोलॉजी, जैसा मैंने आपको प्रारंभ में बताया था, ज्योग्राफी में भी पढ़ाई जाती है। एक और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है, ब्रह्मांड के बारे में जब हम कोई अध्ययन करते हैं तो उसका नाम है कॉस्मोलॉजी। यहाँ दिमाग में एक प्रश्न उठता है आम श्रोताओं के कि पृथ्वी के अंदर आंतरिक संरचना क्या है, इसकी आयु क्या है, कैसे बनी हुई है, इसकी प्लेट विवर्तनिकी क्या है, ज्वालामुखी क्या है, भूकंप क्या है। यहाँ जब भूकंप आता है तो अचानक हमारे दिमाग में कई प्रश्न आते हैं। अभी आपने देखा होगा कि फ्रीक्वेंटली कई जगह भूकंप आते रहते हैं, यूं तो 100 से 250 के पर डे आते रहते हैं, लेकिन जो मेजर भूकंप होते हैं उनकी संख्या कम होती है। यहाँ सवाल आता है कि भूकंप होता क्या है। जैसा कि नाम से हमको पता चल रहा है कि भू अर्थात पृथ्वी, कंप यानी कांपना। इसको हम आम आदमी ऐसे समझ सकते हैं कि एक शांत जल में आपने कोई कंकड़ डाला तो उसकी एक लहर चारों तरफ उठती है। पृथ्वी में भी कुछ इसी तरह की हलचल होती है। हम जो शॉक होते हैं, उसके आघात जो होते हैं, उनको महसूस करते हैं। ये भी गहराई के आधार पर अलग अलग होते हैं, अत्यधिक गहराई वाले भूकंप, मध्यम भूकंप और सतही भूकंप सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। भूकंप की जब हम बात कर रहे हैं श्रोताओं, तो पूरे भारत को 5 भूकंपी जोन में बांटा गया है। यहाँ हमको ये भी पता चलता है इन जोन से, इनमें जो रहने वाले जो लोग हैं उनको अपने मकान किस तरह से बनाना चाहिए। भूकंप जो होता है, एक बात ध्यान रखें हम सब लोग, भूकंप कभी किसी को नहीं मारता। एक्चुअल में जो पृथ्वी की सतह के ऊपर जो इंजीनियरिंग संरचनाएँ होती हैं, उनके गिरने से, उनमें दबने से ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों का जो नुकसान जन और धन का होता है। इसी में ही यहाँ एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, भूकंप का जब नाम दिमाग में आता है तो बड़ी एक दहशत हो जाती है। यहाँ हमको दहशत नहीं फैलाना है, यहाँ ये देखना है कि बचाव के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। जैसे मोटे तौर पर यदि हम देखें, कोई भी ऊँची दीवार, इमारत, उसके नज़दीक खड़े नहीं होना चाहिए। खंबा हो बड़ा, उसके नज़दीक खड़े होने नहीं चाहिए। यदि हम घर के अंदर हैं तो एक काम कर सकते हैं कि अचानक हम पैनिक क्रिएट ना करें, ये ना हो जल्दीबाजी में सीढ़ी से उतर रहे हैं, आप धीरे धीरे उतरें। दूसरा एक और बात का ध्यान रखें, यदि आप उतर नहीं सकते हैं तो टेबल जो हो, हार्डबोर्ड जो हो, उसके नीचे आप छिप सकते हैं ताकि आपको कम से कम क्षति हो। एक और इसकी ब्रांच है, वो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के नाम से जानी जाती है। जैसा जब मैंने आपको बताया, जब भूकंप आता है तो अपने साथ तबाही भी लेकर आता है। यहाँ उसके फलस्वरूप जो पृथ्वी में जो टूट फूट अंदर, जो टूट फूट मोटे शब्दों में मैं आम श्रोताओं को समझाने के लिए कह रहा हूँ, इसमें स्ट्रक्चरल डिस्टर्बेंसेस जब होते हैं तो वो सारे के सारे इसमें अध्ययन किए जाते हैं। एक और इसकी है, आप लोगों के दिमाग में आएगा, खनिज विज्ञान। खनिज, इंग्लिश में इसको मिनरल कहते हैं, उसके बारे में भी जब अध्ययन किया जाता है तो उसको हम खनिज विज्ञान के तहत रखते हैं। यहाँ एक और अच्छी ब्रांच है, वो है पैथोलॉजी, सेल विज्ञान। आप लोगों ने देखा होगा जब आप सड़क के किनारे जाते हैं, नदी के किनारे जाते हैं, पुल के किनारे रहते हैं, तो जो कटिंग साइड होती है वहाँ पे रॉक्स जो होती हैं वो एक्सपोज देखने को मिलती हैं।

छोटी कक्षाओं में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा तीन तरह की शैलें होती हैं, आग्नेय शैल, अपसादी शैल और कायंत्रित शैल। इसके बाद यहाँ एक चीज़ और दिमाग में आती है कि पृथ्वी के अंदर हमको कई बार जीवाश्म भी मिलते हैं, इनका भी अध्ययन बड़ा रुचिकर होता है। ये जो जीवाश्म होते हैं, पुरातन काल में जो जीवित रहे थे, किसी भी कारण से वह पृथ्वी के गर्भ में चले गए, वहाँ उनका फॉसिलाइजेशन हो गया। वह हमको ये बताते हैं फॉसिल्स कि उस समय का वातावरण क्या था, क्यों ये एक्सटिंक्ट हो गए। जैसे मिड मीज़ोज़ोइक पीरियड में डायनासोर की यदि हम बात करें तो वो पूरे के पूरे डायनासोर अचानक सब नष्ट हो गए थे, एक्सटिंक्ट हो गए थे, बल्कि हम यूं कहें कि विलुप्त हो गए थे। एक और महत्वपूर्ण जो सभी के काम की चीज़ें हैं, आप लोगों को भी दिमाग में आ रहा होगा कि जब इतने मिनरल रिसोर्सेज हैं तो सारे मिनरल्स जो होते हैं वो आर्थिक महत्व के नहीं होते हैं। जब हम खदानें चालू करते हैं, माइंस चालू करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा गाँव में भी छोटे छोटे पट्टे मिलते हैं, बड़ी खदानें भी होती हैं जिनको शासन चलाता है या अंडरटेकिंग संस्थाएं चलाती हैं। यहाँ हम ये भी जानते हैं किसी भी देश की जो प्रगति होती है वह वहाँ उपस्थित आर्थिक खनिजों से आकी जाती है। जैसे उदाहरण के लिए किसी भी देश की बैकबोन यदि हम कहें तो वो होता है लोहा, आयरन होता है। इसके साथ साथ और भी आर्थिक महत्व के खनिज होते हैं। यहाँ हम देखते हैं हीरा जैसे है, कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो कि पर्टिकुलर सेल में ही देखने को मिलते हैं, जैसे हीरा है किम्बरलाइट सेल में ही मिलेगा। क्रोमाइट जो होता है वो एक पेरिडोटाइट सेल होती है उसमें मिलता है। यूं तो धात्विक खनिज होते हैं, अधात्विक खनिज होते हैं। इसके साथ साथ धात्विक की यदि हम बात करें, लोहा हो जाएगा, मैंगनीज हो जाएगा, कोयला जो होगा ये फ्यूल में आता है, और पेट्रोलियम, ये दो, ये जो रिसोर्सेज जो हो रहते हैं। इसके अलावा मूल्यवान जो धातुएं हैं जैसे स्वर्ण है, ये मूल्यवान में आता है। रेडियो एक्टिव धातु भी जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, ये सारी की सारी पृथ्वी के गर्भ में हमको देखने को मिलते हैं, या यूं कहें उसमें ये समाये हुए रहते हैं। अब एक सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो होता है वो होता है रत्न। इसके ऊपर पूरा एक रत्न विज्ञान है। सभी लोग, आप लोग देखते हैं, आप जब बड़े परेशान होते हैं तो किसी भी ज्योतिषी के पास जाते हैं, वो बताता है कि आप फलाना गोमित पहन लीजिए, पुखराज पहन लीजिए, नीलम पहन लीजिए। आखिर ये है क्या है? ये भी पृथ्वी के गर्भ में जैसे हीरा, बेरिल, पीला हरा पन्ना, ये एक चीज़। यहाँ हम देखें जब हीरे की बात आती है तो पन्ना एक जगह है, नाम पन्ना है, वहाँ पन्ना नहीं मिलता है, वहाँ हीरा मिलता है। मध्य प्रदेश में ये हम लोग नंबर वन पर हैं इसमें। इसके साथ जब हम इनको धारण करने की बात करते हैं, एक्चुअल में इनका एक स्ट्रक्चर होता है और ये कहा जाता है ये उस ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं, और पर्टिकुलर उस रेज का कंसंट्रेशन हमारी बॉडी के अंदर जाता है। यहाँ एक चीज़ और देखने वाली महत्वपूर्ण बात है श्रोताओं, आप जब प्रकृति में घूमते हैं तो कई कंदराएं देखने को मिलती हैं। ये जो पवन चलता है, वायु चलती है, उससे जो रॉक्स इरोड होती है तो ये केव्स का निर्माण होता है। इसके अलावा भूमिगत जल जो होते हैं उनके कारण भी केव्स का निर्माण होता है। यदि भोपाल के पास यदि आप जाएँ तो भीमबेटका एक जगह है, वहाँ अवसादी सेलों में केव्स देखने को मिलती हैं। पुरातन समय में जो मानव था वो उन केव्स में शेल्टर के रूप में रहा करता था, साथ में वहाँ वो पेंटिंग भी करता था। तो वहाँ आप देखेंगे तो आपको शैल चित्र भी देखने को मिलेंगे। भोपाल के आसपास ऐश टाइप की एक चैन है, उसमें इनकी संख्या ज़्यादा है। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जल विज्ञान के ऊपर आते हैं। पानी की यदि हम बात करें तो हमारी पृथ्वी पर 97.5% जल है, लेकिन वो जो जल है वो खारा जल है, हमारे काम का नहीं है। 2.5% जो जल है वह शुद्ध जल है, जिसमें कि हमको ग्लेशियर से मिलता है, नदियों से मिलता है, तालाब से मिलता है, पोखरों से मिलता है। ये जल आता कहाँ से है, ये बड़ी सोचने वाली बात है। जब बारिश का जल पृथ्वी की सतह पर गिरता है तो वहाँ पर दो तरह की क्रियाएं होती हैं। पहला तो जल का बहाव होगा, दूसरा वो पृथ्वी

पृथ्वी के अंदर पेनिट्रेट करेगा। यही जो जल होता है भूमिगत जल को बढ़ाता है। आजकल हम जो समस्या फेस कर रहे हैं वो गिरते जल स्तर की कर रहे हैं। हमने जंगल तो काट दिए, पेड़ जो होते हैं उसकी माताएं होती हैं, और जहां माता नहीं होगी वहां जल नहीं हो सकता, ये बात भी पक्की है। अब हमने पेड़ जब काट दिए हैं, कंक्रीट के जंगल जब हमने खड़े कर दिए हैं, अब हम सोचते हैं कि पानी की जो शॉर्टेज हो रही है पानी को लाया जाए। इसके लाने के या संग्रहण करने के जो तरीके हैं जो विज्ञान ने ईजाद किए हैं, शहरी क्षेत्रों के लिए सतही जल संरक्षण जो होता है रूफ वाटर हार्वेस्टिंग के नाम से इसको जाना जाता है, इसके लिए भी एक विधि है। उस विधि के तहत जो वर्षा का छती जल होता है, मतलब जो छत के ऊपर जो एकत्रित जल है उसको किस तरीके से नीचे उतारा जाए, पाइप के माध्यम से उसको नीचे उतारा जाता है। यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है कि इसमें एक फिल्टर लगा होता है। यहाँ इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है कि हम सब जानते हैं, हम भारतीय लोग हैं, सारा कवाड़ा जो होता है वो हम छत पर रखते हैं, और जब कंटिन्यूस रेन होती है तब तो ठीक है, और जब कंटिन्यूस रेन नहीं होती है तो सारा का सारा उसके ऊपर का कचरा नीचे आ सकता है। हमको ये चेक करना होगा कि वो फिल्टर होके आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके साथ हम एक चीज़ और देखते हैं कि जो पानी है ग्राउंड वाटर भी है, हम ये नहीं जानते ये कहाँ से होके आ रहा है। कई जगह रेडियो एक्टिव मिनरल्स भी हो सकते हैं, लोह मिनरल्स भी हो सकते हैं, एल्यूमिनियम के भी हो सकते हैं, क्रोमियम के भी हो सकते हैं, और हम सब जानते हैं कि जल जो होता है एक स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट होता है, घुलक होता है, सबको घुलने की शक्ति रखता है। जब हम उस पानी को पीते हैं तो शरीर के ऊपर कई सिम्टम हमको देखने को मिलते हैं, जैसे नाइट्रेट में ब्लू बेबी एक डिसीज़ होती है, वह डिसीज़ देखने को मिलती है। आयरन रिच एरिया में यदि हम पानी को पी रहे हैं तो वहाँ आयरन का होगा, कैल्शियम रिच यदि एरिया में हम रह रहे हैं वहाँ पर कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है। इसी के साथ एक और नया विषय जो इसमें जुड़ा हुआ है, मेडिकल हाइड्रोजियोलॉजी। मेडिकल का हाइड्रोजियोलॉजी ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसमें हमको जो जल है उसका इम्पैक्ट जो देखना है वो शरीर के ऊपर देखना है। डॉक्टर सामान्यतः हमने देखा कि कभी कोई व्यक्ति गिर गया, उसकी हड्डी टूट गई, तो कैल्शियम रिच टेबलेट भी ले रहा है, साथ में कैल्शियम रिच पानी भी ले रहा है, तो एक्सेस कैल्शियम से भी कई बीमारियां उसको हो सकती हैं। इसी के साथ क्या है भूविज्ञान विषय पर हमारी यह वार्ता सम्पन्न होती है। मुझे यानी डॉक्टर दीपक राज तिवारी को अनुमति दीजिए। धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान लोक, ये आकाशवाणी भोपाल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है इश्क विश्क फिल्म से। आवाज़ है कुमार सानू और अलीशा चनॉय की।

सानू मलिक का संगीत समीर के लिखे बोल, कुमार सानू और अलीशा चिनॉय की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म इश्क विश्क से। कार्यक्रम है फिल्म संगीत का और अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है शान और साधना सरगम की आवाज़ में फिल्म हंगामा से।

नदीम श्रवण का संगीत, समीर के लिखे बोल, शान और साधना सरगम की आवाज़ में गीत सुना अपने फिल्म हंगामा से। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत सुनिधि चौहान की आवाज़ में सुनवा रहे हैं आपको फिल्म चमेली से।

संदेश शांडल्य का संगीत इरशाद कामिल के लिखे बोल, सुनिधि चौहान की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म चमेली से, और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी भोपाल है, कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत लीजिए प्रस्तुत है रेडियो धारावाहिक जमुनिया की 18वीं कड़ी।

0: अभी तक आपने सुना कि रतन की आत्महत्या के बाद उसकी पत्नी जमुनिया को रतन के भाई करण ने घर से निकाल दिया है और अपने दम पर जमुनिया ने शिक्षा ग्रहण की। उसका साथ एक नेकदिल इंसान झुल्लन ने दिया और शहर में पढ़ रहे तीन लोगों मेघा, शिल्पी और जयंत ने भी दिया। जमुनिया की शिक्षा से प्रभावित होकर गांव वालों ने उसे सरपंची का चुनाव लड़वाया और उसे भारी मतों से जिताया भी। ऐसे में दीवान जमुनिया से बेहद खफा था, पर क्या करता, जमुनिया उसकी हर चाल का जवाब अपनी सच्चाई और ईमानदारी से दे रही थी। चुनाव के बाद सरपंच के चार्ज का लेन देन नहीं हो पाया क्योंकि दीवान ने सरकारी पैसों में बहुत सारे घपले कर रखे थे। उसने जमुनिया से एक हफ्ते का समय मांगा जिसे जमुनिया ने स्वीकार कर लिया। अब आगे
1: अरे का जमुनिया बिटिया, अरे अब तो तुम सरपंच हो गई हो और अभी भी डलिया और पंखे ही बुनती रहोगी हैं? अरे तुमको तो कुछ बड़ा करना चाहिए।
2: बड़ा सोचने के लिए और बड़ा करने के लिए खाली बैठना जरूरी है क्या? डलिया बनाते हुए भी मैं सोच सकती हूँ बाबा।
1: हाँ,
2: ये तीनों लोग जो शहर से आए हैं, हाँ, जाने की बात कर रहे थे।
1: अच्छा,
2: इन लोगों ने मेरे चुनाव के लिए इतनी मेहनत की, तो क्या कुछ दिन और रुककर मेरी मदद नहीं कर सकते थे क्या?
1: अरे बिटिया, ये बात तो तुम्हें उन्हीं से ही करना चाहिए हैं? पर तुम चाहो तो मैं भी बात कर सकता हूँ बिटिया।
2: तो फिर करो ना बाबा, किस बात की राह देख रहे हो? ये चले जाएंगे तो मुझे कौन समझाएगा?

0: मुझे कब क्या करना है। कुछ दिन काम कर लूंगी तो समझ में आ जाएगा। फिर ये लोग आते जाते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता।
1: हाँ तो ठीक है बिटिया, चलो मैं ही बात कर लेता हूँ। तुम दलिया बनाओ, मैं अभी मेघा बिटिया से मिलकर आता हूँ।
0: हाँ बाबा, आप बात करके ही आना बाबा।
1: हाँ बिटिया, हाँ।
2: मालिक,
3: क्या बात है?
2: हम जो कह रहे थे कि भट्टे पर काम करने के लिए बहुत सारे लोग लगते हैं।
3: हाँ तो
2: हम जो कह रहे थे, ये तो आप जानते ही हैं, आपके जाने के बाद पिछली रात ही सारे लोग काम छोड़कर चले गए मालिक।
3: हाँ?
2: अब मैं अकेला भट्टा कैसे चलाऊंगा मालिक?
3: अरे इन लोगों की इतनी हिम्मत?
2: अब हिम्मत की बात नहीं है मालिक, कुछ तो आपने भी उनके संग अच्छा व्यवहार नहीं किया मालिक, और कुछ वे भी पहले से दुखी थे कि रात दिन कोयले की आग में तपने वाले लोगों को आप ठीक से तनख्वाह नहीं दे रहे थे मालिक।
3: कहा?
2: उधर सरकार ने मनरेगा की घोषणा की है। मुझे नहीं मालूम कि ये क्या होते है, पर इतना है कि इसमें हर व्यक्ति को 100 दिन के रोजगार की गारंटी है मालिक। हाँ, और वो इस गांव में भी लागू होगा। और मालिक मुझे भी माफ कीजिए मालिक, मैं भी उसमें जाना चाहता हूँ मालिक।
3: चुप, नामा खुल, मर यहां से, छोड़ दे भट्टा, बर्बाद हो जाने दो सब कुछ। अरे जिसके भरोसे आज तक तुम्हारी रोटी चली है उसी को लात मार कर जा रहे हो तुम।
2: नहीं मालिक।
3: मालिक मालिक है? अरे ये मनरेगा मनरेगा ज्यादा दिन तुम्हारा साथ नहीं देंगे। हाँ
2: का मालिक?
3: अरे का मालिक का, 100 दिन का रोजगार देंगे वो।
2: हाँ।
3: और हम जो जिंदगी भर का रोजगार तुम्हें देते हैं सो।
2: वे तो मालिक।
3: अरे वे तो मालिक, अरे जरा सा कुछ कह दिया तो नाराज हो गए। चलो बुलाओ उन सबको, हम उनसे बात करना चाहते हैं।
2: हाँ, हाँ, हाँ मालिक बुलाते हैं।
3: बुलाओ।
2: हाँ।
3: काम आ गए, कहा चाह रहे हैं, बात तो कर ले उनसे।
2: हाँ, अब ही जा रहा हूं।
3: जाओ फटाफट। कहा हो रहा समझ में नहीं आ रहा।
0: सब पंचों को राम राम।
4: राम राम राम राम
1: राम राम।
0: भाई लोगों, ये मीटिंग बहुत जरूरी है। आपको ये बताना है कि सरकार ने एक योजना चलाई है जिसमें हर आदमी को 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी है। मैं चाहती हूँ कि सब लोग अपने घर के एक एक आदमी का नाम जयंत बाबू को लिखा दे। फिर मैं BDO साहब से मिलकर काम शुरू करवाऊंगी। काम पंचायत की मर्जी से ही होगा, इसलिए आप मुझे बताएं कि पहले क्या कराना चाहिए।
2: भैया देखो, जमुनिया बहन, हम तो चाहते हैं कि आप ही हमें बताइए पहले हमें क्या करना चाहिए।
0: हमको तो लगता है कि इस गांव को सबसे पहले सड़क से जोड़ा जाए।
5: अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जय बात हुई, सही है सही है। हाँ जय सही है।
0: गांव से लेकर पक्की सड़क तक 3 किलोमीटर तक ये पगडंडी है, इसको सड़क में बदल दिया जाए। है ना, तो आने जाने की बड़ी सहूलियत हो जाएगी। क्यों, ठीक है ना?
1: जमुनिया तो दीवान जी को मरवाएगी।
6: ऐसे ही लग रहा है
1: या दीवान जी सड़क के नाम पर 12 लाख रुपए पहले ही ले चुके हैं।
7: जमुनिया जी, गांव भर के लोगों को पता है कि कितनी बार गांव को सड़क से जोड़ा जा चुका है,
6: हाँ, पता है,
7: जो हर बारिश में खराब हो जाती है। आप फिर उसके

0: लिए पैसा मांगेंगी सरकार से। अब सरकार ने पिछले पैसे दिए थे, वो इसका हिसाब मांगेगी। अरे आप जरा कुछ और सोचिए।
1: हाँ कुछ और सोचिए।
2: भैया जी मैं तो सड़क की ही बात करूंगी और सरकार को समझाऊंगी कि किसी भी तरह की सड़क गांव से मुख्य सड़क तक नहीं बनी है। अरे खाली पगडंडी है जिसे दीवान थोड़ा बहुत समतल करवाते रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और कम से कम मुझे तो नहीं लगता कि इसमें 12 लाख रुपए खर्च हुए होंगे। और अगर हुए भी हैं तो भी मुझे सड़क तो चाहिए ही।
0: जमुनिया बहन क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ती हैं? अरे चलने दीजिए इस गांव को अपनी रफ्तार से। आप एक बात उखाड़ेंगी तो 10 बातें उखड़ेंगी।
1: हाँ 10 बातें उखड़ सकती हैं।
0: हाँ
3: भैया एक बात तो बताओ भैया। ये तुम होते कौन हो भैया? है जमनिये भाई जी हमारी ऐसी बात करने वाले? अरे हमने उनको चुनो है हमने, और हमने ही उनको जो अधिकार दो है तो वो तय करे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो भाई
0: मुझे तो लगता है कि इस गांव की शांति भंग होने वाली है। एक तरफ तो लोग रातों रात दीवान का भट्टा छोड़कर चले गए और दूसरी ओर ये वो मुद्दे उछाल रही है जिससे दीवान जी की बदनामी हो और गांव में अशांति रहे।
2: देखो भैया भुग्गा की झोपड़ी में किसने आग लगाई सबको पता है। और हमने कुछ नहीं कहा।
3: सही बात।
2: चुनाव परिणाम के दूसरे दिन ही चार्ज का हिसाब किताब हो जाना चाहिए था। हमने कुछ नहीं कहा।
1: चार्ज की बात निकाली।
2: आपने 7 दिन का समय मांगा। हमने कुछ नहीं कहा। मान लिया और आप हम ही पर इल्जाम लगा रहे हैं कि हम शांति भंग कर रहे हैं। माफ कीजिएगा हमने तो सुना है कि फतेहपुर वालों को दीवान ने खुद ही भट्टे से भगा दिया और कह दिया कि यहाँ फतेहपुर वाले लोगों को काम ना दिया जाए। और अब आपको समझना होगा आदमी काम को नहीं तलाशेगा, काम आदमी को तलाशेगा। जो पसीना बहाएगा उसकी अपनी कुछ शर्तें होंगी तो काम होगा। दीवान जी से कहिए वो गांव वालों से बात करें और उन्हें काम पर वापस बुलाए। बेमतलब अशांति फैलाने की जरूरत नहीं है। रही सड़क की बात, अगर उसका पैसा सरकार दे चुकी है तो वो सड़क दीवान जी को ही बनवाना पड़ेगी।
3: बात तो सही है भाई।
2: मैं आज ही शहर जाऊंगी और बीडीओ साहब से मिलकर बात साफ करूंगी।
3: देखो भैया बात साफ हो जाए तो है ना, अब दूध को दूध पानी का पानी।
2: और भाई गांव वालों आप भी इतनी जल्दी किसी नतीजे पर मत पहुंचिए। मैंने कुछ और भी सोचा है, एक एक कर बताऊंगी। थोड़ा ध्यान दीजिए। पहली बात, इस गांव में कितने ऐसे लोग हैं जिनको पट्टा मिला है और वो खेती नहीं कर रहे हैं, अब वो खड़े हो जाए। हाँ चलो
3: मैं भी
2: पहले आप बताइए आप क्यों खेती नहीं कर पा रहे हैं?
3: अब ऐसे कि मैं तो बूढ़ो हो गया हूँ भाई बेटा, अब मुझे खेती तो हो नहीं। खेत है ना, हमें पत्थर ही पत्थर भरे हैं। अरे जमीन है कितने पत्थर की खदान है भैया। अरे बेल मेल हमारे सब टांग मांग टूट गई बेल। अरे हाल खराब हो गई।
2: आप चिंता ना करो, पत्थर हम सब मिलकर निकाल देंगे और जो खेती कर सकेगा उसको खेत देंगे। वो खेती करेगा और उसमें से आधी आपको देगा, ठीक है?
3: ये तो बहुत ही अच्छी बात हो जाए बेटा, ये तो हो जाए तो भैया मेरी तो जिंदगी बच जाएगी बेटा।
2: आप बैठ जाइए बाबा, बेटा बस आप बैठ जाइए। हाँ आप बताइए आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं?
4: अब हम तो खेताई को पता नहीं आया, पट्टा तो दा तो बनने जानी मालूम के जमीन के।
2: आपको जो पट्टे का कागज मिला है वो जयंत बाबू को दिखा दीजिए। हम लोग पता लगा लेंगे कि वो जमीन किधर और कहाँ है, आपको दे देंगे। आप भी बैठ जाइए, ठीक है? और आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं खेती? हाँ
5: हमारी मर्जी भाई, हम नहीं करना चाहते खेती। बाबा का है
2: यही लिखकर तुरंत जैन जी को दे दीजिए और ना लिख पाए तो अंगूठा लगा कर दे दीजिए।

0: हम जमीन किसी और को काम में इस्तेमाल करेंगे।
1: अरे अरे अरे ये तो अच्छी जबरदस्ती है भाई, है? अरे काम करो काम करो, अरे हम न करना चाहे तो भी करो। अरे जय कौन सी बात भाई भैया, अरे ये
0: भैया अगर इस गांव को कुछ बनाना है तो काम तो करना पड़ेगा। अब आप बैठ जाइए। वो हम पता लगा लेंगे, आप भी जैन जी को अपना नाम लिखवा दीजिए। भैया आप बताइए आपके साथ क्या समस्या है, क्यों नहीं खेती कर पा रहे हैं आप?
2: अरे पूरा खेत घास फूस से भरा है, हमारे बस का है नहीं कि उसे साफ करके खेती कर सके।
0: भैया आप एक बात बताइए, आपको रात भर दारू पीने की फुर्सत मिल जाती है, उसके लिए ताकत आ जाती है, खेती से घास फूस नहीं निकाल सकते?
2: देखिए जमुनिया जी, हम क्या खाते हैं कैसे पीते हैं ये भी आपसे पूछना पड़ेगा।
0: बिल्कुल नहीं भैया। अरे बिल्कुल नहीं, आपको जो जी में आए करिए, आप खाइए पीजिए, पर परिवार को परेशान मत कीजिए। और अच्छा होगा कि पहले आप अपनी रोटी का इंतजाम करें, घास फूस साफ करना कौन सी बड़ी बात है। हाँ गर्मी के दिनों में लोग आग लगाकर घास फूस जला देते हैं और बारिश में उसे जोत कर खेती करते हैं। अकेले हमारे रतन ने इतना बढ़िया खेती का नमूना पेश किया था जो देखते ही बनता था। और आज भी देखो करण, करण जैसा आदमी सुधर कर उसी खेत में सोना पैदा कर रहा है। और आप भी लग जाइए कल से। दूसरा मेरा प्रस्ताव है कि जब तक गांव में सुविधा नहीं आती, हम शहर में एक कमरा किराए से लेंगे और उसमें गांव का कोई भी व्यक्ति जाएगा और रुकने की जरूरत समझेगा तो रह पाएगा। खास तौर से जो गर्भवती महिलाएं हैं वो डॉक्टर की दी हुई तारीख से 8-10 दिन पहले वहां जाकर रहें और जचकी के समय उन्हें अस्पताल जाने में असुविधा न हो। ये पूरा खर्च पंचायत वहन करेगी। इसके लिए मैं बीडीओ साहब से बात करूंगी, अभी तो बस इतना ही सोचा है।
3: अरे वाह भैया वाह, इतनी कम पढ़ी लिखी जमुनिया कितने पते की बात करती है, और कितने दूर तक की सोचती है भैया।
1: अरे भैया बात तो एकदम सही कही है, पर देखना जे है कि कितना कुछ हो पाता है।
4: ये बात तो है भैया, नहीं मगर अभी हाँ हाँ ये बात भी सही है यार।
5: अरे ये हो कह रहा है इस गांव में, अरे जिसे देखो आंखें दिखा रहा है, और ये सरकार, अरे ये सरकार भी इन्हीं लोगों का साथ दे रही है। अरे मालिक मालिक कर रहा है, अरे ये तो बता, अरे एक बार डांट दो तो भट्टा बंद करने की धमकी दे के चले जाते हो तुम लोग। अरे कुछ कहो तो रूठ कर चले जाते हो। हे हे जरा देख तो ये करण ही जा रहा है ना।
6: जी मालिक करण ही है।
5: अरे तो ये ससुर बगैर दुआ सलाम की तरह जा रहा है।
6: हाँ मालिक
5: लगता है इसका भी सुर बदल गया लगता है। ए, बुला तो बुला सारा करण को तो।
6: अब भाई लो मालिक।
3: ए करण
7: कौन है
3: ये? तो आ भैया।
7: अच्छा आ रहे
3: तो दीवान जी बुला रहे।
8: प्रणाम मालिक।
5: हाँ प्रणाम प्रणाम करण जी। क्या बात है, बगैर दुआ सलाम ही चले जा रहे थे तुम। आ गई समझ में, आ गई भैया। सुना है दारू वारू भी छोड़ दिया है तुमने?
8: हाँ छोड़ दिए।
5: और मेहनत भी करने लगे हो आजकल?
8: हाँ।
5: खेत में काम करते हो?
8: हाँ करता हूँ।
5: हाँ तुम भी जाकर उस जमुनिया के पल्लू से बंध गए हो।
8: दीवान जी, इस तरह की बातें मत करिए, नहीं तो हमसे भी गुस्ताखी हो जाएगी।
5: क्या करेगा बे तू, हैं? गुस्ताखी करेगा, मारेगा इस दीवान को? तेरी इतनी हिम्मत, तू हमसे इस तरह बात करने लगा?
8: भड़काइए मत मालिक, अपने रास्ते जा रहे हैं हम, और आप भी अपने रास्ते रहिए, और भौजी के बारे में कुछ भी कहिएगा मत। उसी ने हमें सिखाया है कि जीना कैसे चाहिए।
5: चुप, एकदम चुप, और हमारा दिमाग खराब मत कर। भाग यहां से वरना
8: वरना क्या, आपका दिया नहीं खा रहे हैं हम, अपनी मेहनत से कमा खा रहे हैं। इसलिए दीवान जी, आगे से सोच समझकर बात निकालिएगा।
5: अरे खाना चुप, आंखें मत दिखा हमें, निकल निकल यहां से।
8: जा रहे हैं।
5: अरे कोई बताएगा हमें कि ये सब का उल्टा पुल्टा हो रहा है भाई? समझ में नहीं आ रहा कि का हो रहा है ये सब।
0: क्या बात है करण, इतने गुस्से में क्यों हो? कहीं किसी ने कुछ कह दिया क्या?
9: अरे छोड़ो।
0: अरे बताओ ना।
8: अरे ये दीवान जिसको देखो उसको ही कुछ ना कुछ कहता रहता है। मेरे तुम्हारे बारे में न जाने क्या कह रहा था, मुझको भी गुस्सा आ गया। मैंने तो साफ बोल दिया, ऐसी बातें मत करना, नहीं तो मेरा भी हाथ उठ जाएगा। हाँ,
0: ऐसा कुछ मत करना, वो तो गांव में अशांति ही फैलाना चाहता है, और मैं औरत हूं, मेरे बारे में कुछ ना कुछ कहा ही जाएगा।
8: अरे ऐसे कैसे कहा जाएगा?
6: अरे जमुनिया बिटिया, तुम्हें जयंत बाबू की बातों पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए। हाँ
9: अच्छा जमुनिया, झुलन बाबा,
6: हाँ
9: अब मैं चलता हूँ।
6: अच्छा,
9: आप लोग आपस में चर्चा करें, मैं कल फिर आता हूँ।
6: ठीक है।

0: शिल्पी, एक बात साफ सा बताओ, तुम शहर वापस चल रही हो कि नहीं?
1: वो तो जाना ही है जयंत, पर अभी मैं कुछ दिन और रुककर यहाँ से जाना चाहूंगी।
0: तो फिर रुको, मैं तो चलता हूँ। और मेघा कहाँ है?
1: मेघा? मेघा के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। देखती हूँ, पता करती हूँ कि वो कहाँ है।
0: तो ठीक है, तुम पता करो मेघा के बारे में, मैं थोड़ी देर के लिए जमुनिया से मिलकर आता हूँ।
1: ठीक है।
2: बाबा।
3: बोलो बिटिया।
2: जयंत बाबू शहर से आए हैं, काफी पढ़े लिखे हैं।
3: सो तो है।
2: उम्र में मुझसे एक आध साल छोटे ही होंगे, ऐसे में उनसे शादी करना क्या ठीक रहेगा? और फिर ऊपर से ये गोलू और चिरैया।
3: अरे बिटिया, शादी ब्याह में एक आध साल कम ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं होती, और तुम जैसी स्त्री और जयंत बाबू जैसा लड़का जिन परिस्थितियों में ये करेंगे वो आम शादी तो नहीं है बिटिया, हैं? अरे इसलिए तुम फिर से सोचो, क्योंकि आज लोग करण के साथ तुम्हारा नाम जोड़ रहे हैं बिटिया। अरे कल वो किसी और के साथ जोड़ेंगे और दिन ब दिन तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं सोचता हूँ बिटिया कि तुम इस शादी के हक में ही फैसला लो, बाकी आगे तुम्हारी मर्जी है बिटिया। हाँ
2: ठीक है पापा, सोचती हूँ।
3: नमस्ते जयंत बाबू।
0: नमस्ते जयंत बाबा।
3: आइए आइए आइए। अरे हम लोग आप ही के बारे में बात कर रहे थे। हाँ
0: जमुनिया
2: जी,
0: मैं शहर

0: जा रहा हूं, बल्कि ये कहूं कि अब शहर लौट रहा हूं तो ये ठीक रहेगा। बस मैं यही बताने आया था।
1: अरे क्या बाबूजी, आप तो वो एनजीओ सा खोलकर इस गांव में रहने वाले थे ना, हैं? और जब इसको संवारने का समय आया और जमुनिया सरपंच हुई तो आप छोड़कर जा रहे हैं बाबूजी,
0: हैं? बाबा,
1: अरे नहीं बेटा, नहीं नहीं,
0: मुझे लगता है कि अब इस गांव में मेरी जरूरत नहीं है।
2: शहर जा रहे हैं तो मुझे भी साथ लेकर चलिए ना। वो बीडीओ ऑफिस चलेंगे और वहां पर इस गांव के विकास की योजनाओं पर बात करेंगे।
0: हाँ ठीक है, तो फिर तुम तैयार हो जाओ, हम लोग जल्दी निकलेंगे।
2: हमें क्या तैयार होना है जयंत जी, हम तो तैयार ही बैठे रहते हैं, कोई सजना सवरना तो है नहीं, चलिए।
1: अरे जयंत बाबू, बाबू जी समय रहते लौट आना।
2: जी बाबा, आप चिंता ना करो, जल्दी ही आ जाएंगे।
1: ठीक है बेटिया।
3: जयंत,
0: हाँ
3: ये लो तुम्हारा बैग।
0: हाँ हाँ, लाओ लाओ, दो।
3: मैं तुम्हारी कोई चीज इधर उधर रही तो नहीं, देख लो।
2: मैं ले लेती हूँ बैग।
0: अरे जमुनिया जी, क्या कर रही हो तुम?
2: ठीक ही कर रही हूँ, क्या मैं एक बैग भी नहीं उठा सकती?
0: जमुनिया तुम तो दुनिया भर का बोझ उठाती हो, तो एक बैग में क्या रखा है? पर अभी तुम्हारे इस तरह से बैग उठाना अच्छा नहीं लगता।
3: वो तो सब ठीक है, मगर आप दोनों कहाँ जा रहे हैं?
0: मैं तो शहर लौट रहा हूँ, और जमुनिया जी को वहाँ पर कुछ काम है, इसलिए वो भी मेरे साथ आ रही हैं।
4: तो आखिरकार आपने अपना फैसला कर लिया?
0: हाँ, और कोई उपाय ही नहीं है।
4: ओके।
5: अरे भैया ये तो जमुनिया है।
6: हाँ भैया, जोड़ी तो अच्छी है भैया।
0: धन्यवाद, आपको पसंद आई?
6: धन्यवाद का क्या मतलब हुआ बाबूजी?
0: अभी हम जल्दी में हैं, हम शाम को लौटेंगे। अच्छा। तो आपको बुलाकर धन्यवाद का पूरा मतलब समझाएंगे।
6: हाँ हाँ, देख लेंगे, हमारी भी इच्छा रहेगी जानने की। को भैया?
7: हाँ बिल्कुल जाने की भैया। अच्छा जम गई।
0: देखा जमुनिया, ये होता है, एक औरत और एक मर्द का साथ किसी को सहज लगता ही नहीं।
2: तो सहज है भी कहाँ जैन जी, लगने की बात तो बाद में आएगी। मैं आपके साथ शहर इसलिए आई हूं कि आपने जो जो कुछ मुझसे कहा है उसके बारे में हिम्मत करके बात कर सकूं।
0: इसमें हिम्मत वाली क्या बात है?
2: है, आपको पता है कि मेरे दो बच्चे गोलू और चिरैया पहले ही हैं, और अब और ज्यादा बच्चे ना तो अच्छे होंगे और ना उचित।
0: जमुनिया, बच्चों की तो वैसे मैंने कभी सोची नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज के समय का सदुपयोग करना चाहता हूं। उसके लिए तुम चाहोगी तो मैं ऑपरेशन भी करवा लूंगा।
2: जयंत जी, इतना बड़ा त्याग तो आप मत करो। ऑपरेशन वॉपरेशन जो भी करवाना होगा वो जमुनिया करेगी, और अब आपके सामने मैं समर्पण करती हूँ। आप जब चाहें हम शादी कर सकते हैं।
0: जमुनिया, मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरा एक बहुत बड़ा सपना आज पूरा हो गया। देखो जमुनिया, हम लोगों को समाज को दिखाना तो है नहीं, और कोई बड़ा फंक्शन भी नहीं करना, इसलिए जल्द से जल्द हम शादी कर लेंगे। साथ में रहेंगे तो कोई उंगली तक नहीं उठाएगा। अरे अरे जमुनिया, तुम ये क्या कर रही हो? नहीं जमुनिया, तुम मेरे पैर मत पड़ो, मैं इस योग्य नहीं हूं जमुनिया।

0: तुम मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलो।
1: चलेंगे बाबूजी।
2: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय के अंतर्गत धारावाहिक जमुनिया की 18वीं कड़ी। यह आकाश डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। शाम के 5 बजने को है मीडियम वेव 188.32 मीटर पर हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 5 बज चुके हैं, वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
1: देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन महान शिक्षाविद और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बिना विकसित भारत का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 33 शिक्षकों को सम्मानित किया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कानून, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल 6 सितंबर को रायसेन जिले के मंडीदीप और अबिदुल्लागंज में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल में प्रदेश के विभिन्न जिलों में अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति का जायजा लेकर प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सहायता और व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान गुना, शिवपुर और शिवपुरी सहित 23 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है और महिला T20 एशिया कप के ग्रुप ए का आखिरी मुकाबला आज दुबई में रात 8 बजे से भारत और पाकिस्तान के बीच होगा। भारत थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुका है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। युवा श्रोता सुने उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

हम एक डिजिटल दुनिया में रहते हैं, चाहे समाचार हो, मनोरंजन हो, काम हो या संचार, हर जगह डिजिटल उपकरण का इस्तेमाल होता है। ऐसी बहुत कम जगह है जहां डिजिटल उपकरण ना हो और हम परिवार, दोस्तों या काम से जुड़े रहने के लिए बस एक क्लिक दूर हैं। हम निरंतर संपर्क में रहने की इस अप्राकृतिक स्थिति के आदि हो चुके हैं। सुबह उठते ही हम अपना फोन उठा लेते हैं और सोने से पहले भी एक दो बार सब कुछ देख लेते हैं। फोन और सोशल मीडिया से ब्रेक लेना शायद अव्यवहारिक लगे, लेकिन डिजिटल डिटॉक्स एक स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती का चलन है जो हमारे जीवन में संतुलन वापस ला सकता है। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है स्वेच्छा से एक निश्चित अवधि के लिए सोशल मीडिया और प्रौद्योगिकी के उपयोग को कम करना। प्रौद्योगिकी में स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, टैबलेट, लैपटॉप या किसी भी अन्य प्रकार का डिजिटल उपकरण शामिल हो सकता है जो जानकारी प्रदान करता है और आपका ध्यान आकर्षित करता है। दोस्तों, इसके लिए पूरी तरह से डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल बंद करना जरूरी नहीं है। आप चाहें तो इसे सिर्फ एक वीकेंड के लिए आजमा सकते हैं या हर दिन कुछ घंटों के लिए इनसे दूर रह सकते हैं। इसके कोई तय नियम नहीं है, बस इतना है कि इससे आपको ये पता चल जाएगा कि बिना लगातार डिजिटल उपकरणों के इस्तेमाल के जीवन कैसा होगा। लगातार स्क्रीन से चिपके रहने से हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। डिजिटल डिटॉक्स करने से कई लाभ होते हैं, जैसे तनाव और एंजाइटी में कमी, बेहतर फोकस और प्रोडक्टिविटी, नींद की क्वालिटी में सुधार, सोने से पहले स्क्रीन की ब्लू लाइट ना देखने से शरीर में मेलाटोनिन, नींद का हार्मोन सही तरीके से बनता है और गहरी नींद आती है। आंखों के सूखेपन, सिर दर्द और गर्दन के दर्द से राहत मिलती है। इससे रिश्ते मजबूत होते हैं, लोग वर्चुअल दुनिया से बाहर निकल कर अपने परिवार और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिता पाते हैं। दोस्तों, डिजिटल डिटॉक्स का मुख्य उद्देश्य स्क्रीन टाइम को घटाकर मानसिक तनाव को कम करना और वास्तविक दुनिया से दोबारा जुड़ना है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप हमेशा के लिए तकनीक छोड़ दें। आप अपनी सुविधा के अनुसार नियम तय कर सकते हैं। दोस्तों, आप सुनते हैं ये गीत पीकू फिल्म से अनुपम रॉय और श्रेया घोषाल की आवाज में।

दोस्तों, ग्लोबल टीचर प्राइज एक प्रतिष्ठित वार्षिक पुरस्कार है जो ऐसे शिक्षक को प्रदान किया जाता है जिसने शिक्षा के माध्यम से अपने छात्रों और समुदाय के जीवन में सकारात्मक और स्थायी बदलाव लाया हो। 2026 का ग्लोबल टीचर प्राइज भारतीय शिक्षिका और सामाजिक कार्यकर्ता रूबल नागी ने प्राप्त किया है। दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट्स समिट के दौरान उन्हें ये सम्मान दिया गया है। उन्हें इस पुरस्कार के तहत $1 मिलियन की राशि मिली है। इस पुरस्कार को शिक्षण का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। उन्हें ये पुरस्कार वंचित समुदायों और झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों तक कला और भित्ति चित्रों के जरिए शिक्षा पहुंचाने के उनके अनूठे काम के लिए मिला है। रूबल नागी ने आर्ट फाउंडेशन के माध्यम से भारत के 21 से अधिक राज्यों और 100 से अधिक गांवों, वंचित बस्तियों में 800 से अधिक लर्निंग सेंटर स्थापित किए हैं। उन्होंने 10 स्लम क्वीन नामक पुस्तक भी लिखी है। दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत ब्रदर्स फिल्म से सोनू निगम और नीति मोहन की आवाज में।

0: दोस्तों, अब हम युवा श्रोता राज त्रिपाठी से जानते हैं बरसात के दिनों में स्वास्थ्य की देखभाल कैसे करें।
1: नमस्कार, मैं राज त्रिपाठी, मैं फार्मासिस्ट हूं। दोस्तों, बारिश के दिनों में अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए साफ सफाई, शुद्ध खान पान और मच्छरों से बचाव सबसे महत्वपूर्ण है। इस मौसम में नमी बढ़ने के कारण बैक्टीरिया, वायरस और फंगस तेजी से पनपते हैं, जिससे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड और पेट का संक्रमण हो सकता है। बरसात के मौसम में खुद को और अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए हम कुछ उपाय अपना सकते हैं। हमेशा पानी को अच्छी तरह से उबाल कर या फिल्टर कर ही पिए। खान पान में सावधानी बरतें, बाहर के खाने से बचें। सड़क किनारे मिलने वाले कटे हुए फल, चाट और खुले में रखा भोजन खाने से बचें, क्योंकि इनमें कीटाणु बहुत जल्दी पनपते हैं। घर पर बना गर्म और हल्का भोजन करें। हरी सब्जियों और फलों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। हरी सब्जी और फलों को खाने से पहले उसको अच्छी तरह से धो लें। मच्छरों से बचाव करें। ठहरे हुए पानी को साफ करें। घर के आसपास कूलर, गमला या टायरों में पानी जमा न होने दें। जमा पानी में ही सबसे ज्यादा डेंगू मलेरिया के मच्छर अंडे देते हैं। सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें। फुल अस्तीन के कपड़े पहने और बाहर निकलने से पहले मॉस्किटो रिपेलेंट लगाएं। अगर आप बारिश में भीग जाते हैं तो तुरंत कपड़े और जूते बदलें। गीले कपड़ों या जूतों के कारण फंगल और स्किन इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं। अपनी डाइट में विटामिन सी से भरपूर चीजें लें, जैसे नींबू, आंवला, तुलसी, अदरक, हल्दी और काली मिर्च से बना काढ़ा या हर्बल टी पिए, जो शरीर को मौसमी फ्लू और सर्दी जुकाम से लड़ने की ताकत देती है। बारिश के मौसम में संक्रमण, पेट की खराबी, बुखार और त्वचा से जुड़ी बीमारियों का खतरा काफी बढ़ जाता है। अपनी सुरक्षा के लिए आपके घर की फर्स्ट एड किट में बुखार, सर्दी, खांसी, लूज मोशन, एलर्जी और फंगल इन्फेक्शन की दवाइयाँ होनी चाहिए।
0: दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत दिलवाले फिल्म से अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाज।

दोस्तों अब बढ़ते हमारे अगले स्तंभ रोजगार समाचार की ओर। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC ने वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहायक के 376 पदों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। उम्मीदवार 1 सितंबर 2026 से 30 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इलेक्ट्रॉनिक्स और दूर संचार, कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर और नेटवर्किंग सुरक्षा, सॉफ्टवेयर सिस्टम, सूचना प्रौद्योगिकी या सूचना विज्ञान में MSc, MS या MCA या BE या BTech, साथ ही वैध GAT 2025 या 2026 CM स्कोर। अधिकतम आयु सीमा अनारक्षित और EWS के लिए 30 वर्ष, OBC NCL के लिए 33 वर्ष, ST SC के लिए 35 वर्ष। इसके साथ ही डाक विभाग ने

भी ग्रामीण डाक सेवक जेडीएस पद के लिए अधिसूचना जारी की है। आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 31 अगस्त से लेकर आखिरी तिथि 19 सितंबर तक है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष। कुल पद 23,757। शैक्षणिक योग्यता गणित और अंग्रेजी विषय के साथ कक्षा 10 हाई स्कूल। स्थानीय भाषा का ज्ञान होना भी आवश्यक है। दोस्तों अब सुनते हैं ये गीत सिंग इज ब्लिंग फिल्म से दिलजीत दोसांझ, ज्योति नूरा और सुल्ताना नूरा की आवाज में।

दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलने से पहले आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है हमें जरूर बताइएगा। आप अपनी शिकायतें और अपने सुझाव हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है yuvvaadiriva@gmail.com। तो फिर मिलने के वादे के साथ अपनी रेडियो दोस्त इशिका यानी मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ संध्या।

0: युवा श्रोता सुन रहे थे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
1: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात। 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
2: कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, सौ बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
3: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
4: राजाधिराज भगवान महाकाल।

भाद्रपद की पावन बेला पर जब आस्था बनेगी उत्सव और उज्जैन बनेगा महाकालमय, 7 सितंबर को निकल रही है बाबा महाकाल की भव्य राजसी सवारी, गूंजेगा एक ही जय घोष, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। उज्जैन में आयोजित भगवान श्री महाकालेश्वर की राजसी सवारी का आंखों देखा हाल आप सुनेंगे मध्य प्रदेश स्थित समस्त आकाशवाणी और विविध भारती केंद्रों से एक साथ दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक। आ रही है पालकी बाबा महाकाल की, प्रायोजक जनसंपर्क संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल।

0: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। पहला गीत बाजीगर फिल्म से कुमार सानू, अनु मलिक और साथियों की आवाजें, देव कोहली का गीत और अनु मलिक का संगीत।

0: कुमार सानू और अलका याग्निक को सुनिए फिल्म दिलवाले से। समीर के लिखे गीत को सुरों में ढाला है नदीम शबर ने।
1: तुम बंद करो इसे, मैं कहती हूँ बंद करो इसे। मैं प्यार नहीं करती तुमसे, हमारे बीच अब कुछ नहीं रहा।
2: हमारे बीच कुछ नहीं रहा?
1: क्या हक है तुम्हें मेरे ही घर में घुस के मुझे सताने का?
2: तभी तो तुम तक मेरा जुनून, मेरे प्यार का पागलपन पहुँचेगा।

दिल वाली दुल्हनिया ले जाएंगी। लीजिए सुनिए इस फिल्म से लता मंगेशकर और कुमार सानू को आनंद बख्शी का गीत और जतिन ललित का संगीत।

1942 वाला स्टोरी लीजिए, सुनिए इस फिल्म का ये नगमा कुमार सानू की आवाज़ में, जावेद अख्तर की बोल और धुन आर डी बर्मन की।

इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। यही कार्यक्रम आप शाम 6 बजे और 6:45 पर भी सुन सकेंगे। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। एक सूचना सुनिए, आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा में रविवार यानी कल दिनांक 6 सितंबर 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस हेलो ग्राम सभा के लिए विषय है खरीफ फसलों में समसामयिक कार्य। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान चाहते हैं वे दिनांक 6 सितंबर 2026 यानी कल रविवार को शाम 7:30 से 8 बजे के मध्य आकाशवाणी भोपाल के फोन नंबर 2660902 या 2660903 पर फोन कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन समय और फोन नंबर एक बार पुनः सुने, कल रविवार 6 सितंबर 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे के मध्य फोन नंबर है 2660902 और 2660903। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। सूचना समाप्त हुई।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज निवास स्थित समत्व भवन से भिंड जिले में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में सहभागिता कर कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बलराम कृषि महोत्सव अन्नदाता किसानों की सेवा और उनके प्रति आभार व्यक्त करने का त्यौहार है। शिक्षक दिवस पर आज भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 33 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल रायसेन जिले के मंडीदीप और ओबेदुल्लागंज में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में प्रदेश के विभिन्न जिलों में अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति का

0: जायजा लेकर प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सहायता और व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के जनजातीय संग्रहालय में कल नृत्य गायन एवं वादन पर केंद्रित संभावना गतिविधि का आयोजन किया जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान गुना, श्योपुर और शिवपुरी सहित 23 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और महिला T20 एशिया कप के ग्रुप ए का आखिरी मुकाबला आज दुबई में रात 8 बजे से भारत और पाकिस्तान के बीच होगा। भारत थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुका है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। फिल्म संगीत में सुनिए हेट स्टोरी 3 का ये गीत अरमान मलिक की आवाज़ में। मनोज मुंतशिर के लिखे गीत को सुरों में ढाला है वमन ने।

गब्बर इज बैक। लीजिए सुनिए इस फिल्म से अरिजीत सिंह और पलक मच्छाल को मनोज यादव का गीत और चित्तरंजन भट्ट का संगीत।

कार्यक्रम का अंतिम नगमा दृश्यम फिल्म से रेखा भारद्वाज और राहत फतेह अली खान की आवाजें हैं, गुलजार का गीत और विशाल भारद्वाज का संगीत।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
1: उड़ान हौसलों की, उड़ान सपनों की, उड़ान उन मंजिलों की ओर जो बाहें फैलाए आप सबका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। हेलो नमस्कार, मैं एना कर्मा उड़ान कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ।
2: श्रोताओं, कहते हैं ना, जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी जिंदगी का रास्ता बदल देते हैं। कभी उनकी कही हुई एक छोटी सी बात हमें बहुत आगे ले जाती है, कभी उनकी डांट उस समय तो बुरी लगती है लेकिन बाद में समझ आता है कि उसमें भी हमारी भलाई छिपी थी, और कभी उनका दिया हुआ एक छोटा सा प्रोत्साहन हमें वह करने की हिम्मत देता है जिसके बारे में हमने कभी भी सोचा भी नहीं था। श्रोताओं, ऐसे ही लोगों में से एक हैं हमारे शिक्षक। जी हाँ, आज ये कार्यक्रम उन सभी शिक्षकों को समर्पित है जिन्होंने सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं दिया बल्कि हमें जीवन के बारे में भी बहुत कुछ सिखाया। जी हाँ श्रोताओं, आज हम बात करेंगे एक शिक्षक की भूमिका की, शिक्षक और विद्यार्थी के रिश्ते की, अनुशासन और प्यार के बीच के संतुलन की, और इस बात की कि एक शिक्षक का व्यवहार बच्चे के जीवन पर कितना गहरा असर डाल सकता है। जी हाँ श्रोताओं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास कार्यक्रम, एक गुरु एक रोशनी। जी हाँ श्रोताओं, भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत के महान शिक्षक, दार्शनिक और देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। वे मानते थे कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं है, शिक्षा इंसान की सोच, उसके चरित्र और उसके जीवन को बेहतर बनाने का माध्यम है। श्रोताओं, कहा जाता है कि जब उनके विद्यार्थियों और मित्रों ने उनका जन्मदिन मनाने की इच्छा व्यक्त की तो उन्होंने सुझाव दिया कि उनके जन्मदिन को व्यक्तिगत रूप से मनाने के बजाय इस दिन को शिक्षकों के सम्मान के दिन के रूप में मनाया जाए। जी हाँ श्रोताओं, और इसी विचार से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। यानी यह दिन सिर्फ एक शिक्षक को हैप्पी टीचर्स डे कहने का नहीं है, यह दिन हमें याद दिलाता है कि शिक्षक समाज के भविष्य को तैयार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक सच्चा शिक्षक केवल ये नहीं कहता कि क्या करना चाहिए, श्रोताओं वह अपने व्यवहार और अपने जीवन से भी प्रेम, क्षमा, दया और सेवा का उदाहरण प्रस्तुत करता है, क्योंकि बच्चे केवल हमारी बातें सुनते नहीं हैं, वे हमारे व्यवहार को देखते भी हैं। अगर शिक्षक बच्चों से सम्मान से बात करता है तो बच्चा भी सम्मान करना सीखता है। अगर शिक्षक अपनी गलती स्वीकार करता है तो बच्चा भी अपनी गलती स्वीकार करना सीखता है। अगर शिक्षक किसी कमजोर बच्चे को प्रोत्साहित करता है तो उस बच्चे के अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है। जी हाँ, यही कारण है कि शिक्षक का व्यवहार बहुत मायने रखता है। और यहाँ एक बात हम सभी के लिए सोचने वाली है, शिक्षक होना आसान काम नहीं है। हर दिन शिक्षक के सामने अलग अलग स्वभाव के बच्चे होते हैं, कोई बहुत शरारती हैं, कोई बहुत शांत स्वभाव के हैं, कोई पढ़ाई में तेज, और कभी किसी बच्चे को एक बात समझने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। ऐसे में शिक्षक को कभी कभी डांटना भी पड़ता है, अनुशासन भी रखना पड़ता है, और ये ज़रूरी भी है। लेकिन बच्चे को सुधारना ज़रूरी है, साथ ही उसे ये महसूस कराना भी ज़रूरी है कि मेरे शिक्षक मेरे खिलाफ नहीं है, मेरे साथ हैं। जी हाँ श्रोताओं, इसी बात को समझने के लिए आइए

0: सुनिए छोटा सा नाटक।
1: आरव, तुमने फिर होमवर्क पूरा नहीं किया?
2: सर वो मैं नहीं कर पाया।
1: आरव, कितनी बार समझाया है कि रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ा करो, ऐसा कैसे चलेगा? कल तक पूरा होमवर्क करके लाना।
2: जी सर। पता नहीं सर, मुझे ही क्यों बार बार डांटते रहते हैं। मुझे लगता है मैं उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता।
3: क्या हुआ बेटा, आज इतने चुप क्यों हो?
2: कुछ नहीं माँ।
3: कुछ तो हुआ है, बताओ।
2: अरे आज फिर से सर ने सबके सामने मुझे डांट दिया। मुझे लगता है सर को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ।
3: अच्छा, लेकिन उन्होंने डांटा क्यों?
2: अरे माँ, वो होमवर्क पूरा नहीं किया था ना।
3: तो आरव, गलती किसकी है?
2: हाँ है तो मेरी।
3: देखो बेटा, हो सकता है तुम्हें उनकी डांट अच्छी ना लगी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे तुम्हारे खिलाफ हैं। शायद वो चाहते हैं कि तुम अपनी पढ़ाई को लेकर थोड़ा और गंभीर हो जाओ।
2: लेकिन माँ, अगर वे मुझे प्यार से समझाते तो?
3: बिल्कुल, तुम्हारी बात भी सही है। डांट के साथ प्यार और समझ हो तो बात दिल तक ज्यादा आसानी से पहुँचती है। तुम कल सर से जाकर बात करना।
2: पर क्या कहूँ?
3: बस अपनी बात शांति से कहना, पूछना कि आप मुझे बताइए कि मैं अपनी पढ़ाई कैसे बेहतर कर सकता हूँ।
2: सर, क्या मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ?
1: हाँ आरव, बोलो।
2: सर, कल आपने मुझे डांटा तो मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगा कि शायद आप मुझसे कुछ नाराज हैं।
1: मुझे अफसोस है कि तुम्हें ऐसा महसूस हुआ। देखो बेटा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी क्षमता को पहचानो। तुम कर सकते हो, बस तुम्हें थोड़ी मेहनत और नियमितता की जरूरत है।
2: तो आप मुझसे नाराज नहीं हैं?
1: बिल्कुल नहीं बेटा। एक शिक्षक का काम केवल ये कहना नहीं है कि गलती मत करो। हमारा काम ये भी है कि जब तुम गलती करो तो तुम्हें ये बताएं कि उसे कैसे सुधारा जाए। हाँ, कभी कभी मुझे सख्त होना पड़ता है, लेकिन मेरी सख्ती का उद्देश्य तुम्हें डराना नहीं, तुम्हें जिम्मेदार बनाना है।
2: सर, अब मैं समझ गया। मैं भी कोशिश करूँगा कि अपना काम समय पर करूँ।
1: बस यही तो मैं चाहता हूँ। और हाँ, अगली बार अगर मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लगे तो बिल्कुल खामोश मत रहना, मुझसे बात करना।
2: जी सर।
1: और याद रखना, गलती करने वाला बच्चा बुरा बच्चा नहीं होता।
2: जी सर, गलती से सीखना भी तो ज़रूरी है ना।
1: बिल्कुल सही।
0: तो दोस्तों, आपने सुना, कभी कभी शिक्षक की डांट के पीछे चिंता होती है और बच्चे की चुप्पी के पीछे भी कई भावनाएं हो सकती हैं। इसलिए शिक्षक और विद्यार्थी दोनों की तरफ से थोड़ा सा प्रयास जरूरी है। श्रोताओं, शिक्षक अनुशासन रखें, लेकिन बच्चे की भावनाओं को भी समझें, और बच्चे शिक्षक का सम्मान करें, लेकिन अपनी बात कहने से डरे नहीं, क्योंकि शिक्षक और विद्यार्थी एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, दोनों एक ही तरफ हैं, बच्चे के अच्छे भविष्य की तरफ। श्रोताओं, अब बहुत जरूरी है कि इस रिश्ते में माता पिता की भूमिका भी बहुत महत्व रखती है। अगर बच्चा स्कूल से आकर कहता है कि आज मैडम ने मुझे डांटा, या फिर आज मैडम ने मुझे बहुत गुस्सा किया, या आज सर ने मेरे साथ ऐसा कहा, तो तुरंत यह तय करने की जरूरत नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। पहले बच्चे की बात शांति से सुनिए, उससे पूछिए तुम्हें कैसा लगा, उसके बाद स्थिति को समझिए और जरूरत हो तो शिक्षक से भी शांतिपूर्वक बात कीजिए, क्योंकि बच्चे को ये भरोसा होना चाहिए कि मेरी बात सुनी जाएगी, और शिक्षक को भी यह महसूस होना चाहिए कि माता पिता मेरे विरोध में नहीं, बच्चे के हित में मेरे साथ बात कर रहे हैं। जी हाँ श्रोताओं, आखिर हम सभी एक उद्देश्य के ही हैं, बच्चा पढ़े भी, सीखे भी, खुश रहे और एक अच्छा इंसान भी बने। जी हाँ, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा अनुशासन। जी हाँ, देखिए, बच्चों को केवल प्यार देना भी पर्याप्त नहीं है, और केवल सख्ती करना भी नहीं। बच्चों को चाहिए प्यार भी, सीमाएं भी, स्वतंत्रता भी और जिम्मेदारी भी। जी हाँ श्रोता, उन्हें ये पता होना

चाहिए कि गलती करना गलत नहीं है, लेकिन अपनी गलती से सीखना जरूरी है। उन्हें सवाल पूछने की आज़ादी हो, लेकिन दूसरों का सम्मान करना भी आना चाहिए। उन्हें अपने सपने देखने की आज़ादी हो, लेकिन मेहनत और अनुशासन का महत्व भी बच्चे को समझना चाहिए। और यही संतुलन एक अच्छे शिक्षक और एक अच्छे परिवार की पहचान बन सकता है। श्रोताओं, ये नीति वचन है कि बुद्धिमान को शिक्षा दे और वो और भी बुद्धिमान होगा, है ना श्रोताओं? कितनी सुंदर बात है ना। इसका मतलब है कि सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए, यही एक अच्छे शिक्षक की खूबसूरती है। श्रोताओं, अब एक पल के लिए अपने स्कूल के दिनों को याद कीजिए, जरा अपने स्कूल के उन दिनों को याद कीजिए। क्या आपको कोई ऐसा शिक्षक याद आ रहा है जिसने आपको कभी कहा हो, कभी इनकरेज किया हो या कभी डांटा हो और कहा हो तुम कर सकते हो? या फिर शायद कोई ऐसा शिक्षक जिसने आपकी गलती पर आपको डांट लगाई हो, या फिर उस समय शायद आपको बहुत बुरा लगा हो उस डांट का, लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है शायद उस डांट की ज़रूरत थी। और हो सकता है कि किसी शिक्षक की कोई छोटी सी तारीफ आज भी आपको याद आती हो। श्रोताओं, यही शिक्षक की ताकत है। उनकी कही हुई बातें हमारे साथ स्कूल से बाहर भी चली आती हैं, है ना? श्रोताओं, इसी पर एक छोटी सी चुनौती मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी चुनौती ये है, आज अपने जीवन के किसी एक शिक्षक को याद कीजिए। ज़रूरी नहीं कि वह आपके वर्तमान शिक्षक हो, कोई पुराने शिक्षक, कोई कॉलेज के प्रोफेसर या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपको जीवन में कुछ महत्वपूर्ण सिखाया हो। उन्हें फ़ोन कीजिए, जी हाँ, फ़ोन उठाइए, उन्हें फ़ोन कीजिए या एक छोटा सा संदेश भेजिए, या सिर्फ ये मत लिखिए हैप्पी टीचर्स डे श्रोताओं, बल्कि ये भी लिखिए कि आपने मेरे जीवन में क्या बदलाव किया। हो सकता है आपका एक छोटा सा संदेश उनके लिए पूरे दिन की सबसे बड़ी खुशी बन जाए।

0: तो श्रोताओं, आज हमने जाना कि शिक्षक दिवस केवल एक सेलिब्रेशन नहीं है, ये एक सम्मान का दिन है। उन दिनों को याद करने का दिन है जिन्होंने हमें पढ़ाया, समझाया, कभी डांटा, कभी प्रोत्साहित किया और आगे बढ़ने की हिम्मत दी। लेकिन आज का संदेश सिर्फ शिक्षकों के लिए नहीं है, ये बच्चों के लिए भी है और माता पिता के लिए भी, क्योंकि बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए शिक्षक का ज्ञान, माता पिता का सहयोग और बच्चे की मेहनत तीनों जरूरी है। और शायद आज की पूरी बात को हम कुछ शब्दों में कह सकते हैं, और वो ऐसे, बच्चों को इतना डरा कर मत सिखाइए कि वह सवाल पूछना ही भूल जाए, और इतना भी छोड़ मत दीजिए कि अनुशासन भूल जाए। उसे प्यार, समझ और सही दिशा तीनों की जरूरत है, क्योंकि डांट में भी सुधार हो, अनुशासन में भी सम्मान हो, शिक्षा में भी संवेदनशीलता हो और हर बच्चे को यह एहसास हो, मैं महत्वपूर्ण हूँ, मैं सीख सकता हूँ और मैं आगे बढ़ सकता हूँ। श्रोताओं, यही तो शिक्षा की असली खूबसूरती है, जहाँ ज्ञान के साथ इंसानियत भी सीखी जाती है। सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। और श्रोताओं, अब ये समय है कि आप अपने प्रश्नों को या फिर अनुभवों को हमसे साझा करें, तो वक्त जाया ना करें, अपना फोन उठाएं और हमें कॉल करें। हमारा नंबर है
1: 8860088827। जी हाँ, 8860088827।
0: और हमारा पता है कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ, कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। तो श्रोताओं, मुझे एना कर्मा को दीजिए अनुमति, आपसे हम जल्द मुलाकात करेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान, और चलिए अब फिर से लेकर चलते हैं आपको फिल्म संगीत के सफर पर और सुनवाते हैं बधाई फिल्म का ये गीत आयुष्मान खुराना और नेहा कक्कर की आवाजों में।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम नगमा काशी फिल्म से यसीर देसाई की आवाज, शब्बीर अहमद का गीत और राज आशु का संगीत।

0: इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

भाद्रपद की पावन बेला पर जब आस्था बनेगी उत्सव और उज्जैन बनेगा महाकालमय, 7 सितंबर को निकल रही है बाबा महाकाल की भव्य राजसी सवारी, गूंजेगा एक ही जय घोष, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। उज्जैन में आयोजित भगवान श्री महाकालेश्वर की राजसी सवारी का आंखों देखा हाल आप सुनेंगे मध्य प्रदेश स्थित समस्त आकाशवाणी और विविध भारती केंद्रों से एक साथ दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक। आ रही है पालकी बाबा महाकाल की, प्रायोजक जनसंपर्क संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
2: राजाधिराज भगवान महाकाल अवन

भाद्रपद की पावन बेला पर जब आस्था बनेगी उत्सव और उज्जैन बनेगा महाकालमय, 7 सितंबर को निकल रही है बाबा महाकाल की भव्य राजसी सवारी, गूंजेगा एक ही जय घोष, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। उज्जैन में आयोजित भगवान श्री महाकालेश्वर की राजसी सवारी का आंखों देखा हाल आप सुनेंगे मध्य प्रदेश स्थित समस्त आकाशवाणी और विविध भारती केंद्रों से एक साथ दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक। आ रही

0: माध्यम से ही विकसित भारत संभव है। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है वही सही मायने में प्रगतिशील समाज है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉप आउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है।
1: हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्शों को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हमारे देश में प्राइमरी स्कूल ड्रॉपआउट रेट 12 वर्ष पहले लगभग 4.5% था। अब ये ड्रॉपआउट रेट नहीं के बराबर है। ये उपलब्धि शिक्षकों के प्रयासों से संभव हो सकी है। इस राष्ट्रीय सफलता के लिए मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा।
0: इस अवसर पर 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से चुने गए 48 स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय की आदत पर चिंता जताई। उन्होंने नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे पर भी चिंता व्यक्त की।
2: ड्रग्स का मामला बड़े शहरों में या यूनिवर्सिटी में रहा सा नहीं, पता ही नहीं किसी को क्या है, कोई आकर के दे देता है। क्या उस संबंध में लगातार आज के जो आप टीचर्स हैं, क्या अवेयरनेस, उसके कारण क्या भय है? प्रकार से मैं पूरे शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते।
0: सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कानून, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की। यह व्याख्यान श्रृंखला कानून, न्याय और समाज से संबंधित महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर संवाद और विचारों के आदान प्रदान के लिए एक नियमित मंच प्रदान करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि भारत शिलालेखों और समुद्री व्यापार से लेकर गणित तक अपनी विरासत का अध्ययन करने और उसे दोबारा प्राप्त करने में पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ है। नई दिल्ली में वार्षिक इतिहास पुरस्कार समारोह और डॉक्टर एस एल भैरप्पा स्मृति व्याख्यान में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत अब आत्मनिर्भर है और अपनी विरासत को समझने के लिए अब किसी और की अनुमति का इंतजार नहीं करता। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सेवा नियमों को कर्मचारियों और उनके परिवारों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया। डॉक्टर सिंह ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय सेवा फोरम CSS की CSS शील्ड पहल के शुभारंभ करते हुए कहा कि यह पहल कार्मिक मंत्रालय के इस व्यापक प्रयास के अनुरूप है जिसके तहत सरकारी सेवा प्रणालियों को कर्मचारियों और उनके परिवारों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाया जा रहा है। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,344 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में बचाव अभियान जारी है जबकि लगभग 5,000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13,000 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये मैच दुबई में भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुका है। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी कियोंग से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारतीय जोड़ी ने पहला गेम जीत लिया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 7:05 हुए हैं। समय है कार्यक्रम विवरण का। कार्यक्रम विवरण में पहले सुनिए आज की सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में। 7:30 बजे प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम किसान वाणी, जिसके अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर दीपिका अग्रहार मुरुगकर से ली गई भेंट वार्ता, जिसका विषय है खेती से थाली तक, खाद्य प्रसंस्करण और हमारा पोषण। 8:00 बजे से आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के मध्य दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल, मैच की समाप्ति तक। ये थे सभा के शेष कार्यक्रम और अब जानकारी देते हैं आपको आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण कल सुबह 11 बजे से होगा, जिसमें 11 बजे आप सुनेंगे संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में विद्वान बी काली प्रसाद बाबू से मृदंगम, लय विन्यासम और विट्ठल राजपुरा का पखावज। आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल दोपहर 12 बजे। 12:30 बजे सुनिएगा संग्रहालय के अंतर्गत धारावाहिक जमुनिया की 19वीं कड़ी। कल दोपहर 1 बजे महिला कार्यक्रम, 1:30 बजे लोक संगीत और 1:45 बजे सुगम संगीत, साथ ही 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम। ये चारों ही कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी का योगदान होगा। कल दोपहर 2:30 बजे सुनिएगा बच्चों का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है। कल शाम 5:33 पर, 6:00 और 8:30 बजे आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का।

0: रात 8 बजे सुनिएगा कार्यक्रम सुर्खियों में, और रात 8:15 बजे हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम डगर विकास की। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर केंद्र की प्रस्तुति है। विषय होगा ग्रीन इंडिया मिशन। कल रात 9:30 बजे रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा, और 10 बजे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा में सुनिएगा NR प्रशांत का कर्नाटक वोकल। ये थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम, और अब एक नजर डालते हैं आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कल के कार्यक्रमों पर। कल सुबह 7:20 पर सुनिएगा दैनिक सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरमई सवेरा आप सुन सकेंगे कल सुबह 8:30 बजे, और 9:15 बजे लोक संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर प्रकाश तिवारी के गाए बुंदेली लोकगीत। सिंधियत जी सुरहान, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल सुबह 9:30 बजे, जिसके अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर प्रीति मोटियानी से ली गई भेंटवार्ता, जिसका विषय है नई पीढ़ी में कम होता सिंधी भाषा का प्रयोग। कल सुबह 10 बजे प्रसारित की जाएगी जिले की चिट्ठी, और 10:05 पर सामुदायिक गान शिक्षण पाठ में सुनिएगा नेपाली गीत मेथी मेथी हिमाई को सेतो मुकुट लाई, रचना रुद्रा पौड्याल की। 10:30 बजे सुनिएगा फिल्म संगीत। कल शाम 7:21 पर आकाशवाणी भोपाल से ग्राम सभा प्रसारित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 7:30 बजे से आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा, विषय खरीफ फसलों में समसामयिक कार्य, विशेषज्ञ डॉक्टर मैदिनी प्रताप सिंह। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 7:10 होने को हैं, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शिक्षक दिवस पर नई दिल्ली में प्रदान किए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज इंदौर में विस्तारित मेट्रो सेवा का किया शुभारंभ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल रायसेन जिले में विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे सम्मिलित, और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के गुना, श्योपुर और शिवपुरी सहित 23 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन महान शिक्षाविद और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं दी और डॉ. राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने, उनके चरित्र का निर्माण करने और उन्हें बेहतर भविष्य के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से चुने गए 48 स्कूल शिक्षकों को ये पुरस्कार दिया गया। इनमें मध्य प्रदेश के 2 शिक्षक भोपाल की डॉक्टर अर्चना शुक्ला और सीधी जिले के शैलेन्द्र प्रताप सिंह भी सम्मिलित हैं। राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बिना विकसित भारत का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता।
4: हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित ना हो। मैं चाहूंगी कि हमारे शिक्षक अपने स्नेह और समर्पण से सभी विद्यार्थियों में ज्ञान, प्रेरणा, नैतिकता और संवेदनशीलता का संचार करें।
3: भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में राज्यपाल वंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 33 शिक्षकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि बच्चों की पहली पाठशाला उनका घर होती है। माता पिता उन्हें प्रारंभिक शिक्षा और संस्कार देते हैं, लेकिन वास्तव में शिक्षक ही बच्चों को ज्ञान और संस्कारों से परिपूर्ण करते हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि हम प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। इसी दिशा में शिक्षक पात्रता परीक्षा TET को ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों की मेरिट सूची में स्थान बनाने वाले अधिकांश विद्यार्थी सरकारी विद्यालयों के होते हैं। ये उपलब्धि हमारे शिक्षक की मेहनत और विद्यार्थियों के प्रति उनके समर्पण का सशक्त प्रमाण है। राज्य के गुना, शहडोल सहित अन्य जिलों से भी शिक्षक दिवस समारोह मनाए जाने के समाचार प्राप्त हुए हैं। अब समाचारों में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in

0: पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज इंदौर में 2,850 करोड़ रुपए लागत की विस्तारित मेट्रो सेवा का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर में आज मेट्रो ट्रेन के दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया है। आने वाले समय में ये क्रम लगातार बढ़ता जाएगा।
1: यह सही है, ये कन्वेंशन सेंटर में दूसरे चरण की मेट्रो ट्रेन का लोकार्पण, और अब ये लगातार सिलसिला चलता जाएगा। आज के बाद में अगली बार जब आएगा तो और नया चरण, उसके बाद और चरण, और इधर उज्जैन तक, इधर पीथमपुर तक, सब तरफ से धीरे धीरे करके वाकई में यातायात की दृष्टि से मेट्रो ट्रेनों के आधार पर, वैसे तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में पर्याप्त धनराशि दे करके जिस प्रकार से भारत की पहचान बनी, कई सारे क्षेत्र में भारत के लिए, दुनिया के लिए भारत आदर्श हो गया।
0: ये मेट्रो सेवा कल 6 सितंबर से आम यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेगी। सेवा विस्तार के बाद अब मेट्रो गांधीनगर से मालवीय नगर चौराहा तक लगभग 17 किलोमीटर लंबे मार्ग पर संचालित होगी। विस्तारित कॉरिडोर में कुल 16 स्टेशनों से यात्रियों को आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे शहर के प्रमुख व्यावसायिक एवं आवासीय क्षेत्रों के बीच यात्रा अधिक तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक बनेगी। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल 6 सितंबर को रायसेन जिले के मंडीदीप और अबिदुल्लागंज में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे। वे सुबह 10:30 बजे सिविल अस्पताल मंडीदीप पहुंचकर पौधरोपण सहित अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे अबिदुल्लागंज के शासकीय सांदीपनी स्कूल पहुंचकर लोकार्पण एवं भूमि पूजन कार्यक्रम तथा मेधावी छात्रवृत्ति कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज निवास स्थित समत्व भवन से भिंड जिले में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में सहभागिता कर कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने, कृषि क्षेत्र को अधिक समृद्ध एवं सशक्त बनाने तथा किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि बलराम कृषि महोत्सव अन्नदाता किसानों की सेवा और उनके प्रति आभार व्यक्त करने का त्यौहार है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ बनने जा रहा है और सरकार फील्ड से लेकर फैक्ट्री तक किसानों के साथ खड़ी है। प्रदेश में बारिश के कारण कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश के चलते कई नदियां का जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल में प्रदेश के विभिन्न जिलों में अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सहायता और व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अतिवृष्टि की स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। आगामी दिनों में बारिश के संभावित प्रभाव को देखते हुए हमारे जवान पूरी दक्षता और तत्परता के साथ राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हैं।
1: बाढ़ आपदा नियंत्रण की टीमों के कारण से लगभग 2783 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया बीते एक माह में, और आज 2-4 दिन से तो ऐसा कोई नौबत नहीं है, लेकिन जो अचानक बाढ़ आती है और बाढ़ के बाद में जो चुनौती होती है, हमने काफी अच्छे से मेहनत की और लोगों को बचाया भी। अभी 2-4-10 दिन और बारिश का समय है, इसमें और सावधानी रखने की आवश्यकता, इसलिए आज हमने आकर के आपदा प्रबंधन की व्यवस्था को भी ऑब्जर्व किया और प्रदेश के कई सारे लोगों से सीधा संपर्क और संवाद भी किया।
0: मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के गुना, शिवपुरी और शिवपुरी सहित 23 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा और शहडोल संभागों के जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज देवास जिले के खातेगांव में कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया। त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। शहडोल जिले में जनजाति कार्य विभाग के छात्रावासों की मॉनिटरिंग के लिए परख ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र राजगढ़ में बलराम जयंती एवं जन्माष्टमी उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। झाबुआ में कल महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया के मुख्य आतिथ्य में श्री कृष्ण पर्व आयोजित किया गया। आगरमालवा जिले में समरसता संकल्प अभियान के तहत कलश वंदन यात्रा निकाली जा रही है और उज्जैन के श्री

महाकाल लोक में अब फाइबर की पुरानी प्रतिमाओं के स्थान पर पत्थर की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: राजाधिराज भगवान महाकाल अवन

भाद्रपद की पावन बेला पर जब आस्था बनेगी उत्सव और उज्जैन बनेगा महाकाल मय, 7 सितंबर को निकल रही है बाबा महाकाल की भव्य राजसी सवारी, गूंजेगा एक ही जय घोष, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। उज्जैन में आयोजित भगवान श्री महाकालेश्वर की राजसी सवारी का आंखों देखा हाल आप सुनेंगे मध्य प्रदेश स्थित समस्त आकाशवाणी और विविध भारती केंद्रों से एक साथ दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक। आ रही है पालकी बाबा महाकाल की, प्रायोजक जनसंपर्क संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल।

0: अब पढ़ाई के साथ कमाई भी। मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
1: mmsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

भाद्रपद की पावन बेला पर जब आस्था बनेगी उत्सव और उज्जैन बनेगा महाकालमय, 7 सितंबर को निकल रही है बाबा महाकाल की भव्य राजसी सवारी, गूंजेगा एक ही जय घोष, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। उज्जैन में आयोजित भगवान श्री महाकालेश्वर की राजसी सवारी का आंखों देखा हाल आप सुनेंगे मध्य प्रदेश स्थित समस्त आकाशवाणी और विविध भारती केंद्रों से एक साथ दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक। आ रही है पालकी बाबा महाकाल की, प्रायोजक जनसंपर्क संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल।

फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 बजे तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए

9427-0268। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना।
2: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भैयाहरों को और प्यारी प्यारी बिन्नाहरों के संग ही हमारे सभी जेठे सियानों को खूब स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम में। तो सबसे पहले स्वीकार करे पंचो अपनी रानी बहन की नेह नमन और दो ही हाथ जोड़ के पहुंचे राम राम जय सीताराम। तो देखो भैयाहरों, पूरो सप्ताह राह देखत भय शनिवार को दिना आ गओ और अब सज गई है अब सबकी गम्मत। पलके बिछाए बैठे हते कि कब संजा होए और कब भैया बिन्नाहरों से मुलाकात होए, बतखाओ सोई कर लें। तो भैयाहरों कैसे का हाल चाल है, सब कुशल मंगल है ना? पूरो आकाशवाणी परिवार आप सबकी कुशल मंगल की सोई कामना करत है। तो भैयाहरों देखो, लग गओ है भादों को माह और त्योहारों की लग गई है झड़ी। कान्हा की दही हंडिया और माखन मिश्री की मिठास के संग गई सौंठ के लड़ुआ की महक अवे तकन भरमा रही है मन को। तो भैया हरों देखो, एक योजना की जानकारी सुई देने हती कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना भारत सरकार की बहुत ही उम्दा कृषि केंद्रित योजना है, जाको उद्देश्य जे है कि देश के कम उत्पादकता वाले जोन जिला हैं उनके किसान भैया की आय बढ़े और सिंचाई भंडारण और ऋण फसल विविधीकरण और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा मिले, बेहतर सुविधाएं व्यवस्थित तरीके से मिले तो भैयाहरों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए। तो जय उद्देश्य है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को। अरे भैयाहरों देखो, बतखाओ करत करत हम तो भूले गए कि किसान वाणी कार्यक्रम में तो हम आपके काजे लाए हैं बहुत ही उपयोगी जानकारी। खेत खलिहान से अनाज दाल फल सब्जी जब सही ढंग से प्रसंस्कृत होके अपनी थाली तकन पहुँचाते ना तो कुछ स्वाद और पोषण दो ही बढ़ जाते हैं। खाए पी की सही समझ होए तो पौष्टिक आहार मिल जाते हैं अपन के। स्थानीय खाद्य पदार्थ अपन के लाने बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते हैं, अपने शरीर के लाने भी और अपने परिवार के पोषण के लाने भी। तो भैया हरो, जैया महत्वपूर्ण विषय की जानकारी आप सबसे साझा कर रही हैं। डॉक्टर दीपिका अग्रहार मुरुक्कुर आहार विशेषज्ञ हैं, वे बताएं खेती से थाली तकन खाद्य प्रसंस्करण और हमाओं पोषण की जानकारी, और इनसे भेंट करी है मनोज सक्सेना भैया ने।
3: किसान भाइयों, हम जब फसल उगाते हैं, फल फूल सब्जियां उगाते हैं, ये एक बड़ा काम होता है, पर अगर हम उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, उनका प्रसंस्करण कर लेते हैं तो ये और भी बड़ा काम हो जाता है, क्योंकि इससे हमें पौष्टिक आहार तो मिलता ही है, हम अतिरिक्त आय भी कमा सकते हैं। जी हाँ, आज हम कुछ ऐसी ही बातचीत करने वाले हैं। हमारा विषय है खेती से थाली तक खाद्य प्रसंस्करण और हमारा पोषण। बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ हैं डॉक्टर दीपिका अग्रहार मुरुगकर, जो कि सोयाबीन प्रोसेसिंग यूनिट की हेड हैं CIAE केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान नवीबाग भोपाल में। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: नमस्कार।
3: बात हम जैसा करते हैं प्रोसेसिंग की, या बात करते हैं कि प्रसंस्करण होना चाहिए, प्रसंस्करण को कैसे समझाएंगे आप?
4: बहुत आसान शब्दों में कहें तो खेत से आया खाद्य पदार्थ जिस रूप में पैदा होता है उसे खाने योग्य, सुरक्षित और अधिक समय तक रखने योग्य बनाने के लिए हम जो भी करते हैं वो खाद्य प्रसंस्करण है। जैसे कि गेहूं को पीसकर आटा बनाना, धान से चावल निकालना, दाल छीलना, सोयाबीन से टोफू बनाना या फल सब्जियों को सुखाना, ये सभी प्रसंस्करण है। असल में हमारी दादी नानी भी बहुत अच्छा फूड प्रोसेसिंग करती थी, बस वे इसे इस नाम से नहीं बुलाती थी।
3: जी जी,

0: अब जैसे कि घर में खाना बना रहे हैं लोग, इसको क्या प्रोसेसिंग की श्रेणी में लेंगे?
1: बिल्कुल, ये भी प्रोसेसिंग की श्रेणी में ही जाएगा।
0: जाएगा। ऐसा मानना है कि लोगों का कि जो ताज़ा भोजन होता है वह ज़्यादा पौष्टिक होता है, अगर हमने उसको प्रोसेस करके रख लिया है, बहुत दिनों तक रखा हुआ है, तो उसकी पौष्टिकता कम हो जाती है, क्या मानती हैं आप?
1: ये पूरी तरह तो सही नहीं है। कुछ चीजें ताजी खाना अच्छा है, लेकिन कई खाद्य पदार्थों को हम बिना प्रोसेसिंग के खा ही नहीं सकते। जैसे कच्ची दाल नहीं खा सकते, चावल नहीं खा सकते, सोयाबीन को भी सीधा नहीं खा सकते। इसे भिगोना पड़ता है, पकाना पड़ता है और कई अन्य तरीकों से तैयार करना जरूरी होता है। और सही प्रोसेसिंग से भोजन सुरक्षित और पचने में आसान हो सकता है। हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा पकाना, बहुत अधिक पानी डालकर उस पानी को फेंक देना या भोजन को बार बार गर्म करना, ये ठीक नहीं है। इसलिए बात प्रोसेसिंग की नहीं, बल्कि सही प्रोसेसिंग की है।
0: अब जैसे कि हमारे घर में जो गृहिणियाँ हैं वह खाना बनाती हैं, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, सब्जियों को काटती भी हैं, चावल बना लेती हैं, ये सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इसको ध्यान रखने के लिए क्या ज़रूरत है कि ये हमारा बहुत सुरक्षित रहे पूरा खाना?
1: जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत साधारण बातें हैं ये। सब्जी को पहले धोएं, फिर काटें। काटने के बाद बहुत देर तक पानी में भिगो कर ना रखें। सब्जियों को बहुत बारीक काटना और बहुत ज़्यादा पकाना भी ठीक नहीं। दाल हो या सब्जी, पकाने में आवश्यकता से ज़्यादा पानी ना डालें। यदि पानी बचता है तो जहाँ संभव हो उसे फेंकने के बजाय भोजन में उपयोग कर ले। जैसे उसी पानी से आटा गूंथ ले या ऐसा कुछ कर ले तो वो व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि उसमें पोषण है। और एक अच्छी आदत ये है कि जितना आवश्यक हो उतना ही खाना बनाएं। इससे ताज़ा भोजन मिलेगा और बार बार गर्म करने की ज़रूरत भी कम
0: कम
1: होगी।
0: पड़ती है। अब जैसे हमारे यहाँ देश में बहुत परंपरा है, हम अंकुरित अनाज खाते हैं,
1: जी।
0: चना है, मूंग है, इनको भिगोते हैं, अंकुरित करते हैं और फिर उसको खाते हैं। क्या भिगोने और अंकुरित करने में वास्तव में पोषण में कोई लाभ होता है?
1: बिल्कुल, हमारे घरों में कई पुरानी परंपराओं के पीछे अच्छा खासा विज्ञान है। दाल या अनाज को भिगोने और अंकुरित करने पर बीज के अंदर बदलाव शुरू होते हैं, जिससे वो बाहर बार पचने में आसानी हो जाता है और कुछ पोषक तत्व शरीर को अधिक आसानी से उपलब्ध होते हैं। मूंग, चना आदि हम घर में ही अंकुरित करते हैं, लेकिन यहाँ एक बात ज़रूरी है। अंकुरण हमेशा साफ पानी और साफ बर्तन में करें, और गर्मी का अगर मौसम हो तो अंकुरित खाद्य को बहुत देर तक बाहर ना रखें, क्योंकि उसमें खराब जीवाणु भी बढ़
0: आ
1: सकते
0: सकते
1: हैं।
0: हैं। मैम जी, इस समय जैसा देख रहे हैं हम कि सोयाबीन बहुत तायत में हमारे यहाँ उगाया जाता है, मध्य प्रदेश को वैसे भी सोयाबीन राज्य
1: जी
0: कहा
1: जी
0: जाता है,
1: जी
0: और सब जानते हैं कि सोयाबीन में बहुत प्रोटीन होता है,
1: जी जी
0: लेकिन हमारी जो थाली है उसमें सोयाबीन की मात्रा कम होती है।
1: जी
0: क्या किया जाए कि जिस तरीके से हम क्या करें कि हमारी थाली में भिन्न भिन्न प्रकार से, भिन्न भिन्न रूपों में सोयाबीन आ जाए?
1: जैसे कहते हैं ना, चिराग तले अंधेरा, थोड़ा सा ऐसा है एमपी
0: जी
1: का। और बहुत ये रोचक बात भी है कि हमारे प्रदेश में, जैसे आपने कहा, सोयाबीन बहुत है, लेकिन हम इसे मुख्यतः तेल वाली फसल मानते हैं,
0: जी
1: जबकि सोयाबीन में अच्छी मात्रा में उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन है। आपको मैं बता दूं कि शाकाहारी भोजन में सबसे ज़्यादा 40% प्रोटीन जो है सोयाबीन में ही पाया जाता है। लेकिन कच्चे सोयाबीन को सीधा नहीं खाना चाहिए। जो लोग कच्ची सोयाबीन को गेहूं के साथ आटे में पिसा रहे हैं, उनके लिए मैं हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि आप उसे बिना प्रसंस्करण किए नहीं खाएं। सही तरीके से प्रोसेसिंग करके ही सोया मिल्क, टोफू और सोया आटा और ये सारे खाद्य पदार्थ बनाए जा सकते हैं और खाए जाने चाहिए। जैसे अगर हम टोफू का ले लें, टोफू हम अपने सामान्य सब्जियों में भी डाल सकते हैं, जैसे पनीर डलता है, भुर्जी बना सकते हैं, पराठे में भर के कर सकते हैं, कटलेट जैसी चीज़ें भी बना सकते हैं। तो इस तरह हमारे खेत में पैदा होने वाले सोयाबीन हमारे परिवार के पोषण में भी योगदान देता है। और इसमें मैं आपको, आप सब भाई

0: बहनों को ये बताना चाहती हूँ कि केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान में सोयाबीन को प्रसंस्करण करके उसका दूध, उसका टोफू और कई अन्य मट्ठा है, श्रीखंड है, आइसक्रीम, ये सब बनाने की विधि और बिजनेस के रूप से जैसे हम प्रसंस्करण करते हैं उसकी ट्रेनिंग होती है, 5 दिवसीय ट्रेनिंग होती है। तो मैं चाह रही हूँ कि जो लोग इसमें दिलचस्पी रखते हैं वो बिल्कुल हमें कॉन्टैक्ट करें। अगला ट्रेनिंग ये 21 सितंबर से है, तो कोई ज्वाइन करना चाहे कोई हमारे साथ तो हम हमें बहुत खुशी होगी।
1: मैम, सोयाबीन के अलावा आजकल कहते हैं ना कि जो मिलेट्स उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। पहले तो मिलेट्स का कोई इतना चलन नहीं था, लोग उसको महत्व भी नहीं देते थे, पर आज विज्ञान ने उसकी महत्व को बताया है। मिलेट्स से जैसे बाजरा है, ज्वार है, रागी है, कोतो है, कुटकी है, इनको हम अपनी थाली में कैसे लेके आए?
0: वो हमारी थाली का अभिन्न हिस्सा थे
1: जी,
0: हमेशा। और हम गेहूं और चावल कम खाया करते थे, लेकिन हम पूरा अब जोर गेहूं और चावल पे डाल रहे हैं, तो थोड़ी सी हमें डायबिटीज़ और इन सब चीज़ों की शिकायत ज़्यादा होने लगी है। और ये बहुत अच्छा पहल है सरकार का कि उन्होंने मिलेट्स को वापस लेकर आया है, क्योंकि ये हमारे पारंपरिक अनाज है और हमारी भोजन में विविधता बढ़ाने में बहुत सहायक है वो, और इनमें फाइबर और कई उपयोगी खनिज पाए जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इन्हें केवल पुराने तरीके से ही खाया जाए, क्योंकि पुराने तरीके जैसे बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आती थी
1: जी।
0: तो जैसे हम अब नए तरीके में बाजरे या ज्वार की रोटी भी बनाई जा सकती है, रागी का दलिया बनाया जा सकता है, और कोदू कुटकी तो चावल के रूप में ही मिलता है और उसका चावल के रूप में ही उपयोग होता है। और सबसे अच्छी बात है कि अनाज रोज़ खाने के बजाय अलग अलग अनाजों को बदल बदल कर हम खाएंगे तो हमारी थाली में भी अच्छी विविधता होगी और पोषण भी हमें ज़्यादा मिल जाएगा।
1: मैम, अब हम दूसरे पक्ष की तरफ चलते हैं। अब तक हमने बात की प्रोसेस करने की, बाजारों में प्रोसेस्ड फूड मिल रहे हैं
0: जी जी,
1: पैकिंग आ रही है, बड़ी खूबसूरत पैकिंग होती है, बहुत सारे उसमें दावे लिखे होते हैं, वादे लिखे होते हैं, बहुत कुछ होता है। चुनाव कैसे करें कि कौन सा अच्छा है?
0: सबसे पहले पैकेट की सुंदर तस्वीरों या बड़े बड़े दावों को देखकर सामान न खरीदें। पैकेट को पलट कर पीछे उसकी असली कहानी जरूर पढ़ें
1: जी।
0: जब हम पीछे पलटते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ डाली गई है, ये लिखा जाता है, और सबसे ज़्यादा जो चीज़ डाली गई है वो पहले आता है और सबसे कम जो है वो आखिर में आता है। तो ये हमको खास कर देखना है कि उसमें चीनी, नमक और वसा कितना है। अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं और उसमें सबसे ज़्यादा चीनी है तो हमें उस पदार्थ से थोड़ा सा बच के रहना है। और सामग्री की सूची बहुत अच्छे से पढ़े, मैं फिर कह रही हूँ, क्योंकि यदि किसी चीज़ में बहुत अधिक चीनी, नमक या तेल हो तो वो रोज़ रोज़ के भोजन का हिस्सा बनने के बजाय कभी कभी ले।
1: ओके,
0: ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि आप ये बिल्कुल ना खाइए, क्योंकि वो इतना सुंदर ऐसा पैकिंग और बच्चों को इतना मन ललचाने वाला चीज़ बनाते, तो सिर्फ ये है कि इसको रोज़ रोज़ ना खाए। और जहाँ संभव हो तो साबुत या कम प्रोसेस्ड वाला खाए। उदाहरण से के लिए फल खाएं और फल के नाम का जूस कम पिए, क्योंकि उस जूस में फल नहीं रहता। आप अगर पीछे पलटेंगे तो चीनी, पानी और बहुत कम कुछ रहता है, तो फल खाइए। तो उस तरह से हमको हर एक चीज़ को परख परख के, पैकेट पलट पलट के पढ़ के फिर हमको खाना है।
1: मतलब कि वो कहते हैं ना कि पानी पियो छान के और भोजन खाओ जान के।
0: हाँ बिल्कुल,
1: ये सब जरूरी है। मैडम, एक चीज़ और है, मैंने आज की इस बातचीत की शुरुआत में जैसे कहा था किसानों से कि हम जो फसल उगा रहे हैं, फल फूल सब्जियां उगा रहे हैं, उनसे हम आय भी कमा सकते हैं। तो जो छोटे किसान हैं, घर में ही खाद्य प्रसंस्करण करके किस तरीके से अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में भी बताइए ना।
0: ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे किसान भाई अब खेती को उद्यम के रूप से देखें
1: जी।
0: और किसान के लिए इसका बहुत महत्व है। कई बार किसान अपने उपज कच्चे रूप में बेचते हैं।

0: और उसे कम कीमत मिलती है। यदि उसी उपज को सफाई, ग्रेडिंग, ड्राइंग या प्रोसेसिंग करके कोई उपयोगी उत्पाद बनाया जाए तो उसका मूल्य बढ़ता है। मान लीजिए सोयाबीन ही केवल दाने के रूप में बेचने के बजाय अगर उसका टोफू या सोया मिल्क या फल सब्जियों को सुखाकर सुरक्षित किए जाए तो स्थानीय स्तर पे छोटे व्यवसाय के अवसर बन सकते हैं। एक और मैं उदाहरण देना चाहती हूँ, टमाटर। टमाटर कभी कभी 50 पैसे तक आ जाता है और खेत में ही छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसको उसकी कटाई करने में ही जितना पैसा लगता है वो किसान नहीं दे पाता। लेकिन अगर उसका टमाटर का पाउडर या प्यूरे या केचप बनाया जाए तो उसका दाम साल भर 150 से 250 रुपये रहता है। तो इससे किसानों को बहुत फ़ायदा होता है। और प्रोसेसिंग का दूसरा लाभ ये भी है कि फसल खराब होने से बच सकती है।
1: प्रसंस्करण जब हम कर रहे होते हैं तो हर चीज़ को सुखाना कहीं ना कहीं एक उसमें बहुत मायने रखता है क्योंकि उसके अंदर जो पानी का तत्व है उसको सुखाने की ज़रूरत होती है। धूप में सुखाना ठीक रहता है, छाँव में सुखाना ठीक रहता है, आजकल ये ड्रायर आ चुके हैं उसमें सुखाना चाहिए।
0: देखिए बहुत छोटा सा अगर आपके पास थोड़ा ही अमाउंट है तो धूप में सुखा सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि धूप में जब सुखाएं तो उसके ऊपर एक हल्का कवर लगाएं ताकि बाहर का धूल मिट्टी उस खाने में ना जाए। कुछ चीज़ें जैसे पत्ते हैं, जैसे आप देखेंगे मोरिंगा के पत्ते, उनको धूप में नहीं सुखाया जाता, उनको छांव में सुखाया जाता है। तो हर एक वस्तु का सुखाने का तरीका भी अलग होता है। तो उस तरह से अगर आप साल भर के लिए बहुत सारा सुखा रहे हैं तो कई सारे ड्रायर अवेलेबल है और सोलर ड्रायर तो बहुत ही बढ़िया है खाद्य पदार्थों को सुखाने में, क्योंकि उसका जो तापमान है वो 40-50 से ऊपर नहीं जाता और उसके नीचे रहने से सारे पोषक तत्व खान पान में बना रहता।
1: श्रोताओं, हम समझते हैं कि इस बातचीत से आप इतना तो समझ चुके होंगे कि हम जो घर में सब्जियां लाते हैं अगर वे अतिरिक्त आ गई हैं या आपने अतिरिक्त उगा ली हैं तो उसको यूं ही बेभाव मत बेचिए। आप उसकी प्रोसेसिंग कीजिए, उसका प्रसंस्करण कीजिए और अधिक से अधिक लाभ कमाइए, साथ ही अपना स्वास्थ्य वर्धन भी कीजिएगा। डॉक्टर दीपिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस अमूल्य जानकारी देने के लिए।
2: तो किसान भैया हरो, बहुत ही नौनी और उपयोगी जानकारी अपन ने सुनी डॉक्टर दीपिका अग्रहार मुरुक्कर से। सही प्रसंस्करण से सही पोषण प्राप्त करो जा सकत है। तो अब हो जाए भैया हरो एक मनोरंजन वाली बात, तो सुनत है जो बुंदेली कृष्ण भजन रज्जू राजा चौहान की आवाज में।

0: किसान भैयाहरों, किसानवाणी कार्यक्रम आपको अपनो पसंदीदा कार्यक्रम और अब आपके सुनाते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके मन को प्रसन्न करते हैं। देखो भैयाहरों, आधुनिक टाइम चल रहा है और उसके संगे संगे हम भी आधुनिक हो जा रहे हैं और हमारी बिन्ना हरे हैं तो बहुत ही आधुनिक हैं, पीछे नहीं है। ड्रोन तो सबको ही जाना थे और हमारी बिन्ना हरे भी ड्रोन चलाने लगी हैं। कहते हैं कि ड्रोन दीदी आई, खेती में नई उड़ान लाई, खेतन में बढ़ी तकनीक, किसानन की बढ़ी शान, मेहनत घटे, पैदावार बढ़े और गांव-गांव खुशहाली चढ़े। तो भैया हरे अपन सब जने मिलके सुनत हैं जय लघु चर्चा शिवेंद्र कुंभकार से, जो वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी हैं निजी संस्थान में, बता रहे हैं ड्रोन दीदी योजना के बारे में। तो सुनत हैं।
1: नमस्कार किसान भाइयों, नारी शक्ति जब तकनीकी से जुड़ती है तो विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। और अगर हम बात करें महिलाओं के आत्मनिर्भरता की, तो आधुनिक कृषि तकनीक से जुड़कर आज हमारी बहनें कई तरह की सफलता की इबारतें लिख रही हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना ये भी एक इसी तरह की योजना है जो ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन संचालन और कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग का प्रशिक्षण देकर काफी उनको आगे ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। तो इन्हीं सब विषयों पर जानकारी पर हमने बात करने के लिए मुलाकात की है निजी संस्थान में मुख्य तकनीकी अधिकारी हैं भोपाल में शिवेंद्र कुंभकार, उनसे हम बात करेंगे कि जो ड्रोन है वो किस तरह से हमारी बहनों के लिए उपयोगकर्ता हो सकती है। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार।
2: नमस्कार
1: सर, हम देख रहे हैं कि आज तकनीकी का उपयोग बहुत हो रहा है, अत्याधुनिक तरीके से हो रहा है। अगर हम ड्रोन की बात करें तो कृषि क्षेत्र में ड्रोन का कितना उपयोग हो रहा है?
2: मैम, कृषि क्षेत्र में बात करें तो ड्रोन का काफ़ी ज़्यादा अभी उपयोग बढ़ गया है। फिलहाल शुरुआत में हम देखें कुछ साल पहले के डेटा से, तो अभी का डेटा करीबन 70% अपलिफ्टमेंट दिखाता है कि पुराने मुकाबले हम कंपेयर करें तो 70% ज़्यादा जगहों पर ड्रोन का उपयोग होने लगा है।
1: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग हो रहा है। महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं के लिए ये कितना उपयोगी है उनके आने वाले भविष्य के लिए और करियर के लिए?
2: बहुत ही उपयोगी है ये, एक तरह से देखा जाए तो कम समय में बहुत ज़्यादा काम आपको करके दे सकता है, शरीर पे लोड कम पड़ता है। एक साथ आप ज़्यादा जगह का, अगर हम कृषि में ही बात करें तो ज़्यादा जगह की आप एक ही बार में सिंचाई कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं, देखरेख कर सकते हैं।
1: अगर हमारी कोई दीदी ड्रोन योजना का लाभ लेना चाहती है, प्रशिक्षण लेना चाहती हैं, तो उसके लिए क्या कर सकती हैं वो?
2: देखिए, सरकार का पोर्टल है, सरकार के पोर्टल पर जाके उनको पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। उस रजिस्ट्रेशन के तहत सरकार आपको 80% सब्सिडी देती है जो भी आपकी ड्रोन की सामने अपफ्रंट कॉस्ट रहती है उसके तहत, तो वो बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। सिर्फ ड्रोन की ही इसमें जी अमाउंट नहीं रहता, ड्रोन के साथ साथ जो कृषि में उपयोगी जितनी भी उसकी अटैचमेंट्स रहते हैं उसका भी रहता है। साथ ही इसमें एक 15-20 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी इंक्लूडेड है जिसके अंदर ड्रोन चलाना और उस ड्रोन के उपयोग से खेती में कैसे सही तरह सही टाइम पे फर्टिलाइज़र डालना, पानी डालना, उस प्लांट को मॉनिटर करना कि किस तरह से उसको देख के कि अच्छा है या इसमें कुछ फर्टिलाइज़र की कमी है या जितने भी कहीं पे जैसे पानी खेत है तो पानी रहेगा, पानी है मिट्टी है तो अपन फंसने की जिम्मेदारी या जो उसमें दिक्कत रहती है कि चलते चलते कभी कभी कुछ फसल ख़राब हो जाती है, तो वो फसल ख़राब होने की जगह आप अगर ड्रोन से मॉनिटर करेंगे तो फसल पे कोई ज़्यादा इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता और पूरी की पूरी फसल एक बार में अच्छे से उपजाऊ होती है।
1: अगर हमारी कोई दीदी इस ड्रोन पद्धति को अपनाना चाहती है, करियर के रूप में अपनाना चाहती है, तो किन किन क्षेत्रों में वो अपने लिए इसको चुन सकती है?
2: देखिए, वो जिस क्षेत्र में जाना चाहे टेक्नोलॉजी के माध्यम से जा ही सकती हैं। एक बार अगर उनको ड्रोन चलाना आ जाए तो वो एक तो रेंट बेसिस पे भी काम कर सकती हैं कि दूसरे एरियाज में रेंट पे अपनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकती हैं। दूसरा, उनको तभी सिखाया जाता है इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में कि

0: अगर छोटे मोटे फॉल्ट्स आए तो उनको कैसे रिपेयर कर सकते हैं, तो इंजीनियरिंग के रूप में भी देखा जा सकता है। और बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जिसके जरिए वो लोग अपने ड्रोन के सहारे अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं।
1: अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो अब तक मध्य प्रदेश में कितनी बहनें जो हैं इसका लाभ ले चुकी हैं?
0: देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा अपलिफ्टमेंट दिखा है इस चीज़ में कि महिलाएं कृषि जितनी भी थीं वो लोग ड्रोन की तरफ ज़्यादा जा रही हैं। सरकार को पूरा श्रेय जाता है कि वो अपनी योजना के तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इसमें जोड़ पा रहे हैं। आगे उम्मीद है कि और भी जो छोटे छोटे क्षेत्र बचे हुए हैं उन क्षेत्र में भी ड्रोन का उपयोग होना शुरू हो जाए।
1: तो हमारी बहनों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो ड्रोन दीदी बनना चाहती हैं?
0: सरकार की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसका फ़ायदा उठाएं और सिर्फ अपने खेत नहीं अपने आसपास वालों के खेत को भी बचाएं और अपनी एक इनकम को स्टेबल करने का अच्छा मौका है तो उपयोग ज़रूर करें।
1: तो बिल्कुल बहनों, आप अगर चाहें तो बहुत अच्छी तरह से ड्रोन का उपयोग करके आत्मनिर्भर बन सकते हैं। ड्रोन दीदी योजना तकनीक की और नारी शक्ति के संगम का एक शानदार उदाहरण है। आज की ग्रामीण महिला केवल अपने परिवार और गांव की जिम्मेदारियां नहीं संभाल रही बल्कि तकनीकी भी सीख रही है, रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही है और कृषि को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक ड्रोन सिर्फ खेतों पर नहीं उड़ता, वो एक महिला के सपनों, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाई पर भी उड़ता है। तो हम सब मिलकर ऐसी पहलों को प्रोत्साहित करें और एक ऐसे भारत के निर्माण में योगदान दें जहां हर महिला सक्षम हो, आत्मनिर्भर हो और अपने सपनों को उड़ान दे सके।
2: किसान भैयाहरों के संगे हमारी बहनों ने भी शिवेंद्र कुंभकार से, जो वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी हैं, ड्रोन दीदी योजना के बारे में आपने सुनी और उम्मीद है कि आपको लाभ जरूर ले हैं। अब किसान भैयाहरों, किसानवाड़ी कार्यक्रम में जरा 5 सितंबर के मंडी भाव की जानकारी भी आप सबको दे चलें। ताजा भाव की अगर हम बात करें तो किस्म और आवक के हिसाब से सोयाबीन के भाव करीब 4,180 रुपया से 6,100 रुपया प्रति क्विंटल रहो और मक्का करीबन 1,900 रुपया से लेकर 2,276 रुपया क्विंटल तक बिकत देखी भई गई। तो भैयाहरो, किसान भैयाहरो, अब देखो टाइम हो रहा है चलबे को, तो आज को किसानवाड़ी कार्यक्रम को हम देते हैं इतई विराम और जल्दी मिलें अगले कार्यक्रम में। तो देव अनुमति अपनी रानी बहन के और स्वीकार करें हमारी राम राम, जय सीताराम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे।
3: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: पुतला बोल रहे?
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब?
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहाँ,
4: पर हम तो सभी डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच है?
3: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूंगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: किसानवाणी
1: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम
0: किसानवाणी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसानवाणी, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। और श्रोताओं, अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां से आप सुनेंगे महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के मध्य दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल।
3: इससे पहले जो दो मुकाबले खेले गए, दोनों में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी की थी, तो आज भारतीय गेंदबाजी की भी परीक्षा होगी। पूरे मौके भारतीय गेंदबाजों को पिछले दो मैचों में कहें तो वास्तविक रूप से नहीं मिल सके थे। और मेरे साथ डॉक्टर मिलिंद टिप्पेस। डॉक्टर मिलिंद, आज बहुत बड़ा मैच है, हालांकि मैच का महत्व भारत के लिए उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन भारत और पाकिस्तान का जब भी मुकाबला होता है उसका रोमांच और उसकी जो है खासियत खास हो जाती है।
4: गुड इवनिंग धर्मेंद्र मणिराजेश एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल क्रिकेट फैंस व्हेरेवर यू आर इन द कंट्री लिसनिंग टू दिस ब्रॉडकास्ट। सो पाकिस्तान विनिंग द टॉस, सिलेक्टिंग टू बैट, एंड फॉर द थर्ड टाइम इंडिया लूजिंग द टॉस।
3: और पहली गेंद इस मुकाबले की ऑफ स्टंप के बहुत ज़्यादा बाहर थी, हालांकि इस गेंद पर बल्लेबाज ने निगाह नहीं डाली, लेकिन अतिरिक्त के रूप में एक रन पाकिस्तान की झोली में आया है। वो रन वाइड के रूप में आया है। क्रांति गौड़ की गेंद ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर पिच भी हुई और छोड़कर बैटर को पूरी तरह से बाहर निकल रही थी, निगाह तक नहीं डाली थी। बहुत ज़्यादा समर्थन भारत के लिए दिखाई दे रहा है इस मुकाबले में दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। अगली गेंद के साथ तैयार क्रांति, इस बार बहुत बढ़िया गेंद उछाल लेती हुई ऑफ स्टंप के बाहर, बल्लेबाज को छोड़ती हुई, हल्का सा छोड़कर बाहर की तरफ निकली, बल्ला चला दिया था मुनीबा ने। किस्मत वाली रही कि गेंद ने बल्ले का किनारा नहीं लिया, अन्यथा शुरुआती तौर पर ही पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लग सकता था। मुनीबा फॉर्म में चल रही हैं, लेकिन आज भारत की इस गेंदबाजी के सामने, जिसने इस टूर्नामेंट में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया अब तक, उसके सामने कैसी बल्लेबाजी करती है पाकिस्तान की टीम और खासतौर पर मुनीबा, ये देखना होगा। अगली गेंद इस बार मिडिल और लेग स्टंप की, जिसको लगभग फुल टॉस बनाते हुए खेल दिया ऑन साइड में मिड ऑन की तरफ, कोई रन नहीं। अभी भी स्कोर पाकिस्तान का एक रन बगैर किसी नुकसान के। दो गेंदों का सामना अभी तक जो है वो पाकिस्तान की बल्लेबाज मुनीबा ने किया है। हमने आपको बताया कि ये मुकाबला जो है पाकिस्तान का 200वां इंटरनेशनल T20 मुकाबला है। अगली गेंद को एक बार फिर से, जो कि मिडिल स्टंप पर थी, बैकफुट पर जाते हुए अपने सामने की तरफ खेला मुनीबा ने, इस बार भी कोई रन नहीं। काफ़ी किफ़ायती गेंदबाजी, सधी हुई लाइन, अनुशासन भरी गेंदबाजी। टॉस आज पाकिस्तान ने जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और उस फैसले को अगर कहें तो अभी तक पाकिस्तान की टीम को साबित करना होगा। पाकिस्तान का ये दूसरा मुकाबला है एशिया कप 2026 का। अगली गेंद को ड्राइव किया खूबसूरत तरीके से, गैप भी ढूंढने में कामयाब रही मिस फील्डिंग, और इस मौके पर फील्डर भाग रही गेंद को उठाने के लिए, बाउंड्री लाइन के करीब 2 से 3 गज अंदर इस गेंद को रोका गया, लेकिन तब तक पूरा मौका है भाग कर 3 रन पूरा करने का, और वो 3 रन आसानी के साथ पूरे हुए। इन 3 रनों के साथ पाकिस्तान का स्कोर बढ़ता हुआ 4 बगैर किसी नुकसान के। इस बार जगह दी थी ऑफ स्टंप के बाहर, ये गेंद पिच होने के बाद लगभग फुलर लेंथ की गेंद थी, और उसको ड्राइव किया खूबसूरत तरीके से पॉइंट और कवर के बीच से, बढ़िया 3 रन। फील्डिंग भी उतनी ही अच्छी, और इन 3 रनों से पाकिस्तान के स्कोर में इजाफा हुआ, 5 रन पर पहुंच गई है पाकिस्तान की टीम, बल्कि 4 रन पर है। पहला रन अतिरिक्त के रूप में आया था, और ये 3 रन बल्ले से आए हैं। इस ओवर की 2 गेंदें अभी बची हुई हैं। अगली गेंद इस बार सीधी गेंद ऑफ स्टंप पर, जिसको आगे आते हुए सम्मान दिया पूरी तरह से बल्लेबाज शवाल ने, सीधे बल्ले से बिल्कुल गेंदबाज की तरफ इस गेंद को खेला, रन की कोई संभावना थी नहीं, फॉलो थ्रू में गेंद को रोका गया। जहाँ तक इस मैच में भारतीय टीम की बात है, 2 तेज गेंदबाज नंदिनी शर्मा और क्रांति गौड़, इसके साथ साथ 3 स्पिनर्स टीम में शामिल। अगली गेंद इस बार बल्ले के अंदरूनी हिस्से पर टकराई शवाल के, और परिवर्तन के तौर पर ऑन साइड में गई मिड ऑन की तरफ, रन नहीं मिलेगा। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 4 पाकिस्तान का बगैर किसी नुकसान के।
4: So four without loss, Pakistan winning the toss and electing to bat here at the Dubai International Stadium. And Pakistan today winning the toss and making no change from the team that beat Thailand the other day. India too continuing to trust the same 11 players that quite comprehensively beat the Hong Kong China team the other day. Quickly, for the benefit of late tuners, I shall run through the composition of the two teams. The Indian team, Smriti Mandhana, Saif Ali Verma, Pratika Rawal, Harmanpreet Kaur, Bharti Fulmari, Richa Ghosh, Dipti Sharma, Prema Rawat, Nandini Sharma, Sri Charani and Kranti Gaud. It is

0: उद्धव का हाथ से नीचे जाने दिया है इस मौके पर प्रतीका ने.
1: Yes, that wasn't a difficult catch at all, and that really could have been a major wicket because Munidaba Ali has really been a thorn in India's flesh, looking for that big shot. In fact, two fielders converging. It was Pratika who got underneath the ball. She had all the time in the world, and she tried to catch it with her hands reverse cupped, something that the Australians and the New Zealanders do, and then couldn't really latch on to the ball. Next one strikes the bat on the pads, but the ball clearly drifting down the leg side. So a new lease of life for the batter.
0: जी हाँ, मुनीबा अली बहुत राहत महसूस कर रही होंगी. इससे आसान कोई जीवनदान मिल नहीं सकता. एक तोहफा आया था प्रतीका के हाथ में, लेकिन उसको उन्होंने जाने दिया और अब राहत की सांस ले रही है मुनीबा. नॉन स्ट्राइकर एंड पर 7 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर हैं. ओवर द विकेट, क्रांति की ये गेंद, इसको लॉफ्ट किया इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, फील्डर भाग रही है लेकिन रोक नहीं पाएंगे. 4 रन. एक बढ़िया चौका आता हुआ, आत्मविश्वास भरा शवाल का. जानबूझकर खेला गया स्ट्रोक था, हवा में जरूर थी ये गेंद, लेकिन जानती थी कि फील्डर 25 गज के घेरे के अंदर हैं और उसके ऊपर से इस गेंद को खेलना सुरक्षित रहेगा. बिल्कुल नपा तुला स्ट्रोक और 4 रन आता हुआ पाकिस्तान के लिए. इस चौके के साथ पाकिस्तान का बढ़ता हुआ स्कोर 16 बगैर किसी नुकसान के. तीसरा ओवर ये पाकिस्तान की पारी का चल रहा है और अभी तक क्रांति गौड़ के इस ओवर में आक्रमण की रणनीति पाकिस्तान की दोनों बल्लेबाजों ने अपनाने की कोशिश की. इस बार सुरक्षित तरीके से मिडिल स्टंप की गेंद को अपने सामने, नजरों के सामने, ठीक निगाहों के सामने खेल दिया शवाल ने, कोई रन नहीं. तीसरा ओवर चल रहा है और अगर इस मैच की बात करें तो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये मुकाबला, क्योंकि भारत की टीम अपने पहले दोनों मैच जीतकर सुरक्षित सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है. पाकिस्तान की टीम अगर यह मुकाबला जीतती है तो फिर सेमीफाइनल में उसकी भी जगह पक्की हो जाएगी. अंतिम गेंद को फिर से अपने शरीर से दूर खेलने का प्रयास, बीट हुई ओवर की समाप्ति. 3 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 16 बगैर किसी नुकसान के.
1: So after 3 overs, Pakistan threw their captain Fatima Sana winning the toss and electing to bat. And after 3 overs, the total is 16 without loss. They could have easily lost the wicket of Muniba Ali, who was dropped by Pratika Rawal when she was 7, going for that lofted shot, the ball hitting the batter high on the bat, going up in the air. And Pratika Rawal had all the time in the world to get underneath, got her hands through the ball but couldn't really latch on to it finally. So Pakistan, Muniba Ali is not out on 7, and Shawal is not out on 8. Kranti Gaur, 2 overs, no runs, no wickets claimed, 9 runs conceded, whereas Nandini in her first over had picked up conceded 7 runs. Here is Nandini outside the off stump, and that's been driven down to the fielder inside the 25-yard circle, straight at Miran. Score stays at 16 without loss. Pakistan would be hoping to get at least 160, 180 runs on the board to put pressure on India. Remember, this is the first time in the Asia Cup, the 10th edition, that India will be chasing, because on both the occasions, Thailand in their inaugural match won the toss and asked India to bat first. And so did the Hong Kong-China team. But India will be chasing today. Here is Nandini, bowling from round the wicket to the left-hander, and this time looking for a big wild slog. Might have just got the inside edge onto the pads, the ball dropping down to where a short forward square leg might have been, and the batters pick up a single in the process, taking Pakistan's total up to 17. From India's perspective, one hopes that they pick up the wicket of Muniba early, because she has been given the life. She's been the prime batter in form for Pakistan, having made those 54 runs in that last game against Thailand. Here is Nandini, the third ball coming up. This pitch appears to be a good batting track. A few cracks to be seen might just help the spinners as the game goes on. There might be some variable bounce, but on the evidence of whatever cricket we have seen so far, about 20-21 balls seems to be a good batting track.

0: Here is the next one. That's a slower ball from Nandini. That's a great variation in pace. A slower ball, and Shahwal on the occasion did well to judge the lack of pace and push it on the onside. Quickly running through the composition of the Pakistan team. Munib Ali, Shahwal Zulfikar, Gul Firoza, Aisha Jafar, Sadaf Shamas, Fatima Sana, Umul Hani, Ivan Fatima, Tuba Hassan. We break off as here is the next ball, and this time gets the inside edge. You might call it as a Chinese cut or a French cut, and Dipti can't get to the ball. The ball runs away down to the boundary at fine leg for four. A lucky stroke, a streaky stroke. Nonetheless, from the Pakistan perspective, what is important is the runs, not from how and where they come. As she was looking for that big expansive shot through the covers, caught the inside edge, and very lucky for the batter, she got four runs, taking the total up to 21 without loss. Had it been the bowler's day, the ball off the inside edge would have easily crashed back onto the stumps. So for fortune for both batters, Muniba, remember, she was dropped by Pratika Rawal of Krantigarh, and now Shahwal on the occasion, the ball very perilously close to the leg stump. Here is Nandini. Now into Shahwal, and this time that's a slow one, lofted up in the air, and this time a bit of a misfielding there at mid-off inside the 25-yard circle permits the batters to go for a single, which takes the total for Pakistan up to 22. Continuing with the Pakistan team, Tuba Hussain, Nashrat Sandhu and Sadia Iqbal, which means that both the teams are going unchanged for this very crucial game. They call it as the mother of all the battles, a titanic clash, a high-octane match between India and Pakistan. But if you really go according to the statistics, you can't really call it as the mother of all battles, because India have thoroughly dominated. Last ball of the fourth over coming up. Here is the next ball into the left hand. That's been swung away. She'll get only a single for it because there is protection in the deep. And after four overs, the total for Pakistan winning the toss and batting first is 23 for no wicket.
1: तो कुल मिलाकर अभी तक पाकिस्तान ने 23 रन बना लिए हैं बगैर किसी नुकसान के चार ओवर की बल्लेबाजी के बाद, और नंदिनी शर्मा ने अपना दूसरा ओवर समाप्त किया. इन दो ओवर्स में उन्होंने 14 रन खर्च किए हैं. मुनीबा अली 9 रन बनाकर अभी भी मैदान पर हैं, 6 रन पर उनको जीवन दान मिला था, और शवाल ने अभी तक 13 रन बनाए. कहा जा सकता है कि पिछले ओवर में उनको भी एक जीवन दान मिला. रन आउट करने का एक बढ़िया मौका था, मिड ऑफ पर गेंद को खेला था, वहां पर शेफाली वर्मा फील्डर थी. गेंद को पहले प्रयास में अगर उन्होंने पकड़कर गेंदबाज की तरफ थ्रो कर दिया होता तो रन आउट का वो एक बढ़िया मौका था. काफी दूर थी बल्लेबाज क्रीज में पहुंचने से, लेकिन वो मौका भी भारत के हाथ से गया. गेंदबाजी में एक परिवर्तन, शेफाली वर्मा अब गेंदबाजी के लिए आई है. पहला ओवर पहली गेंद बाई हाथ की बल्लेबाज मुनीबा के लिए, ऑफ स्टंप पर आर्म के सहारे ये गेंद अंदर आती हुई, और उसको मुनीबा ने आगे आते हुए खेल दिया कवर की तरफ. रन नहीं मिलेगा. अभी भी स्कोर 23 रन बगैर किसी नुकसान के. दूसरी गेंद को क्रीज से बाहर निकलकर लॉब किया लॉन्ग ऑन की तरफ, और फील्डर वहां पर थी लेकिन क्रीज से बाहर, वो थोड़ा सा बाउंड्री के अंदर चली गई थी. क्रीज से बाहर निकलकर यह स्ट्रोक खेला था, एक मौका हो सकता था, लेकिन उस मौके की जगह चौका मिला है पाकिस्तान को, और बढ़ता हुआ स्कोर 27. क्रीज से बाहर निकले, लॉब किया, फील्डर थी वहां पर लेकिन बाउंड्री लाइन से काफी अंदर आ गई थी, जिस वजह से इस गेंद को लपक नहीं सकी, इस कैच को लपक नहीं सकी, और एक और मौका भारत के हाथ से जाता हुआ. आज भारतीय फील्डिंग उस स्तर की दिखाई नहीं दे रही जिस तरह का प्रदर्शन पिछले मैच में भारतीय फील्डर्स ने किया था. तीन मौके कम से कम अभी भारत के हाथ से निकले हैं, और अगली गेंद क्लीन बॉल, एक विकेट भारत के लिए आता हुआ. अंदर आती हुई गेंद आर्म के सहारे, उसको कट करने का प्रयास किया मुनीबा ने, और सीधा गेंद उनको छकाती हुई जाकर स्टंप्स पर टकराई. पहली सफलता भारत के लिए 27 पर. मुनीबा आखिरकार वापस जा रही है ड्रेसिंग रूम में, और भारत के लिए राहत की सांस, क्योंकि 6 रन पर उनको जीवन दान मिला था, और शेफाली वर्मा ने आते ही भारत के लिए सफलता अर्जित की है. 27 पर

0: मुनीबा अली का विकेट पाकिस्तान ने गंवाया है, 13 रन बनाए मुनीबा ने। कुल मिलाकर गेंदों का जो उन्होंने सामना किया, 15 गेंदों का सामना करने के बाद वो मैदान से बाहर गई हैं, इसमें एक चौका शामिल था। अब नई बल्लेबाज मैदान पर, गुलफिरोजा। तो आते ही एक सफलता शेफाली के जरिए, हालांकि शेफाली पिछले ओवर में अगर मिसफील्डिंग न करती तो एक विकेट वहां पर भी भारत के लिए आ सकता था, लेकिन गेंदबाजी के जरिए उन्होंने वो अधूरा काम पूरा किया है। कुल मिलाकर ये एशिया कप का 10वां संस्करण और इस बार 8 टीमों के बीच 12 मैच खेले जा रहे हैं। श्रीलंका इस टूर्नामेंट का पिछला चैंपियन है, जबकि सबसे अधिक 7 बार भारत ने महिला एशिया कप का खिताब जीता है। वनडे में जब ये टूर्नामेंट खेला गया वनडे फॉर्मेट में, तब 4 बार भारतीय टीम चैंपियन बनी और T20 में 3 बार खिताब जीता। अगली गेंद शेफाली की, इस बार बैकफुट पर जाकर फिरोजा ने इस गेंद को खेल दिया कवर की तरफ, रन नहीं मिलेगा। बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, कट करने का प्रयास था मुनीबा का और पूरी तरह से गेंद की लाइन को चूकी थी और स्टंप्स पर जाकर गेंद टकराई थी। बढ़िया ओवर चलता हुआ अगली गेंद भी सुरक्षात्मक तरीके से खेलने के लिए मजबूर हुई फिरोजा। अभी भी स्कोर पाकिस्तान का 27, 1 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर चल रहा है, अंतिम गेंद आनी बाकी है। शेफाली वर्मा ने भारत को पहली सफलता अपने इसी ओवर में दिलाई है। जिस गेंद पर उनको विकेट मिला उससे पहले की गेंद पर एक चौका जड़ा था और अगली गेंद पर विकेट। अंतिम गेंद इस ओवर की और उसको सुरक्षात्मक तरीके से गेंदबाज की तरफ खेला फिरोजा ने। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 27, 1 विकेट के नुकसान पर।
1: So after 5 overs, Pakistan are 27 for 1, losing the wicket of the informed batter Muniba Ali, who was bowled by Shefali Verma. Remember, it was Kranti Gowd and Nandini Sharma who shared the new ball in that last game against Hong Kong China as well. And it was Shefali Sharma who opens the innings normally for India, was called in that last game as the first change, as the third bowler. Today too, it was Harmanpreet Kaur who brought her as the first change. And she has completely reposed the faith that the captain had put in her by picking up a wicket of Muniba Ali. Now, talking about Muniba's dismissal, I thought it was a ball in line of the middle stump and exposing all the stumps. She was drawing away from the line of the ball to play a cut shot. It was fraught with danger, completely missed the line of the ball, and the ball clipped the bill on the off stump. It is going to be Sri Cherny now replacing Nandini Sharma. So change from both ends as here is the first ball short outside the off stump to Shahwal. Shahwal onto the back foot and playing it away down to long gone for a single, which takes the total up to 28 for 1. Sri Cherny in that first game against Thailand, 3 overs, no maidens, 2 wickets for 10 runs. And in that previous game against the Hong Kong China woman, 3.2 overs, no maidens, 16 runs and 2 wickets. So along with Dipti Sharma in the middle overs, they have done a fantastic job. The two umpires for this match, Nimali Pereira and Shathira Jakir. Third umpire is Rokeya Sultana and the match referee is Supriya Das. Here is Sri Cherny, left arm, round the wicket, between the umpires up, gets the outside edge, up in the air and gone. And in the first over, Sri Cherny has broken through, and what a crucial wicket. Firoza on that occasion looking to play that inside out shot, getting the top edge up in the air, out without scoring. And after that first wicket partnership of 27, Pakistan have lost wickets back to back, using her feet down the wicket, the ball spinning away from her, taking the splice of the bat and up in the air. So second wicket down, and what a crucial breakthrough. Sri Cherny continuing her good form with the ball, and the batter out on that occasion was Gulfiroza, caught by Nandini off Sri Cherny without scoring. And Pakistan then are 22 for the loss of 2 wickets. We are in over number 6. This is the last over of the power play, and thereafter the Indian captain Harmanpreet Kaur will have the luxury of having more fielders outside the 25-yard circle. This is a very landmark day for Harmanpreet Kaur. 150th T20 international match as captain, well ahead of Chamari Attapattu of Sri Lanka, who has led Sri Lanka in 121 games. Actually, it is Harmanpreet Kaur who is the first male or female to achieve this feat. Pakistan will now have to rebuild the innings. The two batters will have to bat sensibly, pick up runs in the form of singles and twos, because given the strength of the Indian batting, anything less than 160 will not be easy for them to defend, as the next one is a quicker one outside the off stump, spinning away onto the back foot goes Ahesha Zafar and tucks it away down the corner. The two batters are today was Muniba Ali and Gulfiroza. Gulfiroza out without scoring, as we watch once again. That is an angled run-up between the umpire and the stumps from wide of the crease. That's a quicker one, pushing it on the offside, and no runs accrue. Sri Cherny, most wickets for Indian women in the T20 internationals in 2026, 32 wickets. As we watch once again from the Emirates, and then this time looking for the sweep shot, gets the bottom edge. There is a fielder on the deep backward square leg boundary, which means that the batter will get just a single. With the help of that, Ahesha is off the mark, and with the current run rate of 4.97, Pakistan winning the toss and electing to bat here this evening at the Dubai International Cricket Stadium are 29 for the loss of 2 wickets. The last ball of the power play coming up. A good support for India, a very sporting crowd here today, enjoying every bit of the game, and so far so in the power play, India then are holding all the aces. Here is Sri Cherny for the last time, left arm round the wicket once again, from wide of the stump, stuck on the pads, that's a throw one, an appeal for ABW given, up goes the finger, that one was a slower one, picking up a wicket, and 2 wickets in the very first over. Ahesha was looking to sweep, was beaten once again by the lack and the paucity the ball generated. The ball might have kept a bit low. In fact, it hit the batter well above the knee roll, and a very loud shout for LBW. The umpire taking her time, giving the batter out. So Shahwal Zulfikar, LBW Sri Cherny for 14 or 14 balls. And Pakistan now in the dire straits, have lost 3 wickets for 29 runs as we come to the end of the power play.
0: तो पावर प्ले की समाप्ति हो गई है और पाकिस्तान की टीम पर इस समय संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक 3 विकेट भारतीय टीम ने झटक लिए हैं पाकिस्तान के। 29 रन पर तीसरे विकेट का पतन हुआ है। अब नई बल्लेबाज मैदान पर आएंगी। शवाल 14 रन बनाकर आउट हुई हैं। पहला विकेट मुनीबा अली का पाकिस्तान ने गंवाया, जब शेफाली वर्मा ने उन्हें अपने पहले ओवर में क्लीन बोल्ड कर दिया। 13 रन बनाकर आउट हुई, 15 गेंदों का सामना किया था, एक चौका लगाया। उसके बाद दूसरा विकेट पाकिस्तान ने गुलफिरोजा का गंवाया, वो छठे ओवर में आउट हुई और उन्होंने अपना खाता भी नहीं खोला। नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद ऑफ स्टंप से अंदर आती हुई, दीप्ति शर्मा गेंदबाजी पर आई हैं। पहली गेंद को बैकफुट पर जाकर ऑन साइड में खेला, रन नहीं मिलेगा। तो शवाल जुल्फिकार बढ़िया बल्लेबाजी कर रही थी, 14 गेंदों में 14 रन बनाकर खेल रही थी, लेकिन पिछले ओवर में श्री चरणी की गेंदबाजी का शिकार हुई। अगली गेंद इस बार दीप्ति शर्मा की, लेग स्टंप को छोड़ती हुई स्वीप करने का प्रयास आयशा का, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। एक अपील हुई जरूर गेंदबाज और विकेट कीपर की तरफ से, लेकिन उस अपील को अंपायर ने नकारा। फिर से स्टंप्स की लाइन में गेंद, स्लाइड थी थोड़ी गेंद में, ऑफ स्टंप पर पड़ने के बाद टर्न होकर बल्लेबाज की तरफ आ रही थी, जिसको बैकफुट पर जाकर आराम से लॉन्ग ऑन की तरफ एक रन के लिए खेल दिया, और इस एक रन के जरिए आयशा 2 रन पर पहुंच गई। बहुत ही जबरदस्त ये 2026 रहा है श्री चरणी के लिए। अगली गेंद फिलहाल दीप्ति शर्मा की, जो इस टूर्नामेंट के लिए भारत की सबसे सफल गेंदबाज हैं, 6 विकेट ले चुकी हैं पिछले 2 मैचों में। श्री चरणी ने 18 मैचों में इस साल 33 विकेट लिए हैं, और सबसे सफल गेंदबाज भारत की। अगली गेंद को क्रीज से बाहर निकलकर गेंदबाज की तरफ वापस खेला, रन के लिए जाना चाहती थी, फॉलो थ्रू में गेंद को रोका दीप्ति शर्मा ने और एक ही एक्शन में थ्रो कर दिया।

0: पहले में भारत की टीम, हम आपको बता दें कि पहले ही ग्रुप ए के अपने दोनों मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, और अगर भारत आज ये मुकाबला जीतता है तो उसकी अपने ग्रुप में नंबर वन की जगह तय हो जाएगी। फिलहाल 8 ओवर के बाद स्कोर 32, 4 विकेट के नुकसान पर, इसमें अतिरिक्त का योगदान 1 रन का, 27 रन तक पाकिस्तान ने कोई विकेट नहीं गंवाया था, लेकिन उसके बाद से लगातार विकेटों का पतन। नए ओवर की शुरुआत प्रेमा रावत भारतीय टीम के लेग स्पिनर गेंदबाजी के लिए आई है, पहली गेंद मिडिल और ऑफ स्टंप की, जिसको सुरक्षात्मक तरीके से अपने विकेटों से दूर ढकेला सदाफ ने, सदाफ शम्स, जो अभी तक 2 रन बनाकर खेल रही हैं। पाकिस्तान का वर्तमान रन रेट 3.92 का। अगली गेंद, इस पर फ्लाइट दिया था गेंद में, ललचाया था क्रीज से बाहर निकलने के लिए, लेकिन अपनी क्रीज से ही इस गेंद को सदाफ ने खेल दिया कवर की तरफ, रन नहीं मिलेगा। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी शेफाली वर्मा ने, जब भारत को पहले विकेट की ज़रूरत थी, दरकार थी, तब शेफाली ने अपने उस पहले ओवर में सफलता दिलाई थी। इस बार इस गेंद को खेला है कवर बाउंड्री की तरफ, स्वीपर कवर बाउंड्री पर फील्डर मौजूद, मिस फील्डिंग हुई, लेकिन उसका कोई फायदा पाकिस्तान के लिए नहीं हुआ। 1 रन तो आना ही था और वो 1 रन आया। इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 33, 4 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर चल रहा है प्रेमा रावत का, अभी तक 3 गेंदें उन्होंने की हैं जिसमें 1 रन खर्च किए हैं। जरूरत है पाकिस्तान को एक साझेदारी की। अगली गेंद को इस बार सीधे गेंदबाज की तरफ खेला, एक मौका और भारत के हाथ से जाता हुआ, गेंदबाज प्रेमा रावत ने फॉलो थ्रू में एक मौका गवा दिया, सीधे उनके हाथ में गेंद गई थी, फ्लाइट थी इस गेंद में, ताकत जरूर था इस स्ट्रोक के पीछे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेमा रावत की निगाह गेंद से हट गई थी, इसलिए मौका भारत के हाथ से जाता हुआ। अगली गेंद इस बार पैड पर टकराई है कपिल, लेकिन इस बीच भागकर पाकिस्तान की दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया है। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 34, 4 विकेट के नुकसान पर। लेग बाई का यह रन था। फातिमा सना को अभी भी अपना खाता खोलना है, 6 गेंदों का सामना किया है। इस ओवर की अंतिम गेंद के साथ तैयार हैं प्रेमा रावत, उनकी ही गेंद पर फातिमा सना को जीवन दान मिला था। ये गेंद, अंतिम गेंद, और इस बार लेग स्टंप की बाहर की गेंद को स्वीप करने का प्रयास, गेंद की लाइन को चूकी, लेकिन अंपायर के इशारे का इंतजार करना होगा, और ये अतिरिक्त रन पाकिस्तान के खाते में जाता हुआ वाइड के रूप में। 35 हो गया स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। अभी भी अंतिम गेंद इस ओवर की आनी बाकी है। अच्छी गेंदबाजी की है अभी तक प्रेमा रावत ने इस ओवर में। इस बार भी फ्लाइट दिया और पूरी तरह लाइन चूकी, सदाफ क्लीन बोल्ड, एक और विकेट पाकिस्तान का जाता हुआ, 5वें विकेट का पतन 35 रन के स्कोर पर। 9 ओवर में भारत ने पाकिस्तान की आधी टीम को आउट कर दिया है 35 रन पर, आधी टीम वापस पवेलियन में, और सदाफ शम्स इस फ्लाइटेड गेंद की लाइन को पूरी तरह से चूकी, क्लीन बोल्ड हुई, और प्रेमा रावत ने यह सफलता अर्जित की है 3 रन बनाकर वापस पवेलियन जाते हुए सदाफ शम्स।
1: So this has really been a very pathetic and a very deplorable display of batting by the Pakistani batters. It was the captain Fatima Sana who won the toss this evening at the Dubai International Cricket Stadium, elected to bat, and at one point of time they were 27 without loss, and this is really turning out to be a horror story, because from 27 for 1 they have now plummeted down to a position of complete disappointment and disillusionment. Now 27 runs for the first wicket, and then just look how the figures read. 1 run for the second wicket, 1 run for the third wicket, 3 runs for the fourth wicket, 3 runs for the fifth wicket. These have been the partnerships, and I think one should appreciate the way Harmanpreet Kaur has handled the bowling, as here is the first ball into the right hander. Fatima is struck on the pass by Dipti, and she's been given out LBW. This is the collapse of the highest order. They have lost the wicket of Fatima to a ball from Dipti, which was a slow one, once again spinning back. And she was onto the front foot, completely missed the line, given out LBW. And we have 20 overs to be bowled in the first innings, the second in the other section of the game as well. And Dharmendra Mani Rajesh, are we going to have a scenario where we have a match completed in the first session itself?
0: संभावना तो अभी तक ऐसी ही दिखाई दे रही है, जिस तरह की पाकिस्तान की टीम कोलैप्स हुई है, 27 तक कोई विकेट नहीं और 35 रन तक 6 विकेट पाकिस्तान ने गवा दिए हैं, उसमें कप्तान फातिमा सना का विकेट भी अब शामिल हो गया है। तो कितने ओवर पाकिस्तान की टीम खेल पाएगी? 20 ओवर उनको खेलने हैं, क्या पूरे 20 ओवर की बल्लेबाजी पाकिस्तान की टीम कर पाएगी? अब ये सवाल, क्योंकि टॉप ऑर्डर पूरी तरह से पाकिस्तान का बिखर चुका है, निचले क्रम की बल्लेबाजी बची हुई है और निचला क्रम भारत की इस टॉप क्वालिटी की गेंदबाजी का किस हद तक और कैसे सामना करेगी, ये बड़ा सवाल इस समय जरूर है।
1: Yes, the Indian bowlers then have run through this very pathetic Pakistan batting lineup like a power saw through soft timber. There has been no resistance at all. Cricket is always interesting whenever there is a competition, whenever there is a contest. But so far, so this is turning out to be a one-sided contest, a one-horse race. This is virtually looking like a mismatch marriage, because Pakistan and India is a kind of a match that always produces great interest on either sides of the border. But this has been a very a disappointing display from the Pakistan team. Now, we always say about the competition between the two teams, but you look at the results, India have completely subjugated and decimated and pulverized Pakistan. Now, India and Pakistan previously have played 17 T20 internationals, winning 14, India losing 3. The last time that these two locked horns with each other was on the 14th of June 2026. It was at Birmingham, the T20 World Cup, when India won by 64 runs. And in the Asia Cup, they have played 7 against each other, India winning 6 and losing 1. And the last Asia Cup T20 International was in Dambola, where India won by 7 wickets. Harmanpreet Kaur was India's captain when India won the T20 World Cup in the 2022. And now here, leading India in her 158th game, certainly is going to be a very memorable day and definitely a forgettable one for the Pakistan team. They have lost 6 wickets for 35 runs, and one kept on feeling that at 27 without loss, they might get to a total of about 150, 160, which could have been competitive. But now this is just like a small child asking for a moon.
0: जी, और पिछले 30 गेंदों में 12 रन बनाए और 6 विकेट गंवाए हैं, तो ये जो आंकड़ा है ये बड़ा दिलचस्प है। पाकिस्तान की टीम पूरी तरह से उस शुरुआत के बाद लड़खड़ा सी गई है।
1: Absolutely true, Dharmendra Mani Rajesh, and this is what the Indian bowlers have been doing, because in that last match when they beat the Hong Kong China team by a whooping margin of 137 runs, as the we shall get back to that little later, as the first ball of the second ball of that over from Dipti outside the off stump completely beats the batter. We're talking about that last game. Hong Kong lost their last 6 wickets for 4 runs, and that was thanks to some excellent bowling by Dipti Sharma, who picked up 3. Now remember, in that first game against Thailand, she had figures of 1.1 over, Namaskar. 1 maiden,
2: Akash, no runs conceded, samachar and 3 wickets. Akashvani se samachar sandhya ke saath, main Sir Firozi. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया, वैश्विक अनिश्चितता के बीच 7.8% की जीडीपी वृद्धि भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के विद्यार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भावी पीढ़ी के उद्यमियों और वैज्ञानिकों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करने में शिक्षकों की भूमिका पर बल दिया। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित जल विद्युत परियोजना की सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत और नेपाल का संयुक्त अभियान जारी। महाराष्ट्र के मेलशेत और पेंच बाघ अभयारण्य गिद्धों के लिए सबसे सफल पुनर्वास स्थल बना। उत्तरी उत्तर पूर्वी राज्यों, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, बिहार, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में सोमवार तक तेज बारिश के आसार। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स फाइनल।

0: फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की 7.8% की तिमाही वृद्धि आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत अवरोध से नीतिगत गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में SRCC के शताब्दी समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि SRCC ने वर्षों से छात्रों की कई पीढ़ियों को सीखने, आगे बढ़ने और समाज में बदलाव लाने का अवसर दिया है।
1: जब कोई इंसान 100 वर्ष जीता है तो उसे अनुभवों का सागर माना जाता है, और जब कोई संस्थान 100 वर्ष का होता है तो वो उपलब्धियों और प्रेरणाओं का महासागर हो जाता है। अपनी 100 वर्षों की इस यात्रा में SRCC ने पीढ़ियों को गढ़ा है, उन्हें उज्जवल भविष्य से जोड़ा है। जो आए उन्होंने पढ़ा और जो निकले वो गढ़े हुए निकले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 14 करोड़ भारतीय मिलकर भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे। इससे पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने अपने भाषण में SRCC द्वारा वर्षों से उच्च स्तर बनाए रखने की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि वैश्विक बाजार में कुशल मानव संसाधनों की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री ने इसे युवा आबादी के लिए एक अवसर बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SRCC के शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली मेट्रो से गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षकों को सर्वोच्च सम्मान दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे भारत को सीखने और नेतृत्व करने में मदद करते हैं। शिक्षक दिवस पर आज एक लेख साझा करते हुए उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करना, उनकी जिज्ञासा को जगाना, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना और उनकी तर्क शक्ति तथा निर्णय क्षमता को निखारना शिक्षण के सबसे उपयोगी और फलदायी आयामों में से है। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रेरणा दायक शिक्षा से ही उद्यमियों, वैज्ञानिकों और रचनात्मक कलाकारों की पीढ़ियां तैयार की जा सकती हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉप आउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है।
2: हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्शों को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हमारे देश में प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट 12 वर्ष पहले लगभग 4.5% था। अब ये ड्रॉप आउट रेट नहीं के बराबर है। ये उपलब्धि शिक्षकों के प्रयासों से संभव हो सकी है। इस राष्ट्रीय सफलता के लिए मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि भारत को विश्व की कौशल राजधानी के रूप में स्थापित करना और साथ ही ज्ञान शक्ति बनना देश की प्राथमिकता है।
2: चुने गए सुयोग्यों प्रशिक्षकों के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है। देश के विकास में एकेडमिक एक्सेलेंस, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत अधिक महत्व है। भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने के साथ साथ स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित करना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता में से शामिल है।
0: राष्ट्रपति ने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा को आगे बढ़ाने में सावित्रीबाई फुले की महत्वपूर्ण भूमिका को भी याद कर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने स्कूली शिक्षा को शिक्षा प्रणाली का आधार बताया।
2: ज्ञान और कौशल तो कभी भी प्राप्त किया जा सकता है, परंतु बचपन में ही सदाचार की शिक्षा देना अधिक प्रभावी सिद्ध होता है। आरंभिक कक्षा में बच्चों के बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक विकास पर निष्ठापूर्वक ध्यान देकर हमारे शिक्षक अच्छे विद्यार्थियों और कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों की भावी पीढ़ियां तैयार करते हैं।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षकों का ये दायित्व है कि वे कुछ विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों में आत्मविश्वास जगाएं।
2: कुछ विद्यार्थी गांव के किसी सामान्य स्कूल से शहर के बड़े स्कूल में आते हैं और थोड़ा असहज हो जाते हैं। कुछ विद्यार्थी स्वभाव से ही संकुचित होते हैं। कुछ विद्यार्थी में बहुत प्रतिभा होती है, लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। ऐसे सभी विद्या

0: विद्यार्थी जो किसी कारण से कोई भी कमी महसूस करते हैं उनमें आत्मविश्वास जगाना और उन्हें आगे बढ़ाना शिक्षकों का विशेष दायित्व होना चाहिए।
1: समारोह में 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों के 48 चयनित स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कानून, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की। ये व्याख्यान श्रृंखला कानून, न्याय और समाज से संबंधित महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर संवाद और विचारों के आदान प्रदान के लिए नियमित मंच प्रदान करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और नेपाल के बचाव दल का चिली में सुरंग में बचाव अभियान जारी है और सुरंग के भीतर से भारी मलबा, पानी तथा कीचड़ हटाया जा रहा है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने आज बताया कि बचाव अभियान को सुगम बनाने के लिए पास के स्याफ रुबेसी से सुरंग के प्रवेश द्वार तक एक पहुंच मार्ग का निर्माण भी चल रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास हिमस्खलन के कारण अचानक बाढ़ आई। इस आपदा ने उत्तरी और मध्य नेपाल में व्यापक तबाही मचाई जिससे घर, सड़कें, पुल और जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हुई। इस बीच विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1344 हो गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज स्वस्थ असहमति और विचार विमर्श की संस्कृति के महत्व पर जोर दिया। नई दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ब्रिक्स के सदस्य देशों और सहयोगी देशों के प्रतिनिधि मंडलों को संबोधित किया। एक रिपोर्ट।
5: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उचित न्याय सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने याद दिलाया कि नालंदा विश्वविद्यालय एक समय में सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक केंद्र हुआ करता था, जहां विश्व भर के विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को बिना किसी भेदभाव या बाधा के प्रवेश दिया जाता था। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स को भी जीवंत नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाना चाहिए। मध्यस्थता पर एक सत्र के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने मध्यस्थता संस्थानों के बीच सहयोग को मजबूत करने, पेशेवर प्रशिक्षण, बहुभाषी क्षमता और न्यायाधीशों, मध्यस्थों, वकीलों और व्यवसायों के बीच संवाद को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि संवाद कायम रह सके, व्यापार जारी रह सके और ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच विश्वास बढ़ सके। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत शिलालेखों और समुद्री व्यापार से लेकर गणित तक अपनी विरासत का अध्ययन करने और उसे दोबारा प्राप्त करने में पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ है। नई दिल्ली में वार्षिक इतिहास पुरस्कार समारोह और डॉ एसएल भैरप्पा स्मृति व्याख्यान में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत अब आत्मनिर्भर है।
6: इंडिया टुडे इज सेल्फ अश्योर्ड।
5: हमने इस मामले में किसी और की अनुमति का इंतजार करना छोड़ दिया है और अब हम अपनी विरासत का अध्ययन खुद कर रहे हैं।

0: हम शिलालेखों को पढ़ रहे हैं, अपने समुद्री व्यापार के इतिहास को समझ रहे हैं और गणित के जरिए कहानियों को पूरी प्रसन्नता और सटीकता के साथ सामने ला रहे हैं।
1: टेलिंग दीज स्टोरीज विद रियल प्लेजर।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन: सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
2: ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के मेलघाट और पेंच बाघ अभयारण्य बंदी प्रजनित गिद्धों के पुनर्वास के लिए भारत के सबसे सफल स्थलों के रूप में उभरे हैं, जहां जीवित रहने की उत्साहजनक दर दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने सोमवार तक पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उधर बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने आज सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी क्योंग को 21-16, 18-21, 21-11 से हरा दिया। और महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने 13 ओवर में 7 विकेट पर 45 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया, वैश्विक अनिश्चितता के बीच 7.8% की GDP वृद्धि भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के विद्यार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भावी पीढ़ी के उद्यमियों और वैज्ञानिकों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करने में शिक्षकों की भूमिका पर बल दिया। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित जल विद्युत परियोजना की सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत और नेपाल का संयुक्त अभियान जारी। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reiterates 7.8% GDP growth amid global uncertainty reflects India's economic strength. Addresses SRCC students in New Delhi. President Draupadi Murmu stresses teachers' role in nurturing independent thinkers to create future entrepreneurs and scientists. India and Nepal continue joint operation to rescue people trapped inside hydropowered project tunnels in Nepal hit by flash floods. Melghat and Pench Tiger reserves in Maharashtra emerge as most successful reintroduction sites for vultures. Heavy rainfall forecast In northern, northeastern states, sub-Himalayan West Bengal, Bihar, East Rajasthan, Delhi and Madhya Pradesh till Monday. And in China Masters Badminton, Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty enter the men's doubles final. Prime Minister Narendra Modi today said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. Addressing the gathering at the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce, SRCC, in New Delhi, Mr. Modi said the world is watching India become the fastest growing major economy.
7: Duniya Bharat ko fragile five bata rahi thi. आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनने से हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
6: The Prime Minister said SRCC has given generations of students the opportunity to learn, grow and make a difference over the years. Mr. Modi said the college has distinguished itself over the years, making a mark for academic excellence. He termed the alumni of SRCC as very special and the OGs. The Prime Minister stated that former Finance Minister Arun Jaitley was an alumnus of SRCC. He said SRCC alumni have left their mark in every sector from arts to politics. He added that together 140 crore Indians will make India both Vikasit and Atmanirbhar.
7: जब कोई इंसान 100 वर्ष जीता है तो उसे अनुभवों का सागर माना जाता है और जब कोई संस्थान 100 वर्ष का होता है तो वो उपलब्धियों और प्रेरणाओं का महासागर हो जाता है। अपनी 100 वर्षों की इस यात्रा में एसआरसीसी ने पीढ़ियों को गढ़ा है, उन्हें उज्जवल भविष्य से जोड़ा है। जो आए उन्होंने पढ़ा और जो निकले वो गढ़े हुए निकले।
6: Education Minister Prahlad Joshi in his speech praised SRCC for maintaining its high standards over the years. He said today, India is the third largest startup ecosystem under the leadership of Prime Minister Modi. The Prime Minister travelled by the Delhi Metro as he headed to SRCC to participate in the college's centenary celebrations. President Draupadi Murmu today stressed that teachers must be held in the highest esteem as they help India learn and lead. In an article on the occasion of Teachers' Day, President Murmu said encouraging independent thinking in students, igniting their curiosity, promoting the tendency to ask questions and sharpening their capacity for argument and judgment are among the most useful and rewarding dimensions of teaching. The president opined that it is only through such inspiring education that generations of entrepreneurs, scientists and creative artists can be raised. The president added that teaching is not merely a vocation but a vow. She also said the task of imparting education is not the responsibility of teachers alone. She said those who become role models for children through their conduct and achievements are also a valuable source of learning and inspiration. Earlier today, President Draupadi Murmu conferred the National Teachers Awards in New Delhi. 48 selected school teachers received the awards from the president. Addressing the event, the president said teachers have a special responsibility to build confidence among students from disadvantaged backgrounds, shy students lacking self-confidence, and those with special needs.
8: कुछ विद्यार्थी गांव के किसी सामान्य स्कूल से शहर के बड़े स्कूल में आते हैं और थोड़ा असहज हो जाते हैं। कुछ विद्यार्थी स्वभाव से ही संकुची होते हैं। कुछ विद्यार्थी में बहुत प्रतिभा होती है लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। ऐसे सभी विद्यार्थी जो किसी कारण से कोई भी कमी महसूस करते हैं उनमें आत्मविश्वास जगाना और उन्हें आगे बढ़ाना शिक्षकों का विशेष दायित्व होना चाहिए।
6: The president asserted that education is the most effective means of realizing the ideal of equality of opportunity enshrined in our constitution. She also recalled Savitribai

0: रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यह बात दोहराई है कि आलमी गैर यकीनी की कैफियत के तनाजुर में GDP की 7.8% की शरह तरक्की से भारत की इक्तसादी कुव्वत की अक्कासी होती है। वज़ीर-ए-आज़म ने नई दिल्ली में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC की सदसाला तकरीबा से खिताब करते हुए ये बात कही। जनाब मोदी ने कहा कि भारत तवील सफर तय करते हुए पॉलिसी ठप पड़ जाने के दौर से बाहर निकलकर मुतहरिक और वलवला अंगेज पॉलिसी के दौर में दाखिल हो चुका है। जनाब मोदी ने कहा कि दुनिया ये देख रही है कि भारत सबसे तेज रफ्तार तरक्की करने वाली बड़ी मईशत बन गया है।
1: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
0: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC ने नस्ल दर नस्ल तलबा को सीखने संवरने और अपनी पहचान बनाने का मौका दिया है। जनाब मोदी ने कहा कि इस कॉलेज ने तालीमी कारकर्दगी में शानदार मिसाल पेश करके अपनी एक मुमताज पहचान बनाई है। उन्होंने SRCC के साबिक तलबा को बहुत खास और द ओजीज करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि साबिक वजीर खजाना अरुण जेटली भी SRCC के एक तालिब इल्म थे। जनाब मोदी ने कहा कि SRCC के साबिक तलबा ने आर्ट से लेकर सियासत तक हर शोबे में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीय मिलकर भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे।
1: जब कोई इंसान 100 वर्ष जीता है तो उसे अनुभवों का सागर माना जाता है और जब कोई संस्थान 100 वर्ष का होता है तो वो उपलब्धियों और प्रेरणाओं का महासागर हो जाता है। अपनी 100 वर्षों की इस यात्रा में SRCC ने पीढ़ियों को गढ़ा है, उन्हें उज्जवल भविष्य से जोड़ा है। जो आए उन्होंने पढ़ा और जो निकले वो गढ़े हुए निकले।
0: उधर तालीम के वजीर प्रहलाद जोशी ने अपनी तकरीर में आला मेयार बरकरार रखने पर SRCC की सताइश की। उन्होंने कहा कि आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इको निज़ाम बन गया है। वजीर आजम मोदी ने कॉलेज के 100 साल मुकम्मल होने की तकरीब में शिरकत के लिए SRCC जाते हुए दिल्ली मेट्रो में सफर किया। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने जोर देकर कहा है कि असातजा की पूरी इज्जत और एहतराम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि असातजा सीखने और सिखाने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। आज यौम असातजा के मौके पर एक मजमून में सदर जमहूरिया ने कहा कि तलबा में आज़ाद अंदाज फिक्र की हौसला अफजाई और उनके तजस्सुस को कुव्वत बख्शने, सवाल पूछने के रुझान को बढ़ावा देने और बहस मुबाहसे और फैसला करने की उनकी सलाहियत को संवारना तदरीस के सबसे मुफीद और समरावर पहलुओं में शामिल हैं। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि इस तरह की बाईस तरगीब तालीम के जरिए ही कारोबारी अफराद, साइंसदां और तख्लीकी फनकार तैयार हो सकते हैं। इससे कबल सदर जमहूरिया ने कहा कि म्यारी तालीम के जरिए ही विकसित भारत मुमकिन हो सकेगा। यौम असातजा के मौके पर नई दिल्ली में टीचर्स को अवार्ड दिए जाने की कौमी तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि जो माशरा अपने असातजा का एहतराम करता है वो सही मायने में एक तरक्की पसंद माशरा है। सदर जमहूरिया ने इस बात को उजागर किया कि बहुत से तलबा इक्तसादी एतबार से कमज़ोर कुनबों से आते हैं, जो नए सीखने वाले होते हैं या जो गांव के मामूली स्कूल से बड़े शहर के स्कूलों में आते हैं। उन्होंने कहा कि असातजा की यह खसूसी जिम्मेदारी है कि वह इन तलबा में एतमाद पैदा करें और इस तरह के सभी तलबा की हौसला अफजाई करें जो किसी भी वजह से एहसास कमतरी में मुबतला हैं।
2: कुछ विद्यार्थी गांव के किसी सामान्य स्कूल से शहर के बड़े स्कूल में आते हैं और थोड़ा असहज हो जाते हैं। कुछ विद्यार्थी स्वभाव से ही संकुचित होते हैं। कुछ विद्यार्थी में बहुत प्रतिभा होती है लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। ऐसे सभी विद्यार्थी जो किसी कारण से कोई भी कमी महसूस करते हैं उनमें आत्मविश्वास जगाना और उन्हें आगे बढ़ाना शिक्षकों का विशेष दायित्व होना चाहिए।

0: भारत और नेपाल की बचाव टीमें चिली में सुरंग में बचाव मिशन जारी रखे हुए हैं और सुरंग के अंदर से भारी मलबा पानी और कीचड़ निकाल रही हैं। नेपाल में भारतीय सफीर नवीन श्रीवास्तव ने आज कहा कि सियाफ्रूबेसी के नजदीक सुरंग तक रसाई के लिए एक सड़क बनाने का काम भी जारी है ताकि बचाव का रवाई में सहूलत पैदा हो सके। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब श्रीवास्तव ने कहा कि दुश्वार गुजार और तंगवादी का इलाका होने की वजह से बड़े हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल मुमकिन नहीं है। इस मुश्तरका कोशिश से भारतीय माहिरीन और नेपाली दिफाई अफवाज के दरमियान सरहद के आर पार कुदरती आफत की सूरत में मदद और तकनीकी इश्तराक उजागर होता है। इस दौरान नेपाल में अचानक तबाहकुन सैलाब में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 1,344 हो गई है। 8 मुतासर अजला में बचाव का रवैया जारी है जबकि तकरीबन 5,000 अफराद अब भी लापता हैं। 13,000 से ज्यादा लोगों को अब तक बचाया जा चुका है। बिहार के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब से बदस्तूर मामूलात जिंदगी मुतासर हैं। दरियाए गंगा और दीगर अहम दरिया मुख्तलिफ मकामात पर खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। इंतजामिया मुतासर अफराद की मदद के लिए जंगी पैमाने पर राहत और बचाव का रवैया अंजाम दे रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: गंगा, गंधक, कोसी, बूढ़ी गंधक, पुनपुन और घाघरा दरिया मुख्तलिफ मकामात पर खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। गांधी घाट, बांका घाट और पंडारक में दरियाए गंगा सैलाब की सबसे ऊंची सतह पर बह रहा है। सारण जिले में त्रिलोचक के नजदीक माही दरिया पर 20 मीटर के हिस्से को नुकसान पहुंचा है। इस मकाम पर SDRF की टीम तैनात कर दी गई है। कुदरती आफत के बंदोबस्त के महकमे के मुताबिक 11 अजला में 50 ब्लॉक की 201 पंचायतों में तकरीबन 10 लाख लोग सैलाब से मुतासर हैं। सैलाब से मुतासर अफराद को मदद फराहम करने के लिए कम्युनिटी किचन के जरिए अब तक 1,20,000 से ज्यादा अफराद को खाना फराहम किया गया है। इस दौरान मुतासर इलाकों में 50 मेडिकल कैंप, 19 बोट एम्बुलेंसेस, 900 किश्तियां और मवेशियों के लिए 36 कैंप सरगर्म हैं ताकि सेहत की देखभाल तक रसाई और महफूज नकल हमल को यकीनी बनाया जा सके। पटना से सविता पारीक की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत ने बामायने इख्तलाफ राय और बहस मुबाहिसे के कल्चर की अहमियत पर जोर दिया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के चीफ जस्टिस साहिबान के फोरम के हिस्से के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत ने ब्रिक्स के मेंबर मुल्कों और साझेदार मुल्कों के वफूद से खिताब किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि इंसाफ की बरवक्त और मुनासिब फराहमी जरूरी है। जस्टिस सूर्यकांत ने यह याद दिलाया कि नालंदा यूनिवर्सिटी किस तरह सबसे मुमताज तालीमी मरकज हुआ करता था, जहां दुनिया भर के तलबा और तहकीकारों को किसी तरह की तफरीक या बंदिशों के बगैर दाखिला मिल जाया करता था। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स को भी जीती जागती नालंदा यूनिवर्सिटी के तौर पर जाना जाना चाहिए। सेहत और खानदानी बहबूद की वजीर मुमलिकत अनुप्रिया पटेल ने आज कहा है कि जहनी सेहत मजमूई सेहत और तंदुरुस्ती का एक लाजमी हिस्सा है और इसका जिंदगी में कारकर्दगी और क्वालिटी से करीबी ताल्लुक है। नई दिल्ली में एक न्यूज मैगजीन की जानिब से मुनक़िदा जहनी सेहत से मुतालिक नौजवान भारत कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नौजवान और बालिग अफराद भारत की आबादी का एक चौथाई हिस्सा है और उनकी अच्छी सेहत मुस्तकबिल में मुल्क की तरक्की की समत तय करेगी। मोहतरमा पटेल ने इस बात को उजागर किया कि इस आबादी में तेजी से बढ़ती हुई जहनी बीमारी तश्वीशनाक बात है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस चैलेंज से निमटने के लिए जहनी सेहत से मुतालिक कौमी प्रोग्राम में तेजी पैदा की है। वजीर मौसूफ ने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में जहनी सेहत से मुतालिक बेदारी और स्क्रीनिंग के लिए इंतजाम किए गए हैं। साइंसी और सनअती तहकीक की कौंसिल मरकजी सड़क तहकीकी इदारे CSIR CRRI ने आज नई दिल्ली में अवामी कामकाज के महकमे से वाबस्ता इंजीनियरों के लिए एक खसूसी तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया। साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत ने कहा है कि इस प्रोग्राम में हवा के मेयार के बंदोबस्त से मुतालिक कमीशन के मेयारी तरीक़ाकार पर तवज्जो मरकूज की गई ताकि कौमी राजधानी खित्ते में शहरी सड़कों को सरसब्ज बनाने की राह हमवार की जा सके। जगदलपुर में कौमी तहकीकती एजेंसी की खसूसी अदालत ने मुख्तलिफ इल्ज़ाम के तहत झीरम घाटी माओनवाज हमले के मामले में सभी 10 कसूरवारों को मुलजिम करार दिया है। इस मामले में कुल 11 अफराद पर मुकदमा चल रहा था जिनमें से एक शख्स की इस दौरान मौत हो गई। अदालत ने दो खवातीन समेत 29 में से सभी 10 मुलजिमों को कत्ल का कसूरवार करार दिया गया जबकि दीगर 15 को इकदाम कत्ल का कसूरवार पाया गया। सजा की मुद्दत से मुतालिक फैसला 16 सितंबर तक महफूज रखा गया है। माहौलियात जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के महकमे के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने माहौलियाती मुस्तकबिल को महफूज रखने की खातिर गिद्धों के तहफ्फुज की जरूरत पर जोर दिया है। आज गिद्धों के बारे में बेदारी पैदा करने से मुतालिक बैन अल-अक़वामी दिन के मौके पर एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब यादव ने कहा कि गिद्ध माहौल को साफ रखने के लिए फितरत का एक हिस्सा है और ये माहौलियाती निज़ाम को साफ सुथरा रखने, बीमारियों को फैलने से रोकने और माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने में अहम रोल अदा करते हैं। महाराष्ट्र में मेलघाट और पेंच टाइगर रिजर्व गिद्धों को महफूज रखने के भारत के सबसे कामयाब मकामात के तौर पर उभरे हैं। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के मुताबिक दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के दरमियान इन दो मकामात पर 29 गिद्ध छोड़े गए थे और उनके जिंदा रहने की शरह 78% तक पहुंच गई। आज खबरों में कहा गया है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कीव पर 72 घंटे तक हमले रोके जाने का हुक्म दिया है। आज क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोफ ने कहा कि सदर पुतिन ने हुक्म दिया है कि आज आधी रात से आइंदा 3 दिनों तक कीव पर कोई हमला ना किया जाए। उन्होंने कहा कि अमन बातचीत के लिए अमरीकी एलचियों के कीव के दौरे के पेश नजर ये फैसला किया गया है। अफ्रीकी यूनियन कमीशन के चेयरपर्सन महमूद अली यूसुफ ने अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली की उस करारदाद का खैर मकदम किया है जिसमें आलमी सतह पर नक्शों में मसावी कुर्रे अर्ज़ से मुतालिक नक्शा खींचने के तरीके को इस्तेमाल करने की हौसला अफजाई की गई है जो अब तक वसी पैमाने पर इस्तेमाल किए गए मर्केटर तरीक़ेकार की जगह लेगा जिसमें बर्रे आज़मों के रकबे के साइज़ की सही अक्कासी नहीं होती थी। भारतीय महकमा मौसमियात ने पीर तक शिमाली और शिमाल मशरक़ी रियासतों, ज़ेली हिमालयाई, मगरबी बंगाल, बिहार, मशरक़ी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में शदीद बारिश की पेशगोई की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, मगरबी बंगाल, अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल और अंडमान निकोबार जजायर में आइंदा 2 रोज़ के दौरान गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। बैडमिंटन में भारत के सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स टूर्नामेंट में अपनी शानदार कारकर्दगी का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। इन दोनों खिलाड़ियों की जोड़ी मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है। उन्होंने आज शेंजन में खेले गए सेमीफाइनल में नूर मोहम्मद अयूब और टैन वी क्योंग की मलेशिया की जोड़ी को 21-16, 18-21 और 21-11 से हरा दिया। और खवातीन क्रिकेट में दुबई बैन अल-अक़वामी क्रिकेट स्टेडियम में खवातीन एशिया कप 2026 के ग्रुप ए के मैच में पाकिस्तान ने भारत की जीत के लिए 56 रन का निशाना दिया है। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यह बात दोहराई है कि आलमी गैर यकीनी की कैफियत के तनाजुर में GDP की 7.8% की शरह तरक्की से भारत की इक्तिसादी क़ुव्वत की अक्कासी होती है। वज़ीर-ए-आज़म ने नई दिल्ली में SRCC के तलबा से खिताब किया। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने मुस्तकबिल के कारोबारी अफराद और साइंसदान तैयार करने के लिए आज़ाद तर्ज फिक्र अख्तियार करने वालों में असातिज़ा के रोल को उजागर किया है। भारत और नेपाल अचानक सैलाब से मुतासिरा नेपाल में पनबिजली प्रोजेक्ट टनल्स के अंदर फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए मुश्तरका कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। महाराष्ट्र में मेलघाट और पेंच टाइगर रिजर्व गिद्धों के लिए सबसे कामयाब महफूज मकामात के तौर पर उभरे हैं। शिमाल मशरकी रियासतों, बिहार और मशरकी राजस्थान में तेज बारिश का सिलसिला पीर तक जारी रहने की पेशगोई की गई है। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में सत्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के मध्य दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
3: चाहिए इस चीज को करते हुए
4: और खास करके सभी अभी तक हमने एशिया कप में देखा है कि पहले 6 ओवर में जब बॉल खास करके हार्ड रहता है तो रन स्कोरिंग और आसान होता है।
5: बिल्कुल, जिसमें अब 55 रन में हम कितने ही बॉलिंग ऑप्शंस को मतलब कि इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो मुझे कोई कॉन्टेक्स्ट नज़र ही मतलब कॉन्टेस्ट नज़र ही नहीं आ रही है। कुछ रन्स बनते तो पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं, जिसमें हम बार बार लतीका जी कह रहे हैं कि वो बहुत ही एक पोटेंट वेपन है पाकिस्तान के पास, बट आप 55 रन में कहाँ, मतलब 56 रन का टारगेट है, कितना ही डिफेंड कर लेंगे आप 1-2-3 विकेट, क्योंकि मेरे को लगता है कि भारत यहाँ पर एक स्टेटमेंट विन रजिस्टर करना चाहेगा। 55 पे आउट कर ही दिया है और वो चाहेगा कि है ना जल्द से जल्द ये मैच खत्म करके, जिसे कहते हैं ना कि बुरी तरह रौन देना, क्योंकि सेमीफाइनल में भारत ने अपनी जगह बनाई ली है। तो पाकिस्तान जो भारत है वो इस मोमेंटम को बनाए रखना चाहेगा और एक जिसे कहते हैं ना डोमिनेटिंग कमांडिंग विन को

रजिस्टर करके और वो है ना सेमीफाइनल में बढ़ना चाहेगा। तुम यहाँ पर जो पाकिस्तान के ऑप्शंस भी हैं, जो चारों ऑप्शंस, वो भी मुझे लगता नहीं है कि उनके पास भी कुछ रहेगा। जैसे बता रहे हैं कि तूबा है, उमे है या सादिया है, वो

0: जाए तो लतिका जी, ये जो पाकिस्तान ने जो टारगेट दिया है, ये इंडिया के लिए तो लग रहा है हमें कि आसान होगा, मगर नेट रन रेट भी बहुत क्रुशल है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान एक ही मैच खेला है, तो दूसरे मैच में अगर आज कॉम्प्रिहेंसिवली हार जाता है तो उनका नेट रन रेट बहुत कम हो जाएगा। एंड अभी एक मैच बाकी है हांगकॉन्ग के खिलाफ।
1: बिल्कुल, देखिए एशिया कप जैसे टूर्नामेंट में अगर आप आते हैं एक डोमिनेंस टीम के साथ आते हैं, और इंडिया ने ये साबित भी किया अभी तक जितने भी गेम हुए हैं कि डोमिनेंस के साथ वो यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भी ये कोशिश थी जो पिछले मैच खेला उन्होंने, उसके बाद इस तरह की परफॉर्मेंस आना थोड़ा सा निराशाजनक ज़रूर लगता है। और हाँ, आगे आने वाले उसमें नेट रन रेट कितना नुकसान पहुंचा सकती है पाकिस्तानी टीम को, वो तो आज का मैच जब खत्म होगा तब पॉइंट टेबल जो निकल के आएगी उस पे हम देखेंगे कि किस तरीके से पाक अपनी पोजीशन को बनाए रखता है।
2: जी बिल्कुल, और अभी जो स्थिति बनी हुई है, भारत ने दो मुकाबले अभी तक खेले हैं, जो दो पूरे मुकाबले हैं जिसमें चार पॉइंट अपने नाम किया है। पाकिस्तान के लिए ये दूसरा ही मुकाबला है, पहले मुकाबले में जीत हासिल की थी, तो हालांकि लग रहा है क्योंकि हांगकांग के विरुद्ध उतरेगी पाकिस्तान की टीम, तो ओवरऑल सेमीफाइनल तक तो शायद पहुँच ही जाए। लेकिन अगर इस तरह की स्थिति में आती है जब टीम अपने लोएस्ट स्कोर पे ऑल आउट हो जाती है, तो मनोबल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ध्वस्त कर सकता है ऐसा मैच टीम को।
3: बिल्कुल, अगर जैसे अगर आज वो पाकिस्तान, देखिए रन रेट का तो एक फर्क पड़ेगा ही, 55 रन के साथ आप मतलब डिफेंड कितना ही कर पाएंगे, लेकिन चलिए अगर आप ये मैच नहीं भी जीत पाते जो कि लग ही रहा है जिसका आउटकम, तो अब आप सेमीफाइनल हांगकांग से आप खेलेंगे, हांगकांग के खिलाफ आपको एक अच्छी जीत दर्ज करनी पड़ेगी, क्योंकि सेमीफाइनल है, नॉकआउट है, अगर आप हांगकांग के खिलाफ भी जैसे तैसे करके जीत के पहुंचते हैं तो आपका मोरल तो डाउन रहेगा, क्योंकि इंडिया के मैच ने तो आज आपका मोरल बिल्कुल ही डाउन कर दिया होगा, कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो होगा। हांगकांग के अगेंस्ट पाकिस्तान एक अच्छी विक्ट्री दर्ज करना चाहेगा, और ऐसा एक्सपेक्टेड भी है कि शायद वो बेहतर परफॉर्म कर सके, क्योंकि उतनी इंपॉर्टेंट बॉलिंग शायद हांगकांग की नहीं होगी, और शायद जहाँ तक है वह पाकिस्तान के स्पिनर्स जो हैं वो हांगकांग को है ना, हांगकांग के बैटर्स को घेर भी लेंगे, तो हांगकांग से जीत जाएंगे, लेकिन अगेन फिर जब सेमीफाइनल में आएंगे तो वहाँ पर मुझे लगता है कि फिर से बहुत मुश्किल होगी पाकिस्तान को।
1: लेकिन मैं यहाँ एक बात बोलना चाहूँगी, हांगकांग की गेंदबाजी ने जो असर दिखाया था भारतीय टीम के अगेंस्ट, तो उनको भी हल्के में नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि आज अगर पाकिस्तान की टीम भारतीय गेंदबाजी के सामने इस तरीके से लड़खड़ाई है तो अगला मैच यहां से किस तरीके से जाता है वो देखना होगा।
2: जी बिल्कुल, काफी दिलचस्प होने वाला है ये एशिया कप टूर्नामेंट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना सारा विश्लेषण देने के लिए, और अभी सीधे चलते हैं और लाइव एक्शन से जुड़ते हैं। भारतीय टीम 56 रन का टारगेट चेस करती हुई।
4: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास।
5: नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के बीच महिला एशिया कप 2020 2026 का यह मुकाबला, जिसमें भारतीय टीम ने पहले गेंदबाजी की और पाकिस्तान की टीम को सस्ते में समेट दिया, और भारतीय बल्लेबाजी की शुरुआत हो चुकी है। पहली गेंद, और पहली गेंद पर ही शेफाली वर्मा ने लॉक कर दिया इस गेंद को सामने की तरफ लॉन्ग ऑफ पर 6 रन के लिए। भारतीय पारी की शुरुआत 6 रन के साथ। मैं धर्मेंद्र मणि राजेश, अपने साथी अंग्रेजी कमेंटेटर डॉक्टर मिलिंद टिपनेस, स्कोरर भागवत सिंह रावत, स्टैटिस्टिशियन प्रदीप कुमार तुम्बडे के साथ आप सभी का स्वागत करता हूँ। अगली गेंद को एक बार फिर से खेला है शेफाली वर्मा ने 1 रन के लिए, और इस 1 रन से भारत का स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन बगैर किसी नुकसान के। लक्ष्य बहुत छोटा आज भारत के सामने, सिर्फ 56 रन का। भारतीय स्पिनर्स ने आज कमाल की गेंदबाजी की, पाकिस्तान की पूरी टीम को सिर्फ 55 रन पर समेट दिया, जो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान की महिला टीम का न्यूनतम स्कोर है। शेफाली वर्मा ने इसके साथ ही विमेन्स T20 क्रिकेट में 3000 रन पूरे कर लिए हैं। अगली गेंद इस बार स्मृति मानधना के लिए, ऑफ स्टंप पर टर्न होकर बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंद छोड़कर जा रही थी, बल्ला चलाया था स्मृति मानधना ने, एक अपील जोरदार गेंदबाज सादिया द्वारा, ये गेंद पड़ने के बाद टर्न होकर बल्लेबाज को छोड़कर निकल रही थी, जगह बनाना चाह रही थी स्मृति मानधना स्ट्रोक के लिए, बीट हुई किस्मत वाली रही कि गेंद ने बल्ले का

0: Rawat, and that was what one felt as the next one is short in length outside the off stump to Pratika. Pratika is on to the back foot and pushing it on the offside, not for a run. Pratika Rawal made 22 in the first game against Thailand. She was out for 10. So the middle order batters today would have loved to have a go, because Harmanpreet Pree 2 along with Bharti Fulmali and Richa Ghosh haven't been amongst the runs. That is only a major cause for concern going into the semi-final. The openers have done well. The spinners have done a fantastic job so far. And it is on the back of some fine bowling that they have been able to get rid of the opposition. As the next one is down the leg side from Pratima, the wicketkeeper standing up. White signal, taking the score up to 14 for the loss of one wicket. Quickly updating late tuners. Match number 9, Group A, Dubai International Cricket Stadium. India and Pakistan. Pakistan, through their captain Fatima Sana, won the toss, elected to bat. They were 27 without loss, looking good at that point of time, although there were a few reprieves that the Indian batters got. But thereafter, wickets fell in clutches, wicket fell in clusters. As the next one, outside the off stump, throwing the bat at that one, gets the outside edge. Miss fielded by Sadia on the boundary at third man. She did manage to get her hand to it. The captain Fatima is not impressed at all. 4 runs easily conceded, and that takes the Indian total up to 18 for 1. Pakistan all out for 55, and this is their lowest all out total. Their previous lowest was 56 against New Zealand in 2024. Indians then doing a fabulous job here through the spinners, with Sri Cherny and Prema Rawat picking up 3 runs apiece. The top scorer was 14 by Shawal Zulfikar and 13 by Munib Ali, and thereafter no one got into double digits. Target is 56. Can India make a mocker of it and finish it off in the first power play? Next one beats the batter and she's out, caught behind. Short outside the off stump, and looking for that shot on the offside was Pratika Rawat. Once again, Pratika Rawal continuing her non-too-impressive form. Caught behind, and Fatima has picked up yet another wicket to a ball which was short in length outside the off stump. Looking to punch it off the back foot, got the outside edge. And the wicketkeeper standing up, making no mistake at all. 18 for 2, 2 overs gone. Caught by Munima of Fatima. It's Pratika Rawal for 4 off 3 balls. And India then have lost 2 wickets after completion of 2 overs with 18 runs on the board.
1: So, Bharat ne 18 run ke score par 2 wicket gawa diye hain. Pratika Rawal aur unke saath saath salami ballebaz Shefali Verma wapas pavilion mein laut chuki hain. Shefali Verma in form batter thi. Pehli gend par unhone chhakka bhi jada tha, lekin Fatima Sana पाकिस्तान की कप्तान जब गेंदबाजी के लिए आई तो भारतीय बल्लेबाजी पर अचानक सा दबाव आता हुआ दिखाई दिया है. दोनों सफलताएं अभी तक फातिमा सना के इस पिछले ओवर में ही आई हैं. हम आपको बता दें कि पाकिस्तान ने अपना पहला विकेट 27 के स्कोर पर गंवाया था और उसके बाद पाकिस्तान की टीम लड़खड़ाई थी. दूसरी तरफ भारत ने 18 रन के स्कोर पर 2 विकेट गंवा दिए हैं. नए ओवर की शुरुआत पहली गेंद और सादिया की पहली गेंद को स्मृति मानधना ने खेल दिया है कवर की तरफ, रन नहीं. अगर दोनों गेंदों की बात करें तो जिस गेंद पर प्रतिका रावल आउट हुई हैं, रफ्तार से चकमा खा गई, ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा सा निकल रही थी स्विंग होकर गेंद और उस पर बल्ला चलाया था, बल्ले का किनारा लिया उस गेंद ने और एक कैच विकेट के पीछे लपका गया था. इस बीच में अगली गेंद जिस पर एक रन आएगा भारत के लिए और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 19 दो विकेट के नुकसान पर और ये रन लेग बाई के रूप में आया है. स्मृति मानधना गेंद को ठीक तरीके से खेल नहीं पाई थी, गेंद उनके पैड पर टकराई थी और गई थी फाइन लेग की तरफ. भारत को निगाह रखनी होगी, हड़बड़ाहट नहीं दिखानी होगी. लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं है लेकिन छोटा लक्ष्य भी कई बार मुश्किलें साबित कर जाता है. इस बात से चौकन्ना रहना होगा भारतीय टीम को. भारत की कप्तान और उपकप्तान की जोड़ी इस समय मैदान पर. हरमनप्रीत कौर पहली बार स्ट्राइक पर. भारत को पिछले दो मुकाबलों में अच्छी शुरुआत मिलती रही थी, एक साझेदारी बनती रही थी, लेकिन इस मुकाबले में शेफाली वर्मा के जल्दी आउट होने के बाद वो

0: शुरुआत भारत को मिली नहीं है। लियन पैट पर जिसको टर्न के साथ ही खेल दिया ऑन साइड में एक रन के लिए हरमनप्रीत कौर ने, और इसके साथ ही उन्होंने अपना खाता खोल लिया। स्कोर हो गया भारत का 20 दो विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर चल रहा है, सादिया इकबाल का यह दूसरा ओवर, महंगी रही है थोड़ी सी। अपने पहले ओवर में उन्होंने अच्छे खासे रन खर्च किए थे, कुल मिलाकर 9 रन दिए थे, और इस दूसरे ओवर में अभी तक एक रन उन्होंने दिया है, एक रन अतिरिक्त के रूप में आया है। और सादिया इकबाल के इस ओवर की चौथी गेंद, अब सामने है स्मृति मानधना। स्लाइटेड गेंद जिसको क्रीज से बाहर निकल कर खेला कवर की तरफ, लेकिन फील्डर को बीट नहीं कर सके, टाइमिंग उतनी अच्छी थी नहीं, बिल्कुल ब्लॉक होल में थी ये फ्लैटेड गेंद, जिसको अपने विकेटों से दूर ढकेला स्मृति मानधना ने, जो उनकी पिछली पारी रही थी पिछले मैच में, यादगार, दर्शनीय, अलौकिक कह सकते हैं। अगली गेंद को इस बार बैकफुट पर जाकर खेला, लेकिन फिर से उसी फील्डर के पास कवर में, फिर से कोई रन नहीं। आज शुरुआत में थोड़ी सी परेशान दिख रही, थोड़ी सी मुश्किल में दिख रही है स्मृति मानधना। पहली गेंद पर ही उनके खिलाफ अपील हुई थी सादिया इकबाल की ही गेंद पर, इस बार हवा में उठाकर खेला इस गेंद को फील्डर के ऊपर से, और इस बार चौका मिलेगा। बढ़िया टाइमिंग के साथ, बढ़िया नियंत्रण के साथ खेला गया स्ट्रोक स्मृति मानधना का, और इस चौके के साथ उनका व्यक्तिगत स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। भारत का स्कोर 3 ओवर के बाद 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सादिया इकबाल का एक और महंगा ओवर, 2 ओवर 14 रन, कोई सफलता नहीं।
1: So with the run rate of 8 runs per over, India then are 24 for 2. The two batters out today in the Indian innings, Saif Ali Verma, cotton ball, Fatima Sana for 12 of 6 balls, 1 for 16, and Pratika Rao will caught by Munima, the wicketkeeper of Fatima, for 4 of 3. Follow wickets, 1 for 13, Saif Ali Verma, 2 for 18 was Pratika Rao. Will be battery in form for India has been Smriti Mandana, 19 in that first match when she was run out against Thailand. But what a wonderful knock she played, 124 once again run out, 64 balls, 14 fours and 7 sixes with a try rate of 193.75, surpassed Mithali Raj who had 10,868 runs to become the leading run getter in the women's internationals with 1800s. She has now tied with Meg Lanin for most hundreds in international crickets across formats. Wonderful shot from Smriti Mandana. Remember, she got her first T20 100 against England, 112 of 62 balls. That was on the 20th of June 25 at Trent Bridge. As we are now watching Fatima, India need just 32 runs of 101 balls. Will they be able to finish it off in the power play is now the question looming large in the minds, as the next one is outside the off stump onto the front foot goes Harmanpreet. Harmanpreet will be looking to remain unbeaten, hasn't been in the best of forms with the bat. 5 of 9 balls against Thailand, 10 of 9 balls against the Hong Kong China women's team. We are here at the Dubai Cricket International Stadium for the 10th edition of the Women's T20 Asia Cup, which is a biennial cricket tournament organized by the Asian Cricket Council, featuring women's national team from Asia played in ODI and T20 formats. The first edition was played in 2004. In an ODI format, only two teams participated, India and Sri Lanka, and they played a 5-match series with Sri Lanka lost 5-0. Fatima now trying to pick up yet another wicket. India need 31 of 99 balls. Smriti is 5 of 8. Harmanpreet is 2 of 4. The T20 introduction came in 2012 with China being the country where the first T20 format for an Asia Cup game was used. India has really been the most successful team, holds the record for the most titles with total 7 wins, 4 ODI and 3 T20. Sri Lanka are the defending champions. As the next one to Smriti Mandana comes forward and drives all along the ground straight to the fielder inside the 25-yard circle, and the score remains immobile at 25 for 2. Sri Lanka beat India in the final in Jambula in 2024. This year there are 8 teams competing, divided into 2 groups. The Group A consisting of Hong Kong, India, Pakistan, Thailand, whereas Group B had Bangladesh, Indonesia, Sri Lanka and UAE. Indonesia now playing in the Asia

0: Cup for the first time. Quickly, for the benefit of late tuners, India have completely turned this match upside down with some fine bowling display, as the next one has been lofted one bounce into the fence by Harmanpreet Kaur for 4 runs. In fact, it was Smriti Mandhana who was taking strike to a ball which was short in length, and Smriti was onto the back foot playing that shot with a horizontal bat and pulling it through mid-wicket for 4. She has really been in imperious form of late, continuing all that good work that she has done for India over the years. Elegant left-hander now waits for the arrival of the next ball from Fatima. The last ball of the fourth over coming up. India need 27 runs more, and this time striking on the pads, an appeal for LBW. They are virtually pleading, and up goes the finger. Fatima has picked up yet another wicket. The wicket coming off the last ball of the fourth over, and India then have lost 29 for 3 after completion of 4 overs.
1: To Bharat ke liye ek aur wicket ka patan. Ye gend Fatima Sana ki, jo middle aur leg stump par thi, backport par chali gayi thi. Smriti Mandhana bilkul stumps ke samne pakdi gayi. Ek zordar appeal पाकिस्तान की कप्तान की तरफ से, और फातिमा सना की इस अपील पर अंपायर ने अपनी सहमति जताई, और इस तरह से भारत के तीसरे विकेट का पतन 29 के स्कोर पर. स्मृति मानधना 11 गेंदों में 9 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू, फातिमा वापस पवेलियन में. तो भारत के लिए थोड़े से चिंता के बादल. 27 पर पाकिस्तान ने पहला विकेट गंवाया था, भारत ने 29 पर 3 विकेट गंवा दिए हैं. हालांकि 27 के बाद और 55 रन के बीच 10 विकेट गंवाए थे पाकिस्तान की टीम ने, लेकिन स्मृति मानधना इन फॉर्म बल्लेबाज थी. उनका आउट होना और साथ ही साथ शेफाली वर्मा का आउट होना भारत के लिए थोड़ी परेशानी की बात, क्योंकि पिछले 2 मैचों में हमने देखा है 2 कमज़ोर टीमों के खिलाफ भी भारत का मिडिल ऑर्डर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर सका था. आज हालांकि बहुत बड़ा लक्ष्य है नहीं, इसको देखते हुए बहुत ज़्यादा परीक्षा नहीं होगी मिडिल ऑर्डर की, फिर भी ये छोटा स्कोर भारत को परेशान कर रहा है. अगली गेंद नए ओवर की सादिया इकबाल की पहली गेंद थी, और इसको खेला मिड ऑफ की तरफ, रन नहीं मिलेगा. हरमनप्रीत कौर कप्तान अभी भी मैदान पर मौजूद. आज इस दूसरी गेंद का सामना कर रही हैं इस ओवर में हरमनप्रीत कौर. फिर से उस गेंद को ऑफ साइड में खेला, कोई रन नहीं मिलेगा. दीप्ति शर्मा नई बल्लेबाज आई है मैदान पर. बल्लेबाजी में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, और जहां तक बल्लेबाजी की बात है, ऋचा घोष की जगह इस बार दीप्ति शर्मा को बल्लेबाजी में ऊपर भेजा गया है. अगली गेंद इसको सीधे बल्ले से सामने की तरफ खेल दिया हरमनप्रीत कौर ने, कोई रन नहीं. जहाँ तक पाकिस्तान की बल्लेबाजी की बात है, 1 से 6 ओवर के बीच पाकिस्तान ने 29 रन बनाए थे, 3 विकेट गंवाए थे, 23 डॉट गेंदे थी, 4 चौके आए थे. इस बीच में तैयार सादिया इकबाल इस ओवर की चौथी गेंद के साथ. क्रीज से बाहर निकलकर इस बार टर्न के साथ गेंद को ऑन साइड में खेला मिड ऑन की तरफ, तेजी के साथ भाग पड़ी थी दोनों बल्लेबाज 1 रन के लिए, और वो रन अंत में आसानी के साथ पूरा हुआ. 30 पर पहुंचा भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर. फिर पाकिस्तान ने 7 से 16 ओवर के बीच कुल मिलाकर 19 रन जोड़े, 5 विकेट गंवाए, और उस दौरान सिर्फ 1 चौका आया था. और 17 ओवर से लेकर 19.1 ओवर के बीच 7 रन बनाए, 2 विकेट गंवाए थे जिसमें 1 चौका आया था. कुल मिलाकर 19.1 ओवर में पाकिस्तान की टीम 55 रन पर ऑल आउट हो गई, जिसमें 6 चौके शामिल थे. कुल मिलाकर 78 ऐसी गेंदें रही थी पाकिस्तान की पारी में जिसमें कोई रन नहीं आया था. इस ओवर में 2 गेंद अभी भी बाकी है, और स्ट्राइक पर पहली बार दीप्ति शर्मा. 5वीं गेंद इस ओवर की, खेलने के लिए तैयार. 92 गेंदों में भारत को चाहिए 26 रन. इस पहली गेंद को दीप्ति शर्मा ने खेल दिया है कवर की तरफ, रन नहीं मिलेगा. फील्डर वहां पर मौजूद, रन की संभावना थी भी नहीं. टॉप स्कोरर की बात करें तो दुबई क्रिकेट स्टेडियम में स्मृति मानधना, जो अभी अभी आउट होकर वापस गई हैं, उन्होंने

0: should take some blame for the display in their batting 55. This definitely was not a wicket where a team could be shot out for 55. It was a combination of good bowling and some lackluster batting by the Pakistan team that led to their downfall.
1: Yeah, Pakistan ki ballebazon ne puri tarah se aatmasamarpan kar diya Bharat ki gendbazon ke samne gair zimmedarana strokes lagaye jiski wajah se unko is tarah se nuksan uthana pada aur sirf 55 run tak pahunch saki Pakistan ki team. Dusri taraf agar Pakistan ki gendbazi ki baat karte hain to akeli ladai इस समय पाकिस्तान की कप्तान की तरफ से लड़ी जा रही है फातिमा सना ने तीनों के तीनों विकेट अभी तक भारत के झटके हैं हालांकि थोड़ी सी फिटनेस की समस्या उनको आई है फिजियो मैदान पर आई थी अब मैदान से बाहर जा चुकी हैं और एक बार फिर से इस अधूरे ओवर को पूरा करने के लिए तैयार फातिमा
0: सो हियर इज फातिमा नाउ आफ्टर बीइंग अटेंडेड टू बाय द फिजियोथेरेपिस्ट इन टू हरमनप्रीत एंड दिस टाइम हरमनप्रीत कैन डू नो मोर देन टू पुश द बॉल बैक अलोंग द ट्रैक देयर इज नो रन सो फातिमा सना despite having scored zero when Pakistan batted, has been like a one-woman army for Pakistan. She's been paddling the boat all by herself, giving all 100%, showing the intent, and managed to pick up three important wickets of Smriti Mandhana, Shefali Verma and Pratika Rawal, up to Harmanpreet now and Deepti Sharma. To take India home with just 22 degrees of 85 balls as the next one has been pushed on the offside, not for runs. 6 overs gone. We are done with the power play. 34-3 India in quest of that magical figure of 56.
1: So, Bharat ne 34 run banaye hain ab tak, 3 wicket ke nuksan par. Power play ke 6 overs ki samapti ho gayi hai. Aur in 6 overs mein Bharat ki taraf se 4 चौके आए हैं और एक छक्का भी आया है सादिया इकबाल ने इन पावर प्ले में 3 ओवरों की गेंदबाजी की पाकिस्तान के लिए जिसमें 16 रन दिए और फातिमा सना एकमात्र सफल गेंदबाज पाकिस्तान की कप्तान 3 ओवर 17 रन और तीनों की तीनों सफलताएं उन्हीं के खाते में नए ओवर की शुरुआत होगी दीप्ति शर्मा स्ट्राइक पर होंगी और पावर प्ले के बाद का पहला ओवर नशारा संधू आ रही हैं गेंदबाजी के लिए भारत का रन रेट अभी है 5.67 का रिक्वायर्ड रन रेट 1.57 का वैसे तो सिर्फ औपचारिकता दिखाई देती है इस मुकाबले में लेकिन जिस तरह से फातिमा शना ने गेंदबाजी की उससे थोड़ा सा रोमांच ज़रूर इस एशिया कप के मैच में आया है लेकिन भारत अभी भी इस मुकाबले में काफ़ी आगे है दीप्ति शर्मा स्ट्राइक के लिए तैयार हो रही है 84 गेंदों में 22 रन चाहिए इस ओवर की पहली गेंद नशारा संधू की ओवर द विकेट पहली गेंद को लॉक किया है मिड विकेट के ऊपर से और यह चौका आता हुआ दीप्ति शर्मा के बल्ले से पहला चौका दीप्ति शर्मा का और इस चौके के साथ उनका स्कोर बढ़ता हुआ 8 भारत का स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस चौके के जरिए दबाव भी हटाने में दीप्ति शर्मा कामयाब रही है भारतीय टीम के ऊपर से जो 3 विकेट के एक के बाद एक पतन के बाद मानसिक दबाव की स्थिति भारतीय बैटिंग पर आई थी इस चौके ने उसको काफ़ी कुछ हल्का किया होगा और नशारा संधु निश्चित रूप से दबाव में आई होंगी क्योंकि उन्होंने गेंदबाजी की शुरुआत की और उनकी पहली ही गेंद पर यह शानदार स्ट्रोक लगाया है दीप्ति शर्मा ने दूसरी गेंद करने के लिए तैयार नशारा संधु इस गेंद को जो बेहतर गेंद थी बैकफुट पर जाकर खेला मिड ऑन की तरफ रन के लिए जाना चाहती थी लेकिन वो रन था नहीं वहां पर अपने अपने कदमों को वापस क्रीज में खींचा अगर भारत की तरफ से पाकिस्तान के साथ मुकाबलों की बात करें तो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में क्या वो आंकड़ा रहा है हम आपको बताएंगे फिलहाल पहली बार इस ओवर में इस गेंद को स्वीप किया दीप्ति शर्मा ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ 1 रन के लिए स्कोर बढ़ता हुआ भारत का 39 3 विकेट के नुकसान पर दीप्ति शर्मा 9 पर पहुंच गई हैं तो हम बात कर रहे थे इस दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच लार्जेस्ट विक्ट्रीज विकेटों के लिहाज से तो उसमें भारत ने 6 विकेट से जीत हासिल की थी

0: और 7 गेंद रहते वो जीत हासिल की थी, 106 रन का लक्ष्य हासिल किया था। धन्यवाद प्रदीप कुमार तुम्बटे आपका इस अहम जानकारी के लिए, और इस ओवर में अगली बार गेंदबाजी के लिए तैयार। इस गेंद को पैडल स्वीप किया है, एक रन के लिए तेजी के साथ भागी है, फील्डर भाग रही है उस गेंद के पीछे, जब तक गेंद को रोक पाए दूसरे के लिए भी पलटेंगे। हालांकि ये दूसरा रन थोड़ा सा जोखिम भरा हो सकता था, लेकिन अंत में आसानी के साथ कप्तान हरमनप्रीत कौर ने वो दूसरा रन भी पूरा किया, और इन दो रनों के साथ भारत का स्कोर पहुंच गया 41 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब थोड़ी सी सजग भारतीय बल्लेबाजी अपने लक्ष्य की तरफ मजबूती से कदम बढ़ाती हुई, लक्ष्य अब बहुत दूर रह नहीं गया है भारत के लिए। ये साझेदारी 12 रन की हो चुकी है, 15 रन चाहिए भारत को और इस मैच को जीतने के लिए, ग्रुप ए में लगातार तीसरी जीत हासिल करने के लिए। ये गेंद फ्लाइटेड, मिडल स्टंप पर सीधी रहती हुई गेंद, पैड को बाहर निकाला, बल्ले को बाहर निकाला, कॉपी बुक स्टाइल में अपने सामने खेल दिया, ठीक निगाहों के सामने। इस मौके पर हरमनप्रीत कौर ने कोई रन नहीं। इस ओवर में कुल मिलाकर अभी तक 7 रन आ गए, अंतिम गेंद इस ओवर की आनी बाकी है, और इस गेंद को बैकफुट पर जाकर ढकेला कवर में, लेकिन रन नहीं मिलेगा। ओवर की समाप्ति, 8 विकेट से जीत हासिल की, 94 रन का लक्ष्य हासिल किया, 9 गेंद बाकी रहते, एक बार फिर से 8 विकेट की जीत हासिल की, 38 गेंद बाकी रहते और लक्ष्य था 100 रन का। इस मुकाबले में भी अब जीत का लक्ष्य बहुत दूर नहीं है, एक रन और इस बीच में भारत के खाते में आता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 46 3 विकेट के नुकसान पर। अब स्ट्राइक पर दीप्ति शर्मा, 13 गेंदों में 11 रन बनाकर खेल रही हैं। नशारा संधू के इस ओवर की दूसरी गेंद, पहली गेंद पर 1 रन, दूसरी गेंद का सामना करेंगी दीप्ति। बैकफुट पर जाकर इस गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन पर, फील्डर पीछे मौजूद हैं, एक रन और मिलेगा। एक एक रन के जरिए भारत अब जीत की मंजिल तक सुरक्षित तरीके से पहुंचना चाहता है। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच इससे पहले 7 मुकाबले जिसमें से 6 भारत ने जीते, सिर्फ एक में पाकिस्तान को जीत मिली, और ये 8वां मुकाबला भी भारत के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस गेंद को लॉब किया है, इस बार हवा में मिडॉन के सिर के ऊपर से 4 रन के लिए कप्तान हरमनप्रीत कौर ने। जैसे ही देखा कि गेंद पर फ्लाइट है, कदमों को बाहर निकाला, और थोड़ी देर के लिए जान हलक में जरूर आई होगी क्योंकि मिडॉन पर एक फील्डर मौजूद थी, उनसे बहुत दूर नहीं थी ये गेंद, हाथों के आसपास उंगलियों के आसपास से निकलती हुई ये गेंद, कप्तान खुद वहां पर मौजूद थी, हालांकि गेंद को लपक नहीं सकी और 4 रन आया। इसके साथ ही भारत के 50 रन पूरे 51-3 विकेट के नुकसान पर। अब चाहिए भारत को 5 रन, 69 गेंदें बाकी, इस ओवर में भी 3 गेंदें बाकी। क्रीज से बाहर निकलकर इस गेंद को लॉब किया लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए, और इसके साथ ही भारत ने यह मुकाबला 7 विकेट से जीत लिया है। हरमनप्रीत कौर ने इस छक्के के साथ 18 रन पूरे कर लिए, और भारत ने महिला एशिया कप 2020 2026 में अपनी लगातार तीसरी जीत के साथ सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इस जानकारी के साथ कि भारत ने पाकिस्तान के साथ दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में अपना ग्रुप ए का तीसरा मैच 7 विकेट से जीत लिया है, मैं धर्मेंद्र मणि राजेश अपने साथी अंग्रेजी कमेंटेटर डॉक्टर मिलिंद टिपनेस के साथ साथ, स्कोरर भागवत सिंह रावत, स्टैटिस्टिशियन प्रदीप कुमार तुम्बट के साथ आप सभी को आज इस तमाम आंखों देखा हाल के लिए शुक्रिया कहना चाहूँगा, लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी बताना चाहूँगा कि भारतीय टीम ग्रुप ए में टॉप पर रही, उसने अपने तीनों के तीनों लीग के मुकाबले जीते और 3 जीत के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाई है। ग्रुप ए में भारत पहले स्थान पर रहा है। अब आपको लिए चलते हैं अपने खास कार्यक्रम प्लेयर ऑफ द मैच के लिए।
1: प्लेयर ऑफ द मैच,
2: वेलकम टू प्लेयर ऑफ द मैच, एंड व्हाट अ मैच इट वाज। द इंडियन क्रिकेट टीम हैज बीटन पाकिस्तान

0: Pakistan by 7 wickets in Dubai, and a comprehensive win at the Asia Cup. Sensational performance by the Indian women. Aur aaj hamare saath hai Megha, who's hosting the show with me, and we have some special guests. Latika Kumari, former Indian cricketer, and Sabi Hussain is also here, a senior sports journalist. And Megha, we didn't think that India would have it so easy, magar comprehensive performance bhi nahi, ye kehte hain sensational performance aaj hui hai hamare Indian women ki.
1: Absolutely, coasting to a 7-wicket win. All three games, India managing to leave an impact and being very dominant. Latika, sabse pehle to kafi kam runs the. Pakistan ne jazba dikhaya dusri innings mein, lekin wo kabhi kafi nahi hone wala tha.
2: Kabhi kafi nahi hone wala tha, wo to hum zarur jante hain. Lekin mujhe bada impress kiya Pakistani kaptan Fatima ne, jis tarike ki fighting spirit unhone is match mein dikhai, aur फ्रंट से लीड करते हुए टीम को जिस तरह गेंदबाजी उन्होंने की, 3 ओवर में 17 रन देके, और जो टोटल जो 3 विकेट पाकिस्तान ले पाया वो उन्हीं की गेंदबाजी में आई, तो एक प्लेयर के नाते वो मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगा कि किस जो उन्होंने अपनी टीम के लिए कोशिश की वो एकदम कह सकते हैं कि अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है. बाकी पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने इतने रन नहीं दिए कि वो लड़ाई कर सके, तो इसी की वजह से ये जो एक आसान सी जीत है वो भारतीय खेमे में जरूर नजर आई आज.
0: एंड सभी लतिका ने बहुत ही वैलिड चीज कही है कि फातिमा की परफॉर्मेंस ऐसे मैच में जहां पे स्पिनर्स ने डोमिनेट करा है, स्पिनर्स का पल्ला भारी था, मगर फातिमा सना ने आके एक कैप्टन 24 ईयर्स ओल्ड की है पाकिस्तान की एक कैप्टन, और 3 विकेट 17 रन 3 ओवर, क्वाइट अ गुड परफॉर्मेंस देयर बाय द पाकिस्तान स्किपर.
3: बिल्कुल, फातिमा सना की जितनी तारीफ करें उतना कम है, क्योंकि डिस्पाइट कि इतना है ना लो टोटल को है ना, मतलब कि एक पाकिस्तान डिफेंड करने की कोशिश करी थी, उसमें भी उन्होंने भारत के जो 3 बैटर्स हैं जो उनको आउट किया, और मतलब कि उन्होंने मतलब कि जहाँ पे हम स्पिन डोमिनेशन की बात कर रहे थे वहाँ पे उन्होंने जिसे कहते हैं ना शी वॉज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और 3 विकेट उन्होंने चटकाए. कुछ जैसे अगर हम फातिमा की बात करें तो उन्होंने 3 विकेट लिए, लेकिन जो पाकिस्तान है आज अपना 200th T20 इंटरनेशनल खेल रहा था, तो पाकिस्तान चाह रहा था कि इस ओकेजन को और अच्छा करे, जीतते, लेकिन बैटिंग उनकी बिल्कुल ही नहीं चली जहाँ पे, और हमारे इंडिया के जो स्पिन कॉम्बिनेशन है उन्होंने 9 विकेट निकाल दिए और पूरी तरीके से डोमिनेट किया. तो जब आपके स्कोर ही इतना नहीं था कि जिसको आप डिफेंड कर सके, उसमें भी फातिमा सना ने 3 विकेट निकाल कर ये दिखाने की कोशिश करी कि अगर उनके बैटर्स और अच्छा परफॉर्म कर पाते, कहीं ये स्कोर 100-120 प्लस होता तो एक फाइटिंग टोटल होता, एक है ना फाइट हो सकती थी, लेकिन 55 रन्स जहाँ पे बनाया था, 56 रन्स का टारगेट था, उसमें भी उन्होंने 3 विकेट निकाले. तो और जिस तरीके से हम देख भी रहे थे कि वो उनकी जो लाइन एंड लेंथ थी, जो रिदम थी, वो कहीं भी नहीं भटकी, मतलब 3ों विकेट देखिए आपने, ऐसा नहीं है कि वो कि कोई बैट्समैन की उस तरीके से कोई गलती रहे, बॉलिंग इतनी अच्छी थी, वो बॉलिंग इतनी सटीक थी, बॉलें इतनी तीनों अच्छी थी कि उन्होंने वो जैसे कहते हैं ना शी अर्न दोज विकेट्स. तो फातिमा सना ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, बट ये चीज़ रही कि टोटल इतना छोटा था डिफेंड करने के लिए कि वो भी कुछ मतलब कर नहीं पाए.
1: लतिका बतौर ऑलराउंडर खेलती हैं फातिमा सना, 2024 में पहली बार विश्व कप में कप्तानी की, वो जो जज्बा है उनका वो टाइम एंड अगेन हमें देखने को मिलता है, और जिस तरह से एज अ लीडर इतनी कम उम्र में वो अपनी टीम को लीड करती हैं, 3 गेंदों पे जो उन्हें विकेट्स मिले, पहली 2 गेंदे तो ऑफकोर्स इन टू द विकेट और उसके बाद फुलर, लेकिन जितनी सटीक लाइन और लेंथ.
2: बिल्कुल, देखिए और ये सीखने वाली चीज़ें हैं, जब इस तरह का प्लेयर आपको एक मैच में दिखता है चाहे वो किसी भी टीम से खेल रहा हो, तो यंगस्टर्स के लिए काफ़ी मोटिवेशनल चीज़ें होती हैं यहाँ पर कि उनकी गेंदबाजी किस तरीके से रही, चाहे भले ही टीम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई बल्लेबाजी में, लेकिन गेंदबाजी में उनके हाथ में क्या था, उन्होंने उस चीज़ को फोकस करते हुए लाइन लेंथ को अपना एक हथियार बना लिया, और उस लाइन लेंथ के चलते स्मृति मंदाना जैसी आपने बड़ी मछली फंसाई, वहां पर शेफाली वर्मा को आपने चलता किया, प्रतिका रावल को आपने बिल्कुल मौका नहीं दिया. तो बॉलिंग में अगर धार चाहिए आपको, किसी भी तरीके से परेशान करने वाली गेंदबाजी चाहिए, तो वो इस प्लेयर से आपको सीखना चाहिए किस जज्बे के साथ उन्होंने गेंदबाजी यहाँ पर की है.
0: 7 विकेट विन फॉर इंडिया. एंड हमने मैच से पहले बात करी थी सभी अबाउट द इंडियन मिडिल ऑर्डर बीइंग टेस्टेड, आज वो टेस्ट था मगर आपको क्या लगता है ये इंडियन मिडिल ऑर्डर ने वो टेस्ट पास करा है या फेल करा है? क्योंकि आज ओपनर्स आपके चीपली डिसमिस हो गए, मगर चांस था प्रतिका रावल के लिए इम्पैक्ट करने का जो वो नहीं कर पाई।
3: प्रतिका रावल को देखिए, उनके लिए एक डिसअपॉइंटमेंट तो रहा ही, क्योंकि स्कोर भी इतना बड़ा नहीं था। चाहती तो वो कुछ जिसे कहते हैं ना कि बिफोर दी नॉकआउट मैचेस, जो सेमीफाइनल में इंडिया है और हो सकता है कि फाइनल में भी जगह बनाए, तो उस पॉइंट से अगर देखें तो प्रतिका रावल अगर आज कुछ रन्स स्कोर करती तो थोड़ा सा उनमें कॉन्फिडेंस आता आगे के गेम के लिए, थोड़ा सा उनको खुद को ही अच्छा लगता। लेकिन आज फिर से अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ही चीपली डिसमिस हो गई, क्योंकि उसमें फातिमा सना की बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त थी, वो बॉल ही इतनी अच्छी थी कि वो बिल्कुल चकमा खा गई। और जहाँ तक मिडिल ऑर्डर की बात रही तो पास और फेल होने वाली बात इसलिए नहीं आई क्योंकि स्कोर ही इतना कम था। अगर थोड़ा सा भी स्कोर ज़्यादा होता तो जैसा आपने ठीक कहा कि तीन विकेट भारत के, जो जिसमें हमेशा से टॉप ऑर्डर पे वो भारत अपना जो डोमिनेट करता है पोजीशन को और हमेशा से टॉप ऑर्डर चला, आज वो कहीं ना कहीं दिखा कि पाकिस्तान के फातिमा सना के आगे वो बिखर गया या वो इतना कमाल नहीं कर पाया। और फिर मिडिल ऑर्डर पर बात आ गई, लेकिन टारगेट इतना नहीं बढ़ा था तो कहीं ना कहीं हरमनप्रीत और दीप्ति जिन्होंने भारत को फाइनली जीत दिलाई, और हरमनप्रीत ने वो एक लाजवाब सिक्स मार के वो जो डोमिनेंट विन जो दर्ज करी, तो वो उतना स्कोर नहीं था क्योंकि उनके बॉलों का भी कुशन था, रन रेट का भी कोई प्रेशर नहीं था, विकेट्स भी उनके हाथ में थे, तो सब चीज़ें ही भारत के पक्ष में चल रही थी। तो मिडिल ऑर्डर का रियल टेस्ट शायद मैं कहता हूँ कि सेमीफाइनल में आएगा, जब उनका वो श्रीलंका या बांग्लादेश में से वो अपोनेंट पता चलेगा। यही हालात अगर ऐसे किसी आगे सेमीफाइनल या फाइनल के मैच में होते हैं और भारत कोई 150 के आसपास चेज कर रहा है, तब वो पता चलेगा कि मिडिल ऑर्डर क्या वाकई में ही इतना जिसे कहते हैं वो प्रेशर ले सकता है कि अगर आपका टॉप ऑर्डर फेल हो जाए तो मिडिल ऑर्डर आपको दे सेल पास दैट शिप। तो देखना पड़ेगा, लेकिन आज की जब तक हम बात करें तो आज तो इंडिया की पाकिस्तान के ऊपर 15th जो विन है वो सेलिब्रेट करने का वक्त है, तो सेलिब्रेट किया जाए।
1: जी, 28 रनों की साझेदारी हुई हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा के बीच में लतिका, और दोनों ही काफी अनुभवी खिलाड़ी। मे बी जो लगातार वॉबल हम देखते आए हैं पहले दो मैचेस में, उसके बाद शायद किसी तरह का कॉन्फिडेंस तो इस साझेदारी ने इंस्पायर किया होगा भारतीय टीम में।
2: देखिए, जिस तरीके की शुरुआत हुई, शेफाली ने कोशिश जरूर करी, लेकिन फातिमा की गेंद में एक इतनी अच्छी गेंद पड़ी वहाँ पर वो आउट हुई। उसके बाद जिस तरीके से प्रतिका रावल आउट हुई, फिर स्मृति मंदाना, तो बहुत जल्दी जल्दी ये विकेट गिरे। और उसके बाद जब हरमनप्रीत वहाँ पर आती हैं और काफ़ी समय से अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी समय से उनके बल्ले से हमने वो रन्स, वो कॉन्फिडेंस वो अभी तक देखा नहीं है मैचेस में, और दीप्ति के बल्ले से हमने ज़रूर देखा है। लेकिन मैं यहाँ पर हरमन की ये भी दाद दूंगी कि आपने इस लो स्कोरिंग मैच में किस तरीके से आपने एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वहाँ बल्लेबाजी की, जो आपको गेंदें मिली आउट ऑफ द पार्क करने की, उन पे आप खेले तो किसी शेल में नहीं गए। अदरवाइज अगर हमने पिछले मैचेस में देखा होगा तो वो इतना उभर के बल्लेबाजी करती हुई नहीं दिखाई दी। और प्रतिका रावल के लिए मैं ये कहूँगी कि बहुत अच्छा चांस उनको यहाँ पर मिला है एशिया कप में अपनी दावेदारी साबित करने के लिए कि आप T20 प्लेयर हैं, क्योंकि उनकी जिस तरीके की स्किल है, जिस तरीके की टेक्निक है, बहुत ही बढ़िया वो बल्लेबाज हैं, लेकिन क्या वो T20 में एडजस्ट कर पा रही हैं, क्या नहीं कर पा रही हैं। उसके साथ साथ आप फील्डिंग पे भी नज़र रखें कि आप टीम को कितना कंट्रीब्यूट यहाँ पर कर रही हैं अपने परफॉर्मेंस से। तो मुझे लगता है कि मैनेजमेंट ज़रूर बहुत सारी चीज़ों को सोच रहा होगा, और मैंने हमेशा देखा है कि हरमन है या मैनेजमेंट है, वो अपने प्लेयर्स को बैक करते हैं। तो यहाँ पर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक प्लेयर के लिए कि वो किस तरीके से आगे इस एशिया कप को देखती है।
0: मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट महत्वपूर्ण बात है कि इंडिया 3 out of 3, 3 matches, 3 जीत, टॉप ऑफ द ग्रुप, और ग्रुप स्टेज से तो सेमीफाइनल्स में पहुंच गए हैं। इंडिया का सेमीफाइनल मैच थर्सडे 10 September को होगा, मगर अभी हमें नहीं पता इंडिया किसके खिलाफ खेलेगा, क्योंकि दूसरे ग्रुप में श्रीलंका के 4 points है, बांग्लादेश के 2 एंड UAE के 2। सो लग रहा है सभी एक बड़ा दावेदार बन सकता है इंडिया के लिए, और सेमीफाइनल में कठिन परीक्षा मिल सकती है हमारी इंडियन टीम को।
3: नहीं, बिल्कुल, देखिए आप जब सेमीफाइनल तक आप पहुंच गए तो 2 ही मैचेस हैं जो आपको चैंपियनशिप से सेपरेट कर रहे हैं, सेमीफाइनल फाइनल, तो अब इंडिया कांट लेट इट्स गार्ड डाउन। अब बिल्कुल इंडिया को कोई भी अगर वीकेंड्स हैं तो उसको अभी ही उनको है ना देखना पड़ेगा कोई भी, क्योंकि आज के अगर हम बात करें इस मैच से तो की टेक अवे अगर हम बात करें तो इंडिया की स्पिन बॉलिंग रही, जो स्पिन कॉम्बिनेशन रहा जिसने 9 विकेट्स निकाले तो वो एक की टेक अवे रहा। बैटिंग की जहां तक बात करें, हाँ ये टॉप ऑर्डर का थोड़ा सा वॉबल होना वो थोड़ा सा है चिंता की बात, लेकिन होपफुली इंडिया इज अ वेल ऑयल्ड यूनिट और सेमीफाइनल और फाइनल में अच्छा करे।
1: जी बिल्कुल, और वेल ऑयल्ड यूनिट हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि ओवरऑल जो प्रदर्शन रहा है, बीच में वॉबल्स रहे लेकिन भारत ने उसे संभाला है। इस बीच वक्त हो चला है प्लेयर ऑफ द मैच कौन है ये जानने का और दोनों कप्तानों को भी सुनने का।
4: सी एंड मिस इब्तिसाम अहमद अल काबी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जाफसा सेल्स डीपी वर्ल्ड, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द डिग्निटरीज। It's time now to invite the captain whose side finished second best in today's contest. Could I request Fatima Sana Khan, skipper of Pakistan, to come forward, please? Fatima, hard luck. How would you summarize this result?
5: Yeah, I think we had collapse in the batting side. We were struggling in the whole innings, so that was the...
4: In hindsight, looking back, how wise was the decision to win the toss and elect to bat first?
5: I think we know that a fresh wicket and we just want to put the maximum total, and we know we have a good bowling side, so we just try to put the maximum total there.
4: You delivered a star turn of sorts with that spell of yours, 3 wickets. How would you want to remember that? Because India versus Pakistan is always special.
5: Yeah, but still, if we lost the match, that it doesn't matter. So we just need a win. So that was not matter.
4: You're still alive in the race to the semi-finals. How crucial is your next match going to be, which is also going to be your last group stage contest?
5: Yeah, definitely we will try to play a good cricket there. And the last match, we will try to win the match and we will play to semi-final.
4: Go well in the next one. Thank you, Fatima. That was Pakistan skipper Fatima Sana Khan. Time now to announce the player of the match for fixture number 9, India versus Pakistan. And for spectacular figures of 3 for 7, the player of the match is the 22-year-old from Kadapa, Andhra Pradesh, world number 1 in women's T20Is, N. Sri Charani. What a performance. She will collect the check from Miss Ebtisam Ahmed Al Kabi and trophy from Miss Esha Chatterjee, delivering the goods once again, operating with aplomb inside the power play and also in the middle overs, and is now one short of her 50th T20I wicket in Sri Charani of Kadapa, Andhra Pradesh. How delightful is it to be player of the match in an India versus Pakistan fixture?
6: It's great, ma'am. Great feeling to be to contribute my team.
4: थोड़ा अपने स्पेल के बारे में बताइए, हरमनप्रीत कौर ने आपको पावर प्ले में लाया, फिर किस तरीके के माइंडसेट के साथ आपने ऑपरेट की?
6: Just wanted to bowl to my strength and according to the field. Yeah, that's...
4: What do you back yourself with most, wicket to wicket? You've got great speed as well, as Avishkar Salvi, your bowling coach, has mentioned. What is it that you are most confident about in your arsenal of skills?
6: Only I just try to give more reps on the ball, so that helps me every time.
4: And to be one short of that 50th T20I wicket, how special is that?
6: I think normal, like every day.
4: And but finally,
6: yeah,
4: go for it.
6: But it will be special, but yeah, I need to continue more and want to do more for my country.
4: And to be world number one in T20Is and to be delivering the goods wicket after wickets for India, how crucial is that for a youngster like yourself?
6: I didn't get it.
4: How crucial is it? आप सिर्फ 22 साल के हो और एक के बाद wickets लेते जा रहे हो आप, कितना special है ये India के लिए?
6: Good ma'am, I want to keep going with my good work.
4: All the very best. Yeah, keep up the good work.
6: Thank you.
4: That was the young and very shy N. Sri Charani from Kadapa, Andhra Pradesh. It's time now to invite Harmanpreet Kaur, the captain of India, to come forward and sign the match ball first. Milestone game this for the India skipper, 150th T20I as captain of India. And she was also involved in finishing off the chase. Harmanpreet Kaur Bhullar from Punjab, congratulations first up. Talk us through this result. How crucial was it for India to win this one?
7: Yeah, very important game for us, and really happy the way entire team performed today, because we talk about being ruthless, and I'm really happy the way we performed.
4: Talk us through that bowling performance, including what we saw from Enshri Chirani, Nandini Sharma, Deepti Sharma once again.
7: Yeah, I mean, all the bowlers, they've been outstanding. They are sticking to their plans and bowling according to their plans and reading the pitch really well. I think that is the key, understanding the pitch and then executing your plans accordingly.
4: And that wobble that you suffered with the bat in hand in that 56-run chase, your thoughts?
7: Well, I think it's a part of the game. They also bowled.

0: a trademark Harmanpreet Kaur full-bodied six. Talk us through this milestone match.
1: Well, I'm grateful. I never thought I'll come that far, but all the people behind me who's been supporting, I'm really grateful, and hopefully keep getting the support, because I think without support, I'm nothing. And I'm grateful. And the entire team, sports staff, they've been outstanding. So yeah, I mean, many more to come. Hopefully just keep continue the good work.
0: Thank you very much. Many more to come indeed.
1: Thank you.
0: That was Harmanpreet Kaur, the winning captain. That concludes the post-match presentation.
2: Harmanpreet Kaur, 150th T20 International as captain. And what a way to mark that milestone for the Indian captain. Latika, dekha jaye to Harmanpreet ne jaise bola ki important to keep the standards high, ki no letting up. Teen matches hain, magar aap expect nahi karenge ki Indian team ki itna achha pradarshan diya hai, magar relax karenge, abhi bhi motivated rahegi puri team.
3: बिल्कुल, देखिए कोई भी कंपटीशन होता है, आप वहाँ पर जीतने के लिए ही जाते हैं, और जिस मोमेंटम को अभी तक भारतीय टीम ने बनाए रखा है तो उस चीज़ को वो ज़रूर इन्जॉय भी करेंगे, उससे मोटिवेटेड भी होंगे. और जो तीन मैचेस खेले हैं उनमें क्या लर्निंग्स रही हैं, क्या इम्प्रूवमेंट्स हैं, वो छोटे छोटे कौन से एरियाज़ हैं जिन पर अभी भी भारतीय टीम को एक चैम्पियन बनने के लिए काम करना है. तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ों पर मैनेजमेंट भी ध्यान दे रहा होगा, कोचेज ध्यान दे रहे होंगे, और ख़ुद कप्तान जो है वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलती आई हैं. इतने टाइम से 150 मैचेस वो एज अ कप्तान खेल चुकी हैं, तो काफ़ी एक्सपीरियंस है. और मुझे लगता है कि ये बातचीत ज़रूर होती होगी सपोर्ट स्टाफ और एक कप्तान के बीच में.
4: और वहीं श्रीचरणी, जिन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड बैक किया, 50 T20I विकेट्स के इतने पास खड़ी हैं, लेकिन जिस तरह का नॉनशलांस था, जिस तरह की मैच्योरिटी थी कि इन माइलस्टोन्स को उतना सीरियसली नहीं लेती, जो महत्वपूर्ण है वो टीम को जीत दिलाना.
5: बिल्कुल, देखिए श्रीचरणी के सामने अभी बहुत लंबा करियर है, और जिस तरीके की शुरुआत हुई है उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो वाकई काबिले तारीफ़ है. बहुत ही शॉर्ट स्पैन में उन्होंने एक अपनी अच्छी जगह बना ली है इंडिया के T20 सेटअप में, और जिसे कहते हैं कि शी इज़ जस्ट अ विकेट शाय ऑफ अ 50th T20 इंटरनेशनल विकेट. और इस साल की तो वो लीडिंग हमारी विकेट टेकर भी चल रही है. आई थिंक इससे पहले 30 उनके विकेट्स थे, आज की तीन विकेट्स के बाद 33 हो गए हैं. तो और वो इंडिया की नहीं वर्ल्ड की नंबर वन भी बॉलर हैं उस T20 रैंकिंग्स में. तो श्रीचरणी जिस तरीके की ह्यूमिलिटी की हम बात कर रहे हैं, कि अभी भी जिस तरीके से वो देखती हैं कि माइलस्टोन्स जो हैं वो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हैं, वो सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पे इंडिया को जीत दिलाने के लिए, अपनी बॉलिंग से, अपने कैप्टन का जिसे कॉन्फिडेंस जीतने के लिए, और अपनी कंट्री के लिए ना, जो कहते हैं ना कि 100% देना. तो जिस तरीके का अभी देखिए वो एक जिस तरीके की मैच्योरिटी वो दिखा रही हैं, और इट स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ हर कैरेक्टर की उनको माइलस्टोन से या इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. अल्टीमेटली उनका गोल है अपना अच्छा बॉलिंग परफॉर्मेंस देती रहे, टीम को जब उनकी ज़रूरत पड़े तब अपना 100% दें और टीम को जीत दिलाएं. और यही एक अच्छे प्लेयर की निशानी होती है. और जैसे कि हम इस पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में सुन भी रहे थे, हरमनप्रीत ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि ये टीम रूथलेस है. और जब कैप्टन कह रही है कि ये टीम रूथलेस है, तो रूथलेस होने का मतलब यह है कि आपके हर प्लेयर को परफॉर्म करना पड़ेगा टू दी ऑप्टिमम लेवल. तो वही चीज़ है, श्रीचरणी अपने जो कैप्टन हैं उनके उस जो कॉन्फिडेंस उन पर दिखा रही हैं वो उसको पूरा 100% दे रही हैं. तो ये वाकई बहुत अच्छी बात है कि श्रीचरणी माइलस्टोन्स की तरफ नहीं देख रही हैं, अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, टीम के लिए उनका 100% देना और कंट्री को जीत दिलाना, यह उनका जिसे कहते हैं ना, दिस इज़ हर टारगेट.
2: जी हाँ, टारगेट है, स्टैंडर्ड्स हाई हैं, और इंडिया की जीत का जश्न आज पूरी कंट्री मना रहा है. और हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए और बताइए आपके पास कोई सवाल है हमारे एक्सपर्ट्स के लिए, लतिका या सभी के लिए, या आप कोई विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं. हाँ जी, बोलिए.
3: गुड इवनिंग.

देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय टीम जिस तरीके से अभी तक खेल रही है और जो कॉम्बिनेशंस भारतीय टीम के पास हैं अभी, तो उसी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ मुझे दिख नहीं रहा कि श्रीलंका के अगेंस्ट आप बहुत

0: बड़े चेंजेस करने जाएंगे. आप ऑलरेडी प्रतिका रावल को वो चांसेस दे चुके हैं, आगे भी उसको इस सीरीज में देखना चाहेंगे कि वो कैसा कर रही है. हाँ, मिडिल ऑर्डर जरूर हमारा कोलैप्स हुआ है, कई जगह पे कोलैप्स हुआ है, लेकिन हरमनप्रीत जिस तरीके से अपना भरोसा दिखा रही है अपने टीम की तरफ, तो मुझे लगता है कि श्रीलंका के अगेंस्ट भी हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे वहाँ पर, अगर श्रीलंका हमारे सामने सेमीफाइनल्स में आती है तो. तो मुझे लगता है हम एक कॉम्बिनेशंस में हैं, शुरुआत बल्लेबाजी में अच्छी हो रही है, गेंदबाजी हमारी डोमिनेट कर रही है, तो इतना खतरा मुझे नज़र नहीं आता. बट क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, और उस दिन किस तरीके से क्या डिसीजन मैनेजमेंट लेगा या सपोर्ट स्टाफ लेगा, तो वो चीज़ उसी दिन देखते हैं. और कौन सी टीम भारतीय टीम के सामने आएगी ये भी अभी तय होना बाकी है.
1: थैंक यू सो मच आपकी कॉल के लिए. प्लीज आप कॉल कर सकते हैं हमें 011-234-21084 या 85 पर. और एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, प्लीज इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को और बताइए क्या कहना चाहते हैं आप इंडिया की ये शानदार जीत पर. हाँ जी बोलिए. बिल्कुल, बॉलिंग तो शानदार हुई है, तो सेमीफाइनल्स के लिए क्या और लग रहा है ये सेंटिमेंट सभी सबके लिए हर कॉलर का है कि प्रतिका रावल की जगह किसी और को चांस देना चाहिए. आपको लगता है क्या इंडियन टीम मैनेजमेंट ऐसा स्टेप ले सकती है?
2: मुझे नहीं लगता है कि प्रतिका रावल को रिप्लेस किया जाएगा. ऑल्दो ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और ये उनको भी लग रहा होगा. आज भी जिस तरीके से जब वो आउट हुई बहुत ही निराश लग रही थी. हमने देखा भी कि किस तरीके से उनका हम फेस रीड कर पा रहे थे कि बहुत ही है ना, मतलब उनको खुद को मतलब अपने वो शॉट बॉल बहुत अच्छी थी ये मैं कहना चाहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि आज वो दिन था कि थोड़ा मतलब टारगेट भले ही छोटा था लेकिन कुछ स्कोर कर पाती, थोड़ा सा वो कुछ अपना बैटिंग आज अच्छी दिखा पाती. लेकिन मुझे नहीं लगता कि विनिंग कॉम्बिनेशन को बिगाड़ेगी टीम मैनेजमेंट या अमूल मजूमदार या बाकी जो लोग हैं वो इस तरीके का कोई ड्रास्टिक स्टेप लेंगे जहां पे वो प्रतिका रावल को ड्रॉप करे. हालांकि ये ज़रूर है क्योंकि टीम मैनेजमेंट उनसे बात ज़रूर करेगी, जानना चाहेगी कि क्या चीज़ है जो कि मतलब कि ऐसा कुछ उनको अफेक्ट कर रही है. बट देखिए, ये इंटरनेशनल क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव चलता ही रहता है, बट ऐसी ज़्यादा कोई वरी की बात नहीं है क्योंकि हमारी जो इंडियन टीम है उसमें सारी मैच विनर्स हैं. एक मैच की बात है, एक अच्छी नॉक की बात है, हो सकता है वो अगले मैच में वो नॉक आ जाए, तो ऐसे इतना ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है. और प्रतिका रावल ने अपने आप को प्रूव भी किया है, शी हैज़ बीन अ फाइन प्लेयर, और उन्होंने ना टाइम एंड अगेन दिखाया भी है अपनी परफॉर्मेंस से कि वो काफ़ी अच्छी प्लेयर रही हैं और मतलब काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करती है टॉप ऑफ द ऑर्डर. तो मैं यही कहना चाहूँगा श्रोताओं से कि अभी इस तरह की कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, और टीम मैनेजमेंट भी मुझे नहीं लगता ऐसे कोई ड्रास्टिक डिसीजन लेगा. लेकिन हालांकि टीम मैनेजमेंट बात ज़रूर करना चाहेगा, बट आई थिंक इंडिया शुड गो अहेड विद दिस विनिंग कॉम्बिनेशन, चाहे वो श्रीलंका हो या कोई एनी अदर टीम हो. और श्रीलंका तो वैसे भी डिफेंडिंग चैम्पियन है, 2024 में उन्होंने ये एशिया कप जीता था, इंडिया ने 2022 में जीता था. तो इंडिया तो खेल रही है रिटेन करने के लिए, वापस से रिगेन करने के लिए ये एशिया कप ट्रॉफी. तो प्रतिका रावल के ऊपर जो सवाल है वो यही है कि अभी विनिंग कॉम्बिनेशन को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, लेट हर गिव हर टाइम टू सेटल डाउन.
0: अगर मुझे लगता है अगर कोई चेंज हुआ तो मैं कमलिनी को यहाँ देखना चाहूँगी, क्योंकि एक यंगस्टर हैं और अच्छी ताकत भी रखती हैं, WPL में भी उन्होंने दिखाया है और डोमेस्टिक लेवल पे भी काफ़ी अच्छा उन्होंने खेला है. तो अगर कोई चेंज होता है तो मुझे लगता है कि ये चेंज होगा तो भारतीय टीम के लिए अच्छा होगा. एक राइट हैंड कॉम्बिनेशन भी आपके पास आता है वन डाउन पर, और वो किस तरीके से गेम को चलाएंगे वो भी देखना होगा, क्योंकि ऑफकोर्स प्रतिका रावल ने हमें वर्ल्ड कप में अपनी जो प्रतिभा है वो हमें दिखाई है कि वो किस लेवल के प्लेयर हैं. हाँ ठीक है, T20 में उनको इतना एक्सपोजर अभी तक मिला नहीं है, इतना एक्सपीरियंस उनके पास है नहीं. चोटिल वो हो गई थी जिसकी वजह से उनका WPL भी मिस हो गया था, उसके बाद काफ़ी जो मैचेस हैं उनके मिस हो गए थे. लेकिन कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होती है किसी ना किसी प्लेयर की, और ये एक अच्छी जगह है प्रतिका रावल के लिए भी कि आप किस तरीके से इन मैचेस को देखते हैं. कोई भी प्लेयर जो ग्राउंड में उतरता है खेलने के लिए उतरता है, वो अपने आप को दिखाने के लिए ही जाता है, चाहे वो बल्लेबाज हो, चाहे गेंदबाज हो, चाहे वो फील्डर हो. तो मुझे लगता है कि यहाँ मैनेजमेंट प्रतिका को जरूर यहाँ बैक करेगी. अगर कोई चेंज होता है तो मैं कमलिनी को वहाँ पर देखना चाहूँगी.
3: Pratika unfortunately dropped two catches as well, but the only change that we've seen from the World Cup to the Asia Cup

0: is Indian team backing its players? Now, moving ahead, tomorrow, that is 6th of September, there is Sri Lanka versus Bangladesh clash. And in that, we have all seen that Chamari Attappattu, as always, is in great form. But as an all-rounder, as they have contributed, 48 unbeaten UAE against UAE, and after Indonesia, 7-4.
1: नहीं बिल्कुल जी, के चमारी अट्टापट्टू जो है वो एक श्रीलंका की टॉप परफॉर्मर है और हमेशा हम देखते भी आ रहे हैं काफ़ी टाइम से कि उन्होंने किस तरीके से श्रीलंका को है ना कई अच्छी जीत दिलाई हैं। कभी भी है ना टफ सिचुएशन हो वहाँ से भी है ना टीम को दी, शी हैज़ बीन एबल टू रिगल इट आउट टीम को। तो काफ़ी कल का मैच देखिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। श्रीलंका एक तो डिफेंडिंग चैम्पियन है और वो चाहेगी कि है ना कि वो एक अपनी ये लय बरकरार रखे और वो अपने इस क्राउन को डिफेंड कर सके एशिया कप के। वहीं बांग्लादेश भी एक अच्छी टीम है और वो भी एक प्रूवन परफॉर्मर है। तो चमारी अट्टापट्टू जो है वो अगेन शी विल बी अ वाइटल कॉग श्रीलंका की स्कीम ऑफ थिंग्स में और वो चाहेंगी कि अपनी जो जैसा आप बता रहे थे कि इंडोनेशिया के अगेंस्ट 7 विकेट्स बाकी 48 रन, तो वो चाहेंगी कि वो लय बनी रहे। लेकिन कल का मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और उसी से तय होगा कि इंडिया का नेक्स्ट सेमीफाइनल अपोनेंट कौन हो सकता है।
2: जी हाँ, और उसके बाद जो मैच होने वाला है 7 सितंबर को पाकिस्तान और हांगकांग चाइना का, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि लतिका अभी जो पोजीशन है टेबल में पाकिस्तान सेकंड पोजीशन में है, -0.569 का रन रेट है। थाईलैंड जो सारे मैच अपने खेल चुके हैं -2.05 और हांगकांग चाइना -3.57। तो पाकिस्तान को कुछ ज़्यादा ही कुछ ड्रामेटिक करना पड़ेगा कि वो सेमीफाइनल्स तक नहीं प्रवेश कर पाएं। तो आपको क्या लगता है कि हांगकांग ऐसा कुछ कर सकता है पाकिस्तान के साथ 7 सितंबर?
3: देखिए, मैं फिर से बोलूँगी, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और हमने देखा है कि हमारी भारतीय टीम भी कितनी लड़खड़ा रही थी इन टीम्स के सामने, इनकी गेंदबाजी के सामने। वहाँ पाकिस्तान ने जिस तरह की बल्लेबाजी आज की है काफ़ी निराशाजनक जरूर रही, लेकिन कोशिश पाकिस्तान भी यहाँ से करेगा कि हांगकांग के सामने अपनी दावेदारी बहुत ही मजबूत तरीके से रखे और वहाँ से अगर उन्होंने जीत हासिल करते हैं तो सेमीफाइनल में वो ऑलरेडी हैं। लेकिन अगर हांगकांग कुछ उलटफेर करेगा तो पाकिस्तान को देखना होगा कि फिर वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये मैच इतना भी परेशान नहीं करेगा पाकिस्तान टीम को।
0: और उसके बाद बांग्लादेश और यूएई आमने सामने होंगी। समीकरण सभी ऐसा बना हुआ है कि बांग्लादेश ऑब्वियसली इज इन विद द चांस एंड सो इज यूएई। और बांग्लादेश ने अभी तक कुल एक मुकाबला ही खेला है, लेकिन उनके गेंदबाजों ने, खास करके नहीदा और मारूफा ने, शानदार प्रदर्शन किया इंडोनेशिया के विरुद्ध।
1: जहाँ तक बांग्लादेश की बात करें तो देखिए कल का मैच इसलिए भी इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि श्रीलंका और बांग्लादेश दोनों ही देखना चाहेंगे थोड़ा सा कि सेमीफाइनल्स की जो रेस है, जो जिसमें है ना भारत ने तो अपनी जगह पक्की कर ही ली है, पाकिस्तान भी हांगकांग के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन जहाँ तक देखा जाए कि श्रीलंका और बांग्लादेश का, तो कल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है और बांग्लादेश की तरफ से भी हम देखें तो है ना जो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस चल रही हैं, तो ये एक है ना कि ये एक अच्छा मुकाबला होने वाला है। और यूएई के साथ भी बहुत अच्छा ही मुकाबला होगा बांग्लादेश का, तो ये जिसे कहते हैं कि सेमीफाइनल की रेस इज क्वाइट हॉटिंग अप। तो देखते हैं कि इंडिया का नेक्स्ट अपोनेंट क्या होता है और ये जो चार सेमीफाइनलिस्ट वो कौन आते हैं।
2: जी हाँ, और इंडियन टीम को वेल डिजर्व ब्रेक मिलने वाली है क्योंकि उनका अगला मैच होगा 10 सितंबर को, थर्सडे को, उनका पहला सेमीफाइनल। और इंतजार रहेगा कि कौन होगा उनके सामने, श्रीलंका, बांग्लादेश या यूएई। एंड मेगा, व्हाट अ थ्रिलिंग मैच, और हमने सोचा नहीं था कि इंडिया कितनी इजीली ये मैच जीतेगी और क्या कैसे डोमिनेट करेगी। और आई थिंक आज टीचर्स डे मनाया जा रहा है पूरे देश में, तो इट्स अ गुड टीचर्स डे गिफ्ट फ्रॉम द इंडियन क्रिकेट टीम।
0: एब्सोल्युटली, अमोल मजुमदार वुड बी थ्रिल्ड विद द सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस दैट द इंडियन टीम केम अप विद। और हम भी काफ़ी जल्दी जा रहे हैं क्योंकि ये मुकाबला इतनी जल्दी समाप्त हो गया, बट शानदार प्रदर्शन भारतीय टीम की तरफ से। और हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे अपने एक्सपर्ट्स का जिन्होंने इतनी बारीकी से मैच को ऑब्जर्व किया और हमें अपना विश्लेषण दिया। थैंक यू टू यू एज वेल अभिनव, एंड वीड ऑल्सो लाइक टू एक्सप्रेस आर ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स द प्रोडक्शन टीम वर्किंग टायरलेसली बिहाइंड द सीन्स, वंदना भारद्वाज, स्वाति कपूर एंड माधवी तिवारी। आर प्रोड्यूसर इज शाहनवाज खान। आर टेक्निकल टीम कंप्राइजेस विनोद कुमार, अनिरुद्ध गुप्ता, नागेंद्र कुमार पटेल एंड त्रिलोक गुप्ता। विद दैट वी साइन ऑफ, बट वीड बी बैक विद द टू सेमीफाइनल्स एंड द फाइनल्स। अंटिल देन

0: goodbye and take care from the entire team.
1: Player of the match.
2: अभी आप विमेंस एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए T20 क्रिकेट मैच पर आधारित विशेष कार्यक्रम प्लेयर ऑफ द मैच सुन रहे थे।
3: यू हैव बीन लिसनिंग टू अ स्पेशल प्रोग्राम प्लेयर ऑफ द मैच ऑफ द T20 क्रिकेट मैच प्लेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑफ विमेंस एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026। This broadcast came to you from the Delhi station of Akashvani.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर 7.8% की तिमाही वृद्धि आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत अवरोध से नीतिगत गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
1: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि SRCC ने वर्षों से विद्यार्थियों की कई पीढ़ियों को सीखने, आगे बढ़ने और समाज में बदलाव लाने का अवसर दिया है।
1: जब कोई इंसान 100 वर्ष जीता है तो उसे अनुभवों का सागर माना जाता है और जब कोई संस्थान 100 वर्ष का होता है तो वो उपलब्धियों और प्रेरणाओं का महासागर हो जाता है। अपनी 100 वर्षों की इस यात्रा में SRCC ने पीढ़ियों को गढ़ा है, उन्हें उज्जवल भविष्य से जोड़ा है। जो आए उन्होंने पढ़ा और जो निकले वो गढ़े हुए निकले।
0: इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आज तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। प्रधानमंत्री समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली मेट्रो से पहुंचे थे। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉपआउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है। समारोह में 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों के 48 चयनित स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने स्वस्थ असहमति और विचार विमर्श की संस्कृति के महत्व पर जोर दिया। नई दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ब्रिक्स के सदस्य देशों और सहयोगी देशों के प्रतिनिधिमंडलों को संबोधित किया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कानून, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की भी घोषणा की। ये व्याख्यान श्रृंखला कानून, न्याय और समाज से संबंधित महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर संवाद और विचारों के आदान प्रदान के लिए एक नियमित मंच प्रदान करेगी। महाराष्ट्र के मेलघाट और पेंच बाघ अभयारण्य बंदी प्रजनित गिद्धों का पुनर्वास के लिए भारत के सबसे सफल स्थलों के रूप में उभरे हैं, जहां जीवित रहने की उत्साहजनक दर दर्ज की गई है। भारत और नेपाल के बचाव दल का चिली में सुरंग में बचाव अभियान जारी है और सुरंग के भीतर से भारी मलबा, पानी तथा कीचड़ हटाया जा रहा है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने आज बताया कि बचाव अभियान को सुगम बनाने के लिए पास के सियाफ रुबेसी से सुरंग के प्रवेश द्वार तक एक पहुंच मार्ग का निर्माण भी चल रहा है। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 56 रन का लक्ष्य रखा था। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। बाएं हाथ की स्पिनर श्री चर्नी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 रन देकर 3 विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi today said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. Addressing the gathering at the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce, SRCC, in New Delhi, Mr. Modi said the world is watching India become the fastest growing major economy. Contrasting past struggles with today's achievements, the Prime Minister emphasized that terrorism has been defeated, with armed forces confidently striking enemies in their own homes and peace restored from Jammu and Kashmir to the northeast.
1: Duniya Bharat ko fragile five bata rahi thi. Aaj duniya Bharat ko fastest growing major economy banne se hue dekh rahi. Abhi hafte bhar mein hi Bharat ki economy ko lekar कई सारी पॉजिटिव खबरें आई. 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है. ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है.
2: Presenting hard economic data to counter persistent critics, the Prime Minister shared that smartphone exports now exceed 2.5 lakh crore rupees, while domestic defence production has hit an all-time high of nearly 2 lakh crore rupees. Prime Minister said Sri Ram College of Commerce, SRCC, has given generations of students the opportunity to learn, grow and make a difference over the years. Mr. Modi said the college has distinguished itself over the years, making a mark for academic excellence. He termed the alumni of SRCC as very special and the OGs. The Prime Minister stated that former Finance Minister Arun Jaitley was an alumnus of SRCC. He said SRCC alumni have left their mark in every sector. Prime Minister Modi highlighted the profound significance of this 100-year milestone for both the college and the nation's education sector and paid tribute to founder Sri Ram and bowed to his enduring vision. President Draupadi Murmu today stressed that teachers must be held in the high

प्रदेश है। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में इस समय 11:16 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 5:55 पर इन्हीं मीटर्स पर हम फिर पुनः उपस्थित होंगे। अब हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।